नहीं। ये बात तुमने सुना दो शायद कि वो राह रास्त पाले। सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब।

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: का भी नहीं है, तो इसी वजह से ये बहुत ही अहम चीज है कि हम इनको इनकी खास ख्याल रखें। तो एक जरा मुकालमाती अंदाज में भी आपको ये तमाम जो है ना एक झलक देता हूँ, ताकि फिर आपसे ये सवाल करूंगा कि ये दरअसल किस पस मंजर में इस तरह के अल्फाज यूज करते हैं लोग। अच्छा जी, किसी कोई स्टाफ कह रहा है अस्सलाम वालेकुम मदीर, लो समहत हल तस्मह ली बिल कलाम, अना मदगूत, मदीर प्लीज मैं कुछ कह सकता हूँ। इसी तरह अना मदगूत, मैं बहुत आज स्ट्रेस्ड हूँ, टायर्ड हूँ, या फिर कामों के बोझ तले दबा हुआ हूँ, यानी काफी प्रेशर है मुझ पर। तो ये जो सवाल है ना, इसका क्या अंदाज है, ये क्या गुस्से का है या दबाव के साथ, यानी दबाव को बंदा झेलते हुए एक अदब का मुजाहरा भी कर रहा है, तो जवाब क्या होगा? क्या ये गुस्से का अंदाज ऐसा हो सकता है कि बराहे करम मुझे ऐसा बताइए? नहीं हो सकता ऐसा, बल्कि ये दबाव को झेलते हुए, बर्दाश्त करते हुए वो इसको मुअद्दबाना अंदाज में पेश कर रहा है। तो आप लोगों ने यही जवाब चुना होगा, इस वजह से आप सबको मुबारकबाद। और अब हम बिस्मिल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम के आखिरी मरहले में आखिरी मरहले की तरफ रुख करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब मिलते हैं बिस्मिल्लाह ताला ट्विटर तलहा के साथ, आखिरी और बहुत ही अहम अहम बातें होनी है, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: सीखना, समझना और बोलना, ये तीन हिस्से होते हैं किसी भी जुबान को सीखने के लिए। और आखिर हमें कैफल हाल से आगे भी तो बढ़ना है कि नहीं? इसलिए हमारे खास शो को जरूर सुने, जिसका नाम है लर्न अरबिक।
0: इस समय के नाम प्रोग्राम के इख्तिताई मरहले में हम यही कहेंगे कि आज के इस हलके में हमने सिर्फ अरबी के दफ्तरी जुमले नहीं सीखे, बल्कि इससे कहीं ज्यादा अहम बात है कि हमने ये जाना कि एक ही बात अगर मुख्तलिफ मूड में कही जाए तो उसका असर भी मुख्तलिफ होता है, तो मुख्तलिफ मूड्स में हम किस तरह बात कर सकते हैं। हमने सीखा कि अरबी में दफ्तर के जुमले कैसे बोले जाते हैं, और ये भी कि जब मूड बदलता है तो बात करने का अंदाज कैसे बदल जाता है। एक तरफ अगर आप पूर कॉन्फिडेंट है, पूर एतमाद है, वो वाला अंदाज है, पॉजिटिव मूड है, तो उसमें आप सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल-उमूर तैयबा मुतशर्रफीन सुअदा खुश नसीबी की बात है, वल्लाह नजाहिज यल्ला नब्दा अश-शुगुल चले शुरू करते हैं, लदैना इख्तराह मेरे पास एक प्रपोजल है, तो ये देखें पूरा माहौल खुशी का माहौल है और एक मुस्बत और कॉन्फिडेंट एक माहौल है। लेकिन एक दूसरा माहौल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, लो समहत प्लीज हल तस्मह, मुझे ज़रा आप इजाज़त दें तो मैं ये कर लूँ, ज़रा ये मामला इधर से उधर करना, या फिर आप इस तरह कह रहे ना मजबूत में ज़रा बहुत प्रेशर है मुझ पर और मैं स्ट्रेस्ड हूँ, इन तमाम बातों से ये पता लगता है कि बंदा जो है ना काफ़ी टायर्ड है या फिर वो दबाव में है, लेकिन वो फिर भी अपने लहजे को सही से इस्तेमाल कर रहा है और अदब के साथ बात कर रहा है। और इसी तरह जो है ना बंदा जब परेशान हो या फिर वो बीमार हो, उस वक्त भी अने तैबान छुई चौतनी इजाज़ा, काश कि तुम मुझे इजाज़ा छुट्टी देते, तो छुट्टी के लिए अरबी लफ्ज़ है इजाज़ा, इजाज़ा, ठीक है ना, इजाज़ा। उर्दू में छुट्टी का मुतबादल है अरबी में इजाज़ा, उतला भी कहते हैं वैसे अक्सर बेशतर यहाँ बोलचाल की ज़बान में इजाज़ा ही कहा जाता है। इसी तरह मिसाल के जरिए अगर आप समझें कि अगर गुस्से में हम कह सकते हैं कि भाई यल्ला आतिल फाइल अल्योम, आतिल मलफ अल्योम, मुझे आज ही में फाइल सबमिट करो, मुझे दे दो, आतिल मलफ अल्योम सल्लम लिया। लेकिन अब अगर इस तरह कहने के बजाय इस तरह कहें, लो समहत हल मुमकिन तुअतीनी अल मलफ अल योम, यानी आप इस मुअद्दबाना अंदाज में अपना मैसेज, अपना पैगाम सही पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको आज ही के अंदर अंदर ये फाइल चाहिए, लेकिन अंदाज अलग है, दबाव का इजहार भी है, अब प्रेशर है आप पर, आपको आज ही ये फाइल वसूल करना है, लेकिन साथ साथ आप इसको एक मुअद्दबाना अंदाज में पेश कर रहे हैं। तो सामिने किराम, बात करना सिर्फ मालूमात को शेयर करना नहीं होता, बल्कि ये एक दिली जज्बात का एक तबादला होता है इसमें। तो इस तरह सामिने किराम हमारी गुफ्तगु हमारी अंदरूनी कैफियत की अक्कासी करती है। और आज के इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की आपको अरबी कैसे बोलनी है और कब बोलनी है। मज़ीद हमारी ये गुफ्तगु और इस तरह के हफ्तावार प्रोग्राम बिदलाई ताला ये जारी रहेगा, और अगले हलके तक के लिए साउंड डिज़ाइनर शकीब अहमद और मुझे तलाश

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। सलाम, एक मरतबा फिर ये सआदत नसीब हो रही है मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को कि मैं आपकी खिदमत में एक ऐसे प्रोग्राम के साथ हाजिर हूँ जो हमारे दिलों को कुरान करीम के करीब लाने, उसके मानी में गौर करने और उसके अंदर छुपे हुए हिकमत के मोतियों को तलाश करने की एक अदना सी कोशिश है। प्रोग्राम का नाम आपने सुना है पर्ल्स ऑफ द कुरान, कुरान के मोती। इससे पहले भी एक तवील अरसे तक तफहीमुल कुरान के सिलसिले में हम आपके साथ कुरान मजीद के फहम और तदब्बुर का सफर करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस दौरान कुरान को मुख्तलिफ जावियों से समझने, उसके पैगाम को अपनी जिंदगी से जोड़ने और उसकी आयात में पोशीदा हिदायत को महसूस करने की कोशिश जारी रही। और अब एक बार फिर हम इसी कुरानी समंदर में उतरने जा रहे हैं, लेकिन इस बार ये कोशिश होगी कि हर नशिस्त में किसी आयत, किसी एक कुरानी मंजर, किसी एक माना या किसी एक सूरत को मुंतखब किया जाए और फिर उसके अंदर मौजूद उन मोतियों को तलाश किए जाएं जो हमारी सोच, हमारे दिल और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को रोशन कर सके। तो सितंबर से दिसंबर तक इंशाल्लाह इस नए शेड्यूल के दौरान कुरान के मोती का ये सिलसिला बाकायदगी के साथ जारी रहेगा और हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं कि वो इस मामूली कोशिश को शरफ़ कबूल अता फरमाए, उसे हमारे लिए इल्म नाफे, अमल साले और क़ुर्ब इलाही का जरिया बनाए और कुरान को वाकई हमारे दिलों की बहार और हमारी ज़िंदगी की रोशनी बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। सामने किराम, जब इंसान कुरान करीम में तख्लीक से मुतालिक आयात पढ़ता है और फिर एक लम्हे के लिए अरबों के पूरे अदबी व सकाफती वर्से को सामने रखता है, शायरी, खिताबत, रसूम, रिवायात, तहजीब, तो एक अजीब फ़र्क सामने आता है। ये सिर्फ जबान के हुसन, उसलूब या फसाहत का मसला नहीं, ये फ़र्क दरअसल मंबा का है। एक तरफ इंसान है अपने तजुर्बे, अपने माहौल और अपनी महदूद नज़र के साथ, और दूसरी तरफ वो कलाम है जिसमें खालिक खुद अपनी तख्लीक, अपनी कुदरत और अपनी रुबूबियत का तारुफ करा रहा है। इसीलिए अगर अरबी अदब और तहजीब

कि पूरे वर्षे को एक तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ सिर्फ कुरान करीम की एक सूरा सूरह फातिर जैसी एक सूरत खोल दी जाए तो महसूस होता है कि यहाँ गुफ्तगू की सतह ही कुछ और है। वहां बशर है और यहाँ रब्बुल बशर है। तो हमारे आज की इस तमहीद से इस इब्तिदा से आप समझ गए होंगे कि आज हमारे इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी सूरह फातिर को लेकर। सूरह फातिर में छुपे वो कुरानी मोती हम तलाश करेंगे आज जो हमारी पूरी जिंदगी के लिए मिशाले राह बन सकते हैं। सूरह फातिर का आगाज ही देखिए, इरशाद खुदावंदी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد

अल्लाह हवाएं भेजता है, फिर वो हवाएं बादल उठाती हैं, फिर हम उन बादलों को मुर्दा जमीन की तरफ ले जाते हैं और उसी पानी के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा कर देते हैं। फिर एक मुख्तसर जुमला, कज़ालिकन नुशूर, उसी तरह दोबारा उठाया जाना होगा। कितने वाज़े दलील है। तो हर साल मुर्दा जमीन को जिंदा होते देखते हो, खुश्क मिट्टी जिसमें जिंदगी का कोई निशान नहीं, बारिश आती है और वही जमीन सब्ज हो जाती है। तो जो रब जमीन को मौत के बाद जिंदगी दे सकता है, इंसान को मौत के बाद क्यों नहीं उठा सकता। सूरह फातिर इंसान से कहती है, क़यामत के लिए कोई ऐसी मिसाल मत मांगो जो तुमने कभी देखी ही ना हो, अपने सामने जमीन को देख लो। फिर इज्जत का मसला आता है, मन कान युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जत जमीअ, जो इज्जत चाहता है वो जान ले कि तमाम इज्जत अल्लाह ही के पास है। कितनी अहम बात है कि इंसान अक्सर इज्जत लोगों से मांगता है, ताकतवरों से मांगता है, नाम और शोहरत से मांगता है, किसी सामाजिक मकाम से मांगता है। कुरान कहता है कि इज्जत का असल खजाना अल्लाह के पास है। फिर फरमाया, इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिब वल अमलु सालिह यरफअहु, पाकीज़ा कलाम उसी की तरफ बुलंद होता है और सालिह अमल उसे ऊपर उठाता है। फिर वो लोग जो बुराई के मंसूबे बनाते हैं, उनके लिए अजाब और उनकी तदबीर एक के बर्बाद होने का जिक्र आता है। उसके बाद तख्लीक का दायरा मजीद करीब आ जाता है। पहले सवाल आम था, हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह, अब खिताब खुद इंसान की तख्लीक पर आ जाता है। वल्लाहु खलकुकुम मिन तुराब थुम्मा मिन नुत्फा थुम्मा जअलकुम अज़वाजा, अल्लाह ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर तुम्हें जोड़ों में बनाया। फिर फरमाया, वमा तहमिलु मिन उन्था वला तदाउ इल्ला बिइल्मी, कोई मादा न हमल उठाती है और न बच्चा जनती है मगर अल्लाह के इल्म के साथ है। जरा इस माने की वसत को महसूस कीजिए, सिर्फ एक औरत की बात नहीं या एक जानवर की बात नहीं हो रही, जमीन पर जितनी मादाएं हैं, जिस मखलूक में भी हमल है, विलादत है, सब अल्लाह के इल्म में है। और फिर फरमाया, वमा युअम्मरु मिन मुअम्मर वला युनक़सु मिन उम्रिही इल्ला फी किताब इन ذلك على الله يسير, किसी की उम्र बढ़ती है या कम होती है, सभी किताब में दर्ज है और ये अल्लाह के लिए आसान है। तो यहाँ रुबूबियत का तसव्वुर सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ने कायनात को पैदा कर दिया और छोड़ दिया, बात ऐसी नहीं। वो पैदा करने वाला भी है, जानने वाला भी, निजाम चलाने वाला भी, जिंदगी के हर मरहले का इहाता रखने वाला भी। और फिर सवाल ये पैदा होता है, एक आकिल इंसान ये सब सुनने के बाद एक लकड़ी या पत्थर के बुत के सामने कैसे झुक सकता है। यहाँ असल मसला दलील की कमी नहीं था, मसला कुछ और था, मौरूसी सकाफत की ताकत, समाजी हैबत और बड़े लोगों की बनाई हुई तस्वीर। इंसान कभी सच को इसलिए नहीं छोड़ता कि सच कमज़ोर है, कभी वो इसलिए सच को नहीं देख पाता कि उसकी आंखों के सामने किसी शख्सियत, खानदान, कबीले या रिवायत की इतनी बड़ी तस्वीर खड़ी कर दी जाती है कि वह हकीकत को देखने की सलाहियत खो बैठता है। मक्के में वह शख्सियत के ही हाल था। अबू जहल का असल नाम आमिर इब्न हिशाम था और कुरैश में उसे अबुल हकम कहा जाता था, यानी एक वकार, एक समाजी रोब, एक बड़ी हैसियत। आज हमारे लिए वो सिर्फ तारीख का एक मनफी किरदार है, लेकिन अपने माहौल में उसकी समाजी तस्वीर बहुत बड़ी थी और यही तस्वीर लोगों को मुतासर करती थी। कुरान हमें बार बार दिखाता है कि तारीख में ऐसे लोग और ऐसे ग्रोह पैदा होते हैं जिनके गिर्द इतनी हैबत और इतना समाजी प्रोटोकॉल बना दिया जाता है कि आम आदमी उनके आगे फिक्री तौर पर सर झुका देता है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, आंख हकीकत को देखना छोड़ देती है। फिर कुरान बुतों के बारे में एक नहायत सादा मगर फैसला कुन हकीकत ये बयान करता है कि इन्हीं इल्ला अस्मा उन समैतुमुहा अंतुम वआबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, ये तो महज नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। इन्हीं वे बुत आखिर हैं क्या, तुमने उन्हें एक नाम दे दिया, फिर उस नाम के गिर तकद्दस बना दिया, फिर रिवायत ने उस तकद्दस को मजबूत कर दिया, फिर नस्लें गुजरती गईं और वही चीज़ एक नाकाबिले सवाल हकीकत बन गई। कुरान आकर पूछता है, नाम रखने से कोई चीज़ इलाह कैसे बन गई, नाम से पहले वो क्या था, पत्थर, लकड़ी, एक मादी चीज़, लेकिन समाजी रिवायत ने एक तस्वीर बनाई, फिर तस्वीर इतनी ताकतवर हो गई कि अकल ने सवाल करना छोड़ दिया। इसीलिए बादशाह

0: अबा के ईमान लाने के बाद उनके अंदर ये फिक्री आजादी बहुत नुमाया नजर आती है। जब हकीकत वाजे हो गई तो उन्होंने बुत को बुत ही देखा, पत्थर को पत्थर ही समझा और उस मसनूई तकद्दस के पर्दे से बाहर निकल आए। यहां सूरह फातिर और कुरान का एक बड़ा सबक सामने आता है कि हक को देखने के लिए सिर्फ आंख काफी नहीं, आजाद नजर भी चाहिए।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
0: समझ के नाम सूरह फातिर की एक बड़ी खूबसूरती ये है कि कायनात के मुख्तलिफ मनाजिर को एक दूसरे से जोड़ते हुए अल्लाह ताला की रुबूबियत, कुदरत और तौहीद को मुसलसल वाज़े करती है। इंसान की तखलीक से बात शुरू होती है, फिर समंदर, फिर कश्ती, फिर रात और दिन, फिर सूरज और चांद, फिर आसमान और ज़मीन का निज़ाम, और हर मंजर एक ही हकीकत की तरफ इशारा करता है कि मालिक एक है, खालिक एक है, इख्तियार उसी का है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह खलककुम मिन तुराबिन थुम्मा मिन नुत्फा ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير। आयत का खुलासा ये है कि तुम्हारी पैदाइश, तुम्हारी नस्ल, हमल, विलादत, उम्र, उम्र में कमी या ज्यादती सब अल्लाह के इल्म में है। और फिर आगे जाकर अचानक मंजर बदलता है। वमा यस्तवी अल-बहरान هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج। دو سمندر برابر نہیں، ایک میٹھا خوشگوار اور پینے کے قابل، دوسرا کھارا اور شور۔ پھر فرمایا ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ तुम दोनों से ताज़ा गोश्त खाते हो, जेवरात निकालते हो और कश्तियों को पानी चीरते हुए देखते हो ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और शुक्रगुजार बनो। ज़रा देखिए कि सूरह फातिर कारी को कहाँ कहाँ ले जा रही है। एक लम्हे में इंसान की तखलीक, फिर ज़मीन, फिर समंदर, फिर कश्ती, फिर निगाह आसमान की तरफ उठती है। यूलिजु लैल फिन्नहार व यूलिजु नहार फिल्लैल व सखर शम्स वल कमर कुल्लुन यजरी लिअजल मुसम्मा। वो रात को दिन में दाखिल करता है, दिन को रात में, और सूरज और चांद को मुसख़र कर दिया है, हर एक एक मुकर्ररा वक्त तक चल रहा है। तो यह एक बहुत अहम तसव्वुर है कि सूरज आज़ाद नहीं, चांद खुद मुख्तार नहीं, रात खुद नहीं आती, दिन खुद नहीं जाता, सब के सब मुसख़र हैं, सब एक हुक्म के तहत हैं और सब के लिए एक मुकर्ररा मुद्दत है। फिर इतने अजीम कायनाती मंजर के बाद एक फैसला कुन जुमला आता है, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, बादशाही उसी की है। और फौरन बुतों, माबूदान बातिल और उन तमाम हस्तियों के बारे में फरमाया जिन्हें अल्लाह के सिवा पुकारा जाता था, वल्लज़ीन तदउना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़त्मीर। और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो खजूर की गुठली के बारीक छिलके के भी मालिक नहीं। कितना जबरदस्त तकाबुल है कि एक तरफ वो रब है जो इंसान को पैदा करता है, जो हर हमल को जानता है, जो उम्र का हिसाब रखता है, जो समंदरों को निजाम देता है, जो कश्तियों को चलाता है, जो रात और दिन बदलता है, जो सूरज और चांद को मुसख़र करता है, और दूसरी तरफ वो माबूद जिन्हें लोग पुकारते हैं उनका, हालांकि उनकी हकीकत है मा यमलिकूना मिन क़त्मीर, एक बारीक गुठली के भी मालिक नहीं, यानी खजूर की गुठली के भी मालिक नहीं। अब जरा इस मंजर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह से देखिए। जमीन पर सूरत हाल मुश्किल थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इब्तिदा में चंद लोग थे, जबकि मुखालिफिन के पास कबाइली कुव्वत, समाजी असर, माल, रिवायत, निज़ाम और ज़ाहिरी ताकत सब कुछ था। जाहिर में वो मजबूत थे, लेकिन उसी माहौल में कुरान नाजिल होता है और कहता है ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क। असल बादशाही अल्लाह की है, और वल्लज़ीन तदउना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन क़त्मीर। जिन्हें तुम इतना बड़ा समझते हो वो हकीकत में क़त्मीर के भी मालिक नहीं। तो ये आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान के लिए कल्बी क़ुव्वत भी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील अलैहिस्सलाम से कलाम सुनते होंगे तो ये सिर्फ यानी मालूमात नहीं थे, ये आयात सीने में यकीन भरती थी, दिल को क़ुव्वत देती थी और इस हकीकत को ताज़ा करती थी कि ज़मीनी हाल

जमीन का पैदा करने वाला है, ये मतलब वो नहीं लेते थे। इसका मतलब था जिस रब ने आसमान बनाए वो हमारी हिफाजत से आजिज नहीं। और जब वो सुनते लहुल मुल्क तो उन्हें याद आता कि कुरैश के सरदार ज़ाहिरी इख्तदार रखते हैं लेकिन असल इख्तदार उनके पास नहीं। और जब सुनते मा यमलिकूना मिन क़त्मीर तो बुतों और उनके गिर्द बनाई गई तमाम तहजीबी हैबत छोटी हो जाती। इसीलिए ये आयात हर दौर में अहले ईमान के दिलों में इज्जत पैदा करती हैं। फिर अगली आयत दलील को और वाज़ेह करती है, इन तदउहुम ला यस्मउ दुआकुम, अगर तुम उन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुन नहीं सकते। वलो समिउ मस्तजाबु लकुम, और अगर फर्ज करो कि सुन भी लें तो तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। फिर वह हकीकत बयान की जाती है जिसे इंसान अभी दुनिया में नहीं देख रहा। वयौमल क़ियामति यकफुरूना बिशिर्किकुम, क़यामत के दिन वो तुम्हारे इस शिर्क से बेजारी जाहिर करेंगे। फिर कुरान कहता है, वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और एक बाखबर हस्ती की तरह तुम्हें कोई खबर नहीं दे सकता। यानी यह महज इंसानी तज्जिया नहीं, ये उस ज़ात की खबर है जो ज़ाहिर व बातिन दुनिया व आखिरत सब जानती है। फिर एक और अजीम ऐलान आता है, या अय्युहन नास अंतुमुल फ़ुक़रा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीउल हमीद, ए लोगो तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह ही बेनियाज हर तारीफ के लायक है। तो ये आयत इंसान की पूरी खुदफरेबी तोड़ देती है। हम समझते हैं कि हम ताकतवर हैं, हम खुद कफील हैं, हमारे पास वसाइल माल मकाम और ताल्लुकात हैं। कुरान कहता है, तुम सब फकीर हो, तुम्हें सांस के लिए अल्लाह चाहिए, दिल की धड़कन के लिए अल्लाह चाहिए, रिज़्क के लिए अल्लाह चाहिए और आखिरत में निजात के लिए भी अल्लाह ही चाहिए। फिर फरमाया, इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्क़िन जदीद व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। मगर उसी कुव्वत के साथ अल्लाह का अदल भी सामने आता है। वला तज़िरु वाज़िरतुन वज़्र उख़रा, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। और अगर कोई गुनाहों से बोझल जान किसी दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए पुकारे तो कोई उसका हिस्सा नहीं उठाएगा, खा करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो यहाँ कुरान इंसान को इनफरादी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। दुनिया में खानदान, कबीला, जमात, समाजी हलका बहुत कुछ सहारा दे सकता है, मगर आखिरत में हर शख्स अपने अमल के साथ खड़ा होगा। फिर फरमाया, इन्नमा तुन्ज़िरु अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल्ग़ैबि व अक़ामुस्सलाह, आपकी तंबीह से असल फ़ायदा कौन उठाएंगे? वही उठाएंगे जो अपने रब से यानी बिना देखे डरते हैं, बिल्ग़ैब डरते हैं और नमाज कायम करते हैं। और वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़सिही व इलल्लाहिल मसीर, जो पाकिज़गी इख्तियार करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए करता है और आखिरकार लौटना अल्लाह की तरफ है। उसके बाद सूरत फ़ातिर दलील और तक़ाबुल को मज़ीद ताकत देती है। وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ, اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں, تاریکیاں اور روشنی برابر نہیں, سایہ اور تپتی دھوپ برابر نہیں, زندہ اور مردہ برابر نہیں. تو دراصل یہ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ صرف ادبی تشبیہات ہیں, بات ایسی نہیں. یہ ایمان اور کفر, ہدایت اور گمراہی, قلبی زندگی اور روحانی موت کے درمیان فرق کو محسوس کرانے والا اسلوب ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاتا ہے, ان انت الا نذیر, آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں. یعنی آپ کا کام لوگوں کے دلوں کو زبردستی بدل دینا نہیں, آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. دراصل اس جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تسلی ہے. اور پھر فرمایا, انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا, اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ گزرا ہو. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی انوکھا واقعہ نہیں, آپ اسی سلسلہ نبوت کی کڑی ہیں جو تاریخ انسانیت میں پہلے سے جاری ہے. اسی لیے فرمایا, وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا. سامعین کرام, یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوہری تسلی ہے, آپ اکیلے نہیں اور مخالفت کوئی نئی چیز نہیں. پھر سورت دوبارہ کائنات کی طرف لے جاتی ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہی پانی لیکن پھلوں کے رنگ مختلف. پھر پہاڑوں کی طرف آتے ہیں,
ومن

0: ज्यादा हो सकते हैं, वसाइल कम हो सकते हैं, मगर हकीकत फिर भी यही है, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكَ। और शायद सबसे कीमती मोती यही है कि ईमान इंसान को सिर्फ ये नहीं बताता कि अल्लाह मौजूद है, ईमान उसे ये यकीन भी देता है कि जिस अल्लाह पर वो ईमान लाया है, असल मुल्क, असल कुव्वत, असल इल्म और असल फैसला सब उसी के हाथ में है। तो सामने कलाम सूरह फातिर के आखिरी हिस्सों में एक ऐसी शान कलाम सामने आती है जिसे सुनकर इंसान महसूस करता है कि ये गुफ्तगु किसी इंसान की नहीं हो सकती, ये उस रब का कलाम है जो मखलूक को पैदा करने वाला भी है, उनके जाहिर और बातिन को जानने वाला भी, उनके मुस्तकबिल से वाकिफ भी और आखिरत के अंजाम का मालिक भी। यहाँ कुरान इंसान को एक बुनियादी हकीकत की तरफ मुतवज्जे करता है कि आखिरत महज एक मजहबी तसव्वुर नहीं बल्कि एक यकीनी मुस्तकबिल है, जन्नत हकीकत है, जहन्नम हकीकत है, हिसाब हकीकत है, और इंसान एक ऐसे सफर पर है जिसका आखिरी पड़ाव इन्हीं में से किसी एक अंजाम तक पहुंचना है। اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره। سامعین کرام، پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیس

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: देखिए खैर को पहचानते हैं और ये भी

0: FM 107. Time check. Time
1: check. और जी के साथ अब मैदान में सुबह सुबह आ रही है, 6:01 पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, आंखों में आक्रोश नजर गेम पे, पूरा स्टेडियम व्हाट्सएप के साथ तैयार, 666-22-107 नंबर, और पहली गेंद फेंकते हुए दो हवाले का वेट। नहीं वो तो बल्लेबाजी करने आए थे ना, चलो गेंदबाजी करने तो कोई दिक्कत नहीं। गुड मॉर्निंग मैका जी, शुरू करते हैं, आ जाओ घुमा देते हैं।

वेक अप जी, आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है। गुड मॉर्निंग सबको, वेक अप हो जाओ भाई। वीकेंड तो हो लिया जा लिया भाई। मैं दो हवाला कबीर एफ 107 पे, और क्या हाल है भाई बनो, बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आई रियली होप सो, बिकॉज दिस मॉर्निंग इज समथिंग डिफरेंट। आज थोड़ा सा माहौल भी ठीक ठाक है, गर्मी भी ठीक ठाक ही है, वो तो रहेगी भी, लेकिन आई एम सो एक्साइटेड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वीक। ये अंग्रेजी बोलने के लिए मैं लिख के लेके आया हूँ, आज तो कुछ ऐसा फैंसी सा बोल देंगे भाई। लेकिन आई एम सरप्राइज, फ्राइडे के दिन भी अभी मैसेजेस पड़े हुए हैं, फ्राइडे की सुबह को भी गुड मॉर्निंग कबीर लिखा हुआ है लोगों ने। ये कहाँ से आ रहे हैं लोग जिन्हें लगता है कि मैं जुमे के दिन सुबह सुबह शो करने के लिए पहुंच जाऊंगा। मगर थैंक यू सो मच, ये आपकी मोहब्बत है। अगर आपको ऐसा लगा कि सवेरे सवेरे कबीर शो करने पहुंच जाएगा, वो भी फ्राइडे को, देखो आप सांप पाल लीजिए, लेकिन गलत फहमी मत पालिए ऐसी वाली, समझ रहे हैं आप। नो अच्छा, मैं एक भाई ने पूछा वीकेंड कैसा गुजरा, मेरा वीकेंड भाई बहुत शानदार था। मैंने वीकेंड पे रैप शोज निपटाए बढ़िया करके। मैंने किया भाई साहब एसी 17 डिग्री पे, पहना कम्बल, सोफे पे लेट के बढ़िया टेक लगा के, जो मैंने शोज पे शोज चेपे भाई, जो मैंने शोज पे शोज देखे, पहले इंडिया वाले सारे रैप शोज निपटाए, फिर पाकिस्तान का एक शो है वो देखा मैंने, क्या नाम है पता, रैप आइकॉन, वो निपटाया भाई, लगातार सारे शोज निपटाए, फिर भर के गेमिंग करी मैंने। सो मेरा वीकेंड जो है लिटरली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार गुजर रहा है। एंड कुछ मैसेजेस मेरे पास आए सुबह सुबह, उन पे ज़रा मैं नज़र फेरना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू भाई, मेरा भाई, बहुत सारा प्यार शाहिद भाई को, शाहिद भाई थैंक यू सो मच। इनके मैसेज है अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, अब्दुल जब्बार, जब्बार साहब कह रहे हैं कि वो मसीद से मसीद जा रही, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। जब्बार भाई आपका नाम यार वज़न है भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई, थर्सडे को स्टोरी नहीं चल रहा है भाई। स्टोरी नहीं चल रही, हाउ कम, आर यू श्योर, आपने इसी जगह देखी? मैं सुभाष भाई अभी कुछ करता हूँ, डोंट वरी, यू डोंट वरी अबाउट इट। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज किया मैं जुनेद भाई ने, भाई जुनेद थैंक यू, एक वॉइस नोट है। उनके बाद कैसे हो? मैं बढ़िया मोहसिन साहब, एकदम शानदार टकाटक। और एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, हाउ यू, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम यू, फॉर यू, मिस्ड यू ऑल्सो ब्रोस, थैंक यू सो मच भाई, बहुत सारा प्यार। ये आसिफ भाई ने मैसेज किया है, भाई आसिफ। इनके बाद एक मैसेज, हालांकि वो अभी होंगे नहीं, मुझे पता है उन्होंने

0: कहानी है भाई, है वियर्ड सी, कुछ नहीं कर सकता उसमें. सो वो कहानी जब सॉल्व होगी तो आपको लगेगा ऐसा भी हो रहा है क्या दुनिया में. तो आज की ऐसी कहानी है, बस मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि उसके बारे में मैंने अगर एक्स्ट्रा कहा तो मामला फेल हो सकता है. सो आई विल नॉट ओवर सेल इट, समझ रहे हैं आप. बाकी तो भाई साहब सुबह की शुरुआत आप जानती हैं दुआओं के साथ होगी. 10 मिनट 33 सेकंड के बाद मिलेंगे तला भाई की आवाज़ में सुबह के अधिकार इंशाल्लाह. उसके बाद होगी आपसे मुलाकात 6:06 में दुआ वाला कबीर एंड यस अधिकार के दौरान. और बाद में व्हाट्सएप पे प्लीज़ मैसेज कर दिया करें, बड़ा जो दिल जो है ना बड़ा खुश सा हो जाता है. 666-2107 666-2107 इज द नंबर. स्टे ट्यून्ड.
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशादे खुदावंदी है, वज़कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

0: गया, उसने दिए ही नहीं, तो फिर ऐसा होगा ना, फिर ऑनलाइन में क्या है कि बंदा फंसा हुआ है, वो उसको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है। और एक मैसेज अलीना का, वालेकुम अस्सलाम स्वीटहार्ट, क्या हाल है अलीना, आर यू रेडी फॉर द डे, वीकेंड कैसा गुजरा बच्चे? और सुमुल बन कह रही है चाय के लिए भी छुट्टे पैसे चाहिए। अच्छा दैट ये लेजिट रीजन है, ये रीजन मैं मान सकता हूँ। एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या हाल है कबीर भाई, हम भी चलाते हैं लेकिन कैश जब मिल जाता है तो आदमी का दिल खुश हो जाता है, क्योंकि जेब में हर टाइम कैश होता है, किसी भी टाइम मैं उस पर मार्केट में जाओ, लेकिन कार्ड जब चालू हो जाते हैं कट के पैसे एक हफ्ते के बाद मिलते हैं, तो आदमी सोचता है कि यार ऐसे ही अच्छा है। ओके दैट मेक सेंस, ये भाई ने सेंस वाली बात करी अब्दुल्ला भाई ने। अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं भाई देखो सुबह सवेरे जो है ना, सुबह सवेरे क्या पूरे दिन में आदमी को थोड़ा हार्ट कैश जेब में चाहिए रहता है, और क्या है कि जब कार्ड का मसला होता है तो पैसे थोड़े एक हफ्ते बाद मिलते हैं, तो उसका थोड़ा मज़ा ख़त्म हो जाता है, ये भाई का कहना है। अच्छा एक और पर्सपेक्टिव मुझे मिला, एक और भाई हैं ये कह रहे हैं कि मैं डिलीवरी का काम करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑनलाइन की जगह जब सामने से पैसे मिलते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। कबीर भाई मैं आनंद आपके शो को बहुत अच्छे से सुनता हूं, और मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, मुझे भी ऐसा लगता है कि कैश मिले तो बढ़िया है, मैं ऑनलाइन पसंद नहीं करता। भाई ये तो ये आप लोगों का पर्सपेक्टिव था, ये आम आदमी को कैसे समझा जाए, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपकी, मैं बिल्कुल प्रॉब्लम समझ रहा हूं। पर ऑन दी अदर साइड लोगों ने अभी बिल्कुल कैशलेस जिंदगी शुरू कर दी है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो कैश लेके कुछ चल रहे, मुझे ये भी लगता है कि आपके पास जितने भी कस्टमर्स आ रहे होंगे, स्पेशली जो हमारे भाई लोग हैं जो भी कैब चला रहे हैं कतर में, हार्डली मुझे लगता है कि 5-10% लोग होते होंगे जो आपको कैश दे रहे होंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे लगता है कि सबके सब ऑनलाइन ही पेमेंट कर रहे हैं। और आप ही की तो शिकायत थी ना स्टार्टिंग में कि ये कैब से उतर के भाग जाते हैं लोग, कितने कैसे भाई, कि बंदा कह रहा है बस अभी रुको यहीं रुको मैं कैश लेकर आ रहा हूँ बस यहीं रुको, और फिर बिल्डिंग में गया बंदा गायब, तो भाई उससे तो बेहतर ही है ना, क्यों शकील भाई। एक मैसेज है ऑनलाइन बेस्ट है, ये मोहसिन भाई ने मैसेज किया है, ओके कहते हैं कि कैश कभी कभार नहीं कोई कस्टमर नहीं देता, तो वही मैं कह रहा हूँ ना। खादर अब्दुल्लादी भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई, सब बढ़िया चुंगा। और मेरे पास एक और मैसेज आया है, इनफैक्ट ये बहुत अलग किस्म का मैसेज है मेरे पास, अब्दुल वहीद साहब का मैसेज आया मेरे पास, कहते हैं कबीर भाई मैं पिछले छः सालों से अच्छा कतर में कैब चला रहा हूँ, पहले जब कैश मिला करता था तो थोड़ी सी आसानी रहती थी, अब कैश नहीं मिलता है बिल्कुल भी, 2% भी कोई कैश देकर नहीं जाता, सब ऑनलाइन होता है और जेबें खाली हो जाती हैं। ओके तो अभी क्या करें, मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, क्या इसका सोल्यूशन है, आप क्या मतलब दिन में आप चाहते हैं कि एटलीस्ट 20-30% लोग आपको कैश दें, ऐसा चाहते हैं, या शकील भाई वाला सीन है कि भाई सुबह मेरे को कैश चाहिए, कॉल आ रही, रुक जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है? ठीक
0: बढ़िया भाई, आपकी क्या हाल है? बढ़िया भाई, एकदम शानदार जी भाई,
1: माशाल्लाह वीकेंड अच्छा था,
0: बहुत शानदार भाई, अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बढ़िया,
1: माशाल्लाह अच्छा गुजरा होगा, अच्छा खाया पिया होगा,
0: एकदम बढ़िया होगी, एकदम बढ़िया भाई, दबा के
1: जी
0: आप बताइए क्या
1: मसला। ये है जो कबीर भाई आप बता रहे हैं कैब के बारे में,
0: हाँ।
1: और क्या होता है सुबह सुबह बाद दफा इंसान के पास पैसे तो रहते ही हैं हमेशा, बाद दफा ऐसे भी होता है कभी पैसे नहीं लेते जेब में, पेट्रोल डलवाना होता है, खाना खाने के लिए या कोई चाय वगैरह देने के लिए, मतलब 10-20 जो सुबह सुबह मिल जाए उसकी खुशी एक अलग होती है, पैसे तो हमें पता है अभी मिल जाएंगे, कोई नहीं। प्रेजेंटली रात क्या हुआ मेरे साथ, जैसे आप अभी कह रहे थे, तो कस्टमर को मैं लेके गया, कोई 4 किलोमीटर का उसकी लाइट थी,
0: ठीक है,
1: 4 किलोमीटर में उसको जब घर के सामने उतार, उसने रिटर्न भी बुक की होगी थी, पड़ी थी, मुझे कहता मैं आ रहा हूँ, रुकिया वहां खड़े हो गए, 6 मिनट गुजर गए, 7 मिनट गुजर गए, 10 मिनट गुजर गए, मैंने उसको कॉल की, कहता है बस 2 मिनट, तो फिर 2 मिनट के बाद फिर मैंने जो है ना वेट किया, 8 मिनट और गुजर गए, यानी ऑलमोस्ट 20 मिनट गुजर गए थे, सेकंड में फिर मैंने कॉल की, कहता है 2 मिनट, यानी ऐसे करते करते उसने मुझे 47 मिनट रोक के रखा
0: भाई साहब, फिर
1: उसके बाद मुझे कहता है आपने कैंसिल किया कर दो, मैंने नहीं जाना, नहीं जाऊंगा तो मैं थोड़ी देर 2 मिनट और रुक के जाऊंगा।
0: अच्छा मतलब गाड़ी में बैठा ही नहीं, वो
1: गाड़ी में बैठा लेके गया मैं उनको, 3-4 किलोमीटर कर लिया उसने, हाँ। उसने रिटर्न

0: अच्छा रिटर्न बुकिंग की। ओके ओके ओके ओके
1: यानी 47 मिनट गुजरने के बाद वो फिर भी मुझे कह रहा है कि मैंने 2 मिनट के बाद मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ऑलमोस्ट जो है ना 40 मिनट गुजर चुके हैं, मैं और भी काम करना है। कहता है ओके ओके मैं आ रहा हूँ। यानी ऐसा करते करते एंड में मैं तंग हो गया। जब मैंने देखा इतना टाइम गुजर गया, मैंने राइट ली जहाँ तक उसने बुकिंग की हुई थी, मैं वहां तक चला के जाकर उसको ड्रॉप कर दिया।
0: अरे यार, तो इस केस में क्या करना होता है? आप लोग क्या करते हो जब ऐसा कुछ हो जाता है, तो क्या करते हैं आप?
1: हाँ, ऐसा अगर कुछ हो जाता है फिर हमें ऊपर पैसे दे देती है, जाके हम उसमें कंप्लेन करते हैं कि कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, हमें उसी टाइम इमीडिएटली मिल जाते हैं।
0: अच्छा, इमीडिएटली पैसे मिल जाते हैं?
1: मिल जाते, हमारे अकाउंट में आ जाते हैं।
0: अरे यार, फिर तो बढ़िया है, फिर तो क्या टेंशन है? मतलब टाइम खराब
1: लेना देना फिर भी कस्टमर का ही नुकसान है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा।
0: हाँ, तो ये अच्छा हुआ आपने समझाया, क्योंकि मैं यही समझना चाह रहा था कि अगर ऐसा हो जाता है कि मान लो कस्टमर भाग गया, उसने दिए नहीं, वो टोपी पहना रहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, उस केस में जो अमाउंट आपको मिल रहा है वो उतना अमाउंट मिल रहा है जो शो कर रहा है, या उससे थोड़ा कम मिलता है?
1: नहीं, मेरे उसमें शो कर रहे थे वो 15 रियाल प्लस से शो कर रहे थे, जब बेटे की तरह उसने कराया।
0: ठीक है,
1: जब मैंने रात कंप्लेन की उसमें मुझे 24 रियाल मिले हैं।
0: हाँ, तो फिर तो बढ़िया यार, सेट है फिर तो मामला, फिर क्या टेंशन है? ये तो सही है, ये
1: मतलब
0: तो सही है।
1: मैंने कहा ये है, फिर भी नुकसान उसी का है, हमारा नहीं है, लेकिन ये है कि हमारा नुकसान ये है कि इतना टाइम खड़े रहेंगे उसी में, पर मिनट को 41 रियाल मतलब पड़ता रहता है।
0: हाँ, मेक सेंस है, ये बात तो। ये बात
1: खास रिक्वेस्ट ये है कि इतना मेरे भाई लोग चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तानी है, बंगाली हैं, जो भी है, भारत ठीक हो गए, मेरे तरफ सबको सलाम। और दूसरा कि ये है क्योंकि मैं उठाते हैं, लोग मिलते रहते हैं नए नए किस्म के, तो कार्गो फैसिलिटी एरिया में लोग जाते हैं, वो मुझे तकरीबन 3 दिन पहले ही मिले थे, कह रहे थे यार जो है ना इतने भी ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके पाकिस्तान के लोग ज्यादा पहले नंबर पे हो रहे हैं। मतलब
0: देखो क्या, मैं आपको ये इस बात पे मुझे बोलना, देखो मैं आपको एक बात सीधी बात बताऊं आपको, क्या है ना, ये जो है ना कि इस कंट्री का कर रहा है, उस कंट्री का कर रहा है, ये सब भाई बहुत ही अजीब बातें, हवा वाली बातें, किसी के पास दुनिया में अभी कोई इस बारे में कोई डेटा नहीं है, स्पेशली कतर जैसे कंट्री में। तो ये कह देना कि इस कंट्री का ज्यादा कर रहा है, उस कंट्री का ज्यादा कर रहा है, भाई ये कोई भेतु की बात है, सेंसलेस बात है। और ये
1: थोड़ा केयर करने के लिए,
0: हाँ,
1: जितने भी लोग चला रहे हैं मतलब थोड़ा सा एहतियात करें, आराम।
0: हाँ, ये बोलो कि जितने लोग चला रहे हैं वो एहतियात करें, इट्स लाइक सेइंग कि सारी की सारी औरतें जो है वो ड्राइविंग नहीं जानती, मतलब समझ रहे हैं आप, एक जनरलाइज वर्जन पेश करने की कोई जरूरत नहीं है, डजंट मेक सेंस कि कौन सी कंट्री कर रहा है। बट मेरा मेजर सवाल ये है कि कैश जो है, लोग जैसे आपने भी जिक्र किया, तो कैश जरूरी है मतलब, या ऑनलाइन आपको ज्यादा भी सूटेबल लग रहा है क्योंकि आप ड्राइव भी कर रहे हैं?
1: कैश भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह मिल जाए ना, बस बात वही आ गई, खर्चे के लिए जेब खर्चा भी बन जाता है, पेट्रोल के लिए बन जाता है, काफी जरूरत चीजें पड़ती रहती है, उसमें ज्यादा यही होता है, बाकी ज्यादा नहीं भी मिलते कोई इशू नहीं होता, मतलब 2-4 जो मिल जाए ना, 30-40 है फिर अल्हम्दुलिल्लाह।
0: दिन में मिलते हैं कस्टमर जो कैश देने वाले होते हैं? कैश देने वाले कस्टमर मिलते हैं,
1: बहुत मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 100-150, 200-200 रियाल, 150 रियाल तो मिल ही जाता डेली।
0: हाँ, फिर तो ठीक है यार, फिर तो
1: मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब ये होता है बार दफा लोगों के पास सुबह सुबह पैसे नहीं होते, तो सुबह सुबह अगर जो लोग निकल रहे होते हैं वो अगर कैश दे दें 2-4
0: सुबह सुबह का मसला हो जाता है, बाकी तो कस्टमर मिल जाते हैं जो 100-150 रियाल तक कैश दे देते हैं। अब्दुल्ला भाई मैसेज, कबीर भाई मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी का, जो है वो जितना भी वेट करेगा उसका पैसा आपको देता है, आप नहीं चाहते तो कैंसिल करके चले जाओ। अच्छा, वेट करने के पैसे मिल जाते हैं, फिर तो सेंस है इस बात का ना। फरद भाई वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और सुभाष भाई कह रहे हैं ऑनलाइन ही सही है, कैश होगा, खोने का भी डर नहीं रहेगा। मैं तो आजकल कैश कैरी करना छोड़ दिया है, कार्ड से काम चल जाता है आजकल। और खादिर अब्दुल्ला भाई कहते हैं ओनली स्मॉल रेस्टोरेंट्स आर टेकिंग कैश, ऑल्सो सम ऑफ देम टेक बाय कार्ड्स। अब तो हार्डली आई थिंक कोई खाने पीने की जगह बची होगी जहाँ पर कार्ड नहीं चल रहा होगा। मैं इसलिए भी इस बात के नॉट खिलाफ, मगर मैं तभी इनकी बात पे कहना चाह रहा था कि आपको कैश की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। मतलब आप कह रहे हैं ना कि मुझे कैश ही चाहिए, हमारे कैब वाले भाई भी मेंशन करके भी गए कि मुझे भाई सुबह सुबह कैश चाहिए, तो उसकी रीजनिंग मुझे बताओ। भाई कह रहे हैं रीजनिंग सिर्फ इतनी है कि जेब में अच्छे लगते तो मुझे दूसरा रीज़न, क्योंकि सारी जगहों पर तो कार्ड चल रहा है ना, मतलब मैं ऑनेस्टली मैं इनके खिलाफ जाके नहीं बोल रहा हूँ, सो डोंट पेंट दैट पिक्चर, मैं सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ। सुमुल मैंने मैसेज किया है, भाई अच्छा धंधा है वेट करने का, पैसे मिलते हैं, यहाँ लेट आ जाओ तो पैसे कट जाते हैं बहन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग एक्चुअली में, जितने ये भाई लोग

बता रहे हैं ना जो कैब चला रहे हैं, इनको बहुत परेशान करते हैं, ऑनेस्टली बहुत परेशान करते हैं। कुछ लोग एक तो कैब बुक करते हैं, उसके बाद वो आराम से आएंगे टहलते टूलते बढ़िया एकदम 10-15 मिनट वेट करा के, और उनको ढूंढने में अलग दिक्कत, फिर वो लोकेशन ऐसे देंगे कि बंदा पहुंच ही ना पाए। कोई एक मामूली से कीड़ा भी बोलते भाई इस गली तो मैं भी नहीं जा सकता, तो ऐसे भी लोग हैं। और चलो कबीर भाई पार्ट टाइम यही जॉब कर लेते। अरे बहन, एक मैसेज आया है मोहम्मद वकास इकबाल साहब का, वालेकुम सलाम भाई। पेमेंट टाइम अगर कार्ड ना चले और डिक्लाइन हो जाए तो? हाँ, ये देखो ये एक अलग कंडीशन है, मैं आपका इसका सीन बताता हूँ क्या है। जब आप कार्ड लगा के पेमेंट करते हैं ना, तो आपकी जब तक पेमेंट होगी ही नहीं तो गड्डी आने की नहीं है भाई, कई मरतबा ऐसा भी होता है। और कई मरतबा आप पेमेंट करने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन लगा के, तो आपकी पेमेंट अगर शुरुआत में डिक्लाइन हो गई तो कैब बुक ही नहीं होगी। तो कैब का तो सीन ही अलग है, कैब में वो वाला सीन नहीं है कि आपने खाना वाना खा लिया और फिर आपने मशीन पे अपना कार्ड लगाया और चेक किया कि चल रहा है नहीं चल रहा, वो वाला सीन नहीं है। कैब के साथ क्या है, आपने पहले पेमेंट प्री पेमेंट करके आप गए तो नहीं चला तो कैब भी नहीं आएगी। वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड। अब्दुल करीम भाई वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक भाई ने मुझे मैसेज किया है, ये भी कैब चलाते हैं भाई, कह रहे हैं मेरा नाम क्या है, नाम आपका भाई इकरम है या अकरम है, मुझे पहले ये क्लियर कर दो। उन्होंने मैसेज किया, कह रहे हैं कबीर भाई मैं भी पिछले कई सालों से कैब चला रहा हूँ कतर में, तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। 12 साल तो बहुत बड़ा टाइम हो गया भाई। और आगे कहते हैं कि 12 साल पहले जब कैश मिला करता था तो अच्छा लगता था, और दूसरी कोई वजह नहीं है, अभी भी पेमेंट आराम से हो जाती है, चाहे वो चाय के लिए हो चाहे छोटी छोटी चीज़ के लिए हो, अब तो कार्ड हर जगह चलता है। और कहते हैं कि कैश सिर्फ जेब में अच्छा लगता है, गाड़ी में रखना पसंद है, और दूसरी कोई वजह नहीं, मैं तो खुश हूँ ऑनलाइन पेमेंट से। एक बंदा मिला है मुझे सिर्फ जो खुश है ऑनलाइन पेमेंट से भाई। सुम्बुलबन कह रहे हैं भाई मुझे एक सवाल पूछना है, अगर किसी का 12 कतरी रियाल होता है और कस्टमर 100 कतरी रियाल दे दे, उस टाइम ड्राइवर का क्या मूड होता है? बहन मैं ये समझा, मैं बिल्कुल नहीं समझा, मैं दोबारा पढ़ता हूँ एक सेकंड। अगर किसी का 12 कतरी रियाल होता है ओके, और कस्टमर 100 कतरी रियाल दे दे, क्यों देगा? ये आपने गलती से, क्या गलती से तो हो नहीं सकता, ये कैसे मतलब? बहन मुझे चाय पीनी पड़ेगी, क्या मैं होश में नहीं हूँ या बहन ने जो बात बोली मैंने सही पड़ी? प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू मी। एक मैसेज है, बुरा वक्त का भरोसा नहीं इसलिए रखना तो पड़ता है। वो बात बहुत दूसरी है कि आप किस एंगल से बताना चाह रहे हैं, आप ऐसे कस्टमर बताना चाह रहे हैं जो कैब यूज़ कर रहा है, हाँ कैश रखना पड़ेगा इमरजेंसी के लिए। पर ऑन दी अदर हैंड जैसे लोग कह रहे हैं जो कैब वाले भाई हैं कि भाई कैश सिर्फ जेब में अच्छा लगता है, सुमूल मैंने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि कस्टमर अब भाई उसके बन गए 12 कतरी रियाल, उसके पास है 100 रियाल का नोट, उसने कैब वाले भाई को कहा लो भाई ज़रा इसमें से 12 रियाल काट के दे दो। अब हमारे कैब वाले भाई के पास कैश तो है नहीं क्योंकि किसी ने दिया नहीं, तब क्या होगा? तब बहन सीधा ऐप पे आ जाएगा आपके, वहाँ से कटेगा। सब चीज़ों को जुगाड़ है आज के ज़माने में सब, मैं तो पूरा सीख साख के आया हूँ एकदम तैयार। रिजवान भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं भी कैब चलाता हूँ 8 साल से, दोनों ही बेटर हैं, समटाइम्स चेंज की प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ ये देखो ये पॉइंट रिजवान भाई ने एकदम सही कहा, ओनली प्रॉब्लम इज कि जब ये कैश वैश का मामला, एक प्रॉब्लम आती है वो है कि भाई चेंज नहीं है। अब ये कोई दुकान तो है नहीं, दुकानदार क्या करते हैं, चेंज नहीं होता टॉफ़ी पकड़ा देते हैं लो भाई टॉफ़ी, तो वो मामला सेट हो जाता है। मगर ये जो किस्सा है कैब के साथ ये मसला है, छुट्टे नहीं मिलने वाले आपको। एक माज भाई के मैसेज, टॉपिक क्या है भाई? टॉपिक माज भाई ये कि एक भाई हमारे शकील भाई, तो उन्होंने ये कहा कि मैं कैब चलाता हूँ बहुत टाइम से चला रहा हूँ और मैं परेशान हूँ कि लोग सुबह सुबह कैश नहीं देते। तो उन्होंने वर्ड यूज़ जो किया है माइंड यू वो है सुबह सुबह कैश नहीं देते। ही इज ट्राइंग टू से कि बोनी कराने के वक्त मुझे कैश दे दिया करो भाई, कैश बड़ा ज़रूरी है। और मैंने जब उनसे पूछा कि क्यों आपको कैश क्यों चाहिए, तो कह रहा बस भाई बढ़िया लगता है गाड़ी में। जेबों में कैश बढ़िया लगता है। मगर ऑन दी अदर साइड कस्टमर जो हम लोग हैं, हमारे वाले कह रहे हैं मैं तो कैरी नहीं करता कैश, अब क्या करूं मैं? तो दो किस्म की पार्टी भी बन गई। एक पार्टी कह रही है, जो हमारे कैब वाले भाई भी हैं वो मेजरली कह रहे हैं कि हमें भाई कैश दो, और हमारी तरफ वाले जो लोग हैं मतलब एज इन कस्टमर साइड के, वो कह रहे हैं मेरे पास तो है ही नहीं, मैं कैसे दे दूँ, मुझे तो मजे नहीं आ रहे कैश रख के। एक मैसेज है, कैब और डिलीवरी राइडर सेम ही है। डिलीवरी राइडर्स के साथ भाई थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि जब बंदा कुछ मंगा रहा है रेस्टोरेंट से ना, तो ऑब्वियसली वो देख दाग के डिस्काउंट लगा लोगों के फिर दे रहा होता है, तो वो अल्टीमेटली वो

कैश भी दे तो इतना कोई ज्यादा नहीं आएगा फर्क। आई थिंक वो जो कैब वाले भाई का सिस्टम है, वो जो सुबह की बात करें ना, वो इसलिए कि शायद उनको वो खर्च वर्च करने के लिए, शायद दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। अब्दुल करीम भाई कह रहे हैं भाई 22 रियाल का खाना लिया, 500 रियाल पकड़ा दिया। अब बताइए 22 रियाल के लिए 500 रियाल छुट्टा करना मांगता, ये इसीलिए चाहिए कैश। और अभी भी यही, अभी मेजर प्रॉब्लम पता क्या है, आपने तो, आप तो हो गए डिजिटल पूरे के पूरे, है ना, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ। अब आपके पास भाई साहब कैश पड़ा है 100 रियाल का, सामने जो है आप उसे खर्च थोड़ी करेंगे, 100 रियाल आपकी जेब में या गाड़ी में पड़े रहेंगे, बिकॉज यू आर अज्यूमिंग कि सामने वाला तो कार्ड ही लेगा, एंड दैट रन्स टुगेदर। एक मैसेज है भाई, मैं तो 1 रियाल की कड़क पी थी, टैप करता हूँ, ये लो। देख लिया माज भाई ने एकदम क्लियर माइंड सेट सेट कर दिया, कह रहे मैं तो भाई अगर 1 रियाल की चाय भी पी रहा हूँ तो भी मैं कार्ड ही से पी रहा हूँ, कैश नहीं रख रहा कोई। शकील भाई आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलने वाला भाई। आप बस दुआ करें कि आपको, जैसे आपने कहा कि दिन में कुछ लोग मिल जाते हैं 10-15 लोग जो कैश पे करते हैं, उसी से खुशी मनाइए भाई। पब्लिक तो सुबह सुबह नहीं दे रही कैश। आई डोंट नो, अभी जो लोग जा रहे हैं, जो मेरे भाई लोग कैब चला रहे हैं, आपको कैश मिले ऐसी मैं दुआ करता हूँ। नहीं मिल रहा तो भाई अब आप देख लीजिए, पब्लिक जो है वो 1 रियाल की चाय के लिए क्या कार्ड स्वाइप कर रही है। मैं भी यही कर रहा हूँ, मास भाई को क्या बोलूँ, आई ऑल्सो डू दैट। मैंने तो वॉलेट रखना छोड़ दिया भाई, अभी से नहीं, 5 साल हो चुके हैं। वो जो पहले कहते थे ना, वो मेरी अब तो मुझसे बैठा में नहीं जाता, मेरी नोट, वो मेरा वॉलेट इतना भारी है, वो कभी किसी ज़माने में लोग रैप में कहा करते थे, अब तो वो भी नहीं कह सकते। एक मैसेज है कबीर भाई, ज़्यादा कार्ड ही चल रहा है वाई लाइक दिस। वालेकुम अस्सलाम फैज़ भाई, कार्ड ही चलेगा ना भाई, अब क्या वो लगता है, लोग कैश रखना छोड़ चुके भाई, आदमी वो आलसी हो चुका है भाई। सुम्बुल बहन कह रही है दुआ करके ही निकलें, बस कस्टमर अच्छा हो और कैश दे दे। सुम्बुल बहन ने आज यही बोला, सीधी बात है, जितने हमारे कैब वाले भाई लोग हैं भाई, आप लोग बस दुआ करके निकलें कि कैश मिल जाए, मिले को नहीं भाई। और माज भाई कह रहे हैं कोई हार्ड कैश देता भी है तो मैं इमीडिएटली बैंक में डाल देता हूँ। परेशानी नहीं, आई विल नॉट से ये परेशानी है, यही है सीन। मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, मेरे पास अभी गाड़ी में 65 रियाल पड़े हुए हैं, ठीक है, वो रखे हुए हैं, उनको जमाना हो गया भाई, जमाना। ये 1000 साल बाद जब एक्सकेवेशन होगा और मेरी गाड़ी उसमें से निकलेगी तो वो 65 रियाल उसमें से निकलेंगे, क्योंकि ना तो वो बाहर खर्च हो रहे और मैं उन्हें भूल जाता हूँ सही टाइम आने पर, और मैं कर रहा हूँ कार्ड से पेमेंट, तो वो 65 का दे रहे वहीं पड़े रहेंगे, ये है चीज। इसलिए आपको कैश नहीं मिल रहा मेरे कैब वाले भाइयों, तो गलतियां हमसे हो रही है। एक भाई ने बाकायदा, सोनू भाई ने चाय क्या कबीर भाई, चाय के लिए स्पेशल चेंज रखते हैं हम, चाय के लिए भाई स्पेशल चेंज रखते हैं, कह रहे हैं मैं कार्ड से पेमेंट नहीं करता हूँ। सोनू भाई ने कैश दिखाया, 1-1 रियाल और 5-5 रियाल के नोट रखे हुए हैं, बहुत बढ़िया भाई। एक मैसेज है भाई, एक रिक्वेस्ट है कैब वालों को कम रेटिंग ना दे, धन्यवाद। ये एक और चीज़ है भाई, ये भाई ने बोला है, मोहम्मद इमरान भाई ने, बहुत ही भाई ने प्यार से बोला है, दो चीज़ें कह रहे हैं, एक तो कैब वालों को रेटिंग दे दिया करो प्लीज़, और दूसरी बात ढंग की रेटिंग दे दिया करो, ऐसा कौन सा अजाब हो गया कि रेटिंग कम हो गई। अंटिल और अनलेस आपकी लड़ाई वड़ाई हो गई, आपकी बहस बहस हो गई, तब बात दूसरी है, तब आप रेटिंग वेटिंग कम करें समझ में आता है, लेकिन बगैर लड़ाई के और ज़रा ज़रा सी बात पे कि एसी कम चल रहा था अब तो मैं 3 स्टार दूंगा, ये कोई लॉजिक नहीं है भाई, ये कसम से कोई लॉजिक नहीं है। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम सुमन, मैंने मैसेज किया आई प्रीफर कैश, ओके क्या लिखा है उन्होंने, एक सेकंड भाई मैं वापस, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, एक बात और भी है जो मैंने फील की है, सॉरी टू से बट हुआ है मेरे साथ भी, अगर किसी का 8 कतरियाल होता है तो 2 कतरियाल वापस नहीं करते, इफ़ आई गिव 10। आपने मांगे क्यों नहीं ये बताइए, आपने भी तो शर्म से नहीं मांगे होंगे ना कि यार मैं 2 रियाल का सवाऊंगा, चलो ठीक है रख लो यार चाय वाय पी लेना। एक मैसेज है, हिसाब रखना ऐसा होता है, हिसाब रखना ईजी होता है विद कैश। फास्ट 26 शेख भाई एक इसमें बात जोड़ रहे हैं, विच आई काइंड ऑफ अग्री, हिसाब करना ईजी भी होता है और मज़ा भी आता है, ऐसे ही है ना। अब्दुल करीम साहब के बाद कमालुद्दीन शेख साहब वालेकुम अस्सलाम, और मोहसिन भाई कह रहे हैं यूज़ कर लो नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ख़राब नहीं होगा कैश भाई, पड़ा रहेगा वो, गाड़ी धुल के भी आ ली भाई, सर्विसिंग भी हो ली, उसमें कैश अभी पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग कबीर सर, गाड़ी किधर खड़ी है जिसमें 65 रियाल है। भाई खड़ी हुई है इधर ही ऑफिस में, आ जाओ किसी के तो काम आए।
और एक मैसेज

0: क्या किया उन्होंने मैसेज, मोहम्मद इमरान भाई ने मैसेज किया रेटिंग, अरे क्या बात है, अरे भाई साहब इमरान भाई ने अपनी रेटिंग का फ्लैक्स किया भाई, कह रहे हैं उनको 4.98 की रेटिंग मिली है, 0% कैंसिलेशन रेट और 100% एक्सेप्टेंस। मेरा भाई आग ला रखी है भाई ने, एक सेकंड कॉल आ रही है भाई। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जनाब खैरियत?
0: बस भाई साहब गुड मॉर्निंग, होली क्या हाल है भाई के?
1: गुड मॉर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बढ़िया
0: बढ़िया भाई,
1: भाई की
0: थैंक यू सो मच भाई, आप भी दुआ। बस भाई अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी दुआ मेरे भाई। सुना आपने क्या बात चल रही है?
1: क्या चल रही है भाई, रेटिंग वेटिंग काहे की चल रही है
0: भाई? बात ऐसी चल रही है कि सुबह सुबह जो है हमारे शकील भाई है, उन्होंने एक बात कह दी, कहने लग रहा है कि भाई ये जो सुबह सुबह पेमेंट करते हैं ना कैब बुक करके, मेरी उनसे गुजारिश है कि कैश में पेमेंट करें। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा शकील भाई क्यों चाहिए कैश में पेमेंट, अब तो कोई रख नहीं रहा। कह रहे नहीं बस गाड़ी में अच्छा लगता है मुझे कैश। तो ये उन्होंने कहा
1: भाई, तो शकील भाई से क्यों कि भाई अपने अकाउंट के पैसे निकाल के कैश अपनी गाड़ी में रख लो,
0: ये लोग अच्छा लगेगा। थर्ड सोल्यूशन आ गया हमारे पास, बहुत बढ़िया। जैस भाई कह रहे हैं क्या दिक्कत है, अकाउंट से निकालो सौरियाल अपने गाड़ी में, क्या टेंशन, वेरी वेरी वेरी नाइस।
1: अरे सौरियाल अगर कम लगे तो भाई 10-20 हजार निकाल के डाल लो, अच्छा लगे।
0: वैसे मेरा एक पर्सनल सवाल है जैस भाई, आपको कैब बुक करे हुए कितना टाइम हो गया ऑनेस्टली?
1: मैं भाई बुक ही नहीं करता हूँ, मैं तो रोड पर कोई भी पकड़ लूँ, हाथ दे लूँ, कोई भी आ जाए रोके या निकलने
0: यार। कहाँ कॉल लग जाती है मेरी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अरे भाई फिर लोग कहते हैं कि सुबह मेरे शो में लोग पब्लिक रॉ होती है, रॉ तो है पब्लिक, कभी तो बैठे
1: कई बार ऐसे होता है ना, चांस पड़ता है मेरा कफिल बोलता है कि मैं कैब बुक कर देता हूँ, अरे मैंने कहा जरूरत नहीं है हम बाहर से पकड़ लेंगे, बाहर बतेरे आते जाते रहे।
0: मैं बोलना तो चाह रहा हूँ कि मतलब अगर नाम से पहले आरजे लगा हुआ है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। अपने ही हाथों मजबूर हूँ, इसका जवाब मैं कभी सोशल मीडिया पे दे दूंगा आपको अलग से। यहाँ नहीं दे पा रहा हूँ मैं, बस गले तक आके ना मेरे शब्द रुक जा रहे हैं और कोई बात नहीं है। पर कभी तो बैठे होगे कैब में
1: भाई? बैठता हूँ मैं, बताता रहा हूँ, बस वही है ना, बुक नहीं करी है, वेटिंग में नेक्स्ट नंबर नहीं आया।
0: अरे खुदा, ठीक है फिर जैस भाई, तो फिर बात ही खत्म करते हैं। खामा का नौकरी को टेंशन में क्यों डालना, बात ही खत्म। ठीक है जैस भाई, और बताइए।
1: अच्छा रीजन क्या है ये बताओ, चलो कैब बुक कर रही हूँ उसका मतलब क्या है? क्या
0: मैं ये पूछना चाह रहा था, कभी आपने रेटिंग दी है किसी हमारे ड्राइवर भाई को कि यार भाई ने बहुत बढ़िया करके मुझे छोड़ा है, ड्रॉप कर दिया, अब ये लो भाई 5 स्टार?
1: भाई रेटिंग देने के मामले में रेस्टोरेंट को रेटिंग देता हूँ, कैब को रेटिंग।
0: अच्छा क्या रेटिंग देते हैं, हमेशा 5-5 देते हैं उनको या फिर कभी कभार हो जाता है कम?
1: ना 5 में देता हूँ, अगर 5 ही आते हैं, अगर उससे ज्यादा आते तो रेस्टोरेंटो को मैं उससे भी ज्यादा देता, क्योंकि जो कुछ फेवरेट मेरे रेस्टोरेंट नहीं है
0: हाँ, ये तो
1: उनको मैं देता हूँ रेटिंग।
0: अच्छा ठीक है,
1: और फीडबैक भी देता हूँ अच्छा वाला भाई।
0: पर जैसे कैब पकड़ो वैसे भी रेस्टोरेंट पकड़ लिया करो, हाथ दे के खाना मांग लिया करो, क्या टेंशन है।
1: अरे यार हाँ। रेटिंग वाला मामला जो होता है ना रोड पे से पकड़ने वाला, अगर उसमें रेटिंग देने का होता तो उसमें भी दे देते उनसे। अच्छा यार एक चीज है कि भाई के भाई उससे निवेदन है कि आप जो है ना रेटिंग वाले स्टार बना के ना पीछे लटकाने करो।
0: देखो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, समझो मेरी बात को। प्रोफेशनलिज्म के नाम की भी कोई चीज होती है। ठीक है, इससे पहले वाकयात हमारे बीच और बढ़ जाए जैस भाई, हम ये सभा यहीं समाप्त करना चाहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मेरे को किसी भाई को गुस्सा आ जाएगा यार, यार हमारा अच्छा काम चल रहा है।
0: थैंक यू सो मच मेरा भाई, बहुत बहुत प्यार जैस भाई को। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो जैस भाई जिस तरीके से कैब पकड़ रहे हैं वैसे कैब ना पकड़े, पहली बात तो ये। और एक कॉल आ रही है, रुकिए। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई
0: जी। मेरा भाई क्या नाम है आपका?
2: उसामा।
0: जी उसामा भाई, बताओ मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई,
2: आज का टॉपिक मजे का यार, इतना कोई वो नहीं, कैजुअल सा ही है।
0: हाँ भाई कैजुअल डिस्कशन है, क्योंकि भाई कह रहे हैं बोने के टाइम में मेरे को यार कैश चाहिए, अब क्या करें, कैश को रख नहीं रहा है।
2: कतर की एक सबसे बेस्ट बात पता है क्या, एक बेस्ट पार्ट ये भी है, आप कैशलेस आप इजीली मूव कर सकते हैं हर जगह पे, कैशलेस।
0: हाँ
2: फैक्ट, इवन आप बकाले पे जाए छोटे से छोटे बड़े से बड़े एवरीवेयर कैशलेस,
0: तो वही सीन है ना भाई।
2: खासतौर पे जब आप इवनिंग में या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग आप वॉक के लिए जॉगिंग के लिए जाते हैं, जिम वगैरह जाते हैं।

0: तो आपको एक वॉलेट कैरी नहीं करना पड़ता अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, स्पेशली पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, QID वगैरह, इन चीजों के लिए एक बहुत मजे की चीज है. लेकिन कैश फिर भी वही बात है आपके वाली के, जैसे आपके 65,000 पड़े हैं इसी तरह कुछ मेरे गाड़ी में पड़े हैं, लेकिन मैं जब दोस्तों से मिलता वो कैश कम हो जाता थोड़ा सा. बेसिक पेमेंट आप बेशक आप पेमेंट कार्ड से भी करें ना,
1: बात तो सही है, पर वो जो कैश है ना भाई, मेरी गलती है, मैंने गाड़ी में ज्यादा ही छुपा के रख दिया है, वो मुझे याद नहीं आता गाड़ी में बैठ के, गाड़ी से उतरने के बाद याद आता कि अरे वो 65,000 रखे हुए. वो प्रॉब्लम है, बट आई गेट इट.
0: कैश बहुत कम यूज होता है. लेकिन मैं वही फिर बात आ जाती है, कतर में की चीज बहुत बहुत जबरदस्त है. इवन आप बाहर जाते हैं, मैं कुछ काफी कंट्रीज में फैमिली के साथ लास्ट एक दो साल में गया हूँ, लेकिन इवन हाँ. के आपको कई जगहों पे ये फैसिलिटी नहीं मिलती.
1: हाँ राइट, वो तो है, हर जगह नहीं है भाई, हर जगह नहीं. भाई हमारे आपको तो पता होगा, इंडिया में तो हमारे ये हाल है कि जो मांग भी रहे हैं ना पैसे सड़क पे, भाई उनके पास QR कोड है, समझ रहे हैं आप?
0: हाँ, इंडिया में फिर भी ये थोड़ा सा है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में नहीं है साहब.
1: हाँ.
0: और उधर तो इवन ये आपका आई पे भी काम नहीं करता.
1: हाँ तो इंडिया में तो यहाँ के भी डबल हाल चल रहा है, वहाँ मांगने वाले के पास भी QR कोड है गत्ते में बना हुआ भाई, बाकायदा.
0: जी, वो तो जीपे और ये वो पता नहीं गूगल पे वगैरह मैं देखते हैं अक्सर, मीम्स भी देखते हैं, एडवांस चल रहा पूरा भाई.
1: कोई ये नहीं कह सकता उसे कि भाई मेरे पास खुद ले लिए, सॉरी होगा ना भाई, तो ये स्कैन करके दो मुझे. तो ये
0: अभी कैब वाले भाई की कॉल आई ना, मुझे अपना कतर का सर्वाइवल टाइम याद आ गया. मैंने भी कुछ सरसा ऊबर चलाई थी.
1: अच्छा.
0: तो मुझे एक वो टाइम याद आ गया, मेरे पास ना मुझे इवन अमाउंट भी याद है, मेरे ना 26 रियाल समथिंग बने थे.
1: अच्छा.
0: तो मुझे ना कस्टमर सारे के सारे कॉइन्स दे गया.
1: अरे भाई
0: 26 रियाल के कॉइन्स दे गया.
1: अरे भाई साहब.
0: और वो आप सोचेंगे अगर वो वाले भी थे बीच में कुछ 25 दिरहम वाले और कुछ 50 दिरहम वाले.
1: हाँ.
0: वो अगर 25 वाले भी लगाए 52 कॉइन बनते हैं
1: भाई. मैं पहले
0: वो खत्म करते करते ही मुझे साल लग गया.
1: भाई मैं पहली मरतबा किसी के लिए कह रहा हूँ, अच्छी बात है कि भाई ज्यादा पेमेंट नहीं बनी उस दिन आपकी, मैं सही बता रहा हूँ. अगर गलती से 50-60 रियाल बन जाते तो भाई साहब सिक्के
0: मुझे याद है, बहुत टाइम मेरे पास वो कंसोल बॉक्स में पड़े रहे वो, बल्कि उल्टा गाड़ी में बस खड़कते थे वो.
1: इग्निशन देने के साथ ही जन जन जन जन जन जन जन जन जन
0: वो बस ऐसे यूज किए. हाँ, उसको खत्म करने के लिए मुझे कैश रखना पड़ा. 25 50 दिरहम, यानी कि इस तरह करके आप सुपरमार्केट जाते हैं, आपका वो बनता है ना.
1: हाँ.
0: अमाउंट बनती है, तो वो खत्म करने के लिए कई बार कैश देना पड़ता था. यार ये तो खत्म हो
1: भाई, मेहनत लगी,
0: थोड़ी अमाउंट है ना, बंदा कहीं कर सकता है ना कुछ, वो बस आपके लाल.
1: अरे मेरा भाई यार, पूरा साल भर लग गया खत्म करने
0: में. वो 25 रियाल में कितनी बरकत थी, एक साल तक नहीं खत्म हुए.
1: सही बात है, ये बरकत भी थी, इसमें आलस भी था भाई. वो ना मैं सही बता रहा हूँ, उसे खर्च करने में मौत आती है. अरे यार कैसे, कहाँ बीन के खर्च करूँ, ये वाला सीन है भाई. इसीलिए भी है, मैं उम्मीद करता हूँ आज कोई किसी को ऐसे ना दे.
0: आप एक कैब वाले भाई का मैसेज आप बता रहे थे ना, वो जो रेटिंग का कह रहे थे.
1: जी
0: रेटिंग 5 दिया करे.
1: हाँ.
0: तो एक सजेशन है.
1: हाँ बोलो ना.
0: वो कस्टमर दे देता है रेटिंग, आप खास तौर पे कैब वाले जो है ना उनको मैं एक चीज कहता हूँ, आप गाड़ी में क्लीनलीनेस की और स्मेल जो खास तौर पे ऊपर से आती है ना कैब की गाड़ियों, इसमें से जरा इसकी बहुत कस्टमर कंप्लेन करते हैं. इस चीज को आप रखें, कस्टमर आपको खुशी से वो क्या कहते हैं, अच्छी रेटिंग देगा.
1: अच्छा, ये
0: मुझे याद है इस बारे में, मुझे कम से कम इस चीज के अच्छे रिव्यूज मिलते थे कि यार पहली दफा. सारी बात है, बहुत लोग होते हैं बहुत सफाई रखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं मेरे से बहुत लोग बेहतर भी इस चीज को प्रॉपर ऑर्गेनाइज रखते होंगे.
1: हाँ.
0: लेकिन अक्सर लोग कहते थे यार कैब में बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको ऊबर में इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक गुड स्मेल फील हो.
1: हाँ, खुशबू इम्पोर्टेंट है, रेटिंग अगर अच्छी चाहिए तो.
0: ये चीज जरा, सारी बात, आप खुद भी जहाँ पे रहते हैं उस चीज को साफ रखना है।
1: ओके।

0: एक नेचुरली भी आपको अच्छा फील होता है, आपका मूड भी फ्रेश रहता है, इस चीज को जरा वो भी मेंटेन रखा करें तो मेरे ख्याल से कि लोग फिर ऑटोमेटिकली इस चीज को पॉजिटिव लेंगे।
1: बात तो सही है, पर भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हो सकता है सब्जेक्टिव बात है, कुछ लोग जो है गाड़ी को अंदर से बहुत अच्छा करने के चक्कर में पूरी गाड़ी को लाल कर लेते हैं, सुरख लाल, समझ रहे हो, माँ कसम मुझे इतना गुस्सा आता है ना मैं बता नहीं सकता, मेरा खून खोल जाता है, मैं उसको रेटिंग देना चाहता हूँ लेकिन वो जो ऐसी सुरख गाड़ी होती है ना अंदर से आंखें चौंधे जाती है भाई।
0: और समटाइम जितना न्यू मॉडल को आप उसके अंदर बैठते हैं ना, आपको गाड़ी बाहर से इतनी न्यू मॉडल है और जो यानी कि आप सिर्फ आपने उसको साफ रखना है और गाड़ी एक अच्छी लुक देगी,
1: हाँ।
0: लेकिन वो जब आप अंदर ड्रॉर ओपन करते हैं ना, वो इंटीरियर का सारा वो अजीब फील होता है
1: भाई, वो गाड़ी नहीं थी, वो दूल्हा भाई थे, वो पूरे के पूरे अंदर उसका लग रहा था गाड़ी का अपना सेहरा भी है सब लगा हुआ है बढ़िया करके तो बस वहां पे मैं रेटिंग नहीं दे पाता हूँ, बाकी तो मैं दे देता हूँ भाई, कोई मसला नहीं है पर थैंक यू भाई, आपने पॉइंट छेड़ा, बहुत यूजफुल है कुछ लोगों के लिए, जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़ भाई। और भाई क्या कुछ मैसेजेस हैं, सिद्रा मैंने मैसेज किया है, कैश से फील गुड लगता है, बात तो सही है, ऑल्सो जब आपकी जेब से फिजिकल नोट कम होंगे तो खर्चों से ज़्यादा खर्चों का ज़्यादा अंदाजा होता है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। और लेते हैं, और मियाँ लोग अगर कैश रख लेंगे तो बीवी का भी भला होगा, आज भी वॉलेट से पैसे निकालने का अलग ही मज़ा है, आए बहना क्या बात कही है। अगर रही बात बोलने की, जब दुकान खुलते ही गले में नोट आते हैं तो वो सुकून वाली फीलिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से नहीं आती, डेफिनेटली ऑन पॉइंट, यू स्किप दिस मैसेज, यू ये स्मेल की वजह से ही आई हैव स्टॉप्ड, ओके, और फ्री वाईफाई मिलता है, अच्छा ये देखो मैं नाम नहीं ले सकता बहन। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, इकरम साहब वालेकुम अस्सलाम, एक मैसेज है, मुझे तो 110 रियाल कॉइन्स मिले थे क्या मोहसिन भाई को 110 रियाल किसी ने सिक्कों में दिए भाई मैं बस सोच ही सकता हूँ कि आपने कितनी दुआएं दी होंगी। और एक मैसेज, बड़ा बढ़िया पोस्टर बनाया है कबीर अंकल, और ये इसमें आयशा का फोटो है क्या, माशाल्लाह, कि ये पोस्टर मैं रख सकता हूँ इकरम भाई अपने पास, आई लव्ड इट ब्रो, मैं ये अपने पास रखना चाहता हूँ, प्लीज़ इफ़ यू अलाउ मी। फरद भाई वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकअल्लाह, एक कॉल और एक कॉल उठा लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है जी?
1: मैं बढ़िया है एकदम, चंगा सी, आप सुनाओ।
2: अरे बहुत दिन हो गया जी, बात में सलाम करूंगा, लेकर मैं वाला सलाम कर लूंगा कबीर भाई।
1: भाई गलती बताओ इसमें किसकी है बात ना होने की गलती बस फिर आप बताइए भाई क्या चल रहा है
2: भाई, आजकल अठाना चाराना सो काड़ी काड़ी काड़ी है भैया, कैश रह रही नहीं जेब में, समझ में नहीं आ रहा कैसा।
1: अरे तो ये तो परेशानी है कैब वाले भाइयों के लिए हो रही है, वो कह रहे हैं हमें कैश दो, आप इस पे क्या बोलेंगे, आपके पास होना हो हमें मतलब नहीं, हम तो कैब वाले भाइयों के लिए बात कर रहे हैं भाई क्या बोलेंगे?
2: सही बात है, मगर वो लोग कैश लेके करेंगे क्या, देख के खुश होते हैं, समझ में नहीं आ रहा बात, हर जगह गाड़ी चल रही
1: है, वो कह रहे हैं अच्छा लगता है भाई गाड़ी में कैश वैश पड़ा हो, थोड़े से 50 रियाल के नोट हो, थोड़े से 100 के हो, एक आध 500 का भी हो, फील आती है भाई।
2: हाँ देखना चाहिए ना कि भाई मैं काम कर रहा हूँ तो पैसे कमा रहा हूँ, कुछ दिख रहे आंखों को,
1: आंखों को देखना चाहिए। तो आपको कैब बुक किए हुए कितना टाइम हो गया वैसे?
2: बहुत टाइम हो गया, तकरीबन बहुत 2-3 महीना हो गया,
1: 2-3 महीना हो गया। आप रेटिंग वेटिंग देते हैं हमारे कैब वालों को?
2: अरे मैं तो जी तकरीबन अच्छे ही मिलते हैं, तो मैं 5 नंबर 5 देता हूँ पूरे तकरीबन।
1: एक माज भाई, आपका पूरा नाम पूछ रहे हैं, जरा माज भाई को अपना पूरा नाम बता दीजिए, क्योंकि वो भी हैदराबाद से।
2: जी सर सैयद, हाँ सैयद सैयद,
1: अरे पूरा नाम बता दो, सही है सैयद के तो पूरा नाम तो बताओ
2: जी, फैयाज सैयद,
1: फैयाज सैयद, ये आप क्लियर हो गया माज भाई? हाँ अब बताओ फैयाज भाई, तो अच्छा तो आप रेटिंग जो है पूरी पूरी दे रहे हैं, पर ये आप कैश रखते हैं अपने पास खुद? अब कैश रखना छोड़ दिया आपने?
2: जी जी ना, कैश बहुत कम भाई, आठ आना ना चार आना भी यूज करना है तो कार्ड, अगर अगर कोई कैश पूछ रहा तो मेरे को बहुत गुस्सा रहा, मैं उससे झगड़ा कर रहा हूँ, मैं बोला क्या भाई क्या दीवाना हो गया क्या, क्या है भाई ये कैश का जमाना चला गया, चल चल चल पकड़ पकड़ कार्ड कार्ड
1: ये थोड़ा ज्यादा हो गया, तो मतलब अभी भी कैश रख के नहीं चलते ना, अभी कम्प्लीटली छोड़ दिया। वेरी गुड, तो आप तो फिर तो बहस ही खत्म हो गई आप कभी कैब बुक मत करना भाई, आप जैसे लोगों से दूर होना चाहते हैं, वो लोग कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए।
2: कार वालों का तो कुछ समझ में आता है, पता नहीं कुछ रीजन की तरफ से बोल रहे होंगे, बट एक्चुअली जो जनरल है ना कबीर भाई, बस कार्ड ही चल रहा है, तो एक जमाना मतलब ऑलरेडी मैं एक रिसर्च भी देखा था और एक डॉक्यूमेंट्री देखा था इस पे कि भाई ऐसा आने वाला जमाना जो जनरेशन आगे ये XYZ Z1 क्या क्या आने वाला है, अभी तो जी चल रहा है
1: अभी अभी बहुत जेन जी जेन अल्फा सब।
2: अच्छा हम कौन है भाई, हम कौन से एक्स है वाई है जी है, बताइए ना
1: भाई। देखो उम्र पूछना अच्छा तो नहीं लग रहा, बता दो अपनी उम्र, बता दूंगा कौन से वाले हो
2: साफ बोल रहे
1: ये तो करना ही पड़ेगा।

0: अब आपको जानना है कि आप कौन सी जनरेशन में, तो उसके लिए तो उम्र बतानी पड़ती है भाई।
1: आई मैं तो परसों भी बोल दिया घर पे फोन करके, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो एक टी शर्ट लूंगा जेन जी पहन के फिरूंगा।
0: ये करो, ये करो,
1: मैं भी जेन जी हूँ,
0: ये करो, बहुत
1: मैं भी जेन जी हूँ।
0: वेरी गुड,
1: एक्सेंडो वायरेंडो हूँ, अगर फील तो जेन जी की है। क्या बोल रहे,
0: क्या भाई फयाज भाई, क्या कोई बोल सकता है क्या? थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, क्या आपने कॉल करी, जज़ाकअल्लाह।
1: अच्छा सरी भाई, और एक बात बोल के फोन रखूंगा, मतलब हाँ, एक डॉक्यूमेंट देखा था तो उस पर आता के मतलब कैश ऐसा रहेगा कि सैलरी आके चली जाएगी, वो जमाना चल रहा है कि हाँ, मतलब आपको आपके पैसे हाथ तो ही नहीं आएंगे, पैसा दिखेगा ही नहीं, वही जमाना चल रहा है, देख लीजिए आप।
0: डरा क्यों रहे हो सुबह सुबह यार, अकेले अकेले देखा करो ऐसी डॉक्यूमेंट्री, पूरी पब्लिक को
1: पैसा मिलेगा ही नहीं भाई, पूरा कार्ड सिस्टम, नंबर सिस्टम, पैसा दिखेगा ही नहीं, हाथ कोई नहीं मिलेगा, सही भी ऐसे ही चल रहा है
0: भाई। मैंने कान बंद कर लिए, ये सब बातें नहीं सुनने वाला सुबह सुबह में, मुझे डरा रहे हो सुबह सुबह। मैं डर गया भाई, मैं सुबह सुबह बातें नहीं करने वाला। थैंक यू सो मच लेके मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
1: बहुत बहुत खुशी हुई तकबीर भाई, बात
0: करके भाई। और सुनिए, एक आसिफ भाई का सवाल है, आसिफ भाई कह रहे हैं ग्रेविटी कहाँ गई, आपसे पूछ रहे हैं।
1: ग्रेविटी कहीं समझ में नहीं आ रहा, क्या पूछे?
0: मैं आसिफ आसिफ भाई का नंबर देता हूँ, ये आपसे खुद ही पूछ लेंगे, ठीक है? ठीक है भाई, ओके भाई, हाफिज़ भाई के बाद एक दो मैसेज है। रिजवान भाई कह रहे हैं कबीर भाई मुझे फौरन कर दें, कबीर भाई 99 कस्टमर को 5 स्टार देता हूँ। मैं भाई सबको 5 स्टार देता हूँ, मैंने कहा ना मुझे सिर्फ एक ही किस्म की गाड़ी में 5 स्टार देने में थोड़ा सा मैं पीछे हट जाता हूँ, वो गाड़ियाँ नहीं होती जो अंदर झालर वाला लगा लेते हैं लोग, सुरख बिल्कुल लाल गाड़ियाँ या बिल्कुल पीली पीली गाड़ियाँ, वो मेरे थोड़ा समझ के बाहर है भाई। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भाई, क्या हाल है आपके?
0: बढ़िया भाई साहब, एकदम शानदार चल रहा है तला भाई, आप सुनो
2: भाई। अमन अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कौन था पहले ये हैदराबाद का बंदा यार, ये कसम से भैया था सुबह दिल दिला
0: मैंने खुद कान बंद कर लिया भाई, ऐसी बात नहीं सुनता भाई मैं। पैसा आएगा नहीं, ये पता है ये वो नहीं होते वो जो न्यूज चैनल आते ना, रात एलियन साहब की घर भी आ सकती हैं, तो ये वैसा वाला डरा के गया भाई। अच्छा तला भाई, तला भाई ये बताओ आपको तो काफी कितना टाइम हो चुका है कैब बुक किए वैसे?
2: बातचीत
0: करने वाला
2: होना चाहिए, म्यूट सिस्टम पे तो कसम से ट्रेवल नहीं होता, मैं सो जाऊंगा, बराबर वाला मुझे देख के सो जाएगा।
0: कुछ हमारे ड्राइवर भाई होते हैं ना, वो उन्होंने कानों में लगा रखे थे ईयर पीस और वो जो माइक होता है मुंह में चबा रखा होता है, बात चल
2: वो
0: छोला
2: बाबू वाले जो है ना,
0: उसको
2: थोड़ी भी चमाट मारे उनके पीछे से बैठ के, कहा क्या है छोड़ दे उसको। तो वो वाली कहानी है, बहुत बुरे लगते हैं मुझे वो, एक दूसरे मैंने टोका कह लिया, नहीं नहीं सर वो भाभी, मेरा भाभी भाई छोड़ दे अभी, सबर कर ले धंधे पे रोजी पे, तो रोजी पे ध्यान दे, भाभी पक्का छोड़ दे भाई।
0: अच्छा कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक तला भाई, हमारे कैब वाले भाई कह रहे हैं कि सुबह सुबह कम से कम कैश मिल जाना चाहिए क्योंकि वो गाड़ी में अच्छा लगता है, तो डू यू कैरी कैश और आपका ऑनलाइन पेमेंट रहता है उनको?
2: पहले तो मैं उस बंदे को कॉन्ग्रेचुलेशन कहूंगा, मुबारकबाद दूंगा, जिसको 110 रियाल मिले ना सिक्कों में, उसको तो वाली फीलिंग, 7 करोड़ वाली फीलिंग,
0: ज्यादा ही कैश मिल गया
2: भाई, 1.5-2 साल तक करोड़पति रहा हो, खनक खनक खनक की आवाज
0: नहीं, ये 102 रियाल खत्म नहीं होने के भाई, ये चलते रहेंगे, चलते रहे, तो आप क्या आप क्या देते हैं, कैश देते हैं क्या, मतलब डू यू डू ऑनलाइन पेमेंट?
2: नहीं यार मैं तो ऑनलाइन पेमेंट करता था, कैश बहुत कम वो कैरी करता हूँ मैं,
0: ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करते ना,
2: ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा करता हूँ मैं
0: भाई, इनकी इल्तिजा है, कह रहे हैं कैश दे दो।
2: एक भाई ने और कहा ना, कि यार हम कतर में कैशलेस हो गए और ये वो, मैंने कहा भाई देखो कैशलेस होना अच्छी बात है, लेकिन बस वो उससे काम नहीं होगा, हर जगह जाके हाथ फैलाना पड़ेगा भाई कि पैसे दिए कुछ दे दो खाने वो अली कंडीशन में भाई।

0: भाई कैशलेस होना जरूरी है लेकिन अमाउंटलेस नहीं हो।
1: हाँ मतलब
0: ऐसे होने चाहिए जेब में, अंधी नहीं बचाओ।
1: कैशलेस फीचर होना चाहिए, कैशलेस लिटरली नहीं होना चाहिए, बेसिकली बात ये है।
0: भाई क्लियर करो ना, क्लियर करो ना, ये बहुत भाई बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कतर में कैशलेस बड़ा अच्छा चलता है, कहाँ से चलता है कैशलेस?
1: सब कैशलेस ही तो है, किसके पास है पैसा ढूंढ के देख लो।
0: अरे भाई,
1: अरे
0: तो क्या
1: टॉपिक
0: चल रहा है, घबरा के शिकार कर रहे हैं लोग।
1: मुझे टॉपिक नॉर्मल था, लोगों ने घबराहट का बना दिया इसको, और कुछ नहीं हुआ भाई। तो ये
0: शो तुम्हारा है ना?
1: हाँ
0: शो तुम्हारा भाई, मसला सारा ये बंदों का कोई इशू नहीं, शो तुम्हारा है।
1: ठीक है भाई, मैं
0: उंगलियां उठती है।
1: चलो खैर ठीक है, अभी जिंगल का टाइम हो गया हमारे। तला भाई थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बात करने के लिए। क्या
0: साथ नहीं दोगे मेरा? साथ नहीं दोगे तुम?
1: कैश भाई, कैश ये कैश भाई, कैश ये कार्डलेस और इमोशनलेस कुछ काम नहीं करेगा मेरे ऊपर। ठीक है, भेजो मुझे जरा फोटो। ठीक है भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और तला भाई के बाद जिंगल का टाइम, और घड़ी में हो रहे 7:02। आप भी मेरा 7:02, एज यू नो ये हमारा क्लीशे है, लेकिन भाई ये पंच लाइन पे आपको हंसी आई ना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है भाई। ये एहसास है कि मैं सुबह आया हूँ, साफ सीधी बात।

0: FM 107, time check.
1: भाई साहब 7:03 हो गए, 2-3 मैसेज मेरे रह गए थे, जरा मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि भाई लोगों ने बहुत दिल से मैसेज किया है। हम बात कर रहे थे कि हमारे कैब वाले भाई कह रहे हैं कि यार कैश दे दिया करो, गाड़ी में कैश अच्छा लगता है। तो एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कार्ड नहीं चला या घर पे भूल गए तो ये भी चलता। अच्छा अब्दुल कयूम भाई, थैंक यू सो मच इस फीचर को बताने के लिए। सुमुल मैंने मैसेज किया है, सामने वाला बोला आई डोंट हैव टू, हैं तो मैं क्या मेरे पास चेंज नहीं था, सामने वाला बोला आई डोंट हैव तो मैं क्या करती हूँ, क्या करती हैं आप सुबुल बहन। एक मैसेज है, मैं तो सैलरी आती सिर्फ कैश सदका और चाय के लिए कार में रखता हूँ। आरिज भाई कह रहे हैं भाई मेरा कैश का दो ही काम है, एक तो सदके जायरे की तरफ जाता हूँ, दूसरा जो है सीधा चाय के लिए। अब्दुल करीम भाई कहते हैं 50 पैसे के लिए कस्टमर ने कंपनी में कंप्लेन कर दिया मेरे ऊपर, 50 पैसे के लिए। अरे भाई कौन सा कस्टमर था ये। और एक मैसेज है कबीर भाई, कैश वॉलेट में रखने का फायदा नहीं, घर पे आपकी भाभी उड़ा देती हैं। नो कमेंट्स ऑन दैट अली भाई, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, ये घर पे सुलझाएं आप, सुलझेगा तो नहीं पर कोशिश करें। वालेकुम अस्सलाम, ये मैसेज किया है। अच्छा इरफान भाई मैं अभी कॉल करता हूँ आपको, आई एम रियली सॉरी आपकी कॉल नहीं उठाई होगी मैंने, मैं अभी कॉल करता हूँ आपको, थोड़ा सा रुक जाओ मैसेज पढ़ दूँ सारे के सारे। हाजर अब्दुल अदीब लिखते हैं, यस्टरडे आई वेंट टू वन सर्विस सेक्टर वेयर ओनली कैश इज एक्सेप्टेड, ऑफिशियल फीस 1,242 कैश, नो कार्ड पेमेंट एक्सेप्टेड। कबीर भाई आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार था, थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। फराज भाई कह रहे हैं मेरे पास पूरे 1.5 रियाल है सिक्के में गाड़ी के अंदर, आज भाई फैंटम है भाई अपना। प्लीज़ सर कॉल मी, आई विल कॉल यू भाई, थोड़ा सा रुक जाओ। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैशलेस का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जब कोई पैसा मांगता है बंदा कह सकता है कि देख ले भाई वॉलेट खाली है, भाई कैशलेस ये बात तो है। उसामा शफीक भाई का मैसेज है, थैंक यू सो मच उसामा भाई।

एंड एक मैसेज है, ब्रदर इट्स टाइम टू चेंज. अच्छा ओके, हाँ बिल्कुल भाई, लेकिन मेरे हाथ में नहीं है ना जैक भाई, मेरे हाथ में कोई नहीं भाई ये चीज़. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, जो खुशबू नोटों की आती है वो कैशलेस में.

0: मैं ठीक है।
1: बढ़िया भाई एकदम, अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए।
0: अच्छा मैं तुमको एक बात बताता हूँ, मैं तो तकरीबन 28 साल से टीसी चलाता हूँ।
1: अच्छा ठीक है।
0: अच्छा 28 साल हो गया, मगर ये जो आप नाराज नहीं हो ना?
1: नहीं मैं नाराज हो जाऊंगा इसलिए संभल के बोल रहा हूँ, बताओ।
0: नहीं नहीं मेरे साथ तकरीबन हजारों के साथ लोग गया हुआ गया।
1: हाँ।
0: वो ये वो पर भी बाद में निकला।
1: हाँ।
0: मगर जितने भी लोग मेरे साथ बैठता है, एक स्टार कभी लगाते हैं, कभी 2 स्टार, कभी 5 स्टार, अल्हम्दुलिल्लाह होता है। मगर ये जो इंडिया का लोग है, ये कंप्लेंट डालता है, ये इसका क्या वजह है?
1: देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, ये मेंटेलिटी आपकी है तो मैं इसे सुधार तो सकता नहीं भाई, ठीक है? तो ये बातें यहाँ करने की जरूरत नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे। तो मैं इसमें आपकी देखो सुनो मेरे अरे मेरी बात सुनो, आपकी बात लतीफ भाई मैंने एक बात सुनी ना, मेरी भी एक बात सुनो ना भाई। ये क्या है, ये आपने दिमाग में बना लिया है। तो जैसे भी एक कुछ देर पहले एक भाई आए थे, वो भी एक कम्युनिटी की तरफ जा रहे थे, तो भाई ये रहने दो यार, क्या फायदा है इन चीज़ों का?
0: और मुझसे
1: सुनो ना, सुनो तो बताओ इसमें मेरे पास क्या सोल्यूशन होगा, ये बताओ।
0: वो कहते हैं ऐसा मत करो, ये लोग गरीब है। बस तो उसका टाइम नाराज हो गया, चलो खत्म हो गया, स्टार डाला नहीं डाला, मगर ये कंप्लेन मत डालो।
1: हाँ तो मैं थोड़ी आपकी कंपनी हूँ, मुझे क्या बता रहा हूँ मैं इतना लोगों से कैसे
0: जैसे मैं बताओ
1: भाई। देखो मैं अरे अरे लतीफ भाई, लतीफा सुनो मेरी बात सुनो, ये किसी एक को टारगेट करने से कुछ नहीं होगा भाई। अभी एक और भाई कह रहे थे वो पाकिस्तान, सुन तो अरे सुनो मेरी बात। अभी कुछ देर पहले एक भाई आए थे, फिर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया, मैंने उन्हें भी रोका, आपने इंडिया के लिए, मैंने आपको भी रोक रहा हूँ, सिंपल सी बात। वो पाकिस्तान में कह रहे थे आप इंडिया में कह रहे, अरे बंद करो भाई ये सब, आपस में रह लो। सबके सब यहाँ पर ना जो आए हुए हैं ना, इंक्लूडिंग आप और मैं, हमारा भाई कोई यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स्ड कोई पत्ता नहीं बना हुआ है कि यहीं पे रहोगे, यहीं पे जियोगे, यहीं पे जाओगे। तो रहने तो ठीक से रहने दो यार, छोड़ो क्या कंप्लेन ना खुश रहो।
0: लोगों के वजह से हमारा काम चलता है, वो नहीं आएगा तो हम क्या
1: बात खत्म भाई। और क्या, गाड़ी में कोई अंग्रेज बैठेगा अच्छा लगेगा, बात भी नहीं कर पाओगे। अपने आप लोग बैठते हैं, मजा आता है बात करने में, क्यों? अरे मेरा भाई जीते रहो भाई, ये आज सुबह सेट कर दिया आपने सबकी, मेरा भाई बहुत प्यार लतीफ भाई को। एक मेरा भाई, वालेकुम सलाम। और लतीफ भाई के बाद जो है कॉल आई, मैसेज आया फरहत भाई का, तला भाई अस्सलाम वालेकुम, जब से कहना चाहता था जेड सिग्नल पर था, सिग्नल ग्रीन मिल ही नहीं रहा था। ओके और एक मैसेज है, इनवाइट एक कॉल आ रही है, पहले कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग कबीर भाई,
1: क्या हाल है? ये कौन आया दिल में हुई हलचल? इरफान भाई क्या हाल
2: है? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह इरफान भाई एकदम शानदार भाई, क्या कहेंगे भाई?
2: बस ये सुबह सुबह जो आपने एक बढ़िया टॉपिक उठाया है, पहला तो सवाल मेरा आपसे है, हम उनको स्टार क्यों दें, वो हमें क्यों ना दें कि हमारे पास इतने अच्छे कस्टमर्स आए, हम लोग इतनी खुशबू लगा कर आए।
1: आई टेल यू व्हाट,
2: हमने क्या पर ठेका लिया हुआ है?
1: टेल यू व्हाट इरफान भाई, मिलते हैं स्टार कस्टमर को, पता है ना आपको? भाई मिलते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपको उन्होंने कह दिया ना ये आदमी जो है करप्ट लग रहा है, तो बैठ नहीं पाओगे अगली बार, ये इनकी तरफ से भी स्टार मिलते हैं।
2: अच्छा अच्छा, लेकिन यार मैं ऑनेस्टली एक बात बताऊँ, मैं थोड़ा सा ना मुझे प्रॉब्लम है उबर में बैठने से, वो नहीं है किसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यार मैं उनको कहता हूँ कि कभी कभी अल्लाह के वास्ते यार शीशे खोल दिया करो, एक तो फुल एसी, ऊपर से अजीब सा माहौल, आप समझ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ?
1: हाँ हाँ हाँ समझा।
2: और फिर उसके बाद कभी कभी ना मुझे तो ना किसी किसी गाड़ी में से ना अगरबत्ती की खुशबू आती है, किसी किसी आप मॉल चले जाए ना अगरबत्ती की खुशबू आती तो मेरा तो दिमाग एकदम शार्ट हो जाता है एकदम
1: अगरबत्ती
2: यार। अच्छा और ऊपर से फिर कोई खड़ूस अगर ड्राइवर हो, मिसाल के तौर पे आपने आप पीछे बैठे हैं, आप वो एसी की जो ब्लाइंड्स हैं वो आपको कूलिंग नहीं आ रही, अगर आप उसको कहेंगे ना कि यार ये अगर एसी टेस्ट कर दे, फुलावा तो है ऊपर चल रहा है, तो वो इतना जहर लगता है वो आदमी, अरे भाई आप तमीज से बात कर लो, आप कहते कि जी मैं खोल देता हूँ। तो एक तो मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, तो मुझे ना इस वजह से बड़ी चिढ़ आती है ऑनेस्टली।
1: मैं समझना चाह रहा हूँ कि काफी रिसेंटली कुछ हो गया है इरफान भाई, मतलब काफी रूट वाला मिल गया वो कोई ऐसा है।
2: अच्छा बाद में इत्तेफाक नहीं हो सकता, मुझे सारे ऐसे ही टकराए एकदम टेढ़े मेढ़े सारे।
1: इरफान भाई हमारे इंडिया में ना बाइक वाली टैक्सी चलती है, यहाँ पे जिस दिन आएगी मैं वो सजेस्ट करूंगा वो करिए, झगड़ा ही खत्म, उसमें ना एसी की तंगी ना कुछ, बाइक पे बैठे पीछे सीधा बढ़िया अपने डेस्टिनेशन पे। अरे यार इरफान भाई
2: अच्छा आपने वो बता दिया ना वो लाल सुर्ख आपने बड़ा

0: इस उर्दू में आपने कहा था सुर्ख, वो जो सुर्ख गाड़ियों के साथ अगर उनकी सीट से अगर लेदर की हो ना तो आप उसमें फिसलते चले जाते हैं, वो भी मुझे बड़ा बुरा लगता है। अच्छा एक एक बार तो वो लेदर की कोई सीट थी वो अजीब सी कुछ सुर्ख थी, यकीनन वो सुर्ख थी। अब वो मेरा टिफिन बॉक्स भी नीचे जा रहा है, मेरा लैपटॉप भी नीचे जा रहा है, अब मैं खुद भी अब वो ब्रेक पे ब्रेक मार रहा है, मैं खुद भी नीचे फिसल रहा हूँ, मैं बार बार अपने आप को सेट कर रहा हूँ सीट बेल्ट लगा के। तो ये यार ये जो आपकी हंसी है ना, मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ और मुझे खुद को भी इतनी हंसी आ रही
1: है। आपने आपने ना मेरे सामने पूरी इमेजरी क्रिएट कर दी ना, मैं उस वजह से रुक नहीं पा रहा।
0: अच्छा मैं भी यही सोच रहा था, आपने पूरे पूरे जहन में बना लिया होगा खाका पूरा,
1: कह रहा बिजल रहा हूँ।
0: आप सोचो बंदा बैठा हुआ फिर नीचे हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। अरे भाई सर कोई ढंग की सीट रख लो, चलो ठीक है यार वो मसला नहीं है, लेकिन ये कि यार कभी कभी अच्छे लोग भी टकरा जाते हैं। और जारी बात है, जहाँ तक कैश की बात है, कैश रखने की बात है, थोड़े बहुत कैश होना चाहिए चाय वगैरह के लिए। और अभी तो मिसाल के तौर पे मैं कभी रनिंग के लिए जाता हूँ तो वहां पर अगर मैं रस्ते में मोबाइल कैरी कर रहा हूँ, पैसे नहीं होते हैं, तो आपने किसी कैफेटेरिया से अगर पानी लेना है तो वो एक रियाल भी आजकल कॉन्टेक्टलेस हो गया है। अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत कैश को देखने में सूंघने में अच्छा लगता है, मजा आता है, अच्छी लगती है।
1: पर भाई वो बढ़िया था, मैं भी फिसल रहा हूँ लंच बॉक्स से फिसल
0: रहा है। अरे मैंने मजाक थोड़ी, क्या होता है मेरे साथ तो बहुत होता है। अब पता नहीं सीट का मसला है या किसी और चीज का मसला है, वो भी नहीं मालूम, लेकिन
1: अरे ये जो आपने आपने बताया मेरे पूरे दिन को ये इमेजिनेशन में अटका के रखा, वो जैसे गाना अटक जाता है ना दिमाग में पूरे दिन चलता रहता है, ये मेरे साथ वो किया है आपने, माफ नहीं करो मेहरबान भाई।
0: अच्छा मुझे तो गाने याद आ गए उसके ऊपर, बेबी डॉल में सोने की, बेबी डॉल में सोने की।
1: इरफान भाई अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया आपने भाई, मेरे पूरे जहन में अटका।
0: मतलब देखिए ना, लोगों ने आपको उदास किया, आपको डराया कि भाई बिल्कुल पैसे खत्म हो जाएंगे और पैसे आएंगे भी नहीं, तो मैंने कहा कि नहीं मैं कबीर भाई को खुश रखूंगा मेरे पे पूरा दिन, ये इसको सोचेंगे ना आप मेरी बात को, आपको बहुत हंसी आएगी, पूरा दिन हंसेंगे आप।
1: भाई मैं गाड़ी चलाते चलाते बीच में बात याद आएगी, मैं खुद हंसूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, बाहर से कोई दिखेगा
0: ना कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मुझे भी पुरानी बात याद आ जाती है ना, तो मैं अकेले अकेले हंस रहा था, मैं तो नमाज में भी हंसता रहता हूँ।
1: अरे यार
0: नहीं, वो ख्याल आ जाते हैं मुझे भाई, और खास तौर पर शैतान आपको नमाज में ही बहकाता है, तो फिर है ना मुझे हंसी आने लगी, मैं अकेले अकेले मुस्कुरा रहा होता हूँ।
1: किसी दिन सही कारी साहब मिल गए ना, पहले सब में हुए तो लपेट ले, सही बता रहा हूँ,
0: ये बात तो है
1: ना।
0: चले अच्छा लगा आपसे मॉर्निंग में बात करके
1: भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो भाई ये तो अच्छा नहीं किया इरफान भाई ने, भाई बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये जो उन्होंने फिसल मंडे वाली गाड़ियों की बात करी है, दैट इज अ फैक्ट, मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैंने ऐसी इमेजरी सोची नहीं थी, ये तो इमेज मेरे जहन में बना के गए ना, माफ नहीं करूंगा इरफान तुमको मैं। एक कॉल आ रही है, रुक जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: जी भाई बताइए।
2: कबीर भाई कैसे हैं आप?
1: बढ़िया भाई, एकदम शानदार।
2: अच्छा कबीर भाई, आप तो हंस रहे थे, लेकिन मैं कि सीरियसली एक बात बताऊं आपको कि एक बार मेरे पास कैश बिल्कुल नहीं था,
1: ठीक है,
2: यानी एक रियाल भी नहीं था,
1: ठीक है,
2: और मैं एक जगह में से मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी तो मैं एक सुपरमार्केट में गया, वो लोग बोले नहीं भाई कार्ड नहीं चलेगा, क्यों? मैं बोला भाई यार ये बोलते नहीं नहीं नहीं एक पानी के लिए हम कार्ड नहीं ले सकते, ये बहुत तकरीबन आज से 4 साल पहले की बात है या 3 साल पहले की बात है।
1: ओके
2: वो दिन और आज का दिन, बस अगर नहीं भी है तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि किसी से लेके ना फिर उसको वापस देता हूँ, लेकिन अपने साथ थोड़ा बहुत रखता हूँ, जरूरी ये बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि कभी कभी ऐसा बंदा भी आपसे मिलता है जिनको जरूरत होती है 10-15-20 रियाल की, तो भी आप दे सकते हो।
1: हाँ वो चीज देखो, ऊपर से ऊपर किसी को देना हो वैसे तो उस चीज से
2: वही बात अब बाकी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा,
1: नहीं नहीं सही है,
2: ये बहुत जरूरी है। एक और चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो कम से कम अपने साथ पानी जो है ये जरूर एक्स्ट्रा 2 बोतल जरूर रखो, ज्यादा नहीं रख सकते तो 2 बोतल रखो। रास्ते में कोई अगर ऐसा है, हमारे भाई साहब ये जो काम करते हैं रोड पे करते हैं, तो उनको कम से कम 1 बोतल पानी या 2 बोतल पानी दिया करेंगे,
1: ठीक है।
2: अगर डिलीवरी वाला भी मिले तो मोटर बाइक पे, तो कम से कम इतना है कि गाड़ी

0: अगर वैसे भी सिग्नल में रुकते हैं हम लोग तो उनको एक बोतल पकड़ा, ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह,
1: थैंक यू सो मच।
0: हंसी से गई उधर सीरियस बात में, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है।
1: अरे हम सीरियस होंगे नहीं आज, हम इरफान भाई को सोच लेंगे गाड़ी के अंदर फिसलते हुए, कोई टेंशन नहीं भाई।
0: बस ये हाँ। बात है आपको याद आएगी और आप हंसेंगे इंशाल्लाह।
1: बिल्कुल भाई,
0: बहुत शुक्रिया कबीर भाई।
1: वालेकुम अस्सलाम। तो दिन तो हमारा सेट है, हमें कोई अब कोई उदास नहीं कर सकता भाई, एकदम बढ़िया सेट हो गया। मिलते कुछ देर में भाई, एकदम बढ़िया मीठा मीठा गाना चलाएंगे। बट वो गाड़ी हम सुरख लाल वाली, जैसे इरफान बनेगा बिसल मंडा, वो है भाई।

इरफान भाई को एज अ कॉलर, इरफान भाई आपके लिए 5 स्टार दे दिया आपको भाई, गाड़ी का तो पता नहीं, आपको 5 सितारे मिल गए। बहुत सारे मैसेजेस जरा पढ़ देता हूँ मैं, एंड इरफान भाई ने तो मेरा दिन जो है वो कर दिया। मतलब अभी मैं बीच बीच में सोच सोच के हंसूंगा इन्हें बचलते हुए। हाँ या खुदा, कुछ बढ़िया देखना पड़ेगा मुझे। फिलहाल तो एंट्री मार दें हम दोबारा से, ये लो।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं जी दो हवाड़ा कबीर एफ 7 पे 7:22 हो लिए और मेहर भाई ने बहुत स्वीटली मुझे मैसेज किया, कह रहे हैं भाई आपके शो के टाइम सॉन्ग जिंगल और ब्रेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, छोड़ के नहीं जाया करो। मेरा भाई मैं इसको मैसेज को प्रिंट आउट करा के लेमिनेट करके रखूंगा भाई, जिगर से लगा के छत्ती से लगा के। मेरा भाई बहुत प्यार, थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दिस मेरा भाई। और मौसम ने मैसेज किया, एक और बात, अपनी कैश सामने से किसी जगह लटका लो तो याद रखेंगे। कह रहे हैं 65 रियाल जो तुम्हारी गाड़ी में पड़े ना उसे सामने शीशे पे लटका लो भाई, याद रहेंगे। अरसलान भाई ने मैसेज किया, अरसलान भाई कह रहे हैं ऑलवेज कीपिंग द कैश, और ऐसे वैसा नहीं है, अभी बताऊं गाड़ी में भाई ने 500 का नोट, 200 का नोट, 50 का नोट सीधा फ्लैक्स कर दिया है और मुझे धीरे से 100 का नोट भी नजर आ रहा है। अरसलान भाई गाड़ी कहाँ खड़ी करते हो? नहीं मतलब मैं धुलवाने वाला कोई भेज देता मतलब। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, काफ़ी दिनों बाद ट्यून इन किया आपकी आवाज़, माशाल्लाह ये शाम का भूला सुबह आ गया। शमीम भाई एकदम सही कहा भाई आपने। और अली भाई ने मैसेज किया है, अली भाई कह रहे हैं भाई मैं तो 5 स्टार के साथ साथ टिप और उतरते वक्त सामान निकालते वक्त एक जादू वाली झप्पी भी देता हूँ। मेरा भाई अली भाई ऐसे लोग चाहिए भाई कतर में, बहुत बढ़िया भाई। और लिखते हैं एज देर डूइंग अ ग्रेट जॉब, किसी वीकेंड पर टाइम निकालो कबीर भाई, नाश्ता साथ करते हैं भाई। ये माज भाई कह रहे हैं सारे के सारे कबीर को सुनने वाले मीटअप करें, कैसे करें समझ में नहीं आ रहा है। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, एंटी स्लिप पैंट भेजी है उसामा भाई ने, इरफान भाई आपके लिए भेजना चाहता हूँ मैं आपको। और एक मैसेज है, नोमी भाई कह रहे हैं, ये इरफान भाई आपके लिए मैसेज है, कह रहे हैं कि मसला कैब का नहीं है आपका लग रहा है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द मॉर्निंग शो कबीर भाई साहब, आपके टॉपिक के लिए कैश इज एंटी डिप्रेसेंट। वेरा भाई बार है भाई, तू रैप मैंने चाहिए लाइन ये। और एक मैसेज है, हो गया भाई हम भी ड्राइव कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अच्छा मैं अगर मैं झूठ कर रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना ठीक है। आप कभी ना कभी ऐसी कैब में बैठे होंगे, अंदर जाते ही या तो वो एकदम सुरख रंग की होगी या पूरी ऑरेंज होगी या पूरी येल्लो होगी भाई, और उसमें हर कोने में कुछ ना कुछ होगा, मतलब वो समझ ना कपड़े के झालर वालर सब लगा रखे होंगे। इतना ओवर मत करो मेरा भाई। मैं कह भी नहीं पाता, मतलब अंदर बैठ के आंखों पे चुभता है वो रंग, और ऊपर से इतनी सजावट होती है, गाड़ी गाड़ी नहीं लगती, वो दूल्हा भाई लगती है भाई। तो अगर आप किसी गाड़ी में अभी बैठे हुए हैं जो दूल्हा भाई लग रही है आपको, मैं नहीं जानता भाई 5 स्टार तो आप, मैं कौन होता देने वाला, मैं नहीं दे पाता 5 स्टार भाई। मैं डर जाता हूं मैं, तो तुरंत अपनी गाड़ी से ये थोड़ा सा झालर वाला निकाल लीजिए। आई अंडरस्टैंड कुछ गाड़ियों का इंटीरियर रेड आता है बाय डिफॉल्ट तो वो ठीक है, लेकिन उस रेड के ऊपर रेड कवर्स, चटकदार रंग, जैसे इरफान भाई ने बोला आदमी फिसल रहा है सीटों पे से, उसका लैपटॉप फिसल रहा है सीटों पे से, उसका लंच बॉक्स, ये क्या है। अहमद भाई ने मैसेज किया, अहमद भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है भाई एकदम। एक मैसेज है, भाई वाकई मीटअप रख के सब लिख सकते भाई, लोग कहते हैं ना पैसों की खुशबू, भाई वो खुशबू पैसों की नहीं होती, लोगों के हाथों का मैल होता, बात खत्म। मैं तभी मैं कहता हूँ ना हमारे शो में जो लोग आते हैं ना, मेरे शो में, हमारे मतलब मेरे शो में अलग है भाई। इनसे फ्री हैंड बात करोगे ना तो गए आप। एक मैसेज है, अबू साहब का लेते हैं, कार्ड से टिप नहीं मिलती कैश में, भाई कार्ड से भी टिप मिलती है अबू भाई, क्या बात कर रहे हो, कार्ड से भी टिप मिलती है। तो ये कह रहे हैं 5 साल चलाया है, गुड मॉर्निंग, मिलती है ना, अब तो लिखा था उसमें टिप देने के लिए। अरे एक भाई कहीं कॉल हो, सॉरी सॉरी सॉरी भाई, मेरे को कॉल करना भूल गया था, माजरत, वो हंसने में ज़्यादा टाइम लग गया। एक सेकंड, ये सारी इरफान भाई गलती भाई, आज मैं सारी गलतियाँ जो है इरफान भाई पे मैं मर दूंगा, क्योंकि सब उन्हीं गलती है। एक तो ऐसा इमेजिनेशन मेरे जहन में पिक्चर चलवा दी और कह के भाग गई। और एक मैसेज आया है, भाई का कॉल करनी, अस्सलाम वालेकुम, आप सुनाए क्या हाल है
1: सर। बिल्कुल आपने जो आज टॉपिक छेड़ा है ना, बहुत बहुत हमारा काम के, हम सोना में काम करते डिलीवरी बॉय है।
0: अच्छा,
1: लेकिन जो भी हमको कैश मिलता है उसी दिन हम किधर किधर जाते हैं, ऑर्डर उठाते हैं, कभी शोर में कभी बिरयानी, कौन सा स्मेल आ रहा है, तो हमारे ऊपर वो स्मेल चढ़ जाता है।
0: क्या बात है मेरा भाई,
1: हमारे पास कैश नहीं होता है, और जो आदमी कैश देता है वो तो हमारा नहीं है, कंपनी का है। लेकिन हम वो खा लेते हैं बाद में, जब हमारा सैलरी का टाइम आएगा यार तो हमारा 500 रियाल हम ऑलरेडी कंपनी का कैश खा चुका है, तो हमारा सैलरी से कट होते है। तो ये बहुत अच्छा है कि ये लोग कैश का बजाय कार्ड यूज कर पाए। अच्छा। कार्ड हमको बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि हम फिर कंपनी का पैसा नहीं खा सकते सर।
0: अच्छा देखो मैं एक बात समझना चाहता हूँ, मतलब किस तरफ हो, कैश नहीं होना चाहिए, मतलब लोग आपको कार्ड से पेमेंट करें, ये कहना चाह रहे हो ना?
1: यस सर, ये कहना चाहता हूँ कार्ड पे हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम हमारे पास जो कैश आते हैं तो हम
0: कंट्रोल नहीं रहता उसमें,
1: कंट्रोल नहीं
0: रहता। अरे क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा कंट्रोल? ये कितने खर्च हो जाते हैं अगर कैश मिल जाए तो, कितने उड़ जाते हैं
1: सर? अगर जितने भी मिल जाते हैं ना तो 200-100 हमको डेली कैश में 2-4 ऑर्डर कभी कभी मिलते हैं, वरना कैश में तो ऑर्डर होते नहीं है, बहुत कमती हो गए आजकल।
0: हाँ।
1: लेकिन फिर भी कुछ होता है तो हम किधर भी जाते हैं, या दोस्तों के साथ जाते हैं, या कभी रूम पे आते हैं, क्या है या दाल है सब्जी है, ओके छोड़ दे यार मैं बिरयानी खाएगा कैश।
0: आए बेटे आज तो बिरयानी खाएगा मेरा भाई,
1: अमीर वाला ऑर्डर करता है, बाद में सैलरी आएगा तो हम परेशान होते हैं, क्यों 800 हो गया, क्यों वो 10-10 का क्यों 800 हो गया तो।
0: अच्छा मैं सीन समझ गया भाई, 500 रियाल उड़ा दिए बिरयानी में, फिर एंड ऑफ द मंथ रोना भी आ रहा है, ये समझ गया भाई, ये सीन है।
1: इसलिए तो कैश अच्छा नहीं है हमको, अगर कंपनी को डायरेक्ट वो पेमेंट करेगा ऑनलाइन तो हमारे पास वो पेमेंट नहीं आएगा, कंपनी को सीधे जाएगा, तो हम अपना सैलरी पूरा अच्छे से उठा सकते हैं, कुछ कटिंग वटिंग नहीं होगा फिर।
0: तो भाई मैं लोगों को कहूंगा, अब्बास भाई हमारे लाइन पे, अब्बास भाई के पास अगर आपका सिस्टम आए, आप डिलीवरी सिस्टम पे लिखा है कि अब्बास इज डिलीवरिंग, तो इनको भाई साहब कैश मत देना, ये जिम्मेदार आदमी नहीं है, ये खर्च कर देंगे, ठीक है अब्बास भाई?
1: थैंक यू
0: अब्बास भाई, बहुत प्यार भाई, आपकी हंसी बहुत प्यारी मेरा भाई, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू
0: जजाकल्ला भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो अब्बास भाई ने बहुत ऑनेस्टली बोला यार, जब कैश देते हैं कंट्रोल नहीं होता यार, बिरयानी खानी पड़ जाती है। और एक मैसेज है, वालेक वकास साहब का, अस्सलाम वालेकुम भाई, गुड मॉर्निंग, ये रेड येलो टिपिकल डेकोरेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है, लेदर वाली सीट तो बनता ही घूमता है, बाकी कैश रखना भी जरूरी है, और कार्ड से एक्स्ट्रा स्पेंडिंग होती है, कैश देते हुए जान जाती है, कार्ड से बंदा फुल मस्ती में शॉपिंग करता है, और एंड ऑफ द मंथ जब कार्ड का बिल आता है तो पता लगता है कि वाँ वाँ वाँ। एक मैसेज है, इफ यू कैन प्लीज कॉल मी, मुबारक शाह साहब को हम कैसे नहीं कॉल करेंगे, मुबारक भाई ये होगी आज की लास्ट कॉल, क्योंकि इसके बाद कहानी की तरफ पढ़ेंगे, एक सेकंड में जरा कॉल लगा लूं, एक सेकंड, मुबारक शाह को हमने कॉल कर दी है, मुबारक भाई कॉल उठाएं जल्दी, मुबारक हो, अस्सलाम वालेकुम जी, मुबारक भाई वालेकुम अस्सलाम, मुबारक भाई को, मुबारक भाई क्या कहना चाह रहे हो भाई?
2: वाला मैं खास कुछ कहने वाला था, ये लोगों को जो डिलीवरी से सामान मिलता है,
0: अच्छा क्या कहना चाहते हो?
2: इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि मेरा भाई तकरीबन 4-5 महीने से डिलीवरी में काम करता है,
0: ठीक है,
2: मेरा तो काम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मैं ये सब लोग को कह रहा हूँ, जब भी डिलीवरी बॉय आता है उसको कुछ टिप दे दे दिया करे, 1 रियाल 2 रियाल 3 रियाल 4 रियाल 5 रियाल जितना कर सकते हैं,
0: करेक्ट करेक्ट,
2: आपका सबका हो जाएगा, वो बहुत खुश हो रहा है।
0: हाँ नहीं बात तो सही है, अग्री भाई पूरी तरह से अग्री करता हूँ, मतलब इतना है कि कैश रखा करें इतना कि जब कोई घर पे डिलीवरी करने के लिए आया किसी भी टाइम आए, दिन में शाम में ठंड में गर्मी में, कम से कम 2-5 रियाल तो दे देनी चाहिए, अग्री भाई बिल्कुल सही बात है,
2: उससे आपका दिन भी खुश जाएगा। हाँ। और उसका दिन भी खुश जाएगा इंशाल्लाह,
0: फैक्ट है भाई,
2: इंशाल्लाह हो जाएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा,
0: बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही बात कही आपने, मुबारक भाई।
2: आप बोलेगा कि अपना अपना भाई को खुद पैसा दे दो, मैं डेली उसको पूछता है भाई आपको अगर पैसा का जरूरत है मेरे से ले लो, उसके सामने मैं अपना वॉलेट रख के बोलता है कितना आपको चाहिए जरूर लिया करो, और खाने पीने का तो जरूर मेरे से ले।
0: अच्छा आप सबको, आप सेम काम कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं अगर आप बताना चाहें तो?
2: मैं दूसरा काम करता,
0: दूसरा काम करते हैं
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: जो आपका भाई है, मतलब अगर आप बुरा ना माने मैं पूछ सकता हूँ कि मतलब कितना आ जाता होगा टिप वगैरह में, जो आप कह रहे हैं ऐसे कितना लोग दे देते हैं?
2: टिप नहीं आता है, लेकिन जब उसको 10 रियाल का भी टिप मिल जाता है ना
0: तो अलग खुशी होती है,
2: वो अलग से खुशी होता है, लेकिन मैं उसको दे रहा हूँ और कंपनी से भी उसको अच्छा कमाई आ रहा है 2000।
0: नहीं भाई मैं दिल से दुआ करता हूँ भाई कि ये तो भाई आपने बहुत अच्छी बात कही, तो सच में अच्छी बात है कि लोग जो है 2-3 रियाल 5 रियाल दे,
2: हम अगर 35-50 रियाल का खुद के लिए सामान मांगते हैं तो इंशाल्लाह मेरा भाई तो निकल जाएगा, लेकिन सब मेरा भाई है, जो भी मैं खुद अफगानिस्तान को पाकिस्तानी इंडियन बंगाली सब इसमें काम करता है,
0: एकदम सही बात
2: है, मतलब था।
0: नहीं नहीं भाई बहुत अच्छी बात की, आपका नाम भी मुबारक, मुबारकबाद भी आपने कर दी यार, बहुत बढ़िया बात की मुबारक भाई। जज़ाकअल्लाह मेरे भाई, ख्याल रखिए अपना,
2: अल्लाह सबको खुश रखे। आमीन
0: मेरे भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। और भाई ने बहुत खूबसूरत बात कही है भाई, ये तो हम कहती रहते हैं तो करना चाहिए, बेसिक है ये तो। अब इसमें भी आदमी को ज्ञान देने पड़े तो फायदा नहीं, तो मैं इसको एक्सटेंड करके आपको ज्ञान नहीं दूंगा, बिकॉज आई नो आपको बहुत ज्ञान मिलता है। एक मैसेज है, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरा भाई, क्या हाल है। और एक भाई ने मैसेज किया है, शहजादा सलीम कहते हैं कार्ड इज ऑलवेज है ऑलवेज लीव। शेखू ये क्या कह गए तुम, मुझे समझ नहीं पाया शहजादा सलीम, क्या बात हो गई है। ठीक है अब जरा क्या, यस सर यू कैन कीप इट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत प्यारा पोस्टर बनाया आपने, सो आई विल हैव टू कीप इट। अच्छा ओके, अब मैं क्योंकि मैं कहानी की तरफ बढ़ा हूँ, तो कहानी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट ये बहुत ही अजीब तरीके की मिस्ट्री जो सॉल्व हुई, और बहुत ही वियर्ड कहानी है, छोटी कहानी है मगर कमाल की कहानी है। तो ये कुछ देर में शुरू हो रही है, एक गाने के बाद शुरू कर लेते हैं। अगर आप लाइव सुन रहे हैं मुझे तो 666-22-107 नंबर है, 666-22-107, एंड आई हैव सेंट यू द चैनल, आपको पता ही है, उस पर अगर आप आ गए तो कहानी आपको मिली जानी है। आगे तो भाई ये गाने के बाद मिल रहा है सीधा, ठीक है। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, एक गाने के बाद सीधा आएगी कहानी। गले गोरी है मनिंदर, मिस्टर बुट्टा, और साथ में

हाँ जी, 7:37 बाय द क्लॉक, मिस्टर बुत्तर और रफ्तार बेबी लव। हाँ जी, तो वक्त आ लिया भाई कहानी सुनने का। 666-221-07 नंबर है। अगर आप आ गए हैं लाइव सुन रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। जो लोग सुन रहे हैं मैसेज जरूर कर दिया करें, वो क्या आपके अब कहानी वानी पहुंच जाएगी, और तो कुछ नहीं भाई, बाकी आपकी मर्जी। शुरू करें। ओके, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, इस गाने का मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। गाने किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है। फैमिली सेवन किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता हो ना ही कभी देगा। लेकिन आज का कैसा भी एकदम असली है। इट इज़ नॉट अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन इसमें जो है वो अजीब व गरीब है भाई। तो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज का जो किस्सा है इसे सुनाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं कुछ नहीं, कई साल पीछे, अब तो बहुत पहले की बात हो गई, 1999, रात के 1 बज रहे थे और दिसंबर की 3 तारीख थी। इस वक्त एक 67 ईयर ओल्ड, 67 साल के एक बिलियनर बैंकर, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं, इनका नाम था एडमंड सेफरा। एडमंड साहब जो थे वो अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट में थे, और इनका अपार्टमेंट था मोनाको में, जो कि जानी जाती है कि वहां पे सिर्फ अमीर ही रह सकते हैं। यू हैव टू बी अ मिलियनेयर और अ बिलियनेयर टू लिव देयर, मतलब आप समझ रहे हैं, ऐसी जगह जहां पे जगह ही नहीं है किसी और के लिए, सिर्फ मिलियनेयर और बिलियनेयर रह सकते हैं। वहां पे एडमंड अपने पेंट हाउस अपार्टमेंट में रह रहे थे, एंड एडमंड की जो बीवी थी वो इस वक्त दूसरे कमरे में थी और वो वहीं पे रहती थी। ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में कोई झगड़ा वगैरह था, मगर एडमंड जिस कमरे में थे उसमें हर जगह मेडिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, क्योंकि एडमंड जो थे उनका इलाज चल रहा था, तो इसलिए उनकी वाइफ लिली उन्हें दूसरे कमरे में ही रहना पड़ता था। वो बस बात करने के लिए आती थी, ख्याल रखने के लिए आती थी, बाकी अलग कमरे में एडमंड रहते थे और उनका इलाज चल रहा था। सो बेसिकली उन्हें पार्किंसंस थे, तो पार्किंसंस में क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, चीज़ें काम नहीं करती हैं, फंक्शंस नहीं होती हैं, लोग हाथ पैर भी हिलाने में दिक्कत आती है, तो इसलिए उनके साथ मसले बहुत थे, तो इसलिए भी उनके रूम में बहुत कुछ लगा हुआ था। तो रात के 1 बजे मेडिकेशन के लिए एडमिट जगह थे, क्योंकि रात भर उनका इलाज चलता था और नर्सेस को बीच में आना पड़ता था उनको डोजेस देने के लिए, सो ओवरनाइट नर्सेस का आना जाना लगा रहता था। जैसे मैंने कहा कि पार्किंसन डिजीज है तो वो खुद से चल फिर नहीं सकते, तो तमाम परेशानियां हैं। तो अराउंड द क्लॉक एडमंड की खिदमत करने के लिए लोग थे। अब देखिए, पैसा तो सवाल ही नहीं उठता, बिलियनर आदमी है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो एडमंड ने भी खुल के खर्चा किया, उन्होंने 4 डॉक्टर्स को हायर किया, 4 बड़े जाने माने डॉक्टर्स को हायर किया, साथ में 8 नर्सेस को हायर किया हुआ था एडमंड ने, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने इलाज के लिए। और 1 महीना पहले ही एडमंड जो थे वो अपने नेटवर्क में से सबको उठा के लेकर आए थे यूएस से सीधा मोनाको रहने के लिए। बहुत लग्जरियस लाइफ, हर जगह गेट तालों से लेकर आपको हर जगह नोट नजर आएंगे। अब जिस जगह पे रहते हैं मोनाको में, वहां पर पुलिस भी बहुत ज्यादा है और क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि सभी पैसे वाले हैं तो इतना कुछ क्राइम होता नहीं है। और जिस बिल्डिंग में वो रहते थे उसकी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट सिक्योरिटी थी भाई, बहुत टाइट सिक्योरिटी। एडमंड इस जगह में मान लीजिए सबसे अमीर लोगों में से एक थे, तो जाहिर सी बात है उन्हें ये डर था कि कभी ना कभी किसी ना किसी की नजर जरूर पड़ेगी और फिर दिक्कत हो जाएगी, और वो ये भी जानते थे कि वो डिफेंड नहीं कर पाएंगे, वो खुद चल फिर नहीं सकते, कैसे खुद को बचाएंगे। तो उन्होंने सिक्योरिटी अपनी बढ़ाई, हर दरवाजा एडमंड के अपार्टमेंट का, ये बताना आपके लिए जरूरी क्योंकि ये कहानी का मेन पार्ट है, एडमंड के घर का हर दरवाजा रिप्लेस करके हैवी स्टील डोर लगा दिए गए थे, सारी की सारी खिड़कियां बुलेट प्रूफ मोटे मोटे शीशे लगे हुए थे, और इस घर में लिटरली स्टील के शटर्स होते हैं ना, वो शटर्स थे मोटे मोटे, मतलब इम्पॉसिबल है कि बाहर से कोई तोड़ सके इसको, आरी
अलग अलग टूल से काट सके, इम्पॉसिबल है। और अंदर घर के एडमंड ने 25 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स को हायर किया था। ये हाईली ट्रेन्ड ऑफिसर्स थे, इनमें बहुत सारे लोग थे, और इनके जो जो लीड करने वाला था उसका नाम था टेड, वो तो स्पेशल फोर्सेस का बंदा था, उस तक को एडमंड ले आया था यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है, कोई डरने वाली बात ही नहीं है। इससे ज्यादा सिक्योरिटी आप क्या लेंगे बताइए घर के अंदर। तो रात ढल रही थी और अपनी दवाई लेने के बाद एडमंड अपने आप से जो हर रोज कहता था वही कहा कि यू नो आई एम सेफ, और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। और वो हमेशा रात में यही करता था, दवाई लेने के बाद कहता था कि मुझे उठाओ और मुझे पूरे घर का एक बार नज़ारा दिखाओ, कौन कहां पर क्या कर रहा है। उसे एक तो उठाना बहुत मुश्किल था, फिर उसको ले जाते थे कभी व्हीलचेयर पे, कभी उठा के अलग अलग चीज़ों पे, और फिर उसको वापस सुलाना पड़ता था। तो ही वॉज टेकन केयर ऑफ, एक एक बच्चे की तरह हो गए थे पार्किंसंस डिजीज के चलते। बट एनी हाउ वो सिक्योरिटी चेक करके ही सोते थे। इस रात भी ऐसा ही था, मगर इस रात थोड़ी गहरी नींद आ गई और उम्मीद उनका मन भी नहीं था कि वो उठने वाले। फिर अचानक से चंद घंटों के बाद एडमंड की आंख खुली, और इस बार जब आंख खुली तो एडमंड चारों तरफ देख रही कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो खुद तो हिल नहीं सकते, उनके हाथ पैर नहीं काम करते, मगर चारों तरफ धुआं ही धुआं और पूरे घर में अलार्म्स बज रहे थे जोरों से। ये फायर अलार्म, सिक्योरिटी वाले अलार्म्स, मोशन डिटेक्टर, सब के सब एक साथ। मैं समझ रही, फायर अलार्म आपने सुना है ना कितना तेज बजता है, अब उसके साथ साथ मोशन डिटेक्टर्स के अलार्म्स और सिक्योरिटी ब्रीच होने के अलार्म, ये तीनों एक साथ टैं टैं टों टों टों टों सब बज रहे थे। एंड ही कुड नॉट स्लीप, उस समझ नहीं आ रहा था उन्हें कि आखिर हो क्या गया। उनके पास भागते हुए उनके जो एक ऑफिसर था जिसका नाम था विवियन ट्रेंटी, वो वहां पर आया और उसने अंदर आके सबसे पहले जो था उनके मुंह को ढकने की कोशिश करी कि कहीं धुआं ना चला जाए और प्रॉब्लम ना हो जाए। और दूसरी तरफ जो टेड, जो उनकी सिक्योरिटी का हेड था, उसके पेट में लिटरली चाकू घुसा हुआ था और वो गेट खोल के खड़ा हुआ था। गेट उसने वॉशरूम को खोला हुआ था क्योंकि ये लोग चाहते थे कि एडमंड को बचाने के लिए जल्दी से वॉशरूम ले जाया जाए, क्योंकि और कोई जगह नहीं है, कुछ तो हुआ है, कुछ गड़बड़ हुई है। एडमंड बहुत परेशान था, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, और विवियन ने फौरन हिम्मत करके उन्हें उठाया और बाथरूम के अंदर ले गए। अब तीनों के तीनों इस बड़े से, और ये कोई नॉर्मल बाथरूम नहीं था, बहुत बड़ा था, दो कमरों के बराबर एटलीस्ट, और इसमें दोनों के दोनों लेके चले गए। विवियन ने बोला कि सर ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है, आग वाग लग गई सर, घर में कुछ तो हुआ है। और टेड जो था उसका तो मतलब लिटरली खून बह रहा था, बिकॉज उससे लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। मगर डिसाइड हुआ कि एडमंड को बचाने का एक ही तरीका है कि इस वॉशरूम के अंदर, इस बाथरूम के अंदर, व्हाटएवर, इसके अंदर लॉक कर दिया जाए, और दोनों ने लॉक्स लगा रखे थे। यहां पर ही रखने का प्लान था। पूरे घर में शोर शराबा सब कुछ मचा हुआ था, इट वॉज ऑल केओस, और एडमंड को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, और वो खुद चल के देख भी नहीं सकता। बहरहाल नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह की तरफ चलते हैं। अगली सुबह एक शख्स डैनियल स्ट्रॉड नाम के, वो जनरल प्रोसिक्यूशन में काम करते थे मोनैको के, उन्हें बताया गया कि सर एक बिल्डिंग में बिलियनर रहता और फला फला हो चुका है। तो वो वहां पर अपनी गाड़ी लेके फौरन पहुंचे। एंड मोनैको, मैं आपको कहूंगा इंटरनेट पर जाके चेक कीजिएगा कैसी जगह है, आप समझ जाएंगे कि ये हादसा कोई छोटा मोटा नहीं है, बिकॉज वहाँ पे ये होता नहीं है पहली बात तो, और सारे के सारे पैसे वाले रहते हैं, और पैसे वाले ऐसे नहीं कि करोड़पति, नहीं, मोर देन दैट, मिलियनेयर बिलियनेयर्स ही वहाँ पर हैं। तो वहाँ पर ऐसा होना वाज अ वेरी बिग थिंग। जब पता लगा डैनियल स्ट्रॉट को कि ऐसा भी कुछ हुआ है, तो वो गाड़ी लेकर फौरन वहाँ पे पहुँचे। पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर के कई सारे हिस्से दाखिल होने के बाद जले हुए हैं, लिटरली राख हो चुके हैं। सबसे पहले कमरे में गए जो एडमंड का, इस घर के मालिक का कमरा था, वहां पे फोरेंसिक रूम से सब कुछ क्लियर कराया, लेकिन एवरीथिंग वाज बर्न डाउन टू एशेस। एडमंड और नर्सेस, उनकी जान चली गई थी जिस वॉशरूम में वो था, और जिस वॉशरूम में
टेड था जिसको चाकू लगा हुआ था, विवियन था नर्स, तीनों के तीनों बच नहीं पाए, उनकी जानें चली गईं। पता ये लगा कि स्मोक जो था वो सीप इन कर गया वॉशरूम में और वो स्मोक की वजह से उन लोगों की जानें चली गईं। तो मतलब एक बिलियनेयर अब इस दुनिया से जा चुका है। अब केस कोई छोटा मोटा केस नहीं है, बिकॉज यहां पे हर केस इज अ वीआईपी केस, सारे पैसे वाले रहते हैं। एक शख्स लेकिन इस घर का बच गया, सिर्फ एक शख्स, और वो थी एडमंड की वाइफ लिली, द ओनली पर्सन जिसे किसी भी किस्म की कोई खरोंच नहीं आई। तो आप भी अगर पुलिस वाले होते तो आपका शक किस पे जाता? ऑब्वियसली लिली पे सबकी नजर थी, क्योंकि पूरे घर में लोग नहीं बचे लेकिन लिली बच गई। ये हुआ तो हुआ कैसे? तो उनसे पूछेगा कि मैडम आप कहां थी जब इतना सब कुछ हो रहा था, आग लगी हुई थी घर में, आप कहां छुप गई? तो फिर लिली ने बताया कि उसके कमरे में एक स्पेशल ओपनिंग है, दीवारों के बिल्कुल अंदर एक इनविजिबल सी चीज बनी हुई है जिसको वो जानती है कैसे खुलता है, उसे खोल के वो अंदर जाके छुप गई जब आग लग गई थी, एंड वहां पे अंदर धुआं भी नहीं आ सकता था, एंड में बच गई। तो ऑफिसर्स ने कहा दिखाई, ऑफिसर्स को उन्होंने दिखाया अभी बाकायदा एक पूरी नॉर्मल दीवार, लेकिन दीवार के एक सेक्शन में एक हिस्सा था कि जिसको अगर आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो वो खुल जाता है और आप उसके अंदर बैठ सकते हैं और किसी को पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि पैसे वाले लोग थे तो ये सब फैंसी चीज़ें बनाना कोई बड़ी बात तो थी नहीं। तो ये उसने बताया, रीजनिंग दी। फिर जब चेक किया गया तो ये भी पता लगा कि लिली जो है, जो एडमंड की वाइफ हैं, वो एडमंड के जाने के बाद $3 बिलियन की मालकिन बनने वाली है। सो नॉट मिलियंस, लाख वाक नहीं, सीधा 3B बिलियन की मालकिन भी बनने वाली है। अब पुलिस वाले सोच रहे थे यार ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है का शक मैं बताता हूं क्यों है। क्योंकि जो एडमंड की वाइफ है दिन पे शक जा रहा है, वो 64 साल की है, 64 years की है वो, और उनकी हाइट पूरी तरह से 5 feet भी नहीं है, और ऊपर से वो फिजिकली इतनी भागने भोगने वाली भी नहीं है, तो वो ये कैसे कर सकती है? दूसरी चीज जो जहन में है कि हो सकता है लिली ने किसी को हायर किया हो, पर अगर किसी को हायर किया है तो कैमरे में क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि कोई भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं पता लगा। स्ट्रॉड ने सब चेक किया, डैनियल स्ट्रॉड जो ऑफिसर थे, एक एक चीज, सारी खिड़कियां बंद थी, सारे शटर लॉक्ड थे, तो ये हुआ कैसे? उन्होंने इंटरव्यूज लिए तो सबने कहा हमें तो एडमंड बहुत पसंद था, एडमंड का तो स्टाफ उनसे प्यार करता था बहुत बहुत ज्यादा। वो बात और है कि वो हमेशा परेशान रहता था, पैरानॉइड रहते थे वो, ऑफ कोर्स उनकी बीमारी के चलते चिड़चिड़े भी रहते थे, लेकिन किसी से कोई ऐसा पंगा नहीं था, और कोई इंटरनल उन्हें मारना नहीं चाहेगा क्योंकि सबकी नौकरी एडमंड से चल रही थी। एडमंड के सर्वेंट की सैलरी किसी भी दूसरी कंट्री के एक नॉर्मल एम्प्लॉयज की शुरुआती सैलरी से कहीं ज्यादा थी, तो कोई सेंस नहीं बनता कि कोई एडमंड की जान लेगा जस्ट बिकॉज एडमंड के पास बहुत पैसा है। इट्स लाइक सेइंग कि सोने की मुर्गी है, सोने का अंडा दे रही है, तो उसको कोई मारने का लॉजिक नहीं है, और मोनैको जैसी जगह में कोई इतनी सनक रखता नहीं है, तो उनकी डेथ से किसी को कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। पूरी फैमिली एडमंड की, उनका शक लिली पे था, ऑफ कोर्स किसी का भी जाएगा क्योंकि लिली पूरे के पूरे घर में बची थी, तो और $3 बिलियन की मालकिन भी बन रही थी, तो ये तो ऑब्वियसली शक के घेरे में थी। फैमिली वालों ने और प्रेशर बनाया और वो सारे के सारे आ गए जो एडमंड के खानदान वाले थे कि यही थी, इसने किया होगा, जैसे लोग करते ना कि हमारा बेटा खा गई, वो उस टाइप की जो सीरियल्स में आप देखते हैं वैसा वाला सीन बन गया था इन अमीरों के बीच में। मगर कोई मनी ट्रांसफर कहीं से नजर नहीं आया, किसी किस्म की कोई फोन कॉल लिली ने कभी किसी को की नहीं बीच में, कोई
मैसेजेस एक्सचेंज नहीं हुए, नथिंग हैपेंड। 1999 में डीएनए कलेक्ट करके उसका रिजल्ट लेने में थोड़ा टाइम लगता था, डीएनए था पर डीएनए को चेक करने में टाइम लगता है, मगर जो फोरेंसिक वाले वहां पे पहुंचे थे उन्हें क्राइम सीन से कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं, फिंगरप्रिंट तक नहीं मिला। तो ये समझ नहीं आ रहा था कि जा कहां रही है ये चीज, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। अब जो सिक्योरिटी वाला था वो बच गया था, याद है आपको टेड जिसने बेचारे ने लिटरली उसके पेट में चाकू लगा था, उसने फिर भी गेट खोल के खड़ा हुआ था कि मैं एडमिन की जान बचा लूं, एंड एवरीबॉडी वेंट इनसाइड। तो उसको किसी तरीके से अगली सुबह इन्होंने बचा के हॉस्पिटल पहुंचाया, बाकी सब लिटरली स्मोक सोंगने की वजह से नहीं बचे, लेकिन टेड बच गया था। अब एक केस हो गया कोल्ड और कोई भी चश्मदीद गवाह बचा ही नहीं, तो किससे पूछे, सिर्फ टेड और जो कि वो हॉस्पिटल में है। अब पुलिस के पास सहारा सिर्फ वही है और पुलिस बड़ी बेचैन हो रही थी कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, बिलियनर्स का मामला है, कितना वेट करें हम, और सब दुआ कर रहे थे बस टेड बच जाए, टेड बच जाए। पुलिस वाले बैठे हुए हैं केस पे, हर रोज अखबार वाले छाप रहे हैं, मीडिया वाले छाप रहे हैं, द अमाउंट ऑफ प्रेशर वॉज बिल्डिंग, क्योंकि ऐसी किसी चीज किसी भी शख्स ने उम्मीद नहीं की थी कि मोनाको में ऐसा हो जाएगा, यानी बिलियनर का चला जाना, उफ, तो आप खुद सोचिए कितना प्रेशर होगा। केस तो कोल्ड होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद एक बहुत अच्छी खबर आई। अच्छी खबर ये थी कि टेड जो कि सिक्योरिटी का हेड है वो फाइनली जग गया है हॉस्पिटल में, उसे होश आने लगा है और वो एक लौता चश्मदीद गवाह है जो बता सकता है कि एक्चुअली में हुआ क्या। एंड पुलिस ने एक सेकेंड वेस्ट नहीं किया, दे वेंट टू द हॉस्पिटल, वो टेड के पास बैठे, टेड जो था इस टाइम पे दर्द से कराह रहा था और पुलिस वाले ने बहुत प्यार से पूछा कि कहीं ऐसा ना हो ज़्यादा ज़ोर से पूछे तो ये फिर इसको कुछ हो जाए, दर्द में तो ऑलरेडी है। तो पुलिस वाले ने पूछा, टेड टेड कैन यू टेल अस कि उस रात को क्या हुआ था। और टेड ने अपने आप को संभाला, गहरी सांस ली और सिर्फ इतना बोला, ऑफिसर आई एम रियली सॉरी। और पूरा रूम शांत हो चुका था। आई एम सॉरी मतलब, पुलिस वालों ने फिर उससे बाकी बातें पूछी और जो उन्हें बाकी किस्सा टेड के मुंह से सुनने को मिला वो बेहद वियर्ड किस्सा था। तो हुआ क्या उस रात, एक डेढ़ बजे के करीब दवाई लेकर एडमंड द बिलियनियर बैंकर वो सोने की तैयारी कर चुका था, बिस्तर पे लेटा और वेट कर रहा था कि बस अभी नींद आ जाएगी, ठीक है, वो सो गया। उसके बाद जब वो उठा उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि कहां से आग लगी, क्या हुआ, लेकिन टेड जो था बंदा जिसे पता था कि कैमरास कहां पर हैं, किधर हैं, टेड कुछ अलग बात साबित करना चाहता था, टेड उसकी टीम का सबसे वफादार बंदा बनना चाहता था। टेड को उस टाइम पे, माइंड यू ये नोट कर लीजिएगा, टेड को उस टाइम पे $20,000 मिल रहे थे 1999 में, क्या करने के, एक बिलियनर को सिक्योरिटी देने के, जिसमें उसे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती थी क्योंकि कुछ होता नहीं था। टेड को अपनी वफादारी और साबित करनी थी, उसे सैलरी में हाइक चाहिए थी जो वो शायद मांगता तो एडमिन उसे दे भी देता बिकॉज उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर टेड ने सोचा कि मैं अपनी वफादारी कैसे पेश करूं। अब वफादारी को पेश करने का तरीका एक ही है कि जब कुछ होगा तभी तो वफादारी दिखेगी, ऐसे कैसे अपना टैलेंट दिखाऊं। तो टेड ने कहा, मुसीबत आ तो रही नहीं है, एक काम करता हूं मुसीबत मैं ही पैदा कर देता हूं। तो टेड ने घर के अंदर एक जगह पे आग लगा दी और उसे लगा इसे और ऑथेंटिक कैसे बनाऊं मैं। तो टेड ने एक चाकू लिया और चाकू से अपने आप को पेट के बिल्कुल साइड में मार लिया, मगर जब उसने मारा ही डिड नॉट रियलाइज कि बाकी ऑर्गन्स में भी चाकू लग सकता है। सो वेरी फूलिश मूव और वो चाकू कुछ अलग

तरीके से उसके लग गया। एनीवे वो अपनी एक्टिंग को संभालता रहा और वो लगा कि उसने गेट फिट खोला, मगर टेड खुद सिक्योरिटी हेड होने के नाते एक मेजर मेजर डिटेल भूल गया। उसने आग तो लगा दी थी लेकिन धुएं के निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वो हीरो बनने के चक्कर में एडमंड को बाथरूम की तरफ चले गया कि सर आपको यहां पर मैं बचा लूंगा, यहां पर कुछ नहीं होगा, मगर ही फॉरगॉट द मोस्ट बेसिक थिंग, ये घर हर बड़े सिक्योरिटी से लेस था। इसके जो मेटल डोर्स थे वो इतने भारी थे कि अगर वो नहीं खोले जाएंगे तो धुआं वहां से गुजर ही नहीं सकता। शटर लगे हुए थे खिड़कियों पे, वो भी स्टील के, जो धुआं था टेड का लगाया हुआ वो घर को छोड़ ही नहीं पा रहा था और वो धुआं जगह जगह अंदर ही अंदर सीपिन होते हुए बाथरूम तक गया जहां पे टेड हीरो बनने की कोशिश कर रहा था और वहां पे एडमंड और विवियन जो नर्स और ऑफिसर थे उनकी जान चली गई। टेड ऑन द अदर हैंड ही ट्राइड टू रन अवे तो धुएं से थोड़ा बच सका, मगर फाइनली जब वो हॉस्पिटल में भी बच गया तो उसे लगा कि शायद अब मुझे इकबाल जुर्म कर लेना चाहिए और उसने ये किया। एंड मजे की बात यह है कि जब टेड से पूछा गया, टेड तुम्हें हाइक कितनी चाहिए थी, $20,000 तुम्हें मिल रहे थे, व्हाट एल्स, तुम्हें और क्या चाहिए था? वेट फॉर दिस, टेड ने बोला कि उसे $2,000 बस और चाहिए थे, बस इतनी सी बात थी। और टेड ने हीरो बनने के चक्कर में पूरी की पूरी कहानी खराब कर ली। तो ये थी आज की कहानी। 666-22-107 नंबर है, 666-22-107। आई वुड लव टू नो कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि हम भी ऐसा करते हैं ना कई मर्तबा, जो है हीरो बनने के चक्कर में बनी बनाई चीज खराब कर लेते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा, मैं इससे रिलेट नहीं कर रहा बट फॉर अ फैक्ट कुछ लोग अच्छी खासी जॉब में होते हैं, अच्छी भली जॉब चल रही है, मैं कल से बिजनेस करूंगा भाई, और फिर वो एक झटके में छोड़ देते हैं हीरो बनने के चक्कर में। तो भाई साहब टेड आपके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ये भी टेड वाली ही हरकत हुई। तो प्लीज़ आज की तारीख में तो हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। दिस वॉज वे बैक इन 1999 बट आई वुड स्टिल से 2026 में तो हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। 666-22-107 नंबर है। आप इस कहानी को लेके क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ लेट मी नो, मैं सच में जानना चाहूँगा। 666-22-107 पर। और मैसेजेस तो आपको सॉरी मतलब मैसेज जो कर रहे हैं आपको तो कहानी मिल जाएगी, सो डोंट यू वरी अबाउट इट, मैं भेज दूंगा आपको। एंड एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, भाई एकदम सही कह रहा है भाई, भाई मैं सही कहता हूँ आज वाली कहानी में तो मैं फिर भी कहने वाला, क्या फिर लिली को कैसे भाई, फिर लिली को पैसे मिले भाई, पूरे मिले। लिली जो है उनकी वाइफ जो थी एडमंड की, शी बिकेम द प्राउड एंड द राइचियस ओनर ऑफ $3 billion इसलिए हीरो बनने का नहीं, ठीक है। 666-22-107 मुझे बताने का कहानी कैसी लगी।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: चेक 8:01 में दो हवाला कबीर एफएम 107 पे। एंड एक भाई कह रहे हैं नसीर भाई कि इवनिंग में भी मॉर्निंग में, भाई इवनिंग में कहाँ आ रहा हूँ मैं अभी, इतनी भी मेरी आवाज़ की कॉपी नहीं कर रहा कोई। अरे यार ब्रो इतना भी नहीं, मैं सिर्फ मॉर्निंग में आ रहा हूँ।

Wake up जी, wake up। तो आज की कहानी कैसी लगी तो आप लोग ही बताएंगे 666-2107 पे एक मैसेज आ गया है, प्लीज शेयर द स्टोरी। बिल्कुल कर देंगे, टेंशन को नहीं, आपको मैं भेज दे रहा हूँ, इस पे जो है आ जाओगे तो आपको कहानी को नहीं सब मिल जाएगी भाई। ये लो बाकी मैसेज, क्या नावे भाई ये रैप कैसा लगा होता तो नावी भाई, आप तो खुद रैपर हो और लिखते हैं भाई गुड मॉर्निंग। लालच इंसान से क्या क्या करवाती है। इमेजिन प्लॉट ट्विस्ट ऐसा होता कि क्या पता लिली ही टेड को कन्विंस किया हो। भाई ये तो क्राइम पेट्रोल वाला बना दिया हमने, सतर्क रही सावधान रही। सर जी का मैसेज शुक्रिया अब्दुल्ला कबीर भाई, आप वापस आ गए सुबह, स्कूल छोड़ने का टाइम इतना अच्छा गुजरता है, जज़ाकअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, वीकेंड कैसा रहा भाई? बढ़िया एकदम शानदार लिखते हैं। आज सुबह से सुना आपको, थोड़ा बाहर काम था लेकिन मैसेज इन टाइम नहीं किया। आज तो बहुत सारे लिसनर्स अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे, वो हंसते हंसते मैं भी ज़्यादा कैश नहीं यूज़ करता हूँ, ओनली कार्ड्स यूज़ करता हूँ आजकल, तो ज़्यादा कंपलसरी कार्ड पेमेंट हो गया। हाँ जी, फरहत भाई लिखते हैं, लालच बुरी चीज़ है भाई, अच्छी स्टोरी थी दिस भाई, थैंक यू सो मच भाई। एक मैसेज है, ये तो वो हो गया कि किसान के पास गोल्ड की अंडे देने वाली मुर्गी थी और उसने एक दफ़ा सब निकालने की कोशिश करी। हाँ भाई, बटर चिकन खाना था भाई उस्मान भाई यहाँ पे किसान को, उसने खा लिया भाई। और एक मैसेज आया, सादिक भाई का कमबैक हो गया, मोहम्मद सादिक भाई क्या बात है भाई, जैसे वो रेसलिंग में कमबैक होता ना पीछे बैकग्राउंड स्कोर लगा के, सादिक भाई वेलकम बैक। लेकिन अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत? जैसे रिटर्न फ्रॉम वेकेशन और क्या शुरुआत की है दिन की, रिटर्न की सोचा था वेकेशन के बाद आग लगा देंगे, अब जहाँ हूँ उतना ही करूँगा। और आगे लिखते हैं, अब तो जिंगल भी चेंज हो गया, आप शाम में जाके बहाने नहीं है भाई, नहीं अभी तो भाई चेंज किया ना भाई, अपन चेंज किए ना भाई। और रविंदर सिंह से तो भाई ने मैसेज किया, तो भाई क्या हाल है भाई के, बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी संडे टू यू एज़ वेल। संडे बाद कोई हैप्पी अभी तो कुछ नहीं भाई। अब्दुल करीम भाई ने मैसेज किया है, भाई मेरे रूममेट की कहानी याद आ गई। रूममेट की कहानी याद आ गई कैसे? मुबारक शाह साहब लिखते हैं, लालच बुरी बला जी भाई। और इरफान भाई ने तो कहा, या अल्लाह सीधा भाई ने, ये जो ये हमारा तरीका है ना, हैरानी की बात है, ये बिल्कुल सही है। एक वजह से अस्सलाम वालेकुम कब्बू भाई, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, बढ़िया भाई, शानदार। आप सुनाइए सलमान भाई, क्या चल रहा बाकी? और अब्दुल करीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैसेज है, कबीर भाई जब आप कहानी सुनाते हैं तो मैं इतना खो जाता हूँ, आज फिर से एग्जिट भूल गया। मुबारक हो, मुबारक हो, आई एम सो प्राउड कि आप एग्जिट भूल पाए, मतलब एज इन मेरे को अच्छा लगा कि आप इतना खो गए, आप समझिए थोड़ा सा रिवर्स से। और एक मैसेज है, कैश इज द बेस्ट। शहजादा सलीम, ये कैश इज द बेस्ट वाली बात को एक घंटा हो गया बेटे, जागो, इनको जरा कोई टपली दे के आओ। शहजादा सलीम टाइम वॉर्प में फंस गए। एक मैसेज है, क्या लिखा है इन्होंने, कहानी बहुत मजा आया, फिसल जाना। अब ये फिसल मंडे वाली बात को लोग पूरे दिन चली गई बात ही है। यूसुफ भाई कहते हैं, बहुत अबाउट द स्टोरी, अच्छी थी, सिंपल बट गुड। बेचारा हीरो बनने के चक्कर में नुकसान कर बैठा, फ़ायदा हुआ वाइफ का। हाँ बताओ, मालकिन असल मालकिन बन गई हैं अब, इतनी अच्छी सैलरी होने के बावजूद फिर बेचारे को हाइक की क्या ज़रूरत पड़ी जो इतना सब हो गया। कबीर, पहले तो मैं वाइफ पे ही शक करने लगा बट आई वॉज रॉन्ग। वाइफ पे शक नहीं करते यूसुफ भाई, ये कहानी ये भी सिखाती है, लालच तो बुरी बला है, अलग चीज़ है,

0: करण ओजले का गाना भैया एफएम 107 थे, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे। और क्या हाल है आपके एफएम 107 पे? यूसुफ भाई ने मैसेज किया है कि शक नहीं कर रहा, जस्ट लगा कि ये सब कार्रवाई हो सकती थी। लीली पे शक नहीं करने का, यूसुफ भाई झगड़ा हो जाएगा भाई। कह रहे हैं आप बिना सुबह सुबह आजा दिया, अल्लाह सदा खुश रखे, जजाकल्ला मेरे भाई। लेकिन लीली पे शक नहीं करना। एक मैसेज और है, अभी कॉल करता हूं भाई। नाज़िया भाई ने मैसेज किया, वो कह रही व्हाट अ फूलिश मैन ड्यू टू ग्रीड ही क्रैश्ड हिज ओन मेस। या और आगे लिखती है, बाय द वे व्हाट हैपेंड विद टेड, होप लीली हैज फायर्ड हिम। फायर्ड हिम? पुलिस पकड़ के ले गई उसे। मैं पूंटू उंटू तो मुझसे आवाज़ नहीं निकलती यार, ये सायरन होगी। मैं अपनी चॉप से खुद ही करा लेता हूँ, सायरन सीख के आना पड़ेगा मुझे पुलिस का। तो पुलिस पकड़ के ले गई नाज़िया बहन उसको। एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है भाई के? ये मैसेज क्या है मुझे आ रहा है मेरा भाई, थैंक यू सो मच। और वकास भाई कह रहे हैं कॉल, वकास भाई अभी आप कॉल लगाते हैं। और बाकी ये पूछ रहे हैं सादिक भाई, सादिक भाई की कह रहे हैं कि गुरु रंधावा के गाने पे क्या कहना है, अभी बताता हूँ क्या कहना है, कॉल उठा लो मैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: अरे कमाल भाई, बढ़िया भाई, बस कमाल कर रहे हैं आप, बताइए क्या हाल है?
1: कमाल तो यही है कि भाई उसने अपने आप को चाकू मारा तभी तो सबके घेरे में आया, बाकी तो भाई कहीं जाने का रास्ता ही नहीं था।
0: फंस गया अब तो।
1: आपने बात को घुमा दिया भाई।
0: थैंक यू।
1: लास्ट में उसको हाजिर कर रहे हैं।
0: हाँ, पहले मुझसे शरीफ
1: था। आप ही ने सोचा था कि उसको लास्ट में हम पकड़ेंगे।
0: ये तो आपने मेरे पे प्लान बना दिया आपने। अच्छा, आपने लीली पे शक नहीं किया, आपने मुझ पे शक किया। कमाल भाई, कमाल कर दिया। सही,
1: लीली पे शक तो तभी जाता था ना कि कबीर भाई की, अगर जैसे अभी उसने अपनी गुनाह कबूल किया तो लीली का भी नाम ले सकता था। लेकिन जब आदमी गुनाह कबूल करेगा तो सबका नाम लेगा, जो करेगा। उसने किया नहीं, लेकिन आपने उसको बचा के रखा ना भाई, लास्ट में इसको हाजिर करेंगे, मेन गवाह है।
0: आपको शक तो हो गया होगा, ये कहानी सीधी तो नहीं जा रही है।
1: कहानी जब आपने बोला ना कि उसने चाकू उसको लगा, तो पहले तो भाई लूटने का वो था, तो लूटने का तो कोई चांस ही नहीं था। ये मोटी मोटी स्टील की दरवाजे और ये इतनी सिक्योरिटी होने के बाद जो है, कोई एक अकेला पूरा गैंग अगर लूटना चाहे तो ही उसको लूट सकता था।
0: बहुत तेज हो रहा कमाल भाई, आपने उस डिटेल पे ध्यान दिया। ओए होए, क्या बात है। सही पकड़ा लेकिन आपने, एक्चुअली में वो मैंने डिटेल दे दी थी मैंने, जिसके समझ में आएगी, क्योंकि वही पॉइंट था कहानी का, क्योंकि बाहर से तो कोई आ नहीं सकता, तो कैसे हुआ होगा। पर बहुत
1: उसने अपनी लालच के 2000 के चक्कर में कितने लोगों की जान ली।

0: अलग यही चीज है भाई,
1: बताइए
0: ज्यादा पैसा होना भी जो है ना दूसरे की नजर उस पर रहती है।
1: हाँ ये भी एक परेशानी है, बीच में बैलेंस बैठना चाहिए भाई, थोड़ा बीच में बैलेंस बैठना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, पर कमाल भाई आपको कहानी अच्छी लगी ये मैटर करता, बढ़िया लगी कहानी आपको?
0: बस नहीं कहानी जबरदस्त थी।
1: थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमाल भाई।
0: आपकी जितनी भी कहानी है, एक महीने की छुट्टी थी, दो दिन में मैंने कवर किया भाई।
1: क्या बात है क्या बात है। तो अब आप देखिए कल वाली कैसी आएगी, मतलब कमाल भाई कल आप लिटरली बिल्कुल बैठ के सुकून से ऐसे सुनेंगे शांति में एकदम, ऐसी कहानी है कल की।
0: भाई कहानी सुनने के लिए बोलते हैं, मैं पहले तो बाहर काम करते हूँ, गाड़ी उड़ी जब कहानी आती है तो मैं उसी रूम में आ जाता हूँ ताकि कोई आके डिस्टर्ब ना करे, कुछ बोले नहीं, कुछ पूछे नहीं मेरे से।
1: अरे मेरा भाई बहुत बहुत
0: बात करने वाला नहीं चाहिए।
1: आए हाय हाय हाय भाई, दिन सेट कर दिया भाई ने कमाल भाई, बहुत प्यारे चीज के लिए थैंक यू सो मच मेरे भाई, इतनी तवज्जो देने के लिए थैंक यू। ओके मेरा भाई अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो कमाल भाई जो है वो बहुत तवज्जो के साथ कहानी सुनते हैं, उन्होंने इस बात का प्रूफ दिया है कोई नहीं चाहिए उनको बात करने के लिए। और साथ ही भाई ने मैसेज किया है गुरु रंधावा गाने पे क्या कहना है। गुरु रंधावा जब सोशल मीडिया के लिए गाने बनाना बंद कर देंगे ना तो वापस पुराना वाला गुरु रंधावा आ जाएगा, ये पता नहीं कौन सा क्या हो गया उनको। और उन्होंने मैसेज किया है जो लोग लिली पे शक कर रहे थे घर जाकर मार खाएंगे। सादिक भाई मैं आपके साथ हूँ, मैं लिली पे शक कर ही नहीं रहता भाई, मैं नहीं करूँगा शक कभी। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैंने ये भेजा था ना आपको, इस पे आवेगी कहानी शमशाद भाई, इस पर आए जो मैंने आपको भेजा है। बाकी भाई को कॉल करनी है, मैं कॉल करने जा रहा हूँ मलिक वकास साहब को, और ये मैंने कॉल लगा दिया। तो और एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम, ये लक्ष्मण भाई ने मैसेज किया है, और एक दो मैसेज और है। सबसे पहले तो मैं कॉल उठा लें फिर इनसे जरा बात करें पहले तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है भाई?
2: क्या हाल है कबीर भाई?
1: बढ़िया भाई बढ़िया, एकदम शानदार, आप सुनाइए।
2: अल्हम्दुलिल्लाह करम माशाल्लाह, सुबह में आ गए, अब सुबह इन्हें कर रहे हैं सबकी माशाल्लाह से।
1: शुक्रिया भाई।
2: पहले आप शाम में हमारी वो करते थे रंगीन
1: जी,
2: अब शाम में यकीन करें शाम में जाते हुए ना नींद आनी शुरू हो गई है, आपका शो ही नहीं है।
1: मेरा भाई बहुत प्यार भाई, थैंक यू सो मच,
2: सच्ची कह रहा हूँ। और माशाल्लाह जैसे आप अपना प्रोग्राम में इंटरेक्शन करते हैं, सबको बिजी रखते हैं ना, सबको एंगेज करते हैं, वो नेक्स्ट लेवल है।
1: थैंक यू सो मच भाई,
2: उसका मुकाबला ही नहीं है कोई।
1: दिल से शुक्रिया।
2: आपके जो टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे थर्सडे को एक टॉपिक था ना कि बचपन में आप क्या कलेक्ट करते थे, मैं थोड़ा सा लेट हूँ, थर्सडे मेरी बात नहीं हो सकी क्योंकि सुबह के टाइम ऑफिस, तो सॉरी उसके लिए।
1: कोई नहीं,
2: लेकिन वो उस टाइम में मुझे दो तीन चीजें याद आई, उसके बाद मैंने जब गाड़ी पार्किंग में लगाई उसके बाद मैं ऑफिस जा रहा था, यकीन करें इतनी मेमोरी रिकॉल हुई, इतनी चीजें रिकॉल हुई, मैं यार माशाल्लाह कबीर भाई ने क्या सेट किया प्रोग्राम के, बचपन याद कर दिया। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने फास्ट हो गए हैं कि हम पीछे की तरफ देख ही नहीं पाते, लेकिन आपके प्रोग्राम की वजह से हम वो पूरा रिकॉल होना शुरू हो जाता है मेमोरी।
1: बहुत प्यार
2: है आपको माशाल्लाह, बहुत सारा प्यार,
1: थैंक यू।
2: जैसे आपकी कहानियां सच्ची
1: जी,
2: सच्चा सोना होता है ना, इसी तरह आपका प्रोग्राम भी सच्चा सोना है।
1: अरे भाई भाई भाई भाई भाई भाई भाई, ऐसा लग रहा है आज मेरा बर्थडे बर्थडे है, क्या बात है।
2: तो फिर आज फिर हैप्पी बर्थडे चाहिए आपका।
1: थैंक यू भाई, बहुत बहुत प्यार। आज की कहानी सुनी मलिक भाई आपने, आज की कहानी सुनी?
2: टू बी वेरी ऑनेस्ट, कल आपकी स्टोरी लाइव नहीं सुन पा रहा,
1: सुबह के टाइम ऑफिस। नो प्रॉब्लम, बाद में सुन लेना आराम से,
2: मैं आपके बाद में सुनता हूँ, मैं आपकी सारी अप टू डेट स्टोरी है। पहले क्या होता था कि मैं सुबह के टाइम ना जब मैं साइट पे जाता था ना ऑफिस से क्लिक करके, तो मैं रास्ते में सुनता हुआ जाता था।
1: अच्छा ओके।
2: तो अभी क्या है कि अभी मैं ऑफिस में बैठ के सुनता हूँ आपकी स्टोरी जब काम कर रहा होता हूँ, लेकिन सुनता बराबर हूँ।
1: अच्छा, चोरी चोरी सुन रहे हैं या फिर पता है सबको कि सुन रहे
2: हैं? नहीं नहीं, वो हेडफोन लगा होता है, एयरबड लगा होता है, कोई नहीं, कॉर्पोरेटिव ऑफिस है, अपना काम करो साथ।
1: ये वही बात हो गया भाई, बहुत बढ़िया।
2: नहीं है तलवार वाला ऑफिस नहीं है, इधर क्यों गए उधर क्यों गए, ये वाला हिसाब नहीं है।
1: अच्छा, हिसाब किताब नहीं दे रहा है किसी को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर आप तक कहानी पहुंच रही है भाई, डाकिया भेज रहा हूँ मैं, डाक लेकर आपको सुन के बता देना कल, ठीक है?
2: क्या बात है, बहुत सारा प्यार,
1: बहुत
2: प्यार रहे माशाल्लाह, ऐसे प्रोग्राम करते रहे, ऐसे टॉपिक लाते रहे,
1: थैंक यू,
2: जिससे हम भी खुश आप भी खुश और हमारी यादें ताजा हो जाए।
1: इंशाल्लाह भाई,
2: इंशाल्लाह
1: अल्लाह ताला को खुश रखे वकास भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।
2: बहुत शुक्रिया कबीर भाई।
1: और वकास भाई के प्रेम के बाद बहुत अच्छा लगा है वकास भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो स्वीट। एक मैसेज आया, लिली धोखा नहीं देगी भाई। सोनम बेवफा याद है, नोटों पे वो हुआ था फेमस, सोनम बेवफा ही था वो, क्या था, अब ये वाला फेमस हो जाएगा। कह रहा लिली धोखा नहीं देगी। ये हम फेमस करेंगे आज की कहानी से कि लिली धोखा नहीं देगी। एक काम करते हैं, जब सरवर भाई शो करने के लिए आएंगे ना, ठीक है, तो सरवर

भाई को पता क्या बोलिएगा, यही बोलिएगा ये छोटा सा हम ये आज करते हैं, आई होप कि वो ना सुन रहे हों क्योंकि उनके कान लगे रहते हैं, मगर आज उनके शो में आप यही बोलिएगा कि सर्वर भाई लिली धोखा नहीं देगी, ठीक है, आज ये बोलना है उनको ये आज करना ही करना है। तो सबसे पहले मैं जरा साथ साथ खबरें ही बताता हूँ क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं और जो मेरे साथ हैं इस प्रैंक में वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, प्लीज लेट्स डू इट, आज हम ये करेंगे भाई। बाकी कुछ खबरें सबसे पहले ओके जीरो वेस्ट कैंपेन से शुरू करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हो चुका है ऑलरेडी कतर में। एक इनिशिएटिव जो था इसका मकसद ये रहा है कि पब्लिक के हक में बात की जाए और एक कोशिश रहे कि वेस्ट कम हो सके और जो रिसाइकलिंग है वो प्रमोट हो सके और इस इकोनॉमी का वो भी बहुत गहरा हिस्सा बन सके। तो कैंपेन जो है लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी के तरफ से फरवरी 2022 में, सो अभी तकरीबन चार साल से ऊपर हो चुका है। एंड ये डिज़ाइन की गई थी ताकि कम्युनिटीज़ को इंकरेज किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करें रिस्पॉन्सिबली और कंजप्शन पे काम करें और इन्वेस्टमेंट पे काम करें रिसाइकिलिंग के प्रोसेस में वाइल ऑल्सो सपोर्टिंग एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव जो कि टारगेट है, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कतर नेशनल विजन 2030 के। और अकॉर्डिंग टू द होल थिंग दैट हैज हैपेंड इन चार सालों में द फोकस ऑफ द कैंपेन इज इंक्रीजिंगली शिफ्टिंग, तो अभी रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस से अभी रेज करने के बाद प्रैक्टिकल चेंजेस सामने नजर आ रहे हैं जिसमें जनरेशन कलेक्शन और सॉर्टिंग और पूरा प्रोसेस है और साथ साथ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बन गया रिसाइकलिंग ये भी बहुत बड़ी बात है। इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज अलग अलग जगहों से आई हैं, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आया है, तो वेस्ट को एनर्जी और यूजफुल रिसोर्सेज में कैसे टर्न करना है ये चार सालों में कतर ने साबित किया है। इंशाल्लाह बाय 2030 जो मेन विजन है कतर विल एक्सीड एवरीथिंग जो भी पास्ट में हुआ है। इसके अलावा अगली खबर है नेशनल कतर नेशनल लाइब्रेरी की जो कि इनवाइट करते हैं टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और एजुकेशन एंथुसियास्ट को ताकि वो अटेंड कर सकें साइंस बुक फोरम सेमिनार AI इन एजुकेशन और किस तरीके से AI changes the way we learn। ये जो कैंपेन है कतर नेशनल लाइब्रेरी का ये सितंबर की 9 तारीख से है और सुबह के 10 बजे से 11:30 बजे तक है। सो सितंबर 9th 10 AM टू 11:30 और ये स्पेशल इवेंट्स एरिया में होगा। ये सेशन जो है डिलीवर्ड किया जाएगा अंग्रेजी में, इंग्लिश में और साथ में अरेबिक में और साथ में दोनों ही लैंग्वेजेस के इंटरप्रिटेशन हैं वो अवेलेबल रहेंगे। ये जो फोरम है ये इंट्रोड्यूस करेगा पार्टिसिपेंट्स को जो बेसिक आइडिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चिड़िया का नाम है, साथ ही में रूल बेस्ड सिस्टम्स क्या होते हैं, पैटर्न रिकग्निशन किसे कहते हैं और न्यूरल जो फ्रेमवर्क है वो कैसे काम करता है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक लेमन लैंग्वेज में सीखने का मौका मिलेगा। इसमें क्लियर एक्सप्लेनेशंस, डेमोन्स्ट्रेशंस, डिस्कशंस सब कुछ होगा और ये इवेंट शो करेगा कि AI किस तरीके से अभी सिर्फ महज एक टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी क्लासरूम्स तक पहुंच चुका है एंड हाउ इट कैन बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, ना सिर्फ बच्चों की तरफ से यूज इसका बढ़ेगा मगर टीचर्स को भी डेफिनेटली, जैसा मुझे कह रहे थे कि बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी सीखने यूज करना पड़ेगा, नो चॉइस देयर। एंड अगली खबर जो है वो लुसेल की तरफ से, लुसेल अलवखरा का जो मैच है इन द फोर्थ राउंड ऑफ दोहा स्टार्स लीग 2026-2027 सीजन, ये आइकॉनिक लुसेल स्टेडियम हो और बहुत ही लाइवली एटमॉस्फेयर देखा गया, अगेन फुटबॉल के यहाँ पे फैंस बहुत ज़्यादा हैं एंड इट किक्ड ऑफ द लॉन्च ऑफ लुसेल्स क्लब्स लुसेल क्लब्स फैन जोन एक्सपीरियंस इनिशिएटिव रहा हिस्सा लुसेल क्लब की ड्राइव का टू टर्न द मैच डे इनटू अ कंप्लीट एक्सपीरियंस। ये फैन जोन बहुत ज़बरदस्त रहा, काफ़ी इंटरेक्टिव था, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें थी एक्सपीरियंस करने के लिए हर एज ग्रुप के लिए, बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, हर किसी के लिए। इसके अलावा अगली खबर जो लास्ट खबर है वो है लुसेल म्यूजियम से, एक एम्बिशियस कतर म्यूजियम प्रोजेक्ट जिसके बारे में कुछ दिनों से बात चल रही थी बट उसका जो एनविजन है अब आगे बढ़ चुका है, एक नया कल्चरल फिनोमेना बनने को तैयार है एंड एक कतर की आइडेंटिटी में एक और तमका, तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। मगर कमिंग बैक टू द सेम थिंग, कहानी जो हमने सुनाई आपको पता है ना, लिली धोखा नहीं देगी, बस हमें ये जो है सरोवर भाई को लिख के देना है जब सरोवर भाई शो करने के लिए आएंगे, ठीक है, कोई किसी से कुछ नहीं बोलेगा लेकिन सरोवर भाई को हम ये बोलेंगे कि लिली धोखा नहीं देगी। गाबा जी क्या हाल है भाई, कह रहे आ जाओ चाय पी लो भाई, पूरा थर्मस लाया आपका भाई। मोहम्मद हारिस भाई ने मैसेज किया है, हारिस 12 साल, हाउ आर यू, यू आर गुड अंकल, थैंक्स फॉर द स्टोरी, थैंक यू सो मच। आए आप स्कूल नहीं है, एक सेकेंड आज तो छुट्टी नहीं है हारिस बेटे, हाउ कम यू आर टेक्सटिंग मी राइट नाउ, शाम वाला वो है क्या स्कूल,
मैं तंग रह जाता हूँ इस टाइम कोई बच्चा मैसेज करता तो। हिजाम साहब वालेकुम सलाम, जजाकल्ला।

बहुत बहुत शुक्रिया. एंड देन एक वॉइस नोट आया भाई, अभी सुनता हूँ वॉइस नोट आपका. एंड थैंक्स सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये कुछ मैसेजेस है एंड हमने काफ़ी सारी बातें कर ली हैं, सो आप भी आ सकते हैं. बाकी आपको याद है क्या कहना है, क्या कहना है कि लिली धोखा नहीं देगी. ठीक है, प्रोफेसी और जॉनी द गांधी, क्या गाना है भाई ये. भाई वीडियो भी उतना ही कर रहा है इसका. नहीं जानती है.

क्या गाना है भाई, क्या गाना बताऊं मैं। वैसे तो ऐसे लव वाले गाने सुनता नहीं भाई, लेकिन इसका वीडियो भी बहुत बढ़िया और गाना भी बहुत बढ़िया है। एक भाई कह रहे हैं भाई कोई अवार्ड फंक्शन होगा तो आप ही अवार्ड जीतोगे। भाई मैं ट्रॉफी व्रॉफी नहीं चाहिए, हो गया भाई, क्या देगी दुनिया ट्रॉफी हमको भाई, इतना प्यार मिल रहा है, इस ज़्यादा कुछ है क्या? क्यों, क्या नाम आपका? खालिद भाई। अरे ट्रॉफी से ज़्यादा मिलता है हमें, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात कर रहे हो, ये नहीं सुन रहा है? ऐसे थोड़ी बन गया, ये प्यार से बना है।

0: और वेगा के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि क्या कुछ है आज। इंटरनेशनल बहुत सारे दिन हैं जो मार्क्ड किए गए हैं कैलेंडर पे और बड़े कमाल के भी हैं और कुछ ऐसे खामखा हैं। आपको तो पता ही है ऐसे ही दिन बहुत सारे होते हैं, तो आज के दिन जो जरूरी जरूरी दिन है उनमें ऐसे है कलर ब्लाइंड अवेयरनेस डे। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो कि कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है। एक बार आप जाके देखेंगे तो आप पूरी आई वुड सजेस्ट देयर इज अ डॉक्यूमेंट्री, मैं नाम भूल रहा हूँ, आप मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं कुछ देर में ही 5 मिनट पर ढूंढ के दूंगा। वॉच दैट, वो कलर ब्लाइंडनेस पर है एंड बहुत अमेजिंग डॉक्यूमेंट्री यार, बहुत ज़बरदस्त, तो आप वो देख लीजिएगा। आज है कलर ब्लाइंड अवेयरनेस डे, आज है फ्लाइट प्रोक्रास्टिनेशन डे, तो अलार्म जल्दी लगाया करो जिनकी भाई फ्लाइटें हैं। अभी बहुत सारे लोग छुट्टी वुट्टी पर जाएंगे। सबसे खतरनाक बीमारी यहाँ पर है पासपोर्ट भूल जाने की, ये बहुत डेंजर है भाई, ये मेरे साथ भी हो गया है और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ होता हुआ देख लिया है। तो ये जो चीज़ है पासपोर्ट भूलने की बीमारी, टाइम पे तो पहुंच रहे हैं 4-4 घंटे पहले पासपोर्ट नहीं ले आ रहे, तो ये इससे ज़रा बच्चे, बाकी सब तो ठीक है। आज है पेट रॉक डे, ये क्या होता है यार, मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ, लेकिन एवरी वन नीड्स अ फ्रेंड फाइंड अ सूटेबल रॉक, ये क्या बात हुई। इसमें लिखा है पत्थरों से लोग दोस्ती करते हैं, एक स्पेशल अपना फेवरेट पत्थर उठाएं उससे दोस्ती बना लें, ये आज पेट रॉक डे। क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा है आज कॉफ़ी आइसक्रीम डे, हैं कॉफ़ी आइसक्रीम डे, ओके मैंने कभी नहीं खाया भाई उसका, अब तो मुझे टेस्ट नहीं पता, मैं कमेंट नहीं करूंगा ना इसको ट्रोल करूंगा। सो आज है कॉफ़ी आइसक्रीम डे, व्होएवर व्हिच एवर वे यू वांट टू ट्राई मुझे बता देना भाई। एक मैसेज है ग्रेट एग टॉस डे, अंडों को जी उछालने का दिन मनाया जाता है आज के दिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में, ये बाज नहीं आते हैं बट ठीक है कुछ भी करते हैं लोग। आज है और क्या दिन है, आज ग्रैंड पेरेंट्स डे भी, आज दादा दादी नाना नानी का दिन भी है। वैसे तो हर रोज़ होना चाहिए, ये डायलॉग बोल के मैं इसको ज्ञानवर्धक बात नहीं बनाना चाहता, मगर दैट इज़ जस्ट द फैक्ट। तो दादा दादा दादा दादी नाना नानी, ठीक है, बाकी तो मैं आपको दादा या नाना जैसी कहानी सुना ही रहा हूँ तो उसका अलग ही फील। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, एक एमवी डे भी होना चाहिए भाई, था आपको पता ये दिन था, कुछ दिनों पहले मैंने बोला था नो राइम और रीजन डे, वो यही दिन था एमवी डे। कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से भाई, पर है। एक मैसेज, हाय गुड मॉर्निंग कबीर सर, नाउ डेज आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बट व्हेन आई एम हियरिंग यू हियरिंग योर प्रोग्राम रियली आई एम फीलिंग वेरी रिलैक्स एंड पीस, थैंक यू कबीर सर। ये नीतूराम, नीतूराम भाई मेरी और तमाम लोगों की दुआ है आपके लिए, नीतूराम भाई को कोई दिक्कत छू नहीं सकती भाई, नीतूराम भाई परेशानी आवेगी और जावेगी भाई, ठीक है टेंशन को नहीं लेना नीतूराम भाई। अच्छा वक्त का भी टाइम का थोड़ा सा वैलिडेशन होता है और इसकी वैलिडिटी है नीतूराम भाई, मस्त रहने का भाई, ठीक है टेंशन को नहीं लेने का। एक मैसेज है कहानी ब्रिज, मिल जाएगी भाई, ये अनुज कुमार साहब ने मैसेज किया, अनुज भाई बिल्कुल फिक्र नहीं, इकरम साहब ने कहा है डन, अच्छा इकरम कहानी के लिए, अनुज भाई आपको मैंने भेज दिया है, इस पे आ जाओ कहानी मिल जाएगी। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है, जावेद साहब एकदम बढ़िया, जावेद साहब कहाँ थे सुबह से आप, वेयर वर यू। नावी भाई कह रहे हैं मेरा ड्रीम है प्रोफेसी के साथ गाना करना, भाई नावी भाई मुझे दिख रहा है कि आप कर लोगे भाई, आप देख लेना देख लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप करोगे। लक्ष्मण भाई बहुत टाइम बाद आए हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुएब मंसूरी भाई मंसूर भाई ने मुझे वॉइस नोट किया है तो वो अभी कुछ देर में सुनूंगा। शहजाद सलीम लिखते हैं कबीर भाई आज ही संडे हैं, शहजादा सलीम क्या हो गया तुम्हें, कैसी भेगी भेगी बातें कर रहे हो। शहजाद सलीम खुल के कहिए आप क्या कहना चाहते हैं, उसकी बाद में बात करेंगे। ये वाला नहीं, मैं कुछ एक और गाना मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा है, मिल गया तो मैं चला दूंगा। एक कॉल आ रही है, ये कहाँ से कॉल आ रही है, एक सेकंड रुकिए। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, कैसे हो।
0: मैं एकदम बढ़िया भाई, आप कैसे हैं
1: जी। आप शायद, मैं आपको पहचान बताऊंगा आप पता चल जाएगा है? मैं ऊर्जा का पापा हूँ, अभी आप पता चल जाएगा।
0: अच्छा, ओहो लॉन्ग टाइम नो सी भैया, किधर है भाई साहब।
1: जी, जी जी, बहुत बहुत दिन हो गए सर। आज क्या हो गया, आज हाँ। मॉर्निंग को लकीली मैं जनरली मॉर्निंग को सुनता नहीं हूँ रेडियो, आज सुन लिया, बोला कबीर भाई सुबह कैसे आ गए
0: भाई, हाथ से बताकर थोड़ी होता है भाई।
1: आप शाम को ही बेटर हो, रियली आई एम, बिकॉज मैं आई जस्ट लिसन वन लिसनर दैट ही आल्सो सेड दैट शाम को आप आया करो, हमारी शाम बहुत मस्त हो जाती है। वैसे भी आप तो कहते हो ना कि सुबह आपको उठने में मजा नहीं आता है, तो आप शाम को ही आ जाओ
0: भाई, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है भाई।

0: ये रोजी और रूटीन दोनों के लिए मुझे कुछ खासा कुछ करने को तैयार हूँ.
1: थैंक
0: यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर बीइंग सो स्वीट. और क्या चल रहा है बाकी जिंदगी सब सेट?
1: नहीं बस आपसे बातचीत करने के लिए कॉल किया हूँ कि जस्ट वो स्टोरी खत्म हो गई और मैंने ट्यून किया था रेडियो और मैं बोला चलो कबीर भाई से बहुत मतलब आई थिंक आफ्टर 2 इयर्स आई एम कॉलिंग यू बैक नाउ.
0: नहीं भाई थैंक यू सो मच. हम भाई वही में सोचा मैंने कहा बिल्कुल ही गायब हो गए भाई, बिल्कुल मतलब कट ऑफ. आप तो मेरे रिश्तेदारों से ज्यादा खतरनाक है भाई. वो तो बीच बीच में ईद मुबारक तो बोल देते हैं, आप तो बिल्कुल ही गायब हो गए. नहीं आप आ जाए करें भाई.
1: वो तो रेडियो में कहना कहा ना कि मैंने फर्स्ट टाइम अगर किसी को कॉल किया है तो बस मैं लगभग अभी कतार में 10 साल हो गए तो बस आपको ही कॉल किया हूँ, बाकी आई नो कभी रेडियो में कॉल नहीं करता हूँ ज्यादा.
0: आई नो आपने पिछले बार मुझे कहा था, आई स्टिल रिमेम्बर दैट भाई. मुझे इस बात को बहुत फख्र है आपके ऊपर. थैंक यू.
1: बेटी का बर्थडे था तो आपको मैंने कहा था कि जस्ट उसको विश कर दो और आपको बहुत पसंद आया था कि बेटी का नाम बहुत अच्छा है उसका, दैट्स अ वेरी गुड नेम.
0: तो बस
1: पूरा आज स्टोरी सुन ली तो एकदम लास्ट में सुना, वो पता ही नहीं है, मुझे बस शेयर कर दीजिए.
0: नो प्रॉब्लम. आपने मैसेज किया, मुझे भी मैसेज किया ना अभी?
1: नहीं अभी मैं कर देता हूँ,
0: एक बार मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा.
1: पहले कॉल कर लेंगे
0: फिर. नहीं और आपकी बिटिया कैसी है? सब बढ़िया, घर में सब शानदार?
1: अभी बहुत एकदम शरारती हो गई है और शी विल कम इन दिस दिवाली.
0: अरे वाओ नाइस. नाइस
1: नाइस. मैं आपको उसके साथ कॉल पे बात करवा देता हूँ.
0: डन डन भाई. आई वुड लव टू भाई, आई वुड लव टू भाई. आप खुश रहे भाई.
1: और आपके साथ सच में बड़े भाई जैसा छोटे भाई जो भी समझ में रिश्ता बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके. यू हैव वेरी पॉजिटिव वाइब और आपने जैसे कहा ना आज तो आपको ऐसा लग रहा है आपका बर्थडे है. एवरी डे यू आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे. आई नो यू आर लिविंग द योर लाइफ वेरी हैप्पीली.
0: थैंक यू मेरा भाई, दिल भाई वर्चुअल जप्पी भाई को थैंक यू सो मच भाई, मींस अ लॉट भाई.
1: नहीं सच में मतलब यू आर रियली वंडरफुल पर्सन एज अ ह्यूमन एंड एज अ आरजे आल्सो. आई एम रियली लविंग दैट
0: हाउ यू
1: नैरेट द स्टोरीज एंड एवरीथिंग. वो स्टोरी मैंने पूरी सेव करके रखी है जितने आपने भेजी है ना. हाँ और एक सर सजेशन बोलना था आपका भी भाई.
0: प्लीज भाई
1: आपने एक यूट्यूब चैनल एक बना लो ना, सब छोटी छोटी स्टोरी सब सबमिट किए
0: भाई. इस बात
1: इसी बात परमानेंट हम सुन सकेंगे.
0: इसी बात में दंगे हो रहे भाई सब मेरे पीछे. वो एक्चुअली में क्या है कि बस एक चीज बाकी है, वो बस भाई मैं उस चक्कर में बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, वो आ जाएगी इंशाल्लाह. मैं आप मैसेज करो, मैं आपको बताता हूँ उस पे. आप मैसेज करो ठीक है,
1: लेकिन वो पक्का कीजिए. मेरी रिक्वेस्ट है हमारे लिए वो खजाना हो जाएगा यार सच में. कभी भी यूट्यूब खोल दे मिल जाएगा और बहुत सारे लोग आप सुन लेंगे आप. और रियली यू आर अ वेरी गुड नैरेटर. रियली रियली आई एम नॉट जस्ट फॉर प्रेजिंग यू, इट्स रियली ट्रुथ
0: भाई. आपने दिन सेट
1: कर दिया. फॉर अदर लिसनर शुड वी आल्सो टेक दिस वन.
0: डेफिनेटली आई एम सो ऑनर्ड भाई. इस मोहब्बत के लिए बहुत शुक्रिया भाई. डेफिनेटली भाई यही करूंगा.
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत बहुत आई एम वेरी हैप्पी. एंड शाम को आ जाओ यार. आई एम वेरी हैप्पी विद यू द इवनिंग.
0: वो भी भाई उसका भी टाइम आएगा जरूर. पर आप मैसेज जरूर कीजिएगा भाई ठीक है.
1: जी जी
0: जी
1: मुझे स्टोरी भेज
0: दीजिए.
1: क्या लीली का स्टोरी
0: वो
1: समझ तो आ जाएगा.
0: ठीक है भाई भेजता हूँ. डन हो गया भाई.
1: ठीक है
0: ठीक है. भाई अब बताओ, मैं कह रहा था ट्रॉफी की जरूरत को नहीं भाई, हमें नहीं चाहिए वोट फंक्शन. ये रही ट्रॉफी भाई, क्या बात है यार. थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे. और बाकी मुझे मैसेज किया था एक नावी भाई ने, कह रहे गाने ढूंढ रहे तो मेरा कोई बात. नावी भाई आपके लिए आज एक चीज है भाई, आपको मैं आज ही कॉल करके बताऊंगा क्या है. टेंशन मत लो भाई. यार आप लोग दिन बना देते हो यार, सेंटी कर देते हो अंदर से ना. अपने काम से फख्र महसूस हो ये आप लोगों की वजह से. थैंक यू सो मच. भर के प्यार.

क्या हाल है? बढ़िया. आप कुछ रिकमेंडेशन जरा मैं दे दूँ आपको, क्योंकि ये टाइम है रिकमेंडेशन देने के बहुत ज़रूरी है. भारी भारी बातें नहीं करेंगे हम. मैं कुछ सीरीज़ कुछ मूवीज़ सजेस्ट करते रहता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है और आपको देख लेनी चाहिए. सो आज मेरे पास एक बहुत ही शानदार कैटेगरी है. ये कुछ लेटेस्ट सीरीज़ नहीं है, लेकिन अगर आपने मिस कर दिए भाई साहब तो दिक्कत है भाई. सबसे पहले तो एंट्री मारेंगे हम बढ़िया वाली.

0: wake up.
1: देखिए भाई साहब, कुछ सीरीज ऐसी होती हैं जिनको आप देखते हैं और आपका मन वहीं अटक जाता है, ये क्या देख लिया मैंने। तो मैं कुछ आपको सीरीज बताने वाला हूँ, कुछ अनोखी और बड़ी जबरदस्त। एक मैसेज है, क्या मोबिन बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने शेयर करी अपनी मेमोरीज ऑफ द सोशल मीडिया, बट नॉनदलेस ओके। अब मैं कुछ सीरीज बताऊंगा। एक कैटेगरी है जो आती है थ्रिलर साइकोलॉजी में, कंप्लीटली हॉरर नहीं होती वो, मतलब ऐसे भी नहीं है कि जिनको हॉरर नहीं पसंद है वो उसे देख के ओ ये क्या दिखा दिया मैं तो डर गया, वैसे नहीं। तो बड़ी साइकोलॉजिकल है, हाउस ऑफ अशर। अगर आपने नहीं देखी है, मैं आपको एग्जैक्ट इसका नाम बता देता हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है कि नाम में जगल कर रहा हूँ, बट स्टिल लेट मी टेल यू। एक ये माइक फ्लैनिगन नाम का एक डायरेक्टर है भाई दुनिया में, ठीक है। फॉल ऑफ अशर, सही नाम पढ़ रहा हूँ, लेट मी चेक, क्योंकि इस बंदे की कुछ भी बनाई हुई चीज़ आप देख रहे हैं। जी हाँ, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, ठीक है, ये एक सीरीज है, OTT प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। देखो भाई एक बारी, मुझे पता है डेफिनेटली बहुतों के रेडार से निकल गई है और बहुतों ने ये नहीं देखी है। इस डायरेक्टर का नाम भी मैं मेंशन कर देता हूँ जिन्हें इसकी और चीज़ देखनी, क्योंकि माइक फ्लैनिगन ये नाम है डायरेक्टर का। ये बंदा कुछ भी बनाता है ना भाई, कुछ भी बनाता है वो। देखो मेरी घरवाली ने याद दिला दिया, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर, अभी मैं गलती से कुछ और बोल देता। बढ़िया, दैट इज़ वन थिंग जो आपको याद रखनी है। एक भाई ने मुझे मैसेज किया, भाई थैंक यू, मैंने आपके कहने पे द बे देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। इसलिए रिकमेंडेशन का हमने सेगमेंट रखा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर जरूर देखें। और एक बताता हूँ आपको, एक है अगर आप वो उस तरह की मूवीज देखते हैं ना, वो रिकॉर्डेड टेप जिसमें चलता है, लाइव रिकॉर्डिंग जैसे एक फील आता है कि हाँ ये अभी भी कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है। और ये एक टेप से बनी मूवी है, इसका नाम है हेल हाउस

0: LLC, ठीक है, और हेल हाउस होटल LLC भी है और हेल हाउस LLC भी है, ये दोनों ही है। फाउंड फुटेज मूवीज कहते हैं इन्हें। फाउंड फुटेज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप एक मूवी देख रहे हैं और उसमें बंदा जो है अपने फोन से कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसी का एंगल आपको नजर आएगा, उसी का पर्सपेक्टिव, उसी की नजरों से वो जो अपने फोन से देख रहा है। जैसे कि आपको याद है कि एक मूवी आई थी रागने में पहली बारी जिसमें राजकुमार राव थे, बिल्कुल वैसे ही आपको लगेगा। और पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक मूवी आई थी जिसमें CCTV कैमरा के फुटेज लिए गए थे, बिल्कुल वैसे ही। तो अगर आपने नहीं देखी है ना भाई, बहुत बहुत सॉलिड है, बहुत पसंद आएगी आपको। एंड फ्राइडे को मैंने देखी बैकरूम्स, अभी लेटेस्ट आई है भाई साहब, देख डालो बता रहा हूँ। बैकरूम्स बिल्कुल आंख बंद करके देख डालो, इतना मजा आएगा ना आपको, एक सेकंड भी आप चैन से नहीं बैठ पाएंगे। आपको लगेगा ये भाई ना तो मुझे पॉज करनी है ना मुझे खाना खाना है, पहले ये मूवी खत्म होगी उसके बाद निवाला खाऊंगा मैं। ये उस टाइप की मूवी है बैकरूम्स। हाँ आखिर में जाके थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी कि हुआ क्या, बट वो ठीक है, वो AI बता देगा आपको। आजकल पूरे पूरे शोज बन जाते हैं AI से भाई, तो आप उससे पूछ लेना AI ये बैकरूम में आखिरी में क्या हुआ रे, और वो आपको बता देगा कि भाई साहब ये हुआ। मगर बैकरूम्स आप देखिए बिकॉज प्लॉट बहुत बढ़िया है, कहानी बहुत बढ़िया फ्लो कर रही है, और कहानी का एंड थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इतना भी नहीं है पर बहुत बढ़िया है। एक भाई ने बोला है भाई यहाँ भी भेज देना सीरीज़ का नाम, बिल्कुल भाई मैं तुरंत तुरंत पहले मैं बस मैं अभी गाना चलाऊंगा तो आपको मैं सीरीज़ का नाम भेज रहा हूँ, ठीक है। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई धन्यवाद आपने, क्या मैंने कौन सी सीरीज़ बताई थी, मैंने आपने एक सीरीज़ बताई थी जो कि हॉरर नहीं थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मुझे उसका नाम भी याद नहीं आ रहा, बट थैंक यू सो मच एंड कीप रिकमेंडिंग। थैंक यू भाई, ऑफकोर्स। एक भाई ने मैसेज किया है भाई ये मुझे भी भेज देना, भाई मैं अभी अभी बस लिख के भेज रहा हूँ भाई, एकदम बढ़िया भेजेंग ना। और एक मैसेज 666-22107 पे आप भी भेजी दें, बढ़िया रहेगा भाई। गुरु रंधावा जो गाना आज बना रहे हैं उससे पहले वो कुछ बढ़िया बनाते थे, ज़माना था एक जब सोशल मीडिया के लिए नहीं बनाते थे गुरु रंधावा गाना। गुरु भाई वक्त के पहिए को पाछो घुमाओ भाई, बहुत जरूरत आने लगी है, बढ़ जा तू मेरी रानी गाना था भाई ये। हाय
1: बन जा तू मेरी रानी तेनु महल दवा दूंगा,
0: 8:44
1: मेरी महबूबा मैं तेनु ताज पवा दूंगा।
0: और मैसेज कर दो
1: तू मेरी रानी
0: तेनु, अभी लिस्ट भेज रहा हूं, लोगों ने लिस्ट मांगी है।

0: ओरिजिनल गाना हजम नहीं हो रहा था ना वो आदत खराब कर दी है भाई लोगों ने गाने का 0.2 वर्जन 0.3 वर्जन बना बना के ना आदत खराब कर दी है ये वाला बहुत पहले आया था भाई बहुत पहले आया था अस्सलाम वालेकुम मैं दोहा वाला कभी रखूंगा 7 5 आसिफ भाई ये बताओ डिसाइड कर रहे हो कि कॉल करना है नहीं करनी नहीं तो मैं आपको कॉल लगा देता हूँ यार आसिफ भाई फिर वो बीच में रह जाती है उनकी कॉल आ नहीं पाती है तो मैं ही कॉल कर लेता हूँ आसिफ भाई कॉलिंग यू राइट अवे एक मैसेज स्पेशल भाई के लिए थैंक यू सो मच भाई बहुत सारा प्यार आवार अपन का तो पोस्टर लग गया भाई मैंने बहुत बढ़िया बनाया और एक मैसेज नाइस कॉम्बो है ये क्या है अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम क्या बोलती पब्लिक मजे में कि नहीं
0: बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ
1: तकलीफ तो होनी है भाई जो अकेला है अपना
0: और आज भाई क्या चल रहा है भाई
1: भाई एक नंबर फुल गर्मी के मजे ले रहे
0: फुल गर्मी के मजे ले रहे भाई ये विटामिन डी देने को किसने बोला भाई
1: भाई विटामिन डी जरूरी है भाई विटामिन सी तो भाई ठंडियों में लेते पब्लिक
0: बढ़िया फिर 12 बजे खड़े होने का भाई अभी वो मजा नहीं है भाई
1: हाँ भाई बाहर निकल के देखो स्टूडियो का मजा आएगा तुमको
0: नहीं भाई मेरा विटामिन डी एकदम फुल चल रहा है अभी आप 12 बजे निकलो आसिफ भाई जब मजा आएंगे
1: भाई एक रिक्वेस्ट है भाई जो तुम मूवी देखे ना भाई वो मूवी की लिस्ट आराम से जल्दी भेज देना भाई
0: बिल्कुल भाई अभी साथ साथ टाइप कर दूंगा भाई टेंशन
1: और भाई एक और कंप्लेन करने का भाई तुम्हारे को
0: भाई मैं कोई सरकारी मैं मुसद्दी ला लूं
1: भाई नहीं कंप्लेंट लेना तो पड़ेगा भाई लेना तो पड़ेगा भाई कंप्लेंट है भाई
0: बोलने का भाई
1: सुनो भाई वो जो तुम स्टोरी भेजते ना भाई व्हाट्सएप पे वो गायब हो गई नहीं भाई दिखती नहीं आजकल हम लोग को किधर जाती मालूम नहीं भाई 24 आवर में सब गायब हो जा रहा भाई
0: भाई पूरा का पूरा सामने है भाई आसिफ भाई तुम मेरे को
1: भाई मेरे को नहीं दिखाई दे रहा भाई
0: ये मेरे को मैसेज करो अलग से फिर मैं बताता हूँ ठीक है आई विल टीच यू व्हाट्सएप ठीक है
1: ओके डन
0: मेरा और अगर मैं सही निकला भाई साहब फिर धन्यवाद बोलूंगा आसिफ भाई मैं फिर ठीक है
1: भाई मैं तो भाई वो एक बार अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल दो भाई दिन बन जाएगा अपना
0: अरे आसिफ भाई कैसे हैं आप जब से मेरी जिंदगी में आए मुझे जया से और भी ज्यादा प्यार हो गया
1: भाई शुक्रिया
0: अरे बहुत बहुत शुक्रिया से भाई मुझे अलग से मैसेज कीजिए और मैं आपको चेक फाड़ के देता हूँ अभी ठीक है ओके okay, भाई साहब धन्यवाद आए बहुत बहुत शुक्रिया ओके और आसिफ भाई तो ले रहे हैं विटामिन डी मेरे पास एक और मैसेज आया है क्या सादी भाई कह रहे हैं कबीर भाई वो सरकारी दीवार पे लगा धब्बा है जो मन कर रहा है अंदर डाल रखा डब्बा जो मैं धब्बा कह रहा हूँ पोस्ट ऑफिस समझ रखा है इन्होंने जीशान भाई ने मैसेज किया वालेकुम अस्सलाम भाई जीशान एक मैसेज है गुड मॉर्निंग कबीर भाई तो मुझे भी थोड़ा नाम भेज दो मूवी का थोड़ा नहीं पूरा भेजेंगे भाई टेंशन को नहीं भाई एक मैसेज अस्सलाम वालेकुम मारो को भी दो क्या देना क्या तो दो अलग अलग चीज़ लोग अलग अलग चीज़ मांग रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन किसके लिए गुहार लगा रहा है समझ रहे हैं आप किसको कहानी चाहिए और किसको मूवी के नाम चाहिए यहाँ कन्फ्यूजन हो गई है एक भाई ने बोला है कबीर भाई आपकी रिकमेंडेशन बहुत अच्छी है क्या आप पहले किस में काम करते थे भाई मैं फिल्मों पिक्चर अच्छी लगने का मतलब ये थोड़ी कि मैं फिल्मों में काम करूँगा तभी मुझे नॉलेज होगी एक मैसेज है कॉलेज फॉर आसिफ भाई क्या लिखा है एक तो यार मेरे को ये एंशिएंट लैंग्वेज मत बताया करो आसिफ भाई टेंशन में आ जाता हूँ कि क्या लिखा है आपने ये कॉलेज फॉर मुझे नहीं पता मैं आपको कहानी भेज रहा हूँ मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा शेख अतीक साहब वालेकुम अस्सलाम वो कह रहे हैं कि गुड वॉइस निकाली है बहुत बहुत शुक्रिया शेख अतीक भाई इसी के साथ मेरे जाने का जो है वो वक्त हो गया क्योंकि हमें जो बुला रही है वो रेखा जी है भाई आए तो मैं निकलता हूँ 8:51 बाय द क्लॉक अभी मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल सवेरे 6 बजे अभी 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन और आपको पता है ना सरवर भाई को क्या बोलना है सरवर भाई को बोलना है लिली धोखा नहीं देगी ये बोलना है एक भाई कह रहे हैं मुझे नहीं पता था मिमिक्री भी करते हैं अरे भाई कभी संदूक पूरी तरह खुली ना तो खजाने की चकाचौन से आपको लगेगा अब तो मैं सनग्लासेस ही क्यों ना पहन लूँ ऑन दैट नोट भाई कबीर हो रहे हैं साइन ऑफ अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं मां सलामा

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी
2: एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
5: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
4: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर RJ महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 बजे से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।

बंदी के बाद से अब तक 1344 अफराद शहीद और 4464 जख्मी हो चुके हैं, जबकि 815 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। लुबनान में अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली फौजी जारियत के नतीजे में शहीद और ज़ख्मी होने वालों की मजमूई तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लुबनान की वजारत सेहत के एमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर के मुताबिक कल जारी बयान में बताया गया कि अब तक मजमूई तौर पर 8925 अफराद जाँ बहक जबकि 30595 ज़ख्मी हो चुके हैं। वजारत के मुताबिक 2 मार्च से अब तक 4358 अफराद जाँ बहक और 12359 ज़ख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेज ने सूर शहर के जनूब में वाके मंसूरी कस्बे के अतराफ में शदीद धमाके किए, जिनकी गूंज इर्द गिर्द के देहात तक सुनाई दी। इसके अलावा इसराइली जंगी तैयारों ने मंसूरी में मुसलसल 2 फिजाई हमले किए, जिनमें कस्बे के मुतादिद घरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरानी पासदारानी इनकलाब की जानिब से 2 अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों को बैलिस्टिक मिज़ाइलों से निशाना बनाने की कोशिश के बाद अमरीकी फोर्सेस ने 3 ईरानी खाम तेल बरदार टैंकरों को हमलों में तबाह या नाकारा बना दिया है। सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ और गाइडेड मिज़ाइल डिस्ट्रॉयर ने ईरानी हमलों से कामयाबी से बचाव किया और किसी अमरीकी अहलकार के ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। अमरीकी कमांड ने बताया कि उसके बाद 2 ईरानी पासदारान इनकलाब से मुंसलिक ऑयल टैंकर्स एमटी डाउनी और एमटी स्टॉक 1 को मुस्तकिल तौर पर नकारा बनाया गया, जबकि खलीज ओमान में मौजूद खाली ऑयल टैंकर एमटी काइलोस, जिसे नॉक्सन के नाम से भी जाना जाता है, उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक तीनों टैंकर्स एक खुफिया और अरबों डॉलर के ऐसे नेटवर्क का हिस्सा थे जो पासदारान इनकलाब और उसकी इलाकाई इत्तेहादियों की माली मुआवनत करता है। सेंट्रल कमांड के कमांडर रियर एडमिरल ब्रैड कूपर ने कहा कि अगर पासदारान इनकलाब ने अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया तो अमरीका उसके जवाब में कहीं ज़्यादा बड़ा मुआशी नुकसान पहुँचाने से गुरेज नहीं करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीका अपनी फोर्सेस के दिफा के लिए किसी भी इकदाम से नहीं हिचकिचाएगा और ज़रूरत पड़ने पर ईरान के महदूद और गैर महफूज तेल बरदार बेड़े को भी तबाह कर देगा। मिस्र के वजीर खारजा बदर अब्दुल आती और अमरीकी सदर के अरबो अफ्रीकी उमूर के सीनियर मशीर मसद बोलस ने कल टेलीफोन कॉल पर गुफ्तगू की, जिसमें सूडान के बहरान और लीबिया की बदलती हुई सूरतेहाल के साथ साथ दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्री वजारत खारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने सूडान में कशीदगी रोकने और बिगड़ती हुई इंसानी सूरतेहाल से निमटने के लिए जारी इकदाम और सफारती रबतों का जायजा लिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कल हफ्ते के रोज़ कहा है कि रूस यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की सलामती यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। मॉस्को में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खसूसी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात के दौरान पुतिन ने बताया कि आज नसफ शब से यूक्रेन की जानिब से रूसी इलाकों पर हमलों में नुमायाँ कमी आई है। पुतिन के मुताबिक रूसी अफवाज ने भी इस वक्त के बाद कीव पर कोई हमला नहीं किया। मॉस्को ने सिक्योरिटी इदारों के दरमियान राबतों के जरिए तय पाने वाली उस पेशरफ्त को जज़्वी जंग बंदी करार दिया है। रूसी सदर ने कहा कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के हल के लिए सफारती कोशिशों को मजीद तेज़ करने के अज़म पर कायम हैं। उन्होंने बताया कि रूस को इंटेलिजेंस और इदारों और वजारत खारजा के जरिए कीव पर हमले आर्जी तौर पर रोकने की तजवीज़ मौसूल हुई थी, जबकि यूक्रेन ने 3 रोज़ा वसी जंग बंदी की तजवीज़ भी दी है। ताहम मॉस्को और कीव के दरमियान इस तजवीज़ पर बराह रास्त बातचीत नहीं हुई। क्रिमलिन के मुताबिक पुतिन ने अमरीकी नुमाइंदों के मॉस्को दौरे और यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए जारी मुज़ाकरात के दौरान कीव पर 3 रोज़ के लिए हमले रोकने का हुक्म दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनके नुमाइंदे मॉस्को के दौरे के दौरान यूक्रेन तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अमन मंसूबा पेश करेंगे। पुतिन और अमरीकी नुमाइंदों के दरमियान ये 6ठी मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब यूक्रेन के मामले पर सफारती कोशिशें तेज़ हैं। दोनों अमरीकी नुमाइंदे आज यूक्रेन रवाना होंगे, जहाँ वो यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे।
شام ڈیجیٹل تعاون تنظیم کا رکن بن گیا ہے۔ شامی وزیر مواصلات عبدالسلام ہیکل نے کل بتایا کہ شام نے ڈیجیٹل تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل

0: फाइनलिस्ट टेलर फिट्स को हरा दिया। और कतर बास्केटबॉल फेडरेशन ने 2026-2027 के मेंस जनरल लीग चैंपियनशिप का स्केड्यूल अनाउंस कर दिया है। 9 क्लब्स 10 अक्टूबर से खिताब के लिए मुकाबला करेंगे। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: न्यूज हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
2: साहिब सुमो अमीर ने इटली की वजीर आजम को उनकी हकूमत के जमहूरी अतालवी की तारीख में सबसे तवील अरसे तक कायम रहने वाली हकूमत बनने के मौके पर मुबारकबाद का तहनीती पैगाम इरसाल किया है। वजीर आजम और वजीर खारजा से लुबनान के वजीर आजम ने बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन पर मबनी ताल्लुकात उन्हें मजीद मजबूत बनाने के तरीकों और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। रियासत कतर ने कल काहिरा में अरब लीग के जनरल सेक्रेटरीट में मुनक्किद होने वाले अरब लीग कौंसिल के मुस्तकिल नुमाइंदों की सतह पर 166वें इजलास में शिरकत की। यह इजलास पीर को वजारती सतह पर होने वाले इजलास की तैयारी के तौर पर मुनक्किद किया गया। और अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से दो अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों को बैलिस्टिक मिज़ाइलों से निशाना बनाने की कोशिश के बाद अमरीकी फोर्सेज ने 3 ईरानी खाम तेल बर्दार टैंकरों को हमलों में तबाह या नाकारा बना दिया है। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी मावुन सारा और न्यू स्टूडियो से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्जा, इंतखाब आलम और इस्माइल खान को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।
1: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: ता होना मुमकिन है, लेकिन असल कामयाबी फौरन अल्लाह की तरफ पलटने में है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी खता का इनकार नहीं किया, बल्कि आजिज़ी के साथ कहा, हमने तो अपने आप पर खुद जुल्म किया है। तो ये दुआ हर मुसलमान के लिए तौबा और रुजू का बेहतरीन हथियार और कलमा है। नजात का दरवाजा हमेशा अल्लाह की मगफिरत और रहमत से ही खुलता है। आइए हम सब मिलकर ये दुआ पढ़ें। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: दोस्तों, साइकिल चलाते वक्त ट्रैफिक रूल्स पर अमल करना हर साइकिलिस्ट की जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं तो हम अपनी और दूसरों की जान की हिफाजत करते हैं। साइकिल चलाना एक सेहतमंद और एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी है, लेकिन अगर ट्रैफिक रूल्स को नजरअंदाज किया जाए तो ये काफी खतरनाक भी हो सकती है। पहले तो ट्रैफिक सिग्नल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप रेड लाइट देखते हैं तो रुकना और ग्रीन लाइट पर चलना जरूरी है। अगर साइक्लिस्ट रेड लाइट के रूल को इग्नोर करते हैं तो ये उन्हें एक्सीडेंट के लिए एक्सपोज कर सकता है, खास तौर पर जब व्हीकल्स तेज रफ्तार से आ रहे हों। इसके अलावा साइकिल को हमेशा लेन के अंदर चलाना चाहिए। अक्सर साइक्लिस्ट फुटपाथ या गलत लेन में साइकिल चलाने लगते हैं, जो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा होता है। हेलमेट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। हेलमेट्स सिर्फ साइक्लिस्ट की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि उनकी जिंदगी को भी बचाने में मददगार होते हैं। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट सर पर लगने वाली चोट से बचाता है। इसके अलावा हैंड सिग्नल्स का इस्तेमाल करके हम अपने इरादे दूसरों तक आसानी से पहुंचाते हैं, जो काफी जरूरी है, खास तौर पर जब टर्निंग या लेन चेंज करते हैं। साइक्लिस्ट को हमेशा अपने सराउंडिंग्स का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक बिजी रोड पर साइकिल चला रहे हैं तो आपको दूसरे व्हीकल्स, पेडेस्ट्रियंस और रोड कंडीशन का भी बारीकी से अंदाजा लगाना चाहिए। इससे ना सिर्फ आप अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं बल्कि दूसरों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर हम सब ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखें तो हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को काफी सेफ रख सकते हैं और रोड सेफ्टी को प्रमोट कर सकते हैं। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है। आपके जहन में वजारत दाखिला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखिला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखिला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं। हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए। ओनली ऑन FM 107।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक गरीब किसान के बेटे की जो 23 मार्च 1935 को पाकिस्तान के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। शदीद गुर्बत और मुश्किल हालात के बावजूद ये लड़का आगे जाकर एशिया का सबसे तेज तरीन स्प्रिंटर बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल खालिक की, एक ऐसे एथलीट की जिन्होंने अपनी मेहनत, रफ्तार और अजम के जरिए तारीख में अपना नाम लिखवाया और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कामयाबियां हासिल की। अब्दुल खालिक का सफर ट्रैक से नहीं बल्कि कबड्डी के मैदान से शुरू हुआ। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बेजोड़ खिलाड़ी होने की वजह से उनकी गैर मामूली सलाहियत, ब्रिगेडियर रोदम जो पाकिस्तान आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सरबराह थे उनके सामने आई। उन्होंने फौरन अब्दुल खालिक को आर्मी बॉयज कंपनी में शामिल कर लिया, जहां उनकी फितरत में मौजूद रफ्तार को प्रॉपर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के जरिए और निखारा गया। और फिर आता है 1954 का एशियन गेम्स। यहां अब्दुल खालिक ने दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ 10.6 सेकंड्स में 100 मीटर रेस पूरी करते हुए उन्होंने फाइनल में नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले 10.8 सेकंड्स का रिकॉर्ड इंडिया के लेवी पिंटो के नाम था, जो उन्होंने 1951 एशियन गेम्स में बनाया था। अब्दुल खालिक के इस शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें पाकिस्तान का स्प्रिंटिंग हीरो बना दिया और साथ ही साथ उनकी रफ्तार से मुतासिर होकर भारत के साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ये एक यादगार टाइटल दिया, एशिया का परिंदा। और वाकई अब्दुल खालिक ट्रैक पर किसी परिंदे की तरह उड़ते नजर आते थे। 1954 के एशियन गेम्स में अब्दुल खालिक ने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता, जबकि 4x100 मीटर रिले में सिल्वर मेडल हासिल किया। लेकिन उनकी कामयाबी का सफर यहीं नहीं रुका। 1958 के एशियन गेम्स में अब्दुल खालिक ने अपना 100 मीटर टाइटल डिफेंड किया और दोबारा गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने 200 मीटर रेस में सिल्वर और रिले में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ने एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में दूसरी पोजिशन जबकि ओवरऑल मेडल रैंकिंग में 6th पोजिशन हासिल की। अब दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेज उनका इंतजार कर रहा था, या ओलंपिक गेम्स। 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक्स में अब्दुल खालिक ने 100 मीटर और 200 मीटर रेसेस में हिस्सा लिया और दोनों इवेंट्स में सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। 200 मीटर सेमीफाइनल में उन्होंने 21.1 सेकंड्स का वक्त रिकॉर्ड किया और दुनिया के टॉप एथलीट्स में अपनी जगह बनाई। मगर दोस्तों, हर चैंपियन के सफर में मुश्किल वक्त भी आता है। 1960 के रोम ओलंपिक्स में अब्दुल खालिक अपनी पिछली कामयाबियों को दोबारा दोहरा ना सके और अगले राउंड्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन रोम की नाकामी ने अब्दुल खालिक के जज्बे को खत्म नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपना तजुर्बा पाकिस्तान के नए एथलीट्स तक पहुंचाएंगे। 1965 से 1978 तक अब्दुल खालिक ने आर्मी, पंजाब और नेशनल लेवल पर एथलीट्स को ट्रेनिंग दी और नए स्प्रिंटर्स को सामने लाने में अहम किरदार अदा किया। यानी वो सिर्फ खुद नहीं दौड़े, उन्होंने दूसरों को दौड़ना भी सिखाया। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। अब्दुल खालिक का नाम पाकिस्तान की एथलेटिक्स हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। 10 मार्च 1988 को अब्दुल खालिक रावलपिंडी में वफात पा गए, मगर उनकी कहानी आज भी जिंदा है। हर वो नौजवान जो अपने ख्वाब को हासिल करने के लिए मेहनत करता है, हर वो एथलीट जो फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, वो अब्दुल खालिक की कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकता है। एक गरीब किसान का बेटा जो पाकिस्तान का चैंपियन बना, एक एथलीट जिन्होंने एशिया को अपनी रफ्तार से हैरान कर दिया और एक लेजेंड।

एंड जिनका नाम पाकिस्तान की एथलेटिक्स हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहेगा। अब्दुल खालिक पाकिस्तान के फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए लेजेंड, एक नए चैंपियन और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।

Assalamualaikum, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, and welcome to another tech update. भाई साहब, अपडेट में आपको चीजें मिलती रहेंगी और धड़ाधड़ आपको बताते रहेंगे. कभी कभार AI के बारे में बात करेंगे, तो कभी हम एप्स के बारे में, तो कभी हम गैजेट के बारे में, और खबरें तो इसमें रहेंगी रहेंगी. तो आज जो है मैं आपको बहुत ही मजेदार वेबसाइट बताने वाला हूँ. कुछ AI के भरोसे चलती हैं और कुछ जेन्युइनली बहुत कमाल की वेबसाइट्स हैं. सबसे पहले मैं एक AI, इट्स नॉट एन AI टूल बेसिकली, मगर ये ऐसा सर्च इंजन है जो आपके काम आएगा. रेडी? ओके. तो इसका नाम है playphrase.me. playphrase.me, playphrase.me. मैं सही बोला ना? हाँ, playphrase.me. तो ये जो वेबसाइट है, इस पे जब आप जाएंगे तो आपको सामने बहुत बड़ा एक सेक्शन नजर आएगा. उसमें वीडियोस फोटोज रन हो रहे होंगे और उसके नीचे लिखा आ रहा होगा टाइप. अब क्या होता है, कई मरतबा आप ये ढूंढ रहे होते हैं अपने वीडियो के लिए या अपने कंटेंट के लिए या जनरली कि किसी ने कोई डायलॉग बोला था. मान लीजिए मुझे ढूंढना है एक डायलॉग जहां पे हीरो ने बोला ये सब क्या चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल तो ये सब क्या चल रहा है, आपने उसके नीचे लिखा और फिर ये वेबसाइट जहां जहां वो बोला गया होगा फ्रेज, वो सेंटेंस आपको लाके दे देगा. जैसे कई मरतबा होता है ना कि व्हाट इज दिस, तो अगर आपने व्हाट इज दिस लिख दिया तो जहां जहां मूवीज में सीरीज में व्हाट इज दिस बोला गया होगा वो सब का सब आपके सामने लाके दे देगा. इट इज सच अ यूनिक थिंग टू डू. मुझे ऐसा लगता है कि ये वो काम आसान कर देगा जहां पे लोग मीम्स ढूंढ रहे होते हैं. समझ में नहीं आता यार कौन सा मीम था, यू जस्ट नो द वर्ड्स प्रोबेबली, या फिर हाफ एजर्ड वर्ड पता होते हैं लेकिन पूरा मीम नहीं पता होता. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जो आपकी कॉन्टेंट के लिए प्लग इन के तौर पर काम कर सकती है, playphrase.me. ओके, आगे बढ़े जी. चलो जी, अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं. तो अगली जो वेबसाइट है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नाम है इसका, बताता हूं फिर भी. sketch.metademolab.com. आई नो कंफ्यूजन है ना, स्केच टाइप करना है पहले. तो sketch sketch.meta उसके बाद demolab.com, metademolab.com. ठीक है, sketch.metademolab.com. जब आप टाइप करेंगे इसके बाद वेबसाइट खुलेगी. अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए आप ड्राइंग ड्राइंग बनाते हैं, आप अच्छी बनाते हैं, बुरी बनाते हैं, मेरी जैसी बनाते हैं, पहाड़ चढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. आप उस ड्राइंग को जब इसमें अपलोड करेंगे उसके बाद ये आपको पॉइंट्स देगा. उन पॉइंट्स को जरा आप ठीक ठीक करेंगे, अपनी जगह पे लगा देंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारा एनिमेशन मिलेगा. उनमें से कोई भी एनिमेशन आप अपनी ड्राइंग को दे सकते हैं जो आपने अपने हाथों से बनाई. बस ड्राइंग बनाई, उसका फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए, फिर देखिए क्या होगा. इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, इससे आप पूरे दिन खेल सकते हैं भाई. बोर्डम मिटाने की सबसे बढ़िया तरीका है, और स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, आपको कोई दोस्त है जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, या आपकी ड्राइंग लिटरली मेरी तरह है, तो भी आप एनिमेशन कर सकते हैं. दैट इज द बेस्ट पार्ट. तो ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली ऑन द लिस्ट. इसका नाम है sketch.metademolab.com. ओके, तो ये दो वेबसाइट्स आज मैंने बताई आपको, आपके बड़ी काम आ सकती हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूज़ दिस वीक. अब देखिए भाई, सब अपने अपनी चिप्स निकाल रहे हैं. कोई कह रहा है ये वाली चिप हम लेके आए, कोई कह रहा है वो वाली चिप लेके आए. इस बीच जो है एनवीडिया भी अपग्रेड कर रहा है अपने सिस्टम्स को. सो गेम्सकॉम 2026 जब हुआ इवेंट, तो एनवीडिया ने अनाउंस किया DLSS 4.5 रे रिकंस्ट्रक्शन और RTX मेगा ज्योमेट्री.

0: अब ये बेसिकली ग्राफिक्स को बढ़ाने की उनकी कोशिश है और रे ट्रेसिंग को बढ़ाने की. इट विल कॉस्ट अ बॉम्ब. तो देखते क्या होगा. फॉर नाउ ये थी अपडेट. मैं दोहा वाला कबीर. अगले अपडेट में मिलता हूँ. स्टे ट्यून्ड एंड दिल से देसी.
1: अपडेट. नया जमाना और अनप्लग गाने. दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें. छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से.
2: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील संडे टू थर्सडे 6 PM टू 7 PM ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी.
3: आप सुन रहे हैं FM 107.
4: FM 107. दिल से देसी.
5: स्कैम अलर्ट.
0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस. वेल दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, ये फ्रॉड बहुत आम है, लेकिन इतने नए तरीके से होता है ये फ्रॉड, या कहें इतने आम तरीके से भी ये फ्रॉड होता है कि अक्सर 95% लोग इन फ्रॉड्स में फंस जाते हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड वेरीफाई नहीं करते. और कई बार आपके बैकग्राउंड ना वेरीफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ हो ही गया हो, आपके साथ स्कैम भी हो गया हो, लेकिन चांसेस आर हाई कि ये आपके साथ फ्रॉड ही हुआ है, और ये है चैरिटी स्कैम. देखिए, आम तौर पे जो रोजमर्रा के कामों में लगे रहते हैं, जो ईमानदारी की कमाई करते हैं, वो चाहते हैं कि जब भी मैं चैरिटी करूं तो एक ऐसे शख्स के पास वो पैसे जाएं, वो एक ऐसे चैरिटी करने वाले लोगों के पास जाए जो असल में लोगों के फायदे के लिए, जो असल में लोगों का फायदा करें. वेल, आज हम जिस चैरिटी स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, ये बड़ा आम है, लेकिन फंसना भी इसमें बहुत आसान होता है, क्योंकि हम अपने दिल से चैरिटी कर देते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते. और सही मायनों में ये बड़ा गलत है. कई बार हम जिनको चैरिटी करते हैं, वो असल में आपके 100 रुपए दिए हुए चैरिटी में उसके सिर्फ 20 या 30 रुपए इस्तेमाल करते हैं, और 70 रुपए उन चैरिटी वालों के जेब में जाते हैं, क्योंकि आप सही से वेरीफाई नहीं करते. वैसे अगर देखा जाए, अगर आपने किसी शख्स को 100 रुपए दिए हैं, चैरिटी वालों को 100 रुपए दिए हैं, उन्होंने अगर 30 भी इस्तेमाल किए हैं, तो वो 30 एक्चुअली में स्कैम नहीं है, वो किसी की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन ये उनका तरीका होता है काम करने का. लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर्स हैं, चैरिटी स्कैम करने वाले हैं, जो 100 के 100 रुपए वो जब्त कर लेते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं और गायब हो जाते हैं. ये एक बेहद शर्मनाक धोखा है, जहां स्कैमर्स लोगों की मासूमियत, उनकी दान करने की आदत और मदद करने की जो आदत है, उनका गलत फायदा उठाते हैं. ये स्कैम्स आम तौर पर किसी बड़ी मुसीबत के समय, जैसे अर्थक्वेक में या फ्लड में, या हाई प्रोफाइल कोई परेशानी किसी को हुई हो किसी कंट्री में, तूफान आए हों, तो वहाँ उसके बाद अचानक जो बाढ़ आती है या परेशानी पैदा होती है, वहाँ ये स्कैमर्स अलर्ट हो जाते हैं. इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए उसके तरीकों और इसके सॉल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है. ये फ्रॉड कैसे होता है? स्कैमर्स जानते हैं कि लोग मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनका दिल बड़ा साफ है, इसलिए वो लोगों को इमोशनल करके अपना शिकार बनाते हैं. सबसे पहले फेक डोनेशन की वेबसाइट. ये लोग नकली डोनेशन वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस बनाते हैं. इन वेबसाइट के नाम और डिजाइन बिल्कुल मशहूर और असली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से मिलती जुलती रखी जाती है, ताकि किसी को शक ना हो. प्रेशर किया जाता है वाया फोन कॉल्स. फ्रॉडस्टर्स आपको फोन कॉल करके अचानक दुख भरी कहानियां सुनाते हैं, और आप पर तुरंत पैसे डोनेट करने का दबाव या प्रेशर भी डालते हैं कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आज फला बच्चे बगैर खाए सो जाएंगे, उनका घर टूट जाएगा, उनका ऐसा हो जाएगा, ये सारी चीजें. उसके अलावा जब वो पेमेंट लेते हैं तो वो अनट्रेसेबल होता है. अनट्रेसेबल मेथड के जरिए पेमेंट लेते हैं. स्कैमर्स आपसे कैश, गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टो करेंसी के रूप में डोनेशन मांगते हैं. इसका कारण, इसकी वजह है कि इन पेमेंट मेथड को एक बार भेजने के बाद ट्रेस करना या वापस पाना एक तरह से नामुमकिन हो जाता है. लेकिन इसके सॉल्यूशन भी हैं. कैसे बचा जाए इन तरीकों के स्कैम से? हमेशा ऑफिशियल टूल यूज करें, वेरीफाई करें हमेशा देने से पहले. किसी भी अनजान लिंक या एड पर क्लिक करके डोनेशन ना करें. अपने पैसे दान करने से पहले, देने से पहले, चैरिटी नेविगेटर, गाइड स्टार या गिव वेल जैसे ऑफिशियल और ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर जाकर चेक करें कि वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रियल में रजिस्टर्ड है या नहीं. कई बार उस फ्लड वाली जगह की वीडियोस बहुत ज्यादा आ रही होती सोशल मीडिया से, वहां से वो वीडियो उठाते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं और फिर एक वेबसाइट के जरिए प्रमोट कर दिया जाता है, स्पॉन्सर कर दिया जाता है उस वीडियो को, और कहा जाता है कि आप प्लीज डोनेट करें ताकि इन बेचारों की मदद हो सके। और यहीं पर होता है आपके साथ स्कैम, वाया पे वाया सिक्योर मेथड। हमेशा सिक्योर मेथड से पे करें। रियल और लीगल चैरिटीज हमेशा क्रेडिट कार्ड या सिक्योर चेक पेमेंट लेती हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर अगर फ्रॉड हो भी जाए तो आप अपने बैंक में डिस्प्यूट क्लेम कर सकते हैं। हाई प्रेशर के टैक्टिक्स को अवॉइड करें। डायरेक्ट डोनेशन बेस्ट है। किसी थर्ड पार्टी कॉलर या सोशल मीडिया मैसेज के बहकावे में आने के बजाय हमेशा उन मशहूर और बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे रेड क्रेसेंट है, यूनिसेफ है, उन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद ब्राउजर में टाइप करके ओपन करें और डायरेक्ट वहां से दान करें, वहां से पेमेंट करें, वहां से चैरिटी करें। इस तरह के जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि ये फ्रॉड अवेयरनेस एपिसोड जानकारी से भरा रहा होगा और आप नए जमाने के नए फ्रॉड से बचने के लिए तैयार होंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी आपसे कल इसी शो में जिसका नाम होगा फ्रॉड अवेयरनेस। दिल से देसी
4: स्कैम अलर्ट,
2: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की।
5: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल।
2: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों सुनना न भूलें शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
4: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।
2: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज हम बात करेंगे अर्निंग ग्लोबली एंड स्पेंडिंग लोकली। कितना इंटरेस्टिंग साउंड करता है ना। देखिए आज के मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में एक नया लाइफस्टाइल बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहा है जिसे हम और आप अडॉप्ट भी कर रहे हैं। इस लाइफस्टाइल को कहते हैं डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल उस लाइफस्टाइल की तरह है जो इंटरनेट की मदद से रिमोटली काम करता है और किसी एक ऑफिस या सिटी तक महदूद भी नहीं रहता। वो दुनिया के किसी भी मुल्क से अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को अक्सर अर्निंग ग्लोबली स्पेंडिंग लोकली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फिर कंपनी से इनकम अर्न करते हैं लेकिन अपने डेली एक्सपेंसेस उस जगह के मुताबिक करते हैं जहां आप रह रहे होते हैं। डिजिटल नोमैड बनने का सबसे बड़ा फायदा फ्रीडम है। पिछली जनरेशंस को ऑफिस जाना पड़ता था लेकिन आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से काफी जॉब्स ऑनलाइन हो चुकी हैं। फ्रीलांस राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजिटल मार्केटर्स, ऑनलाइन टीचर्स और कंटेंट क्रिएटर्स दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा यूरोप या अमेरिका की कंपनी के लिए काम कर रहा हो और किसी कॉम्पिटिटिव अफोर्डेबल कंपनी में रह रहा हो तो उसकी सेविंग पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई फ्रीलांसर एक इंटरनेशनल क्लाइंट से $3,000 पर मंथ कमाता है और उसे ऐसी सिटी में रहने का मौका मिलता है जहां लिविंग कॉस्ट रिलेटिवली कम है तो उसके पास ज्यादा पैसा सेव करना और इन्वेस्ट करने का चांस बढ़ता है। और शायद इसी वजह से बहुत से डिजिटल नोमैड्स ऐसे मुल्क को पिक करते हैं जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो और इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी हो। लेकिन ये लाइफस्टाइल सुनने में जितना अट्रैक्टिव है उतना ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी रिक्वायर्ड करता है। सबसे पहला चैलेंज जो इसका है वो है इरेगुलर इनकम। ट्रेडिशनल जॉब्स में तो
6: हमारी आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है, लेकिन फ्रीलांसिंग या फिर रिमोट प्रोजेक्ट

में इनकम हर मंथ डिफरेंट हो सकती है. कभी कम कमाया तो कभी ज्यादा कमाया और शायद कभी कुछ भी नहीं. इसलिए ये लाइफस्टाइल जो है वो बजटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल हमें और आपको सिखाता है. देखिए, बजटिंग का मतलब है हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को प्लान करें. स्मार्ट डिजिटल नोमैड्स हर मंथ अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे रेंट है, आपका फूड है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, इंटरनेट है, इन सब के लिए बजट एलोकेट करता है. जो पैसे बच जाए उसका कुछ हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना. इससे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाता है. देखिए, इमरजेंसी फंडिंग भी डिजिटल नोमैड फाइनेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि रिमोट वर्कर्स के पास हमेशा जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. इसलिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कम से कम 3 से 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस सेव करके रखे जाए. बस आपसे यही आखिर में जाते जाते कहूंगी कि डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल ट्रैवलिंग का नाम नहीं है. असल सक्सेस स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है. अगर कोई पर्सन ग्लोबली इनकम अर्न करे, लोकल लेवल पर वाइजली स्पेंड करे, रेगुलर सेविंग्स करे, इमरजेंसी फंड मेंटेन करे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करे तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत करीब होता है. लिहाजा डिजिटल नोमैड फाइनेंस का जो बेसिक रूल है वो ये है कि अर्न स्मार्ट, स्पेंड वाइजली, सेव कॉन्स्टेंटली एंड इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर. जो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ रिमोट लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लेते हैं वो सिर्फ दुनिया एक्सप्लोर नहीं करते बल्कि अपनी वेल्थ भी स्टेडली बिल्ड करते हैं. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए एक नई टर्म आपने सीखी ली और किस तरह से उसको समझा है और कितना अप्लाई करने वाले हैं आप ये मुझे बताइएगा जरूर 666-22-107 पर. फिलहाल आपसे इजाजत लूंगी, कल होगी मुलाकात. अपना ख्याल रखिए, देखते हो सुनते रहिए FM 106.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, थमने ना पाए। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: वबरकातुहू साथियों, इस वक्त एफएम 107 की घड़ी बजा रही है ठीक 10:02 और आप सुन रहे हैं यू मैटर विद सफा एंड
3: मावश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे, मजे में होंगे और हम आपके साथ रहने वाले हैं 11 बजे तक।
2: और भाई देखें, 11 बजे तक हमने जिस बारे में बात करनी है
3: टॉपिक मजे का है।
2: जल्दी से देखें ये, मुझे ऐसा लगता है मैं इसकी बिल्कुल बरक्स हूँ। जो टॉपिक है ना हमारा आज का, मैं बिल्कुल इसकी कंट्रास्ट में हूँ। व्हाई डू वी कीप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। और मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में जब आपने किसी चीज़ को डिसाइड कर लिया ना कि मुझे वो काम करना है, चाहे वो किसी की डांट लगानी है, चाहे किसी की कुटाई लगानी है, चाहे

0: अच्छा मेरा भी बिल्कुल यही मामला है, मेरा भी यही मामला है,
1: बोल के खत्म करो।
0: मेरी ना मुझे लगता है मेरी फितरत में तो बहुत ज्यादा ना जल्दबाजी है, मतलब मुझे ये होता है कि यार कोई चीज हुई है और बस ये हो जाए, बस मैंने सोच लिया अब ये हो जानी चाहिए।
1: डेडलाइन कुछ लोगों की डेडलाइंस होती है ना, उनके लिए वेट नहीं करना। कुछ लोगों के अपने प्लान्स होते हैं कि भाई मैं फलानी चीज ऐसी होगी तो ऐसा करूंगा। भाई कुछ लोग तो 6-6, 8-8, 10-10 साल जिंदगी के सिर्फ प्लान में लगा देते हैं कि ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे।
0: और मतलब अगर देखा जाए तो हमारी तो पूरी कौम इसी शुगल में चल रही है, बैठ के ख्वाब देखे जा रहे हैं, ख्वाब देखे जा रहे हैं, ख्याली पुलाव बन रहे हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा उसके ऊपर। लेकिन खैर जी, अच्छी मतलब आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम आपको समझा दें। आज हम बात इस बारे में कर रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है कि हम आज की चीज़ को कल पे टालते रहते हैं, या फिर हम परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं कि वो टाइम आएगा तभी मैं करूंगा, तभी मैं ये करूंगी, उससे पहले नहीं।
1: अच्छा मजे की कितनी बात है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लोग जो है ना वो अपने खौफ को, अपने डर को ना प्लानिंग के पीछे छुपा लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है गहरी सोच है। मैं ये नहीं कहती कि हर कोई इसके ऊपर मुत्तफिक हो, और मैं ये नहीं कहती कि हर किसी को इम्पल्सिव डिसीजंस लेने चाहिए, लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्या परफेक्ट टाइमिंग जैसी कोई चीज होती है?
0: नहीं,
1: मुझे तो नहीं लगता।
0: Exactly.
1: और कौन कौन मेरे साथ इस बात के ऊपर आमादा है कि कोई परफेक्ट नाम की चीज, परफेक्ट टाइम नाम की चीज होती है? नहीं। और कौन कौन इस बात पे अग्री करता है कि हाँ होती है, होती है। कुछ चीजों में मानती हूँ, मैं कहती हूँ बहुत बहुत कम चीजें ऐसी होंगी जिनके अंदर कोई परफेक्ट टाइमिंग नाम की चीज होगी। तो लेकिन मोस्टली हमारा जो फेलियर का डर होता है ना, ये बड़ी डेंजरस चीज होती है, वो हमें कभी ट्राई नहीं करने देता। हमें हमेशा कहता है नहीं नहीं अभी टाइम है। रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आज मैं बैठी भी सोच रही थी, आज घर में ऐसी डिस्कशन हो रही थी, कल परसों से हो रही है, या मैं यूं कह लूँ कि एक महीने से हो रही है कि भाई कुछ काम करना चाहिए, अपना कुछ काम होना चाहिए इंसान के हाथ में। तो होता है कि आप मार्केट सर्च करते हो, ये वो करते हो, फिर आप कहते हो नहीं मैं प्लान करता हूँ ना, मैं प्लान करता हूँ। अब वो मेरी जो प्लानिंग है ना वो पिछले 6 महीने चल रही है। अब मुझे हर चीज़ में ना मीखें निकालनी है कि नहीं इसके अंदर ये मार्केट ये वाली ऐसी नहीं चल रही, नहीं ये मार्केट यहाँ की नहीं है, नहीं ये काम यहाँ नहीं हो सकता। एक्चुअली में मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रॉब्लम ये चल रहा है, जैसे मैंने कहा ना कि हमारा, हम अपने डर को परफेक्ट प्लानिंग का नाम दे देते हैं। मैं अपने आप से
0: टाइमिंग के इंतजार का नाम देते थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल।
1: मैं ये कह रही हूँ कि भाई मुझे टाइम चाहिए। जिसने करना होता है ना वो प्लानिंग तो आप सही है, करो, लाजमी है प्लानिंग, लेकिन वो जो टाइम हम कहते हैं ना, नहीं मुझे 6 महीने चाहिए, मुझे 8 महीने चाहिए, कुछ चीजों में इतना टाइम नहीं चाहिए होता। वो सिर्फ हमारा एक जंप मारने की, जो हमें डर लग रहा होता है ना जंप मारने में, वो हमें खा जाता है।
0: एग्जैक्टली, मतलब इसी तरह का मामला है कि जब ये परफेक्ट टाइमिंग अगर देखी जाए ना, तो मेरा ये मानना है कि वो वक्त जिस वक्त आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं, और जिस वक्त आप बिल्कुल पक्का अजम कर लेते हैं कि ये काम मैंने करना ही करना है, वो आपका परफेक्ट टाइम होता है। अच्छा, उसमें कुछ लोग ये कहेंगे, जैसे भी तुम कह रही हो कि प्लान मतलब करने में लोग इतना इतना टाइम लगाते हैं, तो ये मतलब आप इसको भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि आपने स्टार्ट ले लिया कि जहाँ पे आप ना, अगर इनकेस हम बिजनेस की बात करें तो वहाँ पे मार्केट देखना, ये देखना, सर्वे वगैरह करना, चीज़ों का जायज़ा लेना कि भाई जो चीज़, जो आइडिया आपका है वो अगर आप लॉन्च करते हो तो क्या वो सक्सेसफुल होगा भी। लेकिन अगर आप ये काम भी शुरू कर देते हो, इसको भी बाकायदा, मतलब ये भी एक काम है, ज़रा सही अच्छा तफसीली काम है, तो इसका मतलब है आपने पहला कदम तो उठा लिया, तो वो पहला कदम बड़ा जरूरी होता है
1: ये चीज़। लेकिन हम उस पहले कदम में बताए कि हिचकिचा रहे होते हैं। तो भाई आपसे सवाल ये है कि जरा हमें बताएं कि आप एक्चुअली परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं, या फेलियर के फियर को पोस्टपोन करने के लिए परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हैं कि भाई परफेक्ट टाइम आएगा, पोस्टपोन कर रहा हूँ। आप हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर, मैसेज के नंबर है 666-22107,
0: और कॉल कर सकते हैं 4434-3377 पे। तो कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, हमारे साथ शामिल होइए यू मैटर्स में। हम आपके मुंतजर हैं कि आप हमें बताएं कि आपने जिंदगी में कितनी दफा परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार किया, और आपका परफेक्ट टाइम आया कि नहीं आया।
1: खास तौर पे वो जो जिम जाने का टाइम है ना, वो जो मैं पोस्टपोन कर रही हूँ ना, मुझे पता है मेरे साथ 36 और कर रहे हैं।
0: 36, 3600
1: भाई ये बताओ एक्सरसाइज कब से स्टार्ट कर रहे हो? टाइम मिलेगा तो करेंगे ना भाई, टाइम मिलेगा तो करेंगे। कोई नई स्किल सीखनी होगी, टाइम मिलेगा तो करेंगे ना, टाइम मिलेगा तो।
0: टाइम कहाँ जा रहा होता है? गेम्स खेलने में, मूवीज देखने में, इस तरह से सारा टाइम बर्बाद हो रहा होता है।
1: मेरे पास ना अभी तकरीबन 10-12 वॉल्यूम पड़े हुए, मैंने बड़ी शौक से ना खरीदे वो हदीसों की वॉल्यूम्स खरीदे मैंने। तो अभी तक सिर्फ आधी, वन फर्स्ट वॉल्यूम का आधा, आधे से भी कम मैं पढ़ पाई हूँ।
0: बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है।
1: उसके

0: प्रायोरिटीज की भी बात होती है ना, कि आप अपनी किसी भी चीज को प्रायोरिटी बनाओ, तरजीह दो, तो फिर उसके बाद फिर आप उस चीज को लेके चल सकोगे। खैर जी, इससे पहले कि हम आपकी मतलब कॉल लें, हम चलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, सुनते रहे एफएम 107 दिल से देसी।
1: ओ चन्न दी कुड़ी, ओ चन्न दी कुड़ी।

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: राइट, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं यू मैटर्स और हम एक दफा फिर आ गए आप लोगों के साथ और आपके मुंतजर हैं। कॉल कैसे कर सकते हैं
3: भाई? कॉल ऐसे कर सकते हैं कि आप हमें जो है वो कॉल करेंगे 4434377 पर। द नंबर फॉर कॉलिंग इज 4434377 और चाहें तो हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। मैसेज के लिए नंबर है 666-22107
2: और मुझे लग रहा है कि सब लोग परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार कर रहे हैं कि परफेक्ट टाइम आएगा तो फिर हम कॉल मिलाएंगे। और परफेक्ट टाइम आते आते 11 बज जाएंगे, हम चले जाएंगे, तो इसलिए जल्दी से कॉल कर लीजिए भाई। हम इंतजार कर रहे हैं आपकी कॉल का, जल्दी से आइए, शामिल हो जाइए और बताइए कि आपने क्या, आपकी भी यही एक्टिविटी रहती है, यही आपकी हैबिट है एक तरह से कि आप परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं और फिर वक्त गुजर जाता है और फिर आप ये सोच रहे होते हैं
3: काश मैंने कॉल कर ली होती।
2: हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल।
3: अच्छा, कितने सारे हमारे साइलेंट लिसनर्स हैं जो परफेक्ट टाइम का इंतजार करते होंगे, कहते होंगे कि अच्छा किसी दिन करेंगे, किसी दिन ऐसा टॉपिक हुआ तो हम बात करेंगे और कॉल करेंगे, लेकिन चुप करके सुनते रहते हैं। देख रही हूँ मैं, समझने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है ऐसे बहुत सारे बैठे हैं मार्केट में जो जिनके तो हिम्मत नहीं है, परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे होते हैं। अच्छा, परफेक्ट टाइम में जो है ना एक्चुअली होता ये है कि
2: कॉल आ गई, अब हम इनको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते क्योंकि इन्होंने समझ लिया कि ये टाइम है इनका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
2: जी शहजादा सलीम
4: जी, सफा मैम कहाँ है? सफा मैम
2: कहाँ है?
3: मैं यहाँ हूँ, यहाँ मैं जो ना वो शाहरुख खान वाली एक्टिंग तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम गाना तो
2: करना भी नहीं, वरना माइक इधर उधर हो जाएगा।
3: बर्दाश्त के लायक इतना तो गा ही सकती हूँ।
4: आज आपने बोला नहीं
3: होशियार। नहीं, मैं वो जरा शाहरुख खान मोड में चली गई थी ना। कैसे हैं
4: आप? बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह।
3: आपका वीकेंड कैसा गुजरा?
4: अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजरा,
2: जबरदस्त ग्रेट।
3: अच्छा भाई, आज हम सवाल ये कर रहे हैं कि जरा आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है परफेक्ट टाइम जैसी कोई चीज होती है?
4: परफेक्ट टाइम कॉल मिला नहीं थी, इसके अलावा
2: नहीं, इसके अलावा
3: परफेक्ट टाइम जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना।
2: वैसे शहजादा सलीम तो कॉल मिलाने की टिप भी दे सकते हैं।
4: बिल्कुल होती है ना, परफेक्ट बोले। मैं तो पहले जाऊंगा अपने खाने पे जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल खाने पे,
3: खाने की टाइमिंग होती है।
4: मैं खाने का शौकीन हूँ, इसलिए कि देखो अभी अगर बिरयानी दम हो रही ना, उसके अगर परफेक्ट हो 15 मिनट उतारना है, अगर आप पास पहले 10 मिनट उतार दिया तो जो चीज जो जायका चाहिए था हो सकता है आपको ना मिले हो।
3: इन्होंने सरवर भाई वाली बात कर दी है।
4: हाँ जी, अगर आपके 15 मिनट और आपने उसको 20 मिनट तक रख दिया तो जाहिर सी बात है नीचे कुर्सियां नहीं मिलेगी लास्ट।
2: हाय हाय हाय, ओके, दम मतलब प्रॉपर होना चाहिए। हाँ
4: तो एकदम प्रॉपर, और प्रॉपर का जो आपका जो जजमेंट है ना, हजारों मजार आपका जजमेंट जिस तरह से आपको इतना परफेक्ट कॉन्फिडेंस है कि मैं अभी बस निकला ही हूँ और मैं बस वहाँ पर पहुंचूंगा, ऑन द वे में मैं उसको कलेक्ट करूंगा मेरा जो भी सामान जो भी चीज है, क्योंकि टाइम की बड़ी अहमियत होती है ना। तो सबसे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस और इतना बेहतरीन मतलब ये यकीन होता है ना कि मैं यहाँ से शुरू किया और वहाँ पहुंचा, वहाँ से वहाँ तक मेरा ये पूरा परफेक्ट है ना खत्म हो जाएगा। इसमें ये टाइम मेरे पास ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर जो परफेक्ट जिस चीज जब जब ये जो काम है ना वो अपने हिसाब से मैनेज करके प्लानिंग करके और स्टार्ट टू एंड और एक गुड मतलब रिजल्ट, एक अच्छा परफेक्ट इस तरह से। हाँ इस तरह से है, और कई दफा जजमेंट टूट जाता है और कॉन्फिडेंस भी मतलब डगमगा जाता है और कुछ आप जो गेस करते हैं वो नहीं हो पाती है। एग्जांपल अगर आपने अगर 10:15 पे कोई चीज पिकअप करना हो और आप बोले 15 मिनट का एस्टिमेशन है, लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसा वहाँ पे बीच में ब्लॉक ऐसा क्या कि वो 20-30 मिनट हो गए और वो मिस हो गया, बंदा इंतजार करके चला गया, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं चीजें ना कर देते। हाँ बेहतर ये, हाँ जी जी बेहतर है कि थोड़ा सा 5 मिनट पहले रिपोर्टिंग कर दो और जो परफेक्ट बोलेंगे एकदम एग्जैक्ट परफेक्ट पे नहीं जाओ, अगर पहले है और कहीं होता है कि देर आए दुरुस्त आए कि बंबई लेट पहुंचा था, मैं भी अभी पहुंचा, वो भी, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन टैली हो
2: जाए. सलीम ने जो टॉपिक को घुमाया है और जिस तरह से कि अपने जो है ना ड्राइविंग शेड्यूल के हिसाब से लेके चल रहे हैं इसको,
3: अंदर अंदर की बातें बता रहे हैं, अंदर की बातें. दिल में जो था ना, जो कोई सुन नहीं रहा, वो कह रहे मेरी सुन लो, आज मैं बोलना चाहता हूँ,
2: आज मैं बोलना चाहता हूँ. चले नहीं, गुड हो गया शायद सलीम.
4: डेली का ना ये ऐसा कुछ होता है ना, मतलब क्या, सभी मतलब पहले मिले खड़ा रह गया तो ना, पांच सात दिन कभी निकल गए ना, वो जो बंदा तो उसको पिकअप करना ही है, क्योंकि उस टाइम पर है ना एक्सीलेटर पे जरा ज्यादा दबाव आ जाता है, जल्दी से मतलब वो बेचारा गाड़ी में थोड़ी सी जाने
2: तो डाली. आज तो लेट नहीं हुए ना आप कहीं पे? चलिए गुड हो गया सलीम, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए.
4: ठीक है, लोगों का चांस.
2: चलिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज.
4: जरूर याद करो,
2: गोभी दे फॉलो, जरूर बोला. चले भाई, चले जी. तो हमारे साथ शहजादा सलीम और इसके साथ ही हमारे साथ एक और कॉलर है. अच्छा, एक दफ़ा फिर टॉपिक हम दोहरा देते हैं. हमने ये पूछा है कि आपका जो वो वाला सीन है ना, कि मतलब हम टालते रहते हैं चीज़ों को कि ये काम करना है, शुरू करना है. अब समझे कि कोई अगर सोच रहा है कि उसने कुरान शुरू करना है, ठीक है, मतलब वो चाह रहा है कि वो रोज़ाना पढ़ना शुरू करे, लेकिन ये होता है कि वो हम सोचते रह जाते हैं, वक्त नहीं आ रहा होता, या हमें लग रहा होता है कि वक्त नहीं मिल रहा, तो उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
3: जी, कौन है हमारे साथ?
5: जी, मैं शोएब बात कर रहा हूँ, आप कैसे हैं?
3: बिल्कुल ठीक ठाक हैं शोएब भाई. क्या मतलब गरारे कर आए हैं?
2: आवाज बिल्कुल चेंज लग रही
5: है. जी आज देखो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है. किसी अच्छे काम के लिए निकला हूँ आज.
3: अल्लाह ताला आपके मामला
2: सोच ही रहे हैं पक्का के 100% इंशाल्लाह अल्लाह ताला की रजा से काम मेरा होगा ही होगा, इंशाल्लाह होगा,
5: इंशाल्लाह.
3: जैसा गुमान रखेंगे वैसा ही होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. अच्छा अच्छा,
5: परफेक्ट टाइमिंग का भी इधर भी प्रॉब्लम हो गया ना मैम.
2: बिल्कुल
3: बिल्कुल. अच्छा भाई, ये बताएं आपका परफेक्ट टाइमिंग के बारे में क्या ख्याल आते हैं?
5: मैं टाल देता हूँ समझा अभी की आप मिसाल देता हूँ. देखिए मैं काफी टाइम से मतलब आ रहा हूँ, 5 साल से मैं कतर में हूँ, और एक प्लेस है जहाँ से मैं एवरीडे गुजरता था, तो मतलब मैं सोचता था कि यार मुझे यहाँ पे काम करना है, मेरे को यहाँ पे जॉब करनी है. अब मैंने वैसे ही मजाक में ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दी, और देखो मेरे पास इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ गई.
2: वाओ, और
5: आज जी, और आज मेरा इंटरव्यू है.
2: इंशाल्लाह आपका जरूर. अब तो हम और दिल से दुआएं कर रहे हैं कि एक जगह को आप देख के जा रहे होते थे, चाह रहे होते थे, तो इंशाल्लाह ताला. और इसे कहते हैं ना, मतलब आप जो चाह रहे होते हो ना उसके ऊपर वाकई अगर हम इम्प्लीमेंट कर लें तो वो चीज़ हमें मिल जाती है, और इंशाल्लाह मिलेगी आपको, जरूर मिलेगी
5: इंशाल्लाह. अब वही परफेक्ट टाइमिंग की बात आते हैं मैम. मैं रात गया, मैंने सोचा यार थोड़े से न्यू क्लोथ्स ले लेता हूँ, इंटरव्यू के लिए अच्छा इंप्रेशन होगा, थोड़े फॉर्मल एकदम न्यू एकदम फ्रेश हुए. तो अब मैं रात गया, मैंने एक पैंट ली, एक शर्ट ली, और शर्ट को जैसे अभी सुबह मैंने ओपन किया, मैंने रात ओपन नहीं किया था, अभी ओपन किया तो उसके दो नीचे के बटन गायब.
3: लो, वेरी गुड.
5: अभी मैं मतलब सोच रहा हूँ कि आज मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग लेके चलूंगा, एग्जैक्टली 10-15 मिनट्स पहले ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन शर्ट के बटन नहीं है. मैं करूँ क्या? फिर मैंने अपने वाइफ से बोला यार क्या करूँ, मैंने पुरानी शर्ट पहन लू? क्या बोलती नहीं आज नहीं पहन के जाओ. मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैं सीधा डायरेक्टली जहाँ से लिया वहीं पे गया, वहां पे मैं उसको बोला मैम मुझे अभी चेंज करके तो प्लीज, बहुत अच्छी है.
3: उनके ट्रायल रूम में ही जाकर चेंज करके आ जाते
5: हैं, वहीं से चेंज करके पहन के अब निकला हूँ.
3: बस सही है, इन्होंने मेरे वाले काम
2: है, इन्होंने
3: इन्होंने मेरे वाले काम किए. क्या कहते हैं शोएब भाई, मैंने भी ये काम किए हैं, ये मेरे साथ भी हो चुका है, तो मैं समझ सकती हूँ.
2: भाई टैग तो निकाल लिया ना.
3: मैं तो टैग समेत पहन के गई थी, लोग बता रहे होते हैं टैग मेरा. अरे भाई मेरा अक्सर ऑफिस में ऐसा मामला होता है.
5: मैं पूरा श्योर नहीं हूं, मुझे पैंट का टैग देख.
3: ये होता है भाई, ये हकीकत है, ये हकीकत है. ये इस बात पर हम में से 50,000 लोग अग्री करेंगे कि ये हम में से 50,000 लोगों के साथ हुआ होगा.
2: होता है.
5: ये परफेक्ट टाइमिंग का मैच अपन से नहीं होगा मैम. हो सकता है कि हाँ देखो मिलिट्री जो डिसिप्लिन के साथ चलते हो तो परफेक्ट टाइमिंग के साथ चल सकते हैं, लेकिन हम लोगों की लाइफ ऐसी है कि बहुत मुश्किल है.
3: हम लोग ऑन द टोस चलते हैं, ऑन द टोस. हम कितना भी स्केड्यूल कर लें, ہم کتنا بھی اسکیجول کر لیں شعیب بھائی, لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے, وہ ایک جھنڈ ہوتی ہے. صحیح, لیکن بھائی دیکھیں ہم جیسے لوگوں کا بھی نا جگرا ہوتا ہے, ہم ہر چیز ہینڈل کر لیں, لکڑ ہم پتھر ہم لوگ ہیں شعیب بھائی, ہم
2: آپ اللہ تعالیٰ سے گمان پورا اچھا رکھو تو ان شاء اللہ تعالیٰ اچھا ہی ہوگا. ان شاء اللہ ان شاء اللہ بہت اچھا اچھا سوچ کے جائیں, سب کچھ ان شاء اللہ اچھا ہوگا, پھر ہمیں خوشخبری دیجیے گا.
5: میرے اندر ایک عادت ہے, میں ہر وقت میں نے ایک دن آپ اوور تھنکنگ کے بارے میں بات کر رہی تھی نا,
2: جی جی جی جی,
5: میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جی جی اگر اوور تھنکنگ یا کوئی بھی تھنکنگ کرتا ہوں وہ میرا جو وے ہوتا ہے وہ پازیٹو ہوتا ہے. ابھی بھی میں پتا کیا سوچ رہا ہوں, میں لیٹ ہو چکا ہوں اراؤنڈ 30 منٹس, میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کی اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی
2: ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی, اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے.
5: ہاں ہوتا بھی ایسا ہی ہے, اس میں کچھ نہ کچھ اللہ کی کچھ نہ کچھ مطلب ایسی بہتری ہوتی ہے کہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے. ابھی میں صبح 8 بجے سے اٹھا ہوا ہوں, تک 8 بجے سے پہلے سے, اور کوشش کر رہا ہوں, لیکن دیکھو پھر بھی آج میں نے پرفیکٹ پلان بنایا تھا
3: میں صبح 4:30 بجے سے اٹھی ہوئی ہوں, میں نے ہر کام رات کو ہی اپنا پرفیکٹ کر کے رکھ لیا تھا, لیکن آج اس کے باوجود میں لیٹ ہوئی ہوں. تو یہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو چلیں کوئی بات نہیں, ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کے لیے اچھا, دیر از نتھنگ لائک پرفیکٹ ٹائمنگ. اور شعیب بھائی اور میرے جیسے لوگوں کے لیے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس دن پلان کر لیں نا اس دن ہی سب کچھ الٹا ہونا ہوتا ہے.
5: میں اسی لیے پلاننگ کرنی بند کر دی ہے,
3: میرا بھی یہ حال ہے شعیب بھائی, اب اپنے سے کوئی توقع نہیں ہے. اب ہم نے
5: میں ابھی کیا کرتا ہوں, میم سوری میں ڈسٹرب کر رہا ہوں آپ کو, میں ابھی ایک دم ایمرجنسی میں پلان بناتا ہوں, بالکل
2: ایمرجنسی.
5: میری وائف مجھے بول رہی تھی کہ مجھے مووی دیکھنی ہے, اب میں اس کو 1 مہینے سے ٹال رہا ہوں, میں چلو ٹھیک ہے چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلیں گے, ابھی ویکینڈ پہ تو میں اس کو پک کرنے کے لیے گیا اور رات کے 11 بج رہے تھے, میرا دماغ میں ہے یار چلو ٹھیک ہے آج مووی دیکھ لیتا ہوں, رات کو 11 بجے مطلب میں نے بیوی اپنی وائف کو پک کیا, میں چلا آج تیرے کو موڈ اچھا کروا دیتا ہوں چلو آج مووی دیکھتے
2: ہیں,
5: بڑھیا بس پلان, پوری رات باہر رہے تو آؤٹنگ شاؤٹنگ ہو گئی تو اپنا وہ بھی خوش میں بھی خوش.
3: چلیں صحیح ہے, سیٹ ہے, آپ کو پارٹنر بھی ایسا ایڈونچرس ملا ہے تو لائف اچھی گزرے گی انشاءاللہ.
2: انشاءاللہ چلیں جی شعیب بھائی, آپ جائیے خیر خیریت سے اور انشاءاللہ تعالی انٹرویو اپنا دیجئے اور پھر ضرور بتائیے گا, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. چلیں جی اللہ حافظ.
3: تھینک یو, اللہ حافظ.
2: رہی جی تو شعیب صاحب چل پڑے ہیں منزل کی طرف اپنی,
3: اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اجتماعی دعا کرو جتنے سن رہے, گوبھی دعا پھولو, چلو سب کے سب اجتماعی دعا کرو, ہاتھ اٹھاؤ
2: ایک جگہ سے بندہ بھائی گزر رہا تھا اتنے عرصے سے اور سوچ رہا تھا تو وہاں تو پکا ہونا ہی چاہیے, میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکوں گی کہ ان کا نہ ہو, ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور ہو. ہیلو السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام, کیسے ہو, ٹھیک ٹھاک ہے؟
2: الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیا حال چال ہیں آپ کے آج؟
6: میں الحمد للہ بالکل ٹھیک ہے, صفا میم آپ کیسے ٹھیک ہے؟
3: الحمد للہ الحمد للہ, اللہ کا کرم ہے میرے بھائی, آپ بتائیں زندگی کیسی گزر رہی ہے, ویکینڈ کیسا گزرا؟
6: ویکینڈ تو میرا بہت بورنگ تھا.
3: بورنگ تھا؟
6: جی جی,
3: ہم سے ملاقات نہیں ہوئی نا,
6: ہمارا دوست چلا گیا پاکستان.
3: ارے
6: گاڑی خراب تھا, گراج میں کھڑی تھی.
3: سب سے بڑا دکھ, چلیں دوست تو انشاءاللہ آ جائے گا, ملاقات ہو جائے گی, یہ جو گاڑی کا چکر ہوتا ہے نا سنائیے میں جا کے جب گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو میں سمجھ سکتی ہوں میرے بھائی, میں سمجھ سکتی ہوں.
2: ویکینڈ پہ کچھ کرنے کو نہیں تھا, یعنی ویکینڈ پہ کچھ ادھر ادھر جانے کا موقع نہیں ملا.
6: نہیں وہ دوسرا گاڑی تھا بھائی کا,
2: ہاں ہاں, پھر
6: لیکن اپنا گاڑی تو نہیں ہوتا ہے نا, پھر بھی ٹینشن ہوتا ہے نا آدمی کو,
3: سنائیا کے چکر کاٹنا بہت عذاب دے.

0: कल मैं दो दफा सने यकी आऊँ।
1: ओ मेरे भाई, हिम्मत है आपकी भाई, हिम्मत है।
0: दोस्त नहीं था जो दोस्त हो, जो तुम्हारे साथ होता है वो भी नहीं होता है, तो फिर बोरिंग होता है।
2: सही,
1: अकेले वहाँ पे जाना भी ना एक अजाब होता है। अकेले जाने को दिल नहीं करता वहाँ पर कोई ना कोई कंपनी चाहिए, नहीं तो बंदा वैसे ही पक जाता है। एक तो गाड़ी की टेंशन, ऊपर से गर्मी, ऊपर से जना 36 और गाड़ी के और 6 काम निकल आते हैं। आप एक के लेकर आते हो, 6 काम और निकल आते हैं।
0: बिल्कुल सही।
1: चलें, कोई बात नहीं, देर आर ऑलवेज डेज लाइक दिस, ऐसा होगा, होता है, शहजादी रखी।
2: आप बताएं भाई, परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते हैं, आप परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं कोई काम करने से पहले, या फिर जो दिल में ख्याल आता है कर गुजरते हैं?
0: भाई अगर आपको बोलूंगा आपको अब ऐसे आएगा,
2: बताएं।
0: 8 साल हो गया कि मैं बोल रहा, दिल में सोचता हूँ, बोलता हूँ कि मैं आज जिम जाएगा। 8 साल पूरा,
2: 8 साल हो गए
1: मेरे भाई। मैं पिछले 3 साल नहीं, 2.5 साल तो हो गए मुझे सोचते हुए।
0: मेरा तो 8 साल पूरा हो गया। मेरा भतीजा था, वो कनाडा में रहता है, पढ़ने के लिए गया है, वो इधर आ गया, उसने जिम ज्वाइन किया, फिर वो चला गया। अभी वो भी कल भी मैसेज किया कि तुम जिम नहीं ज्वाइन करते, हम देखो हम कनाडा में भी ज्वाइन किया, तो कतर में भी कर रहा था, इधर भी कर रहा था, तो हम इसमें 8 साल गुजारा
2: है। वो तो आपको इंस्पिरेशन देकर भी चला गया, फिर भी आपने ज्वाइन नहीं किया। सही, तो ये वाला सीन चल रहा है मदद सर के साथ।
1: जी, तो भाई मतलब ये उन लोगों में से हैं जो टाइम पीछे चल रहा है, नहीं, हाँ टाइम इनके पीछे भागता हुआ आ रहा है कि प्लीज मुझे टाइम दे दो, ये ना दे रहे टाइम।
0: सही बात है।
1: चलें ठीक है, आप भी मेरे जैसे लोगों में से, बस
2: अब आप ले ही लें, आप जाएं जाके मेंबरशिप आप ले ही लें, आप आज के बाद, ठीक है?
0: इंशाल्लाह
2: चलें जी, जरूर जाइए, इंशाल्लाह शुरू कीजिए। चलें जी मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़। जी, तो हमारे साथ मदरसे थे, जिम ज्वाइन करना चाह रहे हैं 8 साल से, लेकिन 8 साल हो गए इन्होंने जिम नहीं ज्वाइन किया। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं किसी परफेक्ट टाइम का? अच्छा, ये भी होता है बाज़ औक़ात, मतलब हम जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फंसे हुए होते हैं, कोई हमारा मनपसंद काम होता है, कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि उसकी वजह से नहीं पूरी कर पा रहे होते। जैसे कि अगर हम बिज़नेस के हवाले से बात करें, तो बहुत सारे लोगों का डर ये भी होता है कि अभी मतलब अगर चलो जॉब कर रहे हैं, कुछ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर इन केस कुछ हो गया, मिसहैप हो गया,
1: तो फिर कौन वो पकड़ेगा कौन? लेकिन मेरा मानना ये, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप एक दफा छलांग मारो कुएं में, तैरना सीख ही जाओगे।
2: मतलब खासतौर पर इस तरह के जो काम थोड़े बहुत फेलियर्स तो आते हैं सिखाने के लिए, लेकिन ये कि उनसे इतना डरना नहीं चाहिए।
1: सही, बिल्कुल सही। तो भाई हमें आप कॉल कर सकते हैं 4434377 पर, और चाहें तो मैसेज भी भेज सकते हैं 6622107 पर। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं असमत बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप दोनों? खैरियत हैं?
2: बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं भाई आप?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आप दोनों खैरियत हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
3: पहले तो वेलकम आप दोनों को इस नए शो में,
2: बहुत शुक्रिया भाई।
3: अच्छा शो जा रहा है आपने का, मैंने आज से सुनना शुरू किया, मुझे बेसिकली पता नहीं था।
2: अच्छा,
3: ये तो फिर मैंने जी ये तो मैंने फिर पोस्ट देखी इस पे इंस्टा पे।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो फिर मुझे अच्छा ये शो होने लगा है, तो फिर आज मैंने स्टार्ट किया है।
2: सही सही,
1: मतलब सोशल मीडिया वाली टीम को जो है जाकर थैंक यू बोलना पड़ेगा।
3: जी जी जी,
1: इंशाल्लाह
3: ऑल द बेस्ट आप लोगों के शो के लिए। अच्छा शो जा रहा है इंशाल्लाह,
1: कहीं नहीं जाएं आप हमें ये बताएं कि आप बिलीव करते हैं इस चीज के ऊपर कि हर चीज का परफेक्ट टाइम होता है?
3: जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ इस बात पे, और क्योंकि मैं इसका हवाला दूंगा कुरान से।
2: सही सही
3: जी, अगर कुरान कह रहा है कि परफेक्ट टाइम है, तो फिर मैं कौन होता हूँ कि नहीं है?
1: नहीं, वो तो अल्लाह ताला के फैसलों पर
3: है ना। सूरह अल-असर पढ़े, इसमें पहली आयत में है वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर। ठीक है, अल्लाह क्या कह रहे हैं? अल्लाह वक्त की कसम खा रहा है। ठीक है, अब वक्त जो है ये हर वक्त ही परफेक्ट है हमारे लिए। ठीक है, इसका ये इंतजार हमें नहीं करना चाहिए कि हमारा परफेक्ट वक्त आएगा। हमारा परफेक्ट वक्त एनी टाइम होता है।
2: सही, गुड।
3: ठीक है, ये जो वक्त है ये एक वो है ना, एक एग्जाम्पल देते हैं इसके हवाले से कि ये एक बर्फ का जो एक वो टुकड़ा

0: होता है, क्या कहते हैं, एक जो ब्लॉक होता है, ये वो है, ठीक है. अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे करेंगे तो हम इसका फायदा उठाएंगे. अगर ये हमारे हाथों से फिसल गया तो बस ये पानी बन गया, ठीक है, ये माया बन गया.
1: अच्छा, हमें पहले लग रहा था कि आप ये बात कर रहे हैं कि नहीं, आप परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन आपके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, परफेक्ट टाइम जो है वो कोई भी होता है. हाँ, सही सही, बिल्कुल सही.
0: मैं इस हवाले से कह रहा हूँ. और इस पे मेरे कुछ अर्सा पहले ये आपका जो पिछला शो था डेयर फैमिली में आप अपने मतलब आपके साथ ही हम सुनते आ रहे हैं आपको. आप हमेशा एक बात करती हैं कि मैं एक मैवी सिस्टर आपकी बात कर रहा हूँ, तो आप कह रही हैं कि मतलब मैं हर काम मतलब वक्त से पहले करती हूँ, ठीक है. तो उस पे एक दिन मैं रात को वॉक पे निकला, तो मैं सोचता हूँ फिर बाद में चीजों पे, तो फिर मैं मोबाइल में जो नोट्स होते हैं उस पे फिर मैं लिखता भी हूँ वक्तन फोक्तन ना. तो ये वक्त के कॉन्सेप्ट पे मैंने एक तहरीर लिखी थी, मतलब वो मैं जरा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा.
1: बिल्कुल जरूर.
0: उसमें ये था कि मतलब अपने तौर से ख्याल था मेरे जहन में कि मुझे लगता है कि हम सबको एक बहुत ही जरूरी सफर तय करना चाहिए, और वो सफर है कल करूंगा से अभी ही करता हूँ. ठीक. जब तक हम इस कल करूंगा के बुत को तोड़ेंगे नहीं, ये बुत हमें ही तोड़ देगा, ठीक है. कल करूंगा खुली सड़क पे दोपहर की धूप में नजर आने वाला वो पानी है जिसका सिरे से कोई वजूद ही नहीं होता. दूर से तो चश्मे के पानी के मानिंद शफाफ नजर आता है, मगर करीब पहुंचने पर ऐसे गायब हो जाए जैसे गधे के सर से. हमारे सामने दो किस्म के कल आते हैं. एक तो हमारा कल है जो कभी भी आज नहीं होता, और एक कल वो है जो कुरान ने हमें बतलाया है. वो कल मौत का कल है, वो कब्र का कल है, वो हशर के मैदान का कल है. और बस मेरे और मौत के कल में फर्क यही है कि मौत का कल आज बल्कि अभी बन जाता है, और मेरा कल हमेशा कल ही रह जाता है. हम सब का मुकाबला मौत के कल और हमारे कल से है. बस मौत के कल से मैं सिर्फ एक ही सूरत में जीत सकता हूँ, अगर मैं अपने कल को अभी मैं मुंतकिल कर लूँ. अगर नमाज को कल पढ़ूंगा के बजाय अभी ही पढ़ता हूँ, वर्जिश कल करूंगा के बजाय अभी ही करता हूँ, किताब कल पढ़ूंगा के बजाय अभी ही पढ़ता हूँ हो जाए, तो फिर हम इस कल करूंगा कि बुध को चारों शाने चित कर लेंगे, और फिर बस यही तो दुनिया और आखिरत की कामयाबी है. तो ये मैं छोटी सी तहरीर लिखी थी, इसी पे मुझे याद आया.
1: जबरदस्त, आप अच्छे खासे लिखाड़ी हो गए. लिखाड़ी.
0: शुक्रिया आप लोगों का. और बस आप लोगों से ही सीखा है, और आपके शोज का बहुत असर है हमारी लाइफ में भी.
1: हम ये समझ रहे थे कि पहले इन्होंने कहा ना कि परफेक्ट टाइम जो है वो, हाँ मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ वो इस तरह से है ये, तो मुझे शुरू में लगा कि शायद ये कह रहे हैं कि इंतजार, हाँ मैं करता हूँ, लेकिन उन्होंने यही बात की कि भाई इंतजार नहीं करना चाहिए, जो वक्त मिला है कर गुजरो. चलिए दी, तो हम बड़े म्यूजिकल ट्रैक की तरफ.
2: बिल्कुल. आप जो है, आपको याद दिलाते चले, हमें कॉल कर सकते हैं 4434347.
1: कॉल्स आ रही हैं, बस हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं,
2: सुनते रहें 107
1: जी,
2: दिल से दिल से.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं यू मैटर
4: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
3: FM 107 पर। दिल से देसी।
5: वेलकम बैक जी, गोभी दिया फुल्लो, आ जाओ जरा खुशबू लगा के और बताओ जिंदगी में कहाँ कहाँ किस किस की क्या क्या प्लानिंग चल रही है और क्या लगता है आपको कि वाकई में हर चीज जिंदगी में प्लानिंग के साथ चल रही है,
6: आ गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम
7: जी। वालेकुम अस्सलाम मैम
6: जी। मुबीन भाई क्या हाल है?
7: मुबीन भाई मैम
6: जी जी
7: बिल्कुल बेहतरीन मैम।
5: अरे मुबीन भाई आ गए कॉल पर, डिकोड होने आ गए।
7: टॉपिक जो मैटर चल रहा है मैम, जो मेरा मेरी समझ है वो अलग है।
6: वो क्या अलग है?
7: जैसे अभी सफा मैम कह रही थी बिजनेस के हवाले से, तो ये समुंदर है, इसमें तो कूदना पड़ेगा। यह दरिया होता फिर इससे शुरू करोगे, फिर किसी धंधे में जाएंगे, फिर बर्बाद होंगे, फिर वापस ऐसे शुरू कर, लेकिन अपना पैसा होना चाहिए।
5: मैं बर्बाद होना चाहता हूँ।
7: हाँ नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो बिजनेस है, काम धंधे में तो पैसा बर्बाद होता ही है। अगर आप खामोशी से बैठे रहो तो बैठे रहो,
5: रिस्क लेना
7: लेकिन अपना पैसा हो तब। हाँ रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, मेरी पूरी लाइफ गुजर गई रिस्क लेते हुए, अभी फिर नया रिस्क लेने जा रहा हूँ।
5: मुबीन भाई आपकी मेरी कहानी एक जैसी चल रही है, पूरी जिंदगी गुजर गई रिस्क लेते हुए।
7: हाँ नहीं एक्चुअली रिस्क तो लेना पड़ेगा, हम बड़े बड़े हो या छोटे हो रिस्क तो लेना ही पड़ेंगे,
6: लेना ही पड़ता है। और हम रोज लेते हैं, हर वक्त लेते हैं। अब देखो हम जब मतलब अपनी गाड़ी लेके रोड पे निकलते हैं रिस्क ही लेते हैं ना।
5: बिल्कुल
7: बिल्कुल। और दूसरा ये परफेक्ट टाइम, मुझे लगता है कि मेरा परफेक्ट टाइम अभी है, लेकिन आपको मालूम है कि अल्लाह जानता है परफेक्ट टाइम कब है। तो आदमी ऐसे में डिप्रेशन में आता है, लूज हो जाता है, नुकसान हो जाता है, फिर तकलीफ में आ जाता है, सोच में चला जाता है,
5: सही
7: और फिल्में चलती रहती है सारी रात और दिन दिमाग के अंदर आंखों में। तो परफेक्ट टाइम मेरा पास ही है, लेकिन अल्लाह को पता है, क्या पता कल ऐसे सोचते सोचते बुढ़ापा आ गया, नमाज हो गई, पोता पोती बजाएंगे
5: इंशाल्लाह।
7: ये अच्छी बात है, मैं इतना ही कहूंगा मैम कि जो भी आप काम धंधा करें, कुछ भी करें, एक तो परफेक्ट नॉलेज खुद को होनी चाहिए उस काम के बारे में,
5: मार्केटिंग नॉलेज,
7: और दूसरा अपना खुद का पैसा हो। गया गया तो गया, कोई बात नहीं, किसी को देने की जरूरत नहीं है, कर्जा लेके भी नहीं करना, अपनी इनकम से करना है। बाकी
5: अग्री
7: नहीं तो कोई बात नहीं, फिर शुरू करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, जाने चलने दो।
5: सीधी सी बात है, कामयाब वही होता है मुबीन भाई, कामयाब वही होता है जो अपने आप को धक्का देता है और रिस्क उठाता है।
7: समुंदर है, समुंदर में कूदना पड़ेगा।
5: हाँ।
7: तो मैं एक और बात बताता हूँ मैम, मेरी नवासी के हवाले से, इतनी खतरनाक है, स्विमिंग पूल में बगैर किसी प्रोटेक्शन के कूद जाती है।
5: मतलब भाई ऐसा ना करें।
7: अरे एक मीटर अंदर चली गई मैम दो बार, एक बार दादा ने छोड़ दिया, एक बार मेरी बेटी से छूट गई, लेकिन कोई रोना धोना नहीं, नाक में आंख में पानी चला गया, फिर दोबारा कूद गई,
6: फिर कूद गई।
5: अरे भाई सर्विलेंस के बगैर ना छोड़ना बच्चों को, बच्चे कुछ भी कर जाते हैं।
7: खतरनाक तरीन होता तो साथ लेके चलता हूँ उसको,
5: खतरनाक
7: तरीन।
6: नहीं अच्छी बात है, अगर मतलब इतनी शौकीन है ना तो आप बस उसे स्विमिंग सिखवा दें।
5: अच्छा ये बताएं कितने कितने साल की है?
7: अरे बीस महीना हुआ है उसको,
6: दो साल की।
5: ये छोटे बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर नेचुरली ये होता है कि ये तैरना सीखते हैं।
7: उसको तीन, हाँ, उसको तीन शौक है, घुड़सवारी का, पानी का और क्रिकेट का।
6: ओए, होए, होए। क्या रॉयल शौक रखे हुए भाई सारे।
7: खतरनाक, बिल्कुल खतरनाक है,
6: जबरदस्त जबरदस्त।
7: तो ये मतलब बताया मैंने नॉलेज की, मतलब उसके क्या ना रिस्क रिस्क लेंगे तब कुछ बनेंगे।
6: बच्ची जो है वो रिस्क लेने को तैयार है मुकम्मल तौर पे,
5: खतरनाक कामयाब बच्चा, मार्केट तोड़ेगा बच्चा,
6: बिल्कुल।
5: मैंने कहा मार्केट तोड़ेगा बच्चा आपका मार्केट।
6: बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, वो कॉल के लिए, सॉरी मैसेज पढ़ते रहते
5: कॉल के लिए। चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
6: थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैसेज की बात हुई गई है तो कुछ मैसेजेस आप पढ़ डालिए।
5: मैसेजेस में ना हमारे अरबाज भाई ने ऐसी बात कर दी कि मुझे समझ आ रहा मैं हंसूं या इसे सीरियस लूं। अरबाज जी कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, पहले तो उन्होंने सलाम दुआ की, कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है, मरना तो हम निकले आज की प्लानिंग कर लें। देखिए अरबाज भाई, ये बरहक है, कुल्लू नफ्सु ज़ाइक़तुल मौत, ये बरहक है, लेकिन इसके लिए आप जीना नहीं छोड़ सकते। मर जाएं आप, कह रहे उसकी प्लानिंग अभी से थोड़ी शुरू कर सकते हैं। देखिए अरबाज भाई, मामला पता है क्या है, दुआ एक ऐसी चीज होती है जो हम कह रहे हैं, अभी हम रैंडमली बात करें, एफर्ट्स आपके और आपकी दुआ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अपना एक माइंडसेट है कि दुआ और आपके जो अपने एफर्ट्स होते हैं ना, वो टाइम का मीजानिया आपकी तरफ फेर देते हैं।
6: एग्जैक्टली,
5: अल्लाह ताला जब ये देखता है ना,
6: मेरा ख्याल असमत अफरीदी की बात के ऊपर इन्होंने कहा है ना, तो वो उस तरह से नहीं कह रहे थे कि हम मर जाएं, वो ये कह रहे थे कि मरना है, वो वक्त आना ही आना है, कल को वो वक्त आएगा, वो कल बड़ी जल्दी आ जाती है, वक्त का कुछ पता नहीं चलता, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, वो ये बात कह रहे थे। ये नहीं ये वही मतलब।
5: और एक दो और मैसेज है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हमारे यूसुफ भाई ने मैसेज किया है, मावा जी सफा जी कैसी हैं आप दोनों, हो बॉल वेल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा जी, हैप्पी संडे मॉर्निंग, कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा। मैं शायद परफेक्ट टाइम पे ही हूँ, जो काम करना होता है वही करता हूँ। यूसुफ भाई तो माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, परफेक्शन की मूर्त हैं। अच्छा, एक और मैसेज है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम सफानूर, कैसी हैं आप और महविश? आप कैसी हैं? बहन मेरा नाम चेंज हो गया।
6: अच्छा,
5: मुझे भी नहीं पता था, मेरे अम्मा पापा को मैंने भी इन्फॉर्म करना है इस बात के बारे में। रोहेल भाई हैं, रोहेल भाई कह रहे हैं मेरा भी सेम माविश आपी वाला हिसाब है कि जो सोचा है बस हो जाए। अच्छा भाई, चलें भाई ठीक है। और कौन है हमारे साथ मैसेज में हैं मोहम्मद हुसैन, और क्या कह रहे हैं सफा जी, बिना खुशबू के आ सकते हैं? नहीं, गर्मियों के दिनों में प्लीज़ एहतियात करें, तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो डॉक्टर से रजू करें और खुशबू लगा कर आएँ प्लीज़, नहीं तो मैं बेहोश हो जाऊँगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और कौन है हमारे साथ, मुबीन बगदादी हैं, कह रहे हैं कितना अच्छा सॉन्ग ख़राब कर दिया। यस,
6: किसने? आसिम अज़हर की बात हो रही है। अच्छा तो गाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जनाब तो खैरियत से हैं आप दोनों?
5: जी अल्हम्दुलिल्लाह
6: बिल्कुल ठीक ठाक। कौन आ गए हैं?
5: बड़े कोरस में चल रहे हैं जो
2: बड़े कोरस में
5: जी। कौन है हमारे साथ?
2: जयस खान।
6: ओके सही जी, क्या हाल चाल है भाई?
2: बस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आप सबकी।
5: जैसे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि परफेक्ट टाइमिंग की वजह से इंसान कितना कुछ खो देता है अपने दिमाग में, जो परफेक्ट टाइमिंग का रेशो रख कर बैठा हुआ है, क्या कहते हैं इसके बारे में?
2: टाइमिंग के चक्कर में जो है ना, कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है कि वही अभी परफेक्ट टाइम आएगा, अभी हमारे लिए टाइम ठीक नहीं है, वो जो है ना गलत हिसाब। टाइमिंग जो है सब एक बराबर है, अगर तुम्हें अभी करना है, अगर तुम्हारे मन में है कि मुझे ये चीज करनी है तो करो उस चीज को,
5: सही
2: रिस्क ले। हो ये नहीं है कि मैं टाइम देखूंगा, अभी अभी टाइम गलत चल रहा है, बाद में टाइम ठीक होगा।
5: सही,
2: अभी मेरा क्या है, मैं अपने पर देखता हूँ, मुझे पता है कि मुझे ये चीज करनी है तो मैं वो फौरन करता हूँ, मैं उसको डिपेंड नहीं रहता कि मैं अभी कल देखूंगा, शाम को देखूंगा, ये अभी देखता हूँ कि उसका क्या प्रोसेसर निकलेगा, क्या रिजल्ट आएगा, मैं कुछ नहीं देखता, करना है तो करना है।
6: सही, मतलब कर गुजरते हैं जो भी है।
2: जी बिल्कुल, अभी हाल फिलहाल की बात है, अभी पीछे जब मैंने अपना एक मुझे प्लॉट लेना था, मैंने सोचा कि मुझे प्लॉट लेना है, अभी मैंने बस अपनी वाइफ से बोला, मैंने कहा मेरे को अभी जो है प्लॉट खरीदना है, तो बोली कि ठीक है देखते हैं बाद में देखते हैं, मैंने बाद में नहीं, मैंने बात कर ली है, बस मैंने ले लिया।
5: ये सही है। अच्छा, बात कहीं भी एक मसला होता है, बात के अपने प्रॉब्लम जितने होते हैं, हर सेकंड एक नई चीज सामने आ रही होती
6: है, वो आता है ना बाद में, चाय ठंडी हो जाती है बाद में ही हो जाता है, तो वो वाला सीन है।
5: लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कोई बात नहीं,
6: जी जी क्या कह रहे हैं? अब चुप हो गए, सब चुप हो गए, क्या हो गया? हेलो,
5: हैं कि चले गए?
6: चले गए मुझे लग रहा है, कुछ बोल रहे थे, बोलते बोलते चले गए जी। हम हमतन गोश थे लेकिन वो बोले ही नहीं, चले दी तो फिर खैर आप
5: कौन सा गोश थे?
6: हमतन गोश
5: नया वर्ड आया मार्केट में, सीख लो भाई, कॉपियां किताबें निकालो,
6: होए होए होए
5: निकालो किताबें, सब अपने
6: है, नया नहीं है बहुत पुराना है,
5: लोगा तो शुरू हुई है अभी,
6: मतलब अब आपको नहीं आती तो हम क्या करें, आपको आई नहीं रही है मतलब फरजाना की बेटी होके नहीं आ रही है उन्होंने सुना ना, उन्होंने सुना तो उनको कुछ हो जाएगा
5: नहीं, नहीं उन तक ना पहुंचाना ये रिपोर्ट है, मैं नया लव सीखूंगी, मैं उनको जाके बोलूंगी कौन सा
6: हमदन घोष। अच्छा हम अभी तक हैं भाई, मतलब जा नहीं रहे। हेलो
7: जी जी जी जी,
6: अरे हैं हैं हैं,
7: कॉल आ गई थी अर्जेंट।
6: अच्छा कॉल आ गई थी, सही हो गया। तो क्या कह रहे थे?
7: अभी आपने जो अपनी वाइफ को बताया ना, वाइफ बोली कि ठीक है बाद में देखते हैं, मुश्किल नहीं है, अभी दो चार दिन रुको या एक आध महीना रुको, देखते हैं बाद में, इतना टाइम नहीं है, हमने ले लिया, कल तुम जाके जो है ना रजिस्ट्री करवा देना बस।
6: अच्छा क्या ले लिया आपने?
5: ये नहीं तो बोलते ना प्लॉट बोल रहे थे।
6: अच्छा प्लॉट प्लॉट प्लॉट, सही, वो कहीं से बात कट के फिर कहीं शुरू हुई है, इसलिए मुझे निकल गया दिमाग से, राइट। तो अच्छा चलें गुड, जबरदस्त। तो मतलब जो करना था आप कर गुजरे हैं।
7: बिल्कुल बिल्कुल, मैं टाइम पे डिपेंड नहीं रहता, क्योंकि सब टाइम जो अल्लाह का बनाया हुआ है, सब अच्छा है बुरा है कोई भी चीज है वो सब अल्लाह का बनाया हुआ है, अल्लाह बेहतर जानता है, हम बेहतर नहीं जानते।
6: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड, जबरदस्त। और भाई और कुछ कहना चाहेंगे या फिर हम आपसे लें इजाजत?
7: नहीं बस बस,
6: चलें चलें, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। रे जी तो हमारे साथ
5: जिस बात से याद आया मुझे कि वो जो लोग कहते हैं ना बाद में चाय ठंडी हो जाती है,
6: ठंडी हो जाती है,
5: लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये भी काम करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं मैं गर्म करके पी लूंगा,
6: गर्म करके पी,
5: क्योंकि उनको प्लानिंग करनी होती है, उनका अपना अपने आप को मुतमईन करना होता है। अच्छा ऐसे लोगों के साथ ना अगर मतलब कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट, हस्बैंड वाइफ में भी ये सीन होता है कि एक जो है ना बहुत, जैसे ये जैज भाई अपनी बेगम के बारे में बात करते हैं ना, एक बहुत ज्यादा प्लान करके चलता है और एक बहुत ज्यादा रैंडम होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग ज्यादा रैंडम होते हैं ना वो मार्का सर कर जाते हैं, जो बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं ना वो कहीं
6: सोचते रह जाते हैं,
5: सोचते
6: रह जाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है,
5: मुझे ऐसा लगता है,
6: मुझे ऐसा लगता है,
5: मुझे शायद एक्सपीरियंस, हर किसी का लाइफ का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है।
6: अच्छा वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है कि वाइफ हस्बैंड की बात इन्होंने तो खैर जो की है तो वो इनकी वाइफ थोड़ा मतलब सोच रही है, सोच रही है, सोच रही है, यूजुअली होता क्या
5: है? यूजुअली क्या होता है अगर मैं अपने केस में बोलूं,
6: मैं जल्दी में तुम रहती हूँ,
5: जल्दी में रहती हूँ,
6: मेरा भी ऐसे हिसाब किताब है, मैं जल्दी में रहती हूँ।
5: और लेकिन होता ये कि कोई मीडिया मतलब बीच का रास्ता चुना जाता है, ये नहीं कि आप सामने वाले की प्लानिंग देख कर जो है ना वो कह रहे हैं भाई 3 साल बाद, मैं कह रहा हूँ 3 साल, 3 साल तक जिंदा कौन रहेगा?
6: अच्छा अब तो खैर थोड़ा सा फिर भी मैंने कंट्रोल किया, वरना ये मेरी वाकई बड़ी बुरी आदत बनी हुई थी, एंजाइटी होने लगती है कि यार ये
5: डेडलाइन से पहले काम करना है।
6: हाँ एग्जैक्टली। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम सलाम, आप लोग की टॉपिक सुनकर है ना मैं ये कॉन्टिनेंट पे पहुंच
6: फिर आए, इन्होंने कहा नहीं वो डिलीवरी देने वाला नहीं था।
5: मैं कंक्लूजन पे पहुंचा, कंक्लूजन
6: बताएं।
8: ये तो टॉपिक का एकदम फाइनल डिसीजन रिजल्ट पे पहुंच चुका है, ये ऑलरेडी मेरे पास था। अच्छा। लेकिन मैं ना मिस कर गया एक्चुअली, जब और शुरू हुआ ना तो जो हॉर्मोन्स बढ़ गया था, जब से मेरा कार्गो पड़ा हुआ है 40 किलो का रूम में, आज खुलेगा कल खुलेगा कल खुलेगा कल खुलेगा, क्योंकि सामने से दिया सामने से बोलते हैं 2 महीने से कम नहीं लगेगा, तो आप लास्ट में कल डिसीजन लिया, 1 महीना तो वेट कर लिया, तो 2 महीने और सही तो उसे छत भेज ही डालो, तो आज मैं ना उसको भेज डालूंगा, तो 6 और 2, 8 महीने ये मैं पहले कर दिया होता तो अभी तक घर पे पहुंच गया होगा कार्गो, तो ना हो गया ना मेरा कार्गो गया, तो अभी बोल रहे नहीं 2 महीने में जाएगा, मतलब चलो 2 महीने और सही या 6 महीने वेस्ट हुए 2 महीने और सही, तो आई थिंक मैं भी ये कॉन्ट्रीब्यूट हो चुका है कि अगर उसका पहले ही मैं कर लिया
5: कहीं ना कहीं तो पहुंचता भाई, वो
6: कहीं ना कहीं तो पहुंचता, लेकिन शहजादा सलीम जो डिलीवरी पे फंसे हैं ना, यहाँ से पिक करना है वहां पर डिलीवर करना है, अभी तक वहीं पे फंसे हुए हैं। चले गुडे गुडे, जबरदस्त। नहीं अच्छा किया आपने भेज दिया, बहुत अच्छा किया, सीरियस नोट।
8: और मेरा पार्टनर भी यही है, उसके पास तो मेरे से ज्यादा लगेज है, तो मैं क्या करे, मैं बोला अभी है ना तवक्कल अल्लाह, आप तो ये जाए कल, मैं बोला आप मैं बहुत,
5: अरे पहुंच जाएगा, टेंशन नहीं ले, इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो पहुंच जाएगा।
6: थैंक यू शहर सलीम, थैंक यू जी, टाइम बिल्कुल कम रह गया हमारे पास, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
5: अच्छा भाई मैसेज है हमारे पास, रियाज भाई का मैसेज है, रियाज भाई कहते हैं कि भाई मेरी लाइफ में तो ऐसा है कि आज का काम कल कल पर छोड़ देता हूँ, अपने कल परसों में बदल जाता है, हो सकता है कि परसों उसको करने की जरूरत ही ना हो।
6: ओके
5: मुझसे तो कोई काम भी टाइम पर नहीं कर पाता मैं, देखिए इस ये मामला प्लानिंग का नहीं है, ये आलस का ये सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये लेजीनेस का। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ये बहुत मसला हो रहा है, हमारे अब्बा लोगों के टाइम पर तो ये था कि नहीं भाई आदमी जो है ना कर लेते थे काम, नाउ इट इज मेन आर नॉट मैनिंग, हर चीज में ना लेजी हो गए, नहीं करते। आज का कल, अच्छा ये भी बोलोगे ना, अच्छा ये कचरे की थैली पड़ी हुई है, अच्छा आप जाकर उठा के बाहर फेंक कर आ जाओ, आप 3 घंटे बाद आओगे वो थैली वहीं पड़ी होगी, क्या करना है, थैली को फेंकना ही है ना. फिर आखिर में गुस्से में आकर आप खुद वो कचरे की थैली उठा के फेंक कर आओगे. भाई वो काम हो रहा नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर में कर देता ना मैं. अब फॉर एग्जांपल एक बल्ब है खराब हो गया घर का, आप कह रहे हो कि भाई एक कुर्सी रखो ऊपर चढ़ो और इसको चेंज कर दो, तो वो कहेंगे अच्छा अभी करता हूँ, अच्छा अभी करता हूँ, अभी करता हूँ, अभी कर, वो कल से परसों परसों, फिर आखिर में आप खुद इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे.
6: होता ही है कि खवातीन ना बड़ी टची होती हैं घर के कामों को लेके, तो उनको थोड़ी सी देर भी मतलब इधर उधर हो रही होती है ना, तो वो बहुत गुजर रही होती है. एग्जैक्टली ऐसे ही
5: नहीं होगी ना तो तुम्हें पता चलेगा.
6: अच्छा जी, तो देखते ही देखते हमारे जाने का वक्त आ गया है, और आप लोगों से सवाल हमने ये किया था परफेक्ट टाइमिंग के हवाले से, तो बस जाते जाते यही कहना चाहेंगे आपसे कि कोई भी काम आपने जो करना है उसके लिए कोई परफेक्ट टाइम का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है. जब आपको समझ में आती है, जब आपका इरादा बनता है, पुख्ता होता है, आपको लगता है कि वो सही है, तो आपको कर गुजरना चाहिए. इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत देते हैं.
5: बिल्कुल, और मज़े की बात यही है कि हमेशा याद रखें हरकत में बरकत है. आप लेज़ीनेस को ये नहीं कह सकते कि भाई ये काम नहीं, अल्लाह ताला की मर्जी थी नहीं हुआ. अरे भाई आपने एफर्ट किया था अपना.
6: Exactly.
5: आपने कुछ सोचा था समझा था नहीं ना, तो फिर ये मत कहो कि हर चीज़ में अल्लाह ताला की मर्जी होती है. अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूकात इसलिए बनाया है कि आपके हाथ में चंद फैसले दे दिए गए, वो आप खुद करते हो, फिर उसके ऊपर आपके सरकमस्टेंसेस के अंडर जो है ना आपके जो ना जो भी फैसले होते हैं वो होते हैं. इंसान को खुद अपना एफर्ट करना चाहिए.
6: बिल्कुल जी, और इसी के साथ दीजिए हमें इजाजत. इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे कल हम बिल्कुल ठीक 10 बजे. इंशाल्लाह ना, ख्याल रखिएगा अपने सब अवस्था लोगों का, ख्याल रखिएगा हमारी तरफ से.
5: अल्लाह हाफिज़. सुनते रहे 107 दिल से देसी.

हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दे।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सभी कराम प्रोग्राम पल्स ऑफ द कुरान कुरानी मोती के आज के समंदरी सफर में आपका खैर मकदम है। आज गुफ्तगू होगी सूरह अनआम पर। सूरह अनआम कुरान करीम की अजीम और गहरी सूरतों में से एक है। बाज़ रिवायात और आसार में ये भी मनकूल है कि जब ये सूरत नाजिल हुई तो उसके साथ हजारों फरिश्ते थे। अब इस रिवायत की तफसीलात और सेहत और ज़ुल्फ़ अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि सूरह अनआम अपने मजामीन, दलाइल, मवाइस और अकीदा तौहीद की तौज़ीह के एतबार से कुरान की इंतहाई अहम सूरतों में शुमार होती है। इसका बुनियादी महवर वही अजीम मकसद है जिसके लिए मक्की कुरान मुसलसल नाजिल हो रहा था, अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की बंदगी का इस्बात और हर उस अकीदे, रिवायत और तसव्वुर की तर्दीद जो इस खालिस उबूदियत के रास्ते में हायल हो। सूरह अनआम ऐसी सूरत है जिसके साथ अगर इंसान ठहर ठहर कर चले तो हर चंद आयात के बाद एक नया इल्मी दरवाजा खुलता है। कहीं तौहीद है, कहीं रिसालत, कहीं आखिरत, कहीं शिर्क के बातिल तसव्वुरात की तर्दीद, कहीं इंसानी नफ्स की कैफियत, कहीं मुआशरे की गुमराहियों की निशानदेही और कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बराहे रास्त हिदायत और दलाइल। इस सूरत में दाखिल होने से पहले एक उसूली बात को समझना बहुत जरूरी है और वो ये कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ कुतुब सीरत से नहीं कुरान से भी पढ़ना चाहिए। आमतौर पर जब हम सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं तो हमारे जहन में वाकयात की एक जमानी तरतीब आती है, दावत का आगाज, फिर दावत खुफिया, ऐलान दावत, मुशरिकीन की मुखालफत, सहाबा इकराम पर जुल्म, फिर वो हबशा हिजरत कर गए, फिर आमुल हुज़्न आया, इसरा व मेराज, कबाइल के सामने दावत रखी गई, अंसार से राबता, फिर हिजरत मदीना। तो ये सब सीरत का बुनियादी हिस्सा है और कुतुब सीरत इन तारीखी वाक़ियात को महफूज करने का नहायत अहम जरिया है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि इन 23 बरसों के दौरान जब ज़मीन पर यह वाक़ियात पेश आ रहे थे, आसमान से क्या नाजिल हो रहा था? आसमान से नाजिल हो रहा था कुरान। एक नहायत बुनियादी नुक्ता है कि ज़मीन पर वाकया होता था और आसमान से उस वाकये की इलाही ताबीर नाजिल होती थी। ज़मीन पर अहले ईमान किसी कैफियत से गुजरते थे, कुरान उनके दिलों को संभालता था। मुशरिकीन कोई एतराज़ उठाते थे, कुरान उसका जवाब देता था। लोग किसी शुबहे में मुबतला होते थे, कुरान उस शुबहे को तोड़ता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अजियत पहुंचती थी, कुरान तसल्ली देता था। यानी अगर हम सिर्फ ज़मीनी वाकयात पढ़ें और उनके साथ नाजिल होने वाली वही को न देखें तो सीरत का एक बड़ा हिस्सा हमारी निगाह से ओझल रह जाता है। इसीलिए कुतुब सीरत हमें यह बताती हैं कि क्या हुआ। कुतुब हदीस हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफसीली हदीस से आगाह करती हैं, लेकिन कुरान हमें एक और चीज़ बताता है कि अल्लाह ताला ने उन हालात को कैसे ताबीर किया। अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहला ब मरहला क्या सिखाया, अहले ईमान की तरबियत किस तरह की और मुखालिफीन के इतराजात का जवाब किस जबान में दिया। यही वो मकाम है जहां सूरह अनआम हमारे लिए एक गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर लेती है। कुरान में वाकयात से मुतालिक आयात को उमूमी तौर पर दो अंदाज में देखा जा सकता है। एक किस्म वो आया

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामीन किराम, हमारी आज की दुआ है पहले वालिद इंसानियत के जद्द अमजद आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, जब उन्होंने खता के बाद अपने रब के हुजूर तौबा की थी। ये दुआ आदम अलैहिस्सलाम और उनकी जोजा हव्वा की है, जब उन्होंने शैतान के वसवसे में आकर अल्लाह सुबहानहु ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो फौरन नादिम होकर आजिजी के साथ अल्लाह के हुजूर झुक गए और कहा,

0: साथ कहा हमने तो अपने आप पर खुद जुल्म किया है। तो ये दुआ हर मुसलमान के लिए तौबा और रुजू का बेहतरीन हथियार और कलमा है। नजात का दरवाजा हमेशा अल्लाह की मगफिरत और रहमत से ही खुलता है। आइए हम सब मिलकर ये दुआ पढ़ें। रब्बना ज़लमना अन्फुसना वइन लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजी तलहा और आरजी सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर।
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
2: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर एक बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी।
0: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। कभी कभी इंसान नेकी के जज्बे में ये समझ बैठता है कि जितना ज्यादा उतना बेहतर, ज्यादा इबादत, ज्यादा मशक्कत, ज्यादा जागना, ज्यादा रोजे और फिर शायद दुनिया की जायज जरूरतों से भी किनारा कशी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर ज्यादती नेकी है? क्या अपने जिस्म को मुसलसल थका देना तकवा है? क्या खानदान और इज़्दवाजी जिंदगी से किनारा कश हो जाना अल्लाह से ज्यादा करीब कर देता है? और क्या इबादत का बेहतरीन रास्ता वो है जो हम अपने लिए खुद तय करें या वो जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले? आज की रूह परवर सुन्नत हमें उसी सवाल का एक निहायत वाज़ह जवाब देती है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई के मामूल के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का मामूल सुनकर उनमें से किसी ने कहा कि मैं औरतों से शादी नहीं करूंगा, किसी ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा और किसी ने कहा मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हम्द व सना के बाद फरमाया, कुछ लोगों को क्या हो गया है कि उन्होंने इस तरह की बातें की हैं? मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, कभी रोज़ा रखता हूँ और कभी नहीं रखता, और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ। जिसने मेरी सुन्नत से गुरेज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। तो इस हदीस का पस मंज़र ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा आपकी बीवियों के घरों में आए। उनका मकसद ये जानना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर किस तरह इबादत करते हैं। जब उनको आपकी इबादत के बारे में बताया गया तो गोया उन्होंने उसे कम समझा और कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, अपने पर्सनल डेटा को फिशिंग से बचाने के लिए इन टिप्स पर अमल कीजिए। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देने को अवॉइड कीजिए। कभी भी जाती मालूमात या डेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर मत कीजिए। सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों की आइडेंटिटीज को वेरीफाई करें और सिर्फ उन लोगों से बातचीत करें जिन्हें आप जानते हैं। इस बात को भी यकीनी बनाएं कि आपकी फैमिलीज के नौजवान यूजर्स के लिए कंटेंट कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है। क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन। नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट, सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट। पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान। बनिए कल का चेहरा आज ही। आज ही सुनिए नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ हर संडे शाम 5 बजे से FM 107 पर।

Assalamualaikum, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, and welcome to another tech update. भाई साहब, अपडेट में आपको चीजें मिलती रहेंगी और धड़ाधड़ हम आपको बताते रहेंगे. कभी कभार AI के बारे में बात करेंगे, तो कभी हम एप्स के बारे में, तो कभी हम गैजेट के बारे में, और खबरें तो इसमें रहेंगी रहेंगी. तो आज जो है मैं आपको बहुत ही मजेदार वेबसाइट बताने वाला हूँ. कुछ AI के भरोसे चलती हैं और कुछ जेन्युइनली बहुत कमाल की वेबसाइट्स हैं. सबसे पहले मैं एक AI, इट्स नॉट एन AI टूल बेसिकली, मगर ये ऐसा सर्च इंजन है जो आपके काम आएगा. रेडी? ओके. तो इसका नाम है playphrase.com.

0: M-E. Playphrase.me. P-L-A-Y P-H-R-A-S-E .me .me. मैं सही बोला ना? हाँ, playphrase.me. तो ये जो वेबसाइट है, इस पे जब आप जाएंगे तो आपको सामने बहुत बड़ा एक सेक्शन नजर आएगा, उसमें वीडियोस फोटोज रन हो रहे होंगे और उसके नीचे लिखा रहा होगा टाइप. अब क्या होता है, कई बार तो आप ये ढूंढ रहे होते हैं अपने वीडियो के लिए या अपने कंटेंट के लिए या जनरली कि किसी ने कोई डायलॉग बोला था. मान लीजिए मुझे ढूंढना है एक डायलॉग जहां पे हीरो ने बोला ये सब क्या चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बोलो, फॉर एग्जाम्पल ये सब क्या चल रहा है, आपने उसके नीचे लिखा और फिर ये वेबसाइट जहां जहां वो बोला गया होगा फ्रेज, वो सेंटेंस आपको लाके दे देगा. जैसे कई बार तो होता है ना कि व्हाट इज दिस, तो अगर आपने व्हाट इज दिस लिख दिया तो जहां जहां मूवीज में सीरीज में व्हाट इज दिस बोला गया होगा वो सब का सब आपके सामने लाके दे देगा. इट इज सच अ यूनिक थिंग टू डू. मुझे ऐसा लगता है कि ये वो काम आसान कर देगा जहां पे लोग मीम्स ढूंढ रहे होते हैं. समझ में नहीं आता यार कौन सा मीम था, यू जस्ट नो द वर्ड्स प्रोबेबली या फिर हाफ एजर्ड वर्ड पता होते हैं लेकिन पूरा मीम नहीं पता होता. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जो आपकी कॉन्टेंट के लिए प्लग इन के तौर पर काम कर सकती है, playphrase.me. ओके, आगे बढ़े जी. चलो जी अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं. तो अगली जो वेबसाइट है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नाम है इसका, बताता हूँ फिर भी. sketch.metademolab.com. आई नो कन्फ्यूजन है ना, स्केच टाइप करना है पहले तो SKETCH sketch.meta उसके बाद demolab.com metademolab.com. ठीक है, sketch.metademolab.com ये जब आप टाइप करेंगे इसके बाद एक वेबसाइट खुलेगी. अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए आप ड्राइंग ड्राइंग बनाते हैं, आप अच्छी बनाते हैं बुरी बनाते हैं मेरी जैसी बनाते हैं पहाड़ चढ़िया कोई दिक्कत नहीं है. आप उस ड्राइंग को जब इसमें अपलोड करेंगे उसके बाद ये आपको पॉइंट्स देगा, उन पॉइंट्स को जरा आप ठीक ठीक करेंगे अपनी जगह पे लगा देंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारा एनिमेशन मिलेगा. उनमें से कोई भी एनिमेशन आप अपनी ड्राइंग को दे सकते हैं जो आपने अपने हाथों से बनाई. बस ड्राइंग बनाई उसका फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए, फिर देखिए क्या होगा. इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, इससे आप पूरे दिन खेल सकते हैं भाई. बोर्डम मिटाने की सबसे बढ़िया तरीका है और स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, आपको कोई दोस्त है जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है या आपकी ड्राइंग लिटरली मेरी तरह है तो भी आप एनिमेशन कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट. तो ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली ऑन द लिस्ट. इसका नाम है sketch.metademolab.com. ओके, तो ये दो वेबसाइट्स आज मैंने बताई आपको, आपके बड़ी काम आ सकती हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूज दिस वीक. अब देखिए भाई, सब अपनी अपनी चिप्स निकाल रहे हैं. कोई कह रहा है ये वाली चिप हम लेके आए, कोई कह रहा है वो वाली चिप लेके आए. इस बीच जो है एनवीडिया भी अपग्रेड कर रहा है अपने सिस्टम्स को. सो गेम्स कॉम 2026 जब हुआ इवेंट तो एनवीडिया ने अनाउंस किया DLSS 4.5 रे रिकंस्ट्रक्शन और RTX मेगा ज्योमेट्री. ये बेसिकली ग्राफिक्स को बढ़ाने की उनकी कोशिश है और रे ट्रेसिंग को बढ़ाने की. इट विल कॉस्ट अ बॉम्ब, तो देखते क्या होगा. फॉर नाउ ये थी अपडेट, मैं दोहा वाला कबीर, अगले अपडेट में मिलता हूं. स्टे ट्यून्ड एंड दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी
2: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: आप सुन रहे हैं FM 107.
1: दिल से देसी.
4: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस. वेल दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, ये फ्रॉड बहुत आम है लेकिन इतने नए तरीके से होता है ये फ्रॉड, या कहें इतने आम तरीके से भी ये फ्रॉड होता है कि अक्सर 95% लोग इन फ्रॉड्स में फंस जाते हैं क्योंकि वो बैकग्राउंड वेरीफाई नहीं करते. और कई बार आपके बैकग्राउंड ना वेरीफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ हो ही गया हो, आपके साथ स्कैम भी हो गया हो, लेकिन चांसेस आर हाई कि ये आपके साथ फ्रॉड

0: हुआ है और ये है चैरिटी स्कैम। देखिए आम तौर पे जो रोजमर्रा के कामों में लगे रहते हैं, जो ईमानदारी की कमाई करते हैं, वो चाहते हैं कि जब भी मैं चैरिटी करूं तो एक ऐसे शख्स के पास वो पैसे जाएं, वो एक ऐसे चैरिटी करने वाले लोगों के पास जाए जो असल में लोगों के फायदे के लिए, जो असल में लोगों का फायदा करें। वेल, आज हम जिस चैरिटी स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, ये बड़ा आम है लेकिन फंसना भी इसमें बहुत आसान होता है, क्योंकि हम अपने दिल से चैरिटी कर देते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते, और सही मायनों में ये बड़ा गलत है। कई बार हम जिनको चैरिटी करते हैं वो असल में आपके 100 रुपए दिए हुए चैरिटी में उसके सिर्फ 20 या 30 रुपए इस्तेमाल करते हैं और 70 रुपए उन चैरिटी वालों के जेब में जाते हैं, क्योंकि आप सही से वेरीफाई नहीं करते। वैसे अगर देखा जाए, अगर आपने किसी शख्स को 100 रुपए दिए हैं, चैरिटी वालों को 100 रुपए दिए हैं, उन्होंने अगर 30 भी इस्तेमाल किए हैं, तो वो 30 एक्चुअली में स्कैम नहीं है, वो किसी की मदद तो कर रहे हैं लेकिन ये उनका तरीका होता है काम करने का। लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर्स हैं, चैरिटी स्कैम करने वाले हैं, जो 100 के 100 रुपए वो जब्त कर लेते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं और गायब हो जाते हैं। ये एक बेहद शर्मनाक धोखा है, जहां स्कैमर्स लोगों की मासूमियत, उनकी दान करने की आदत और मदद करने की जो आदत है, उनका गलत फायदा उठाते हैं। ये स्कैम्स आम तौर पर किसी बड़ी मुसीबत के समय, जैसे अर्थक्वेक में या फ्लड में या हाई प्रोफाइल कोई परेशानी किसी को हुई हो, किसी कंट्री में तूफान आए हो, तो वहाँ उसके बाद अचानक जो बाढ़ आती है या परेशानी पैदा होती है, वहाँ ये स्कैमर्स अलर्ट हो जाते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए उसके तरीकों और इसके सॉल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये फ्रॉड कैसे होता है? स्कैमर्स जानते हैं कि लोग मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनका दिल बड़ा साफ है, इसलिए वो लोगों को इमोशनल करके अपना शिकार बनाते हैं। सबसे पहले फेक डोनेशन की वेबसाइट, ये लोग नकली डोनेशन वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस बनाते हैं। इन वेबसाइट के नाम और डिजाइन बिल्कुल मशहूर और असली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस से मिलती जुलती रखी जाती है, ताकि किसी को शक ना हो। प्रेशर किया जाता है वाया फोन कॉल्स। फ्रॉडस्टर्स आपको फोन कॉल करके अचानक दुख भरी कहानियां सुनाते हैं और आप पर तुरंत पैसे डोनेट करने का दबाव या प्रेशर भी डालते हैं कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आज फला बच्चे बगैर खाए सो जाएंगे, उनका घर टूट जाएगा, उनका ऐसा हो जाएगा, ये सारी चीजें। उसके अलावा जब वो पेमेंट लेते हैं तो वो अनट्रेसेबल होता है, अनट्रेसेबल मेथड के जरिए पेमेंट लेते हैं। स्कैमर्स आपसे कैश, गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टो करेंसी के रूप में डोनेशन मांगते हैं। इसका कारण, इसकी वजह है कि इन पेमेंट मेथड को एक बार भेजने के बाद ट्रेस करना या वापस पाना एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इसके सॉल्यूशन भी हैं, कैसे बचा जाए इन तरीकों के स्कैम से। हमेशा ऑफिशियल टूल यूज करें, वेरीफाई करें हमेशा देने से पहले, किसी भी अनजान लिंक या एड पर क्लिक करके डोनेशन ना करें। अपने पैसे दान करने से पहले, देने से पहले चैरिटी नेविगेटर, गाइड स्टार या गिव वेल जैसे ऑफिशियल और ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर जाकर चेक करें कि वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रियल में रजिस्टर्ड है या नहीं। कई बार उस फ्लड वाली जगह की वीडियोस बहुत ज्यादा आ रही होती सोशल मीडिया से, वहां से वो वीडियो उठाते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं और फिर एक वेबसाइट के जरिए प्रमोट कर दिया जाता है, स्पॉन्सर कर दिया जाता है उस वीडियो को, और कहा जाता है कि आप प्लीज डोनेट करें ताकि इन बेचारों की मदद हो सके, और यहीं पर होता है आपके साथ स्कैम। वाया पे वाया सिक्योर मेथड, हमेशा सिक्योर मेथड से पे करें। रियल और लीगल चैरिटीज हमेशा क्रेडिट कार्ड या सिक्योर चेक पेमेंट लेती हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर अगर फ्रॉड हो भी जाए तो आप अपने बैंक में डिस्प्यूट क्लेम कर सकते हैं। हाई प्रेशर के टैक्टिक्स को अवॉइड करें, डायरेक्ट डोनेशन बेस्ट है। किसी थर्ड पार्टी कॉलर या सोशल मीडिया मैसेज के बहकावे में आने के बजाय हमेशा उन मशहूर और बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे रेड क्रेसेंट है, यूनिसेफ है, उन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद ब्राउजर में टाइप करके ओपन करें और डायरेक्ट वहां से दान करें, वहां से पेमेंट करें, वहां से चैरिटी करें। इस तरह के जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि ये फ्रॉड अवेयरनेस एपिसोड जानकारी से भरा रहा होगा और आप नए जमाने के नए फ्रॉड से बचने के लिए तैयार होंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी आपसे कल इसी शो में जिसका नाम होगा फ्रॉड अवेयरनेस। दिल से देसी स्कैम अलर्ट।
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dil Se Desi.

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक गरीब किसान के बेटे की जो 23 मार्च 1935 को पाकिस्तान के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। शदीद गुर्बत और मुश्किल हालात के बावजूद ये लड़का आगे जाकर एशिया का सबसे तेज तरीन स्प्रिंटर बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल खालिक की, एक ऐसे एथलीट की जिन्होंने अपनी मेहनत, रफ्तार और अजम के जरिए तारीख में अपना नाम लिखवाया और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कामयाबियां हासिल की। अब्दुल खालिक का सफर ट्रैक से नहीं बल्कि कबड्डी के मैदान से शुरू हुआ। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बेजोड़ खिलाड़ी होने की वजह से उनकी गैर मामूली सलाहियत, ब्रिगेडियर रोदम जो पाकिस्तान आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सरबराह थे उनके सामने आई। उन्होंने फौरन अब्दुल खालिक को आर्मी बॉयज कंपनी में शामिल कर लिया, जहां उनकी फितरत में मौजूद रफ्तार को प्रॉपर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के जरिए और निखारा गया। और फिर आता है 1954 का एशियन गेम्स। यहां अब्दुल खालिक ने दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ 10.6 सेकंड्स में 100 मीटर रेस पूरी करते हुए उन्होंने फाइनल में नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले 10.8 सेकंड्स का रिकॉर्ड इंडिया के लेवी पिंटो के नाम था, जो उन्होंने 1951 एशियन गेम्स में बनाया था। अब्दुल खालिक के शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें पाकिस्तान का स्प्रिंटिंग हीरो बना दिया और साथ ही साथ उनकी रफ्तार से मुतासिर होकर भारत के साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ये एक यादगार टाइटल दिया, एशिया का परिंदा। और वाकई अब्दुल खालिक ट्रैक पर किसी परिंदे की तरह उड़ते नजर आते थे। 1954 के एशियन गेम्स में अब्दुल खालिक ने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता, जबकि 4x100 मीटर रिले में सिल्वर मेडल हासिल किया। लेकिन उनकी कामयाबी का सफर यहीं नहीं रुका। 1958 के एशियन गेम्स में अब्दुल खालिक ने अपना 100 मीटर टाइटल डिफेंड किया और दोबारा गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने 200 मीटर रेस में सिल्वर और रिले में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ने एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में दूसरी पोजिशन जबकि ओवरऑल मेडल रैंकिंग में 6th पोजिशन हासिल की। अब दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेज उनका इंतजार कर रहा था, या ओलंपिक गेम्स। 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक्स में अब्दुल खालिक ने 100 मीटर और 200 मीटर रेसेस में हिस्सा लिया और दोनों इवेंट्स में सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। 200 मीटर सेमीफाइनल में उन्होंने 21.1 सेकंड्स का वक्त रिकॉर्ड किया और दुनिया के टॉप एथलीट्स में अपनी जगह बनाई। मगर दोस्तों, हर चैंपियन के सफर में मुश्किल वक्त भी आता है। 1960 के रोम ओलंपिक्स में अब्दुल खालिक अपनी पिछली कामयाबियों को दोबारा दोहरा ना सके और अगले राउंड्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन रोम की नाकामी ने अब्दुल खालिक के जज्बे को खत्म नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपना तजुर्बा पाकिस्तान के नए एथलीट्स तक पहुंचाएंगे। 1965 से 1978 तक अब्दुल खालिक ने आर्मी, पंजाब और नेशनल लेवल पर एथलीट्स को ट्रेनिंग दी और नए स्प्रिंटर्स को सामने लाने में अहम किरदार अदा किया। यानी वो सिर्फ खुद नहीं दौड़े, उन्होंने दूसरों को दौड़ना भी सिखाया। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। अब्दुल खालिक का नाम पाकिस्तान की एथलेटिक्स हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। 10 मार्च 1988 को अब्दुल खालिक रावलपिंडी में वफात पा गए, मगर उनकी कहानी आज भी जिंदा है। हर वो नौजवान जो अपने ख्वाब को हासिल करने के लिए मेहनत करता है, हर वो एथलीट जो फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, वो अब्दुल खालिक की कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकता है। एक गरीब किसान का बेटा जो पाकिस्तान का चैंपियन बना, एक एथलीट जिन्होंने एशिया को अपनी रफ्तार से हैरान कर दिया और एक लेजेंड जिनका नाम पाकिस्तान की एथलेटिक्स हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहेगा, अब्दुल खालिक, पाकिस्तान के फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया।
उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए लेजेंड, एक नए चैंपियन और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रसम, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर में खानदान की अहमियत के बारे में आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। कतरी सकाफत में खानदान को बहुत इज्जत और अहमियत हासिल है। खानदान सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत, जिम्मेदारी, भरोसे और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत निजाम है। कतर के अफराद एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कतर में बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि वो अपने वालिदैन, बुजुर्गों और खानदान के तमाम अफराद का एहतराम करें। सलाम करना, अच्छे लहजे में बात करना, मदद करना और तवज्जो से सुनना घर की तरबियत का अहम हिस्सा होता है। यही छोटी छोटी आदतें बच्चों की शख्सियत को मजबूत बनाती हैं। वालिदैन का मकाम खानदानी जिंदगी में बहुत बुलंद समझा जाता है। उनका ख्याल रखना, उनकी जरूरियात को समझना और उनके साथ मोहब्बत का इजहार करना अच्छे रवैये की निशानी है। बच्चों के लिए वालदेन सिर्फ परवरिश करने वाले नहीं होते, बल्कि उनकी रहनुमाई और अहमियत का जरिया भी होते हैं। खानदान में बुजुर्गों का किरदार भी बहुत दिलचस्प होता है। वो अपने तजुर्बे, यादें और कहानियाँ नई नस्लों तक पहुँचाते हैं। जब बच्चे अपने दादा, दादी या नाना नानी के साथ वक्त गुजारते हैं तो उन्हें घर की पुरानी बातों, रिवायतों और कतरी जिंदगी की मुख्तलिफ पहलुओं को समझने का मौका मिलता है। जब अफराद एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो पूरा खानदान ज्यादा मजबूत और पुरसकून महसूस करता है। बच्चों और बुजुर्गों के दरमियान रिश्ता इस निजाम का एक प्यारा पहलू है। बच्चे जहाँ अपनी शरारतों और खुशियों से घर में रौनक लाते हैं, वहीं बुजुर्ग अपने तजुर्बे और दुआओं से घर को मजबूती देते हैं। दोनों नस्लें एक दूसरे से सीखती हैं। बच्चों को जदीद चीजों का इल्म होता है और बुजुर्ग उन्हें रिवायत, सब्र और सलीके का दर्स देते हैं। आज के जदीद कतर में परवरिश और खानदानी जिंदगी के अंदाज में तब्दीली आ रही है। तालीम, काम और टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को आसान बनाया है, फिर भी मोहब्बत, एहतराम और अपनायत जैसे उसूल आज भी उतने ही कीमती हैं। जदीद जिंदगी के साथ अगर खानदान के लिए वक्त भी रखा जाए तो पुरानी और नई रिवायत में खूबसूरत तवाज़ुन पैदा हो सकता है। खानदान में हर फर्द का अपना किरदार होता है। कुछ लोग रोजमर्रा के इंतजामात संभालते हैं, कुछ बुजुर्गों के साथ रहते हैं और कुछ नई नस्ल की तालीम और रहनुमाई पर तवज्जो देते हैं। जब हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों को समझकर काम करता है तो घर का माहौल ज्यादा खुशगवार होता है। खानदान की मजबूती के लिए गुफ्तगू भी जरूरी होती है। अपनी बात नरमी से कहना, दूसरों के ख्यालात सुनना और छोटी बातों को मोहब्बत से हल करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। हर घर में मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतराम मोहब्बत को कायम रखता है। खानदान से वाबस्ता रिवायत और यादें किसी कीमती वर्षे से कम नहीं होते। घर के मशहूर पकवान, बचपन की कहानियाँ, किसी बुजुर्ग की नसीहत या किसी खास तकरीब का अंदाज, ये सब मिलके खानदानी पहचान बनाते हैं। इन यादों को बच्चों के साथ शेयर करना वर्षे को जिंदा रखने का तरीका है। कतर की सकाफत हमें सिखाती है कि खानदान एक अमानत है। इस अमानत की हिफाजत मोहब्बत, सब्र और जिम्मेदारी के जरिए की जा सकती है। अपने घर वालों के लिए चंद लम्हे निकालना, उनकी बात सुनना और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझना बहुत कीमती अमल है। आज का कल्चर मोमेंट इसी पैगाम के साथ मुकम्मल होता है कि मजबूत खानदान मजबूत माशरे की बुनियाद है। मोहब्बत, अदब और एक दूसरे का ख्याल रखने से घर सिर्फ एक

0: जगह नहीं रहता बल्कि सुकून भरोसे और अपनाइयत का मरकज बन जाता है।
1: तो लिसनर्स आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए थमने ना पाए दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर
1: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीज ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज इकबाल आप सब लोगों का आज इकबाल है इस प्रोग्राम में इट्स अ गोल शो और ये इस शो में ज़्यादातर फुटबॉल नहीं अभी अभी एक ऐड आप लोगों ने सुना होगा कि अलकास्ट में कतर स्टार्स लीग के बारे में एक हमारा एक पैगाम था कि कतर स्टार्स लीग इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल टूर्नामेंट और कतर के अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ तो फुटबॉल टूर्नामेंट में फुटबॉल के जो इतने भी लेवल है सबसे ऊपर है तो कतर स्टार्स लीग को आप लोग फॉलो करिए और आज कतर स्टार्स लीग के बारे में भी आपसे मैं बात करूंगा मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और हमारे स्टूडियो की घड़ी पर 1:02 हो चुका है और क्रिकेट फुटबॉल टेनिस ओलंपिक्स जो भी कुछ हो रहा है इस स्पोर्ट्स की दुनिया में सब कुछ मिलेगा यहां पर आपके इस फेवरेट शो में और आप लोग इसमें शामिल होते हैं और शामिल जब होते हैं तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगता है एंड स्पोर्ट्स इज ऑलवेज अ वे ऑफ लाइफ फॉर मी मैं हमेशा इस बात को हमेशा दोहराता हूं एंड मुझे अच्छा लगता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो मैं बस ज्वाइन कर लेता हूँ जो यू नो आप लोग अगर जुड़ जाते हैं तो इस शो को ना चांद चांद एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएट आप लोगों के नॉलेज काफ़ी गहरा है एंड इस नॉलेज के बलबूते पे मैं इतना कह सकता हूँ कि विदाउट यू इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू रन एनी स्पोर्ट शो एनी वे सो आप लोग जुड़ जाइए 666-2107 आप लोगों को पता होगा व्हाट्सअप नंबर ऑफ FM 107 और मेरा पहला जो एक स्क्वाड ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव है वो एक क्वेश्चन के जरिए होता है एक सवाल के जरिए होता है और आज भी क्रिकेट से ही एक सवाल है आपको बताना है कि क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे कामयाब कप्तान का नाम यानी टेस्ट क्रिकेट की तारीख में मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन आपको इनका नाम बताना है बस नाम बता दीजिए और एडिशनल कुछ अगर इनपुट्स है वो भी शेयर कर सकते हैं आप लोग तो टेस्ट क्रिकेट सोचिए 100 साल से ज़्यादा आई मीन यू नो इन द ईयर 1880 समथिंग कुछ उस टाइम में टेस्ट क्रिकेट का आगाज़ हुआ था एंड उसके बाद से कई ऐसे ममालिक हैं कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने डोमिनेट किया हो एंड उसके बाद कई ऐसे कप्तान होंगे जिन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को इम्प्रूव किया हो और उनके रिकॉर्ड को किसी और कप्तान ने तोड़ा हो एक कप्तान था मुझे याद है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का क्लाइव ह्यूबर्ट लॉयड जिनको सुपर कैट के नाम से जाना जाता था उस ज़माने में 70s का दौर मिड 70s का दौर और 80s वेस्ट इंडीज़ को टेस्ट क्रिकेट में हराना बड़ा ही मुश्किल होता था एंड क्लाइव लॉयड बहुत सालों तक इस रिकॉर्ड को अपने पास लेके चल रहे थे उसके बाद जो चेंजेस आए उसके बाद

ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम बिकेम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. और स्टीव वॉ ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द आई मीन टैलेंटेड तो थे ही, वन ऑफ द आई वुड से लेजेंडरी क्रिकेटर ऑलराउंडर कप्तान. और उसके बाद आए रिकी पॉन्टिंग और उसके बाद आए सौरव गांगुली. सो ये अलग अलग जितने भी कप्तानों का नाम, क्रिकेट कप्तानों का नाम मैंने लिया है, ये उनके ही दौर में यू नो टेस्ट क्रिकेट में ये लोग छाए हुए थे. लेकिन एक साहब थे और उनका कंट्री भी अगर देखा जाए वॉज वन ऑफ द पावरफुल क्रिकेटिंग नेशन ड्यूरिंग दैट एरा. जिस टाइम में सौरव गांगुली खेलते थे, जिस टाइम में रिकी पॉन्टिंग खेलते थे, तो बहुत पुरानी बात तो नहीं है ये. आपको बताना है टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे कामयाब कप्तान का नाम. सिर्फ अपना नाम बताइए और 666-22-107 पर आप भेज सकते हैं. आपका नाम जरूर बताइएगा बिकॉज नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्पोर्ट्स हाईलाइट ऑफ द वीक. दोस्तों QSL यानी कतर स्टार्स लीग जो है वो तो जारी है ही है. एंड कतर स्टार्स लीग में हुआ क्या क्या, आई मीन जो मैचेस हुए मैं आपको बता देता हूँ. सबसे इंपॉर्टेंट मैच जो मुझे लगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्लब जिन्होंने जीत दर्ज किया पहली मरतबा, दैट जीत वॉज एन हिस्टोरिक, एक तारीखी जीत. और लुसेल स्पोर्ट्स क्लब इस क्लब का नाम है. फर्स्ट टाइम कतर स्टार्स लीग में खेलते हुए इन्होंने पिछले दो दिन पहले ही अलवाखरा को 4-0 यानी 4-0 से हराने के बाद ये एक फर्स्ट विन एवर इन द QSL. QSL के और बहुत सारे टीयर्स होते हैं, ये टॉप टीयर में जगह बनाए और इसके बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड भी कायम किया है. अच्छा कल मैचेस हुए थे और रायान अल दोहेल एज एक्सपेक्टेड रायान दोहेल का मैच जबरदस्त रहा. 1-1 यानी 1-1 गोल के बराबर ओवर खत्म हो गया. और वहीं असद क्लब ने अपने ही जो विक्ट्री रन है, जो मार्च है, उसको बरकरार रखते हुए अलगराफा को 4-1 से मात दी. एंड अलगराफा को हराना मतलब इट्स अ टफ टीम, लेकिन असद इज द टफेस्ट टीम राइट नाउ और मोस्ट आई वुड से फैंटास्टिक क्लब राइट नाउ इन QSL. एंड गोल किन साहब ने किया हमको बताओ, अकरम मफीफ द स्टार प्लेयर, उन्होंने एक गोल किया. रोबर्टो फिर्मिनो जो लिवरपूल के लिए खेलते थे एक दो पाँच छः साल पहले ही भी, क्लॉडिनो और यूसुफ अब्दुल सराग, इन चारों खिलाड़ियों ने गोल किया. और यासीन इब्राहिमी वन ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर ऑफ यू नो फ्रॉम द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, उन्होंने एक गोल वापस कर दिया एट 82 मिनट पे. तो इसी तरह से असद को जीत मिली और असद राइट नाउ दे आर लीडिंग द QSL यानी कतर स्टार्स लीग का जो टेबल है उसमें तीन मैचेस में तीनों ही जीत और 9 पॉइंट के साथ दे आर टॉपिंग. और अगला मैच जो मैं बताने जा रहा था वो शमाल और शाहनिया. शमाल भी कमाल कर रहे हैं और जुमे के रोज़ ये मैच खेला गया था. शाहनिया को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया. और इसके अलावा अल अरबी को जीत मिली और उन्होंने असीलिया को 2-0 से हराया. और उसी तरह अगर देखा जाए अल अहली को भी जीत मिली है कतर स्टार्स लीग कतर स्टार्स क्लब को 1-0 से हराया. सो दिस आर द मैचेस दैट आर हैपेंड. एंड आने वाले वीकेंड में भी बहुत सारे मैचेस हैं. आप यू नो कीप लिसनिंग ऑन टू FM 107, आप लोगों को मैं बताता रहूंगा. और स्पेशली ऑन स्पोर्ट्स न्यूज़ में जो हम हर सुबह हम पेश करते हैं उसमें भी आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँगा. और साथ ही साथ इट्स अ गोल प्रोग्राम में भी आप लोगों को इस यू नो जो जितने भी मुकम्मल रिजल्ट्स होंगे और जितने भी मुकम्मल मैचेस हैं वो भी आप लोगों के सामने मैं पेश करूँगा. अच्छा दोस्तों बास्केटबॉल काफ़ी ज़ोरों शोरों से अभी कतर में जारी है. द रीज़न बीइंग क्योंकि बास्केटबॉल का ही एक मेगा टूर्नामेंट है जो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 2027 का वर्ल्ड चैम्पियनशिप वो कतर में होने जा रहा है. और कुछ दिन पहले यानी पिछले हफ्ते की बात है जो अल जनूब एरिना में बास्केटबॉल के जो कोर्ट्स हैं अल जनूब अरीना को इनॉग्रेट किया गया. अल जनूब वही स्टेडियम जहां पे फीफा वर्ल्ड कप हुआ था और उसी अरीना को सजाया गया है. वन ऑफ द वेन्यूज हैं जहां पे ये मैचेस होंगे. बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते हैं, जा सकते हैं, जस्ट फॉर अ विजिट. अब एक बार जाके अब अपना हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट भी कर दीजिए, फोटो वोटो डाल दीजिए, वीडियो डाल दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा. सी दिस इज द वे आई ट्रांसफर द न्यूज, आई शेयर द न्यूज विद यू गाइज. एंड आप लोगों को ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा क्योंकि कतर के बारे में हम बात कर रहे हैं और कतर के हर स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट फुटबॉल. बास्केटबॉल इज इन द एयर, बास्केटबॉल इज रियली रियली गुड डूइंग यू नो द राउंड बिकॉज बास्केटबॉल के वर्ल्ड कप जो है, बास्केटबॉल के जो मेगा चैंपियनशिप है वो अगले साल 2027 में होने जा रहा है. अभी बता दूं कि कल कतर बास्केटबॉल फेडरेशन ने ऐलान किया है कि जो उनका लीग है, जो लीग गेम्स है, लीग चैंपियनशिप है, उसका शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया है. और 10 अक्टूबर से 9 क्लबें इस लीग चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे और इसमें दे विल फाइट अगेंस्ट ईच अदर, दे विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर फॉर द टाइटल. और अगर एक और

इज एक्चुअली मेकिंग बिग नॉइज. बास्केटबॉल, फुटबॉल के बाद अगर कोई अगर मेजर टूर्नामेंट, मेजर स्पोर्ट है तो वो बास्केटबॉल है. इंडोर गेम, वेरी मच पॉपुलर. कतर बास्केटबॉल एसोसिएशन की तरफ से, कतर बास्केटबॉल फेडरेशन की तरफ से जितने भी एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज्यादा है. अदर रीजन बींग, जैसे मैंने बताया, कतर इज होस्टिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप 2027 इन दोहा. सो आप लोग रेडी हो जाइएगा. साथ साथ मैं फुटबॉल के बारे में आप लोगों को बता दूं, कतर में क्या हो रहा है, होने जा रहा है अंडर 17 वर्ल्ड कप 2026 का मैच शेड्यूल जारी कर दिया गया है. और ये टूर्नामेंट 19 नवंबर से 13 दिसंबर तक दोहा में खेला जाएगा. बहुत करीब है, पास है. और इसमें 48 कौमी टीमें हिस्सा लेंगी. 22 नवंबर को ग्रुप ए में मेजबान कतर का सामना इजिप्ट से होगा. तो दोस्तों यहां पर मैं लूं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, और ब्रेक में जाने से पहले ये सवाल जो आज का है वो मैं दोहरा देता हूँ. टेस्ट क्रिकेट की तारीख में आप लोग सुन रहे होंगे मुझे, तो प्लीज यस और नो पे जवाब दीजिएगा ऑन द व्हाट्सएप. टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे कामयाब कप्तान का नाम बताइए. आपको सिर्फ भेजना है 666-2107 पर. मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो ऑन FM 107. कीप लिसनिंग, कीप ट्यूनिंग ऑन.

0: आप सुन रहे हैं इट्स अ गोल्ड शो विद मोहम्मद अमीज ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: दोबारा इस्तकबाल है। स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, अभी भी बहुत बाकी है, अभी मैं देख ही रहा था एंड लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड। आप लोगों को इस्तकबाल है, दोबारा इस्तकबाल करता हूँ। इट्स अ गोल्ड शो, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और आप लोगों के जवाब आ चुके हैं, बहुत सारे जवाब आते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा वेरी सून। ये क्विक एक राउंड अप दे देता हूँ एक कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, और क्रिकेट में ये बता दूँ कि 9 अक्टूबर से 21 नवंबर तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बयान के मुताबिक श्रीलंका और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें मेज़बान इंग्लैंड क्रिकेट टीमों को होस्ट करेगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, और इस दौरान बायलैटरल और ट्राई सीरीज खेली जाएंगी, आज जिसका ऐलान बहुत इन्होंने कल ही कर दिया है। अच्छा, दोबारा एक बात और बता दूं दोस्तों कि क्रिकेट में पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का जो मैच है, जो टेस्ट मैच है, उसमें पाकिस्तान आर ऑलरेडी लॉस्ट, पाकिस्तानी सीरीज

हार चुकी है और जो अगला टेस्ट मैच थर्ड टेस्ट मैच है इस सीरीज का वो है यू नो इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान है वो 9 सितंबर यानी परसों से होने जा रहा है एंड दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान टीम क्या करेगी अब देखना है बिकॉज पाकिस्तान टीम में काफ़ी कुछ रदबदल यानी चेंजेस ला गए लाने में मजबूर हो गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स और उन्होंने 7 नए प्लेयर जो ऑलरेडी वहाँ पे खेल रहे थे उनको वापस बुला लिया पाकिस्तान एंड उनके बदले में उनकी जगह पर नए प्लेयरों को जगह दे दी गई एंड उसके साथ साथ माइक हेसी जो कि बेसिकली शॉर्ट फॉर्मेट के कोच थे उनको बॉलिंग कोच थे उनको भेज दिया गया इंग्लैंड में कि आप जाइए और टीम को थोड़ा सा चेंजेस लाइए सो दैट पाकिस्तान कैन होल्ड इंग्लैंड इन दिस टेस्ट मैच हारे ना But that is what we all pray that Pakistan ko haar nahi milni chahiye because otherwise it will be a complete whitewash 3-0. So anyway, best of luck to Pakistan cricket team and best of luck to the England cricket team. Aur ek cheez aur bhi aapko bata dun ki La Liga results aur League One, yani French League jisko hum kehte hain, jahan pe Paris Saint-Germain club jo hai khelta hai, uske bare mein aap logon ko thoda update deta hun. Kal एक यू नो ला लीगा में रियल मद्रिद को हार का सामना करना पड़ा एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यू नो फैक्ट रहा है बिकॉज अभी पिछले हफ्ते जो फर्स्ट राउंड ऑफ मैच खेला गया था उसमें रियल मद्रिद की जीत हुई थी लेकिन रियल मद्रिद को पहली मर्तबा दे हैव टू दे लॉस्ट ये जुमेरात माफ़ कीजिएगा जुमे के रोज़ ये मैच खेला गया था बेतिस के अगेंस्ट में और होजे मोरिनो जो इनका हेड कोच हैं उनको हार मिली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एज अ कोच बहुत बड़ा नाम है होजे मोरिनो और यहाँ पे बात नहीं हो रही है कि किलियन एम्बैपे गोल किया या नहीं किया लेकिन अब यह है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है यू नो बिग नेम बिग प्रेशर और रियल मद्रिद को हार का सामना करना पड़ा आज बार्सिलोना का मैच है अगेंस्ट वलेंसिया और ओसासुना का सामना है अलावेज के साथ कल मैचेस जो हुए वो मैं बता दूं कि डिपोर्टिवो वियारियल को 2 के मुकाबले में 3 गोल से मार दी और एथलेटिक ने एथलेटिको मद्रिद अगेन अ बिग टीम लूजिंग कल दोनों ही बिग टीम रियल मद्रिद एथलेटिको मद्रिद दोनों को हार मिला एंड ये एथलेटिको मद्रिद की हार 3-0 यानी यू नो 3-0 3-0 से हुआ तो आज जो मैचेस हैं उसमें बार्सिलोना का मैच तो मैं देख रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है हाई प्रोफाइल टीम है और अगर एक और मैच है स्पैनियोल वर्सेस सीविया आज रात 10 बजे खेला जाएगा चलते हैं ला लीगा में क्या हो रहा है ला लीगा में हो गया अब लीग वन में क्या हो रहा है मैं आपको बता दूँ और लीग वन में आज मैचेस हैं ट्रोयस के साथ स्ट्रासबर्ग और एंजेस के साथ रेने और ये मैचेस शाम की हैं और मर्से और पेरिस फुटबॉल क्लब ये दोनों टीमें आज आमने सामने हैं रात को और कल जो मैचेस हुए हैं वो है लोरिए ने लिंस को 1-0 हराया और लिवान और नीस के जो मैच है वो मैच हुआ 1-1 गोल से ड्रॉ And that is what the you know most important thing is. और हार मिली जैसे मैंने बताया रियल मद्रिद को भी हार का सामना करना पड़ा वहीं PSG को भी हार का सामना करना पड़ा अगेंस्ट मोनाको 2-1 दैट इज़ द अपडेट फ्रॉम लीग वन जो फ्रेंच लीग है और अब देखते हैं EPL यानी इंग्लिश प्रीमियर लीग में हो क्या रहा है वो भी आपको बता दूं आज मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेइंग एवर्टन और वहीं आर्सेनल जो डिफेंडिंग चैंपियन है उनका सामना है चेल्सी से इसी चेल्सी क्लब को होजे मोरिनो एक जमाना पहले was coaching this LCLC club or overnight he became a larger than life you know personality Jose Mourinho koi bada naam nahi hai footballer he was just an ordinary player koi bade club mein nahi khela tha lekin unki jo footballing mind jo hai na wo zabardast hai kal matches hue hain Sunderland Brentford aur 1-1 goal ki barabari par khatam hua hai Aston Villa aur Hull ke darmiyan match jo hai 0-0 se khatam ho chuka hai aur Manchester City ko jeet mili hai yahan par Coventry ko 1-0 se haraya aur Nottingham Forest aur Tottenham Hotspur ka match jo hai गोललेस ड्रॉ रहा तो आज का टॉप मैच है आर्सेनल वर्सेस चेल्सी मैं तो देखूंगा आप भी देखिए और एंजॉय करिए तो ये टोटली जितने भी अपडेट्स हैं अब US ओपन जा रही है दोस्तों US ओपन से थोड़ा अपडेट देता हूँ टेनिस के बारे में ये लास्ट ग्रैंड स्लैम है इस साल का और यहाँ पर डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने चीन के वो युबिंग को 6-3 6-4 6-1 सेट से हरा कर चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है और वहीं एक अपसेट दमे देखने को मिला है अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को कैरुंडोलो उन्होंने पल यानी हफ्ते के रोज एक ज़बरदस्त कमबैक करते हुए 9 सीड और सबक फाइनलिस्ट टेलर फ्रिट्स को बाहर कर दिया है मोस्ट ऑफ द टॉप सीड्स जो हैं इस
टूर्नामेंट में सब बाहर हो गए हैं, सिवाय कुछ चंद जैसे कि कार्लोस अल्काराज रह गए हैं, चार पांच जो टॉप सीड्स हैं वो रह गए, बाकी सब आउट हैं, एंड दैट मेक्स दिस यूएस ओपन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट। नाउ अब वापस चलते हैं एंड वापस चलते हैं हमारे सवाल, आज का जो सवाल था उसमें ये था कि इंडिया, माफ कीजिएगा, टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कप्तान का नाम बताना है। चलिए मैं अभी आप व्हाट्सअप खोलता हूँ और व्हाट्सअप में देखता हूँ कि किन किन साहब ने कुछ मैसेजेस डाले तो हैं, अब सही कौन है गलत कौन है वो पता चल जाएगा। ये मुबीन बगदादी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका ये मैसेज मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड ये MBB का क्या मतलब है, आई रियली डिडंट अंडरस्टैंड। आप हमारा जो सवाल था वो है टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे कामयाब कप्तान का नाम आपको बताना है। ये कौन है, अच्छा कुछ कुछ लोगों ने, अच्छा मैं आप लोगों को बताना शुरू कर ही देता हूँ, मैं नाम आप लोग पता नहीं नाम लिखने में आप लोगों को क्यों प्रॉब्लम है, बट लेकिन ठीक है, अरबाज खान आपने सही जवाब दिया है, नाम बता तो उन लिसनर्स का जिन्होंने सही जवाब दिया है, माजिद हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने सही जवाब दिया है, शेख इरफान अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपने सही जवाब नहीं दिया है, अच्छा और कौन है, इश्तियाक अहमद आपने भी कुछ सही जवाब नहीं दिया, ये नाम तो मुझे पहली मर्तबा सुनने में आ रहा है, एनीवे और कौन है, और कोई है, मोहम्मद रिपोन आप बांग्लादेश से हैं और बांग्लादेश क्रिकेट इस टाइम बहुत ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है एंड बांग्लादेश ने एक तारीखी जीत, आपने आप लोग आपकी जो क्रिकेट टीम है आप लोग उन्होंने एक तारीखी जीत कायम की है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए एंड तमाम बांग्लादेशी भाइयों के लिए, अपनों का क्या होना चाहिए, सो भालो निश्चय भालो अच्छे। अच्छा आप लोग क्रिकेट खेलते हैं और बड़े यू नो दिल से खेलते हैं और इम्प्रूवमेंट मुझे सामने दिख ही रहा है, यू नो 25 more than 26 ईयर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट आप लोगों ने कमाल करके दिखाया है, एंड आई रियली एडमायर आप लोगों के इस फाइटिंग स्पिरिट का, स्पेशली न्यू बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं तमीम इकबाल, उनके जो लीडरशिप है दिख रहा है, देयर इज सम एफर्ट्स दैट ब्रिंगिंग इन, एंड आप कह रहे हैं कि आप सेकंड डिवीजन क्लब में क्रिकेट भी खेलते हैं, बहुत बहुत बहुत बहुत जान के बहुत अच्छा लगा आपका जवाब ने, हाँ मुझे बड़ा खुश किया जी, बिल्कुल सही जवाब है, और मैं कुछ समझ नहीं आ रहा आपने क्या दिया, अरमान मलिक नहीं, अरमान मलिक साहब कपिल देव सही जवाब नहीं है, एंड मैं आपको बता देता हूँ उन कप्तान का नाम बता देता हूँ मैं, चलिए बता देते हैं आप लोगों को कि उस कप्तान का नाम क्या है, तो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में सबसे कामयाब कप्तान नोट कर लीजिएगा, साउथ अफ्रीका का जो वन ऑफ द वेरी पावरफुल बैट्समैन भी थे और साथ साथ उनका क्रिकेटिंग माइंड एंड ब्रेन वॉज सो गुड जो मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट में एक लेजेंड माना जाता है, उनकी लीडरशिप क्वालिटी लीडरशिप एबिलिटी पर, वह है ग्रेम स्मिथ। ग्रेम स्मिथ के नाम ये रिकॉर्ड है क्योंकि 109 मैचेस में 53 जीते, आई मीन 53 विक्ट्रीज हासिल की हैं, तो आप एवरेज आप लोग प्लस माइनस एरिथमेटिक आप लोगों को मैथ्स पता होगा, तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द मैचेस जो उन्होंने साउथ अफ्रीका को लीड किया है उनमें उनको जीत भी दिला, एंड दैट इज व्हाट मेक्स ग्रेम स्मिथ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट। बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज थे एंड उस जमाने में, जमाना क्यों बोल रहा हूँ मैं, ज़माना तो पता नहीं 40-50 साल की बात होती है, वेरी रिसेंटली आई मीन अगर रिकी पॉन्टिंग की मैंने बात की और साथ साथ सौरव गांगुली की बात की तो उस जमाने में 20 साल पहले की बात है, ग्रेम स्मिथ वॉज नोटेड फॉर इट्स ब्रिलियंट कैप्टनसी इन टेस्ट क्रिकेट, और आज जो रिकॉर्ड जो स्टैटिस्टिक्स है हमारे सामने दिखने को मिल रहा है 109 मैचेस में 53 में उनको जीत मिली, उनको ने मतलब साउथ अफ्रीका को, दैट मेक्स हिम द मोस्ट सक्सेसफुल, नॉट इवन क्लाइव लॉयड, नॉट महेंद्र सिंह धोनी, किसी ने महेंद्र सिंह धोनी भी लिखा है, शेख इरफान साहब ने आपने महेंद्र सिंह धोनी वाज सक्सेसफुल बट नॉट एट दैट लेवल ऑफ ग्रेम स्मिथ, नॉट इवन सौरव गांगुली, नॉट इवन स्टीव वॉ, एलन बॉर्डर, क्लाइव लॉयड,
ये सब कप्तान पीछे रह गए हैं। ग्रेम स्मिथ को आज की तारीख में माना जाता है सबसे सक्सेसफुल कप्तान। आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। अगली बार एक और सवाल पूछूंगा, अगली बार परसों मैं दोबारा स्पोर्ट्स राउंड प्रोग्राम लेके हाजिर रहूंगा। वहां पर थोड़ा सा फॉर्मेट डिफरेंट है और लेकिन सवाल क्रिकेट से रहेगा और थोड़ा सा फुटबॉल से भी मैं करूंगा और आप लोगों से पूछूंगा भी। जैसे मोहम्मद रिपोन ने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता था, सो क्रिकेट खेलता हूँ और था जो भी है, बहुत अच्छा लगा। आप लोग क्रिकेट भी खेलते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े रहते हैं, इसीलिए आप लोग को स्पोर्ट्स का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज का इट्स अ गोल शो यहीं ख़त्म होता है और अगले जुमेरात को दोबारा मिलते हैं नए जज्बे और अपडेट्स के साथ सिर्फ FM 107 पर। फॉर मोर अपडेट्स ऑन स्पोर्ट्स सुनते और देखते रहिए स्पोर्ट्स न्यूज, और स्पोर्ट्स न्यूज के अलावा स्पोर्ट्स राउंडअप और इसके साथ इट्स अ गोल ओनली ऑन FM 107। एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि बी स्पोर्टी, स्पोर्ट्स को अपनाइए और अपने आप को फिट रखिए और सुनते रहिए हमेशा FM 107। यहाँ पे लेता हूँ इजाजत आप लोगों से, अल्लाह हाफिज, और मिलते हैं बहुत जल्दी इंशाल्लाह। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, एक एहसास है। कभी हमें पुरानी यादों में ले जाता है। कभी नए सपने दिखाता है। मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ द रिक्वेस्ट शो। चाहे वो किसी की याद में एक दर्द भरा गाना हो, या दोस्तों के लिए एक मस्ती भरा ट्रैक, हम बनेंगे आपकी आवाज। डेडिकेट कीजिए अपनी फेवरेट हिट सॉन्ग्स अपने अपनों को और बनाइए हर पल को खास।

0: सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम 107
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 1:30
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, देसी।
4: सलाम आदाब, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं हूं नासिया और मेरे साथ है सर्वर। हम दोनों आ चुके हैं शो में जिसका नाम है एनर्जी आर और पूरे एक घंटे आपके साथ रहने वाले हैं भरपूर एनर्जी के साथ। आज के भी शो का आगाज करें क्योंकि आज का टॉपिक भी इतना एनर्जेटिक है कि आई एम श्योर आप कनेक्ट भी करेंगे और पार्टिसिपेट भी करेंगे। वेल, पार्टिसिपेशन के लिए हमारे नंबर्स हैं 666-22107 और आप अगर हमें कॉल करना चाहते हैं देन द नंबर इज 4434377।
2: बिल्कुल सही भाई, और सभी को कहेंगे वेलकम बैक। कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड? उम्मीद करता हूँ कि बड़ा अच्छा गुजरा होगा, अपनों के साथ गुजरा होगा और अपने लिए भी गुजरा होगा और दूसरों के लिए भी गुजारा होगा जैसे मैं करके आ रहा हूँ। दूसरों को भी हंसी खुशी देना एक बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहिए मसला है, मुद्दा है जो हमें करते रहना चाहिए वक्तन फवक्तन, और उससे हम बहुत कुछ सीखते भी हैं। और जैसा कि नादिया ने बताया कि भाई साथ तो हमारा रहने वाला है पूरे घंटे
4: ये पूरे खींच खींच के ऐसे
2: मैंने कहा थोड़ा एक घंटा जरा ज्यादा लगने लगे ये सुनने के बाद ही, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स हैं वो कहते हैं कि भाई इतना टाइम पूरा नहीं होता जब नादिया दीदी आ जाती हैं, तो उसके बाद कैसे मतलब वक्त गुजरता ही नहीं है और जब गुजर जाता है तो पता चलता है गुजर गया।
4: सर मतलब मुझसे पूछिए वक्त कैसे गुजर रहा है मुझ पर।
2: कैसे गुजरना नादिया, कैसा रहा आपका?
4: गुजर रही है।
2: आपका वीकेंड कैसा रहा?
4: मेरा वीकेंड बहुत अच्छा रहता है क्योंकि दो दिन कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मुलाकात नहीं होती।
2: ओहो, और ये भी गलत हुआ।
4: और इस तरह से भी मैं कहूँगी बहुत ही अच्छा रहा। ये गलत क्यों हुआ भाई?
2: ये भी गलत हुआ नादिया।
4: क्यों
2: भाई? देखिए मुलाकात तो कहीं ना कहीं हो ही जाती है सरोवर मिर्जा की सबसे।
4: नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। वो मुलाकात जो सोशल मीडिया वाली, वो आपको मुबारक हो। हमारे हमें तो अपने हिसाब से जो ना वन ऑन वन इन पर्सन मुलाकात ही
2: समझ में तो हुई थी।
4: दोनों हाथ लीजिए, तौबा कीजिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
2: आप वक्त को झूठा साबित करने दे रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है नादिया?
4: सर मिर्जा, आज का जो मुद्दा है वो इस मुद्दे से बहुत बड़ा है।
2: क्या है आज का मौजू?
4: आज का जो मौजू है
2: मौजा, क्या है आज का मौजा?
4: ये आप ही लेकर आए खूबसूरत।
2: वाह वाह वाह, क्या बात है, मौजे की भी और मेरी भी।
4: आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है कि सोशल मीडिया ने हमारी और आपकी दोस्तियों को किस तरह से तब्दील किया है। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया की वजह से दोस्ती का जो स्टाइल है, जो पैटर्न है, उसमें चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं? बस यही आज हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि आपको वाकई खुशी होती है कि सोशल मीडिया पे आपके दोस्त वाकई आपके सच्चे दोस्त हैं, या फिर अभी भी इस सवाल को लेकर एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है। हमारे साथ जुड़िए और हमें बताइए सोशल मीडिया और आपकी दोस्ती।
2: बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ के बता सकते हैं आप। और क्या कहती है नादिया, बिस्मिल्लाह कर दी जाए?
4: बिल्कुल,
2: चलिए साहब यहाँ पर पहले कॉलर जो है हमारे साथ जुड़ गए। हाय,
5: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहलन व सहलन, कौन है हमारे साथ? तौफीक भाई, तौफीक भाई जब 1.5 साल बाद आपसे बात होगी तो ऐसे ही होगा। तौफीक भाई कहाँ थे आप?
5: वो आपको मालूम नहीं मेरे साथ क्या हुआ?
2: ओ नहीं है,
5: नाजिया बहन को तो मालूम है।
4: हाँ, मेरे वालिद,
5: आप दुआ कीजिए बस, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था।
2: I'm sorry, इनलिल्लाहि व इनलिहि राजिऊन। मुझे नहीं खबर थी भाई, और इत्तेफाकन जाहिर बात है मशगूलियत में शायद मुझे पता भी नहीं चल पाया। अल्लाह ताला गरीब रहमत करे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, और आप तमाम अहल खाना को अल्लाह सुबहान व तआला सब्र जमील अता करे, मेरी यही दुआ है। आई एम वेरी सॉरी, मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था।
5: कोई बात नहीं,
2: I understand.
5: और सब ठीक है आप लोग?
4: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग खैरियत से
5: हैं। जो आप इस साल की आपने मीडिया से हमको भाई बहन मिल गया ना सब।
4: अच्छा, सोशल मीडिया से हम, ओके, चलिए
5: आप लोग मेरे भाई बहन और खासकर सैफ रहमान अंकल और महमूद अंकल, ये मेरे वालिद जैसे हैं, जो दो वालिद भी मिल गए, मेरे वालिद तो चले गए, अभी मैं बोलता भी हूँ उनको आई भी अल्हम्दुलिल्लाह।
4: चलिए आप मतलब इस चीज को अच्छा ही मानते हैं कि कहीं ना कहीं आपने आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये लिंक जो ऑन एयर हमारा है ये तो हैर है ही हमारा रिश्ता, लेकिन इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे भी जो कनेक्शन है और इसे आप ट्रूली एडमायर करते हैं, है ना, यही आप कहते हैं
5: इंशाल्लाह। बिल्कुल,
4: चलिए ये भी नाइस है, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर कॉल, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज,
2: अल्लाह हाफिज। भाई यही जिंदगी है, यही कहानी है हमारी भी और हम सब की भी, आज कोई और है कल कोई और उसके बाद शायद मैं, अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम करते ही हैं और यही दुआ करनी चाहिए जो चले गए अल्लाह ताला उनके ऊपर रहम करता रहे और आगे हमारे लिए भी रास्ते आसान करे। तो भाई यहाँ पर बात हो रही है आज सोशल मीडिया के हवाले से और क्या है आपका कहना, 666-22-107 पे आप अपना मैसेज कर सकते हैं और वहीं 443-443-77 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं आप नाजिया जी को कि किस तरीके से सोशल मीडिया ने आपकी जिंदगी में
4: कहीं ना कहीं मुझे लगता है आसान तो बनाया ही है ऑफ कोर्स, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। आसान तो इस तरह से है कि कहीं कहीं ना कहीं आप दूर बैठे हुए अपने फ्रेंड्स के साथ भी कनेक्टेड हैं, ये तो एक, आर वी कनेक्टेड टू सम कॉलर, ओके हेलो,
6: हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू,
6: कैसे हैं नाजिया जी और हमारे सरवर साहब?
2: अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, अजहर भाई हैं हमारे साथ, ऐसे ही लग रहा है सईद भाई और अजहर भाई दो लोगों में कंफ्यूज, बिल्कुल एक सी है, हैदराबाद से हैं दोनों तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, तो अब ये आप खुद ही बताइए कि सईद भाई हैं या अजहर भाई हैं।
6: नहीं, मुर्तजा खान है,
2: ये तो डर के शर्म है, तीसरे
4: कौन है
2: मुर्तजा खान?
6: जी मैं मुर्तजा खान बोल रहा हूँ।
2: लो भैया एक और देखो कितनी आवाज मैच हो रही है भाई, वाह भाई वाह,
4: नहीं इनकी आवाज जो है वो शाहरुख खान से कितनी,
2: नहीं नहीं हंसी मिल लेना
4: मिर्जा बेग आपकी बिल्कुल वाहियात लगी, मत हंसिएगा
6: जी, बिल्कुल बहुत काफी दिनों के बाद में मैंने सुन रहा था तो आप दोनों की आवाज आ रही थी, मैं मजबूर हो गया कॉल करने के लिए।
2: अरे अरे अरे अरे
4: जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया,
6: ये भी एक दौर था वो भी एक दौर था, बोल देना
4: बिल्कुल,
6: वो दौर याद आ गया मुझे।
2: अच्छा
6: 2020 का,
2: अच्छा ऐसा है क्या, आप जब सुनते थे हम दोनों को और जब से याद है?
4: मिर्जा बेग आपको नहीं, मेरी बात कर रहे हैं
6: जी,
4: मैं और सामिया हुआ करते थे,
2: नहीं मैं खान में हमने भी एक प्रोग्राम
6: साथ किया था, नहीं जी महेश महेश जी और हमारे नाजिया जी और काफी फरजाना सफदर आशा मुजाहिद में वो जितने भी थे माशाल्लाह, उनका दौर हमारा दौर एक साथ से चलता रहा था 2014
4: से। उस टाइम के जो लिसनर्स थे वो हमें पता है रटे हुए थे, क्यों? क्योंकि हम लोग फेसबुक पे पोस्ट डालते थे और वहाँ पे वो लोग सब मैसेज करते, कमेंट सबके आते थे ना, पहले वो दौर था कि भाई
6: वही बात बता रहा था मैं, वही फायदा हुआ, वही फायदा हुआ सोशल मीडिया का
4: जी।
6: इसके बाद में आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग ने हमको क्रिकेट का मौका भी दिया, आपने टूर्नामेंट भी खिलाए और माशाल्लाह जो पहचान नहीं थी वो पहचान आपने उसको, यानी एक मुकाम बना दिया आपने लिस्नर का, और इतना हिम्मत अफजाई और बढ़ा दिए, और जो लोग नहीं जुड़े थे वो लोग भी जुड़ गए उस दौर से,
2: क्या बात है भाई,
4: बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा,
6: बिल्कुल बहुत अच्छे प्रोग्राम, एक से एक प्रोग्राम जी, नाजिया जी ने अपने अपनी पहचान बनाई, हर अपने अपने आरजे ने अपने अपने अपनी मेहनत और लगन से पहचान बनाई और है ना लिसनर्स को मजबूर कर दिया कि मैसेज करने पर कॉल करने पर, काफी एक अच्छा दौर रहा, काफी दिन से मैं तो नहीं सुन रहा हूँ लेकिन बहुत अच्छा।
2: तो क्यों नहीं सुन रहे मुर्तजा भाई, जरा तो ये तो भी तो पता चल जाए, कई बार आपने कहा
4: मत के चलते
2: कि मैं नहीं सुन रहा हूँ, वजह है कोई उसके पीछे मशगूलियत है या कोई और वजह है?
6: हमारी माशाल्लाह जी के साथ भी प्रोग्राम कर रहे थे, आपके साथ भी कर रहे थे, अकेले भी कर रहे थे, हम पार्टिसिपेट कर रहे थे, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन
2: कहाँ थे
4: बिरयानी खा रहे थे आपसे, मतलब
2: सर्वर
4: पीछे कहाँ थे
2: इतने दिनों से, क्यों गायब थे इतने दिनों बाद तशरीफ आई, मैंने कहा खैरियत तो पूछ लो भाई की, मगर भाई ने बड़ी अच्छी चीज रिलेट करी,
6: सुनता रहता हूँ प्रोग्राम आपका 1507, लेकिन पार्टिसिपेट करने के लिए मैं थोड़ा पीछे हूँ।
4: लेकिन
6: आज मैंने आप दोनों की आवाज सुना, तो लास्ट टाइम सुना था आप वेकेशन जाने के टाइम में, उसी टाइम में मैंने सुन रहा था आप वेकेशन जाए थे शायद।
2: जी जी जी, चलिए साहब, अहलन वसहलन, बहुत अच्छा लगा मुर्तजा भाई आपसे बात करके, जुड़ते रहिए।
6: अच्छा लगा आप लोग से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सुनते हैं FM 107 तो हमारी फैमिली फैमिली फैमिली प्रोग्राम है ये। बहुत सारे बहुत कुछ सीखने को मिला हम लोग को, दीनी तालीम के एतबार से हो या स्पोर्ट के एतबार से हो या चलने के कल्चर के हिसाब से हो, रहन सहन के हिसाब से, बहुत कुछ हर तरह के प्रोग्राम मिले हमको।
2: क्या बात है, चलिए साहब, ये तो जबरदस्त बात है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह ताला इसी तरह जुड़े रहिए और दुआओं में याद रखिए।
6: और हमारे बोलते हैं ना FM 107 के गार्ड फादर सैफुर रहमान सर यहाँ तक लेकर आए।
4: जी जी जी,
6: इनका भी शुक्रिया।
2: अल्लाह ताला
6: रखे।
2: ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
4: बहुत अच्छा लगा। और प्लीज आगे भी टाइम निकाल के जुड़िएगा हमारे साथ, ठीक है?
2: इंशाल्लाह। तो ये थे मुर्तजा साहब भाई, प्यारी प्यारी बातें करते हुए। एक कॉल और लेंगे, उसके बाद हम पहला गाना भी चलाने की कोशिश करेंगे। हेलो, सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम, मेरे साथ कैसे हैं? ठीक ठाक
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ।
7: अच्छा, आप लोगों ने जो बोला ना सोशल मीडिया के
4: हिसाब से,
7: तो
4: हाँ जी,
7: मैं पाकिस्तान से ही बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में मुझे 3 सोशल मीडिया पे दोस्त मिले थे।
4: अच्छा,
7: तो उसने मुझसे उल्टा पैर हटा लिया, फिर भाग गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो दोस्त होता है ना, वो अच्छी बात नहीं है, उसके साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए।
4: फ्रॉड्स भी बहुत हो रहे हैं, सही कहा आपने।
7: तीन दोस्त मुझे ऐसे मिले थे, वो तीनों ने तीनों मुझसे पैसा लिया, फिर
4: हाँ, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट इशू एक्चुअली हाईलाइट किया कि सोशल मीडिया पे लोगों की बड़ी अच्छी अच्छी दोस्तियाँ हो जाती हैं, फिर वो जो है ना फाइनेंशियल उनके बीच ट्रांजेक्शन शुरू हो जाते हैं, फिर आपसे बोरो करते हैं मनी और फिर वापस ही नहीं आपको कभी मिलते पैसे वो। ये आपने बहुत अच्छी बात हाईलाइट की, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सोशल मीडिया की फ्रेंडशिप का। वो दोस्त होने चाहिए जिनका घर आपको पता हो, जैसे सरवन मिर्जा का मुझे पता है, इन्होंने उधार लिया, मैं घर जा सकती हूँ। अब आपको अगर घर ही नहीं पता है तो आप कहाँ से रिकवर करेंगे पैसे?
7: कुछ भी नहीं पता यार, जिसका फोन ना फोन उठाता है ना मैसेज का जवाब देता है। सर हमने भी छोड़ दिया, मैंने कहा हमने अल्लाह के नाम।
4: कितने थे आपके, कितने कितना लॉस हुआ?
7: लॉस तो हो गया था पाकिस्तानी 40,000 हो गया था।
4: ये अच्छा खासा पैसा था, ठीक ठाक था। लेकिन एक बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया। सॉरी, हमने नाम नहीं पूछा आपका।
2: मुदस्सर भाई हमारे साथ,
4: मुदस्सर हैं। ओके, सो मुदस्सर जी, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया।
7: सब लोगों को बोलता हूँ जो बात मेरे साथ बुकिंग करते हैं, नहीं करते अपनी लाइफ अपनी जिंदगी के, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी भी किसी के साथ दोस्ती नहीं बनाओ। हम यहाँ पे काम करते हैं, कोई किधर का हो, कोई भोपाल का, कोई पाकिस्तान का, हम दोस्त बनते हैं तो फिर ऐसे दोस्त बनते हैं जैसे भाई भाई रहते हैं, ठीक है? क्योंकि जानते हैं हम एक एक साथ काम करते हैं। मेरे साथ नेपाल 2017 में मेरे साथ काम करता था, अभी तक वो मेरे साथ बात करता है, कॉन्टेक्ट करता है। वो नेपाल से मुझे सामान नहीं भेजता हूँ, वो ऐसे दोस्त बनते हैं क्योंकि वो एक साथ हम काम करते हैं। सोशल मीडिया पे जो बनता है ना, वो तो कहीं का आएगा।
4: बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने हाईलाइट किया, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। और ये सबके लिए एक मैसेज भी है और पावरफुल टेक अवे भी, सो थैंक यू फॉर दिस।
7: एक बात बताओ, आज का गेम कौन सा लाए?
4: मिर्जा भाई, गेम कौन सा लाए हैं?
2: मेरे साथ ही गेम, मेरे साथ ही गेम हो गया मुदस्सर भाई, अब क्या और गेम खेलेंगे? देखिए कितना बड़ा गेम हुआ मेरे साथ, देखिए 1.5 से 2.5 के दरमियान।
4: आज सीधी
2: अभी अभी अभी गेम ओपन नहीं है, हम देखेंगे आगे क्योंकि वक्त कम होता है, तो फिलहाल हम गेम नहीं ले रहे हैं। तो आप लोगों से बातचीत ही हमारा पहला हमारी पहली कोशिश होती है, तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे आगे, हो सकता है कि एक आध दिन हम मुकर्रर करें जैसे थर्सडे वगैरह गेम के लिए, या जो बहुत ही बोरियत का दिन होता है जैसे कि आज का पहला दिन, तो ये भी कर सकते हैं। तो जैसा नाजिया जी जैसी इजाजत देंगी और जो कह देंगी वो हो जाएगा।
4: सर मिर्जा आप इजाजत लेते हैं छीन लेते
2: हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वाह क्या बात है, और देखिए लोगों की जिंदगी में क्या क्या हो रहा है, और यहाँ ऊंचा लंबा कद भी हो रहा है। आनंद राज आनंद दोबारा तशरीफ ले आए भाई रुबाई के साथ। यार जब भी इन्होंने गाना बड़ा अच्छा गाया था, कम लोगों को पता है कि ये आनंद की ही आवाज है,
4: और ये गाना उस वक्त भी सुपर डुपर हिट था वेलकम मूवी का, और यहाँ भी
2: जबरदस्त। अब दोबारा से आया है तो फिर जबरदस्त आया, जैसे हम दोबारा से आए तो हम भी जबरदस्त ही आए।
4: जबरदस्ती आए
2: खबर हटा दिए।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: हाँ जी, हुई हमारी वापसी, और वापसी तो होती ही रहती हैं। यहाँ पर आपकी कॉल्स भी हैं, बट थोड़ा सा अब मैसेजेस से शुरुआत कर लेते हैं और वेदर का हाल अहवाल भी जानेंगे। कौन है हमारे साथ, पहला मैसेज किसका था यहाँ पर? ओके, यहाँ से करते हैं शुरुआत। सलाम कहते हैं खाली, वालेकुम अस्सलाम, और लिखते हैं कतर। नाम क्या है आपका, ये नहीं बताया आपने, कतर लिखा हुआ है नाम की जगह पे भी, और कतर में तो हम हैं ही वाकई। तौफीक भाई हमारे साथ जुड़े ही थे, सलाम और आदाब पेश करते हैं सभी को। मुबीन भाई जुड़ गए हैं, सर ओ मैडम सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नादिया जी, सरवर जी, आपको और तमाम लिसनर को गुड आफ्टरनून कहते हैं। क्या बात है भाई, कैसे?
2: ये भी देखो बड़ा फर्क है सोशल मीडिया फ्रेंडशिप में, क्या होता है हम जब मैसेजेस के थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो टोन अपने हिसाब से बना लेते हैं।
1: वाह,
2: है ना,
1: क्या बात है।
2: कभी टोन गलत भी हो सकती है, जैसे अभी तुमने जिस स्टाइल में पढ़ा।
1: अस्सलाम वालेकुम, हम हैं आपके साथ
2: शहजादा भाई 107।
1: अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आई हेट सोशल मीडिया, मेजर इन लोगों को देख, अच्छा मैं लिखना चाहता हूँ, करेक्शन है, मैं इन लोगों को देखता हूँ कि गलत गलत कंटेंट जो बनाता, सर मेरा खून खोलता है। हम रियल लाइफ में भी सर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, तो सोशल मीडिया पर कैसे करेंगे यार। बस भाई हैं यहाँ पर हमारे साथ, बड़ा मसला है।
2: कभी कभी लोग इतने धोखे मिल जाते हैं, इस तरह का उनका एक्सपीरियंस होता है कि वो फिर बेचारे चाहकर भी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, गुड आफ्टरनून नाज़िया जी और सरवर भाई, कैसे हैं आप दोनों? होप वेल, वेलकम टू एनर्जी आर, दिल से देसी। यूसुफ भाई संडे आफ्टरनून सबको विश कर रहे हैं, कैसा रहा आप दोनों का वीकेंड पूछ रहे हैं नाज़िया। मुझे सोशल मीडिया से उतना लगाव नहीं है, बस न्यूज़, रेडियो और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए देखता हूँ। मैंने कोई फ्रेंडशिप एक्सेट्रा नहीं की है सोशल मीडिया पे।
2: ऐसा भी हुआ कि किसी को अपना सोशल मीडिया फ्रेंड बनाया, पर ऑल ऑफ सडन उनसे एकदम जो है वो मुलाकात हो गई, हम तो आपस में फ्रेंड्स हैं, ऐसा भी होता है ना।
1: हाँ, ऐसी फिल्में भी आई हैं, ऐसी फिल्में भी आई हैं। अच्छा। जबरदस्ती कहते हैं सरोर भाई, जबरदस्ती में से आई हटाएं तो जबरदस्ती होता है। ओके मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं। ओके सलाम ब्रो एंड सिस,
2: वालेकुम
1: अस्सलाम वरहमतुल्ला। आसिफ आलम है हमारे साथ, क्या बात है यार। ओके नसीम भाई हैं हमारे साथ, ये कौन है? सुन रहा हो कहते हैं रिपोन।
2: अच्छा,
1: क्या सुन रहे हैं
2: रिपोन? रिपोन भाई
1: नसीम भाई कहते हैं अच्छा।
2: ओके चलिए जी, थैंक यू सो मच आप सभी के मैसेजेस के लिए। और क्या हम कॉलर की तरफ जा रहे हैं? ओके हेलो,
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों?
2: वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से, आप कैसे हैं?
3: अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं।
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नाम पूछे? शुएब है। ओके
3: जी, मेरा नाम शुएब ही है।
2: जी जी, आपका नाम शुएब?
1: शुएब ही शुएब था कल तक तो, मतलब जुमेरात तक तो शुएब था, ये बी आ मैं समझ गया भाई। वो मसला ऐसा है, ये आदमी इतना, मतलब ये आदमी मैं क्या बताऊं, इस कदर माशाल्लाह, इनसे सीख लेनी चाहिए। कुछ लोग देखिए, अल्लाह ताला सबको जन्नत में लेके जाएंगे ही सुभान अल्लाह, कुछ लोग ऐसे अमल करते हैं जो दुनिया में ही जन्नत कमा लेते हैं। शुएब भाई माशाल्लाह उनमें से एक है।
3: बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ते
1: यार, मैं तो दुआएं दे रहा हूँ, इतनी अच्छी बात कह रहा हूँ शुएब भाई।
3: दुआएं नहीं दे रहे हो आप लोग, मुझे पता है कैसे कैसे कमेंट कर रहे हैं आजकल।
2: हाँ, ये इस तरह की दुआएं देते हैं कि वो भी लगती ही नहीं सही, आगे अजीब सी लगती है।
3: वैसे भाई साहब मैं आज बहुत खुश हूँ मिर्जा साहब।
1: अरे वाह माशाल्लाह, क्या है ऐसा खास? सही सोच रहा हूँ,
3: 5 साल से कतर में हूँ
2: माशाल्लाह।
3: ठीक है, तो एक बिल्डिंग के नीचे से मैं रोज गुजरता था, तो मैं रोज सोचता था यार कभी ना कभी मुझे इसमें काम करना है, मुझे बस इस जगह पे जॉब करनी है।
2: अच्छा।
3: तो जी अभी मैं कुछ दिन पहले मैं ऑनलाइन वैकेंसी देखी, मैंने आज उसको अप्लाई कर दिया और आज ही इंटरव्यू देके आ
2: रहा।
1: वाह वाह, मबरूक मबरूक मबरूक भाई, अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे, आपके रिस्क में और बरकत हो, और इंशाल्लाह ताला आप खुश रहें भाई इसके साथ, और इंशाल्लाह जो भी आउटपुट है उस कंपनी को आप और आगे ले जाएं।
2: कंफर्मेशन लेटर आ गया अभी तो,
3: इंशाल्लाह
1: क्लियर कर लिया इंटरव्यू पूरे तरीके से, इंशाल्लाह मुझे लग रहा है।
2: अल्लाह ताला बहुत ही अच्छा लगा जान के, और इंशाल्लाह अच्छी जब गुड न्यूज होगी तो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह।
3: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर।
1: इन इस चीज से हम सभी गुजरते आए, गुजर रहे हैं, गुजरेंगे भी, अल्लाह ताला बस ये है
2: कि नीचे से आप भी गुजरेंगे।
1: जिसको जो पसंद है वो पसंदीदा काम करने का मौका मिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार बड़े बड़े एग्जांपल्स हमारे सामने, स्पोर्ट्समैन हो, सेलिब्रिटी कोई भी हो, वो देर आए दुरुस्त आए, बट जो वक्त गुजर गया गुजर गया, तो पहले से ही अल्लाह ताला दिलों में डाल दे और हमें आसानी हो। तो क्या कहते हैं शुएब भाई, सोशल मीडिया के हवाले से आज का हमारा
2: क्वेश्चन है। सोशल मीडिया की दोस्ती,
3: इसके जितने फायदे हैं उतने ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। बस आप अब मतलब ऊपर ये आपके कि आप किस तरह से यूज कर रहे हैं सर।
1: ओके
3: अब जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं सोशल मीडिया पर हूँ, सब जगह पर हूँ, हर प्लेटफॉर्म पर हूँ, लेकिन कहीं मैं किसी तरह की कुछ पोस्ट नहीं करता हूँ, कहीं पे किसी तरह का मैसेज नहीं भेजता हूँ, कुछ नहीं, कोई स्टेटस नहीं, इस तरह से मतलब एकदम हाइड तरीके से।
2: अभी किसी को छुप के किसी की जो है जासूसी कर रहे हैं जब है, और
3: नहीं मैंने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मैंने हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक अलग तरीके के लिए यूज करता हूँ। जैसे कि अब इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम मेरे लिए एक न्यूज हब

0: मैं लोग वहाँ पे जाते हैं दुनिया भर के कंटेंट बनाते हैं, सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक न्यूज है। मैं सुबह को उठता हूँ, अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि बचपन से न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है। अब न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ता नहीं, उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो उसको मैंने अपना न्यूज़पेपर बना रखा है। और अगर जैसे कि मेरे पास थोड़ा बहुत टाइम है और मुझे टाइम मिल रहा है, तो मैं थोड़ा सा कभी यूट्यूब देख लेता हूँ, जैसे कि छोटे मोटी रील्स आती है तो उसके लिए टिकटॉक देख लेता हूँ,
1: छोटी वाली देखी
0: तो
2: बहुत अच्छा लगा जान के। तो मतलब इस तरह से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है बिना जाने पहचाने जल्दी जल्दी ऐड करते हैं, या वाकई आप थोड़ा सा
1: आप वो मान लेते हैं उनके बाद, मतलब कैश वैश दे देते हैं आप लोगों को?
2: नहीं,
1: अकाउंट किस नाम से आपका शुभ भाई
2: बताइए?
1: नहीं शुभ भाई,
0: मेरा नाम है मिस्टर नथिंग 974।
1: मिस्टर नथिंग
2: नहीं, इनका अपना नाम ही बदल के सर्वर मिर्जा बे। अब जितने फ्रॉड्स हैं इधर आए
1: भाई, वाह क्या कहने, और हर कोई अपनी एक नई बात शेयर कर रहा है और उसी हिसाब से शुभ भाई ने भी करी। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया,
2: मीडिया दोस्ती ये सब ये मानते नहीं है, उन्होंने बहुत ही यूजफुल तरीके से
0: मेरे सोशल मीडिया पे मेरा कोई भी फ्रेंड को मैंने ऐसे ऐड नहीं करा ना, मैं किसी की अगर रिक्वेस्ट आ भी जाती है तो मैं उसको डिनाइड कर देता हूँ।
1: चलिए साहब अच्छी बात है, और कुछ ना कुछ सीख ही मिलती है सबसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया शुभ भाई आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। ओके ओके, एंड फॉर नाउ लीजिए साहब हैप्पी बर्थडे, बर्थडे बॉय का गाना सुन रहे हैं आप लोग, हरविंदर सिंह साधु। अब कौन हुआ बताइए,
2: ये तो जो सिंगर है ही कमाल के, लेकिन ये जो मौसम का हाल चल लिए बैठे हुए हम,
1: ये हम बताएंगे थोड़ी देर, आदि साधु का गाना सुन

इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: लीजिए साहब, बज गए 2:02।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी, देसी।
3: वेदर का हाल 107 देनाल।
4: राइट दोस्तों, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, सर्वर और नाजिया, हम दोनों आपके साथ हैं। और चलिए, इस वक्त मौसम कैसा है वो आपको बता दें। तो मौसम आज भी सनी और गर्म रहने वाला है। वहीं पर अगर करंट टेम्परेचर की बात की जाए तो इट्स 40 डिग्री सेल्सियस, बट यू गोना फील लाइक 45। अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो 42 रहेगा, मिनिमम 34 रहेगा, और जैसे मैंने कहा कि आपको फील होगा 45। इसके अलावा आसमान पूरी तरह से साफ है, क्लाउड्स हैं थोड़े बहुत, लेकिन रेन के कोई चांसेस एज सच नहीं है। वहीं पर अगर मैं विंड की बात करूं तो हवा जो है वो ईस्ट डायरेक्शन से चल रही है और हवा की स्पीड है 14 से 18 किलोमीटर पर आर। कभी कभी जो है शाम में थोड़ी सी हवा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो ह्यूमिडिटी आज मॉडरेट से हाई साइड पर है, विच इज़ लाइक 44 से लेकर 51% के दरमियान, और शायद इसी वजह से गर्मी जो है वो एक्चुअल टेम्परेचर से थोड़ा और ज़्यादा हमें और आपको महसूस होगी। वहीं पर यूवी इंडेक्स की बात की जाए तो आज यूवी इंडेक्स वेरी हाई कैटेगरी में है। अगर आप आफ्टरनून में बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर आप सनग्लासेस का इस्तेमाल करें, सनस्क्रीन जरूर लगाएं, और हाँ, पानी वगैरह का ख्याल रखिए और डायरेक्ट सनलाइट से बच्चों और एल्डरली पीपल को बचाने की कोशिश कीजिए। बाकी मौसम ऐसा ही रहेगा कुछ दिनों तक, आई मीन दिस वीक, तो बस अपना ख्याल रखना है, हाइड्रेटेड रखना है और इस दिन को एंजॉय करना है।
1: वैसे क्यूएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक आज और कल बारिश के इम्कान बने हुए हैं।
4: ये तो कभी भी बोलिए ही मत।
1: बने हुए क्यूएमडी की जानिब से है, तो बने हुए हैं, तो उम्मीद पे, कहने का मतलब ये उम्मीद पे दुनिया कायम है।
4: नहीं, वो तो है ही, तो आपने जब जब कहा बारिश होगी ओले पड़े, जब आपने कहा ओले पड़ेंगे तूफान आया।
1: एक्चुअली सर मुंडवाना था इसलिए नाजिया, वो ओले और बारिश होनी थी, आपने आधा काम मुझ पर छोड़ दिया, अपने आप जो काम करना था वो किया नहीं आपने। बैकग्राउंड म्यूजिक किस खुशी में चेंज है गया सरोवर भाई, ये तो वही है यार। अच्छा, मेरे ख्याल में ये याद कर रहे होंगे हमारा वीकेंड वाला, तो वीकेंड पे अलग रहता है ब्रो, बैकग्राउंड म्यूजिक वाला गाना चला दो। अरे यार, बैकग्राउंड म्यूजिक के पीछे लग गई आसिफ आलम भाई। अच्छा चलिए, देखते हैं अभी और आगे बढ़ते हैं। सलाम सरोवर भाई और नाजिया बहन, कौन है ये? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अरमान मलिक है हमारे साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नाजिया को और वाई को जबरदस्ती शो में बैठा दिया गया। क्या कौन है ये? रिपोन आ गए। वाई
4: वाई भाई,
1: और इस पे कॉल भी आ रही है, कॉल करने के लिए नंबर बताइए नादिया क्या है।
4: अगर दोस्तों आप हमें कॉल करना चाहते हैं, नंबर है

0: 4-3-4-4-3-7-7 हमारे साथ है कोई कॉलर? हेलो,
1: अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
2: कैसे हैं भाई?
1: बढ़िया भाई, क्या हाल चाल है?
2: जेस भाई है हमारे साथ। यार आपकी आवाज एक साहब से और मिलती है, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा।
0: यही आपकी प्रॉब्लम है, जो आवाज याद करनी वो याद नहीं करें, कुछ और याद करते
1: हैं। प्रॉब्लम ये है कि नाम याद नहीं आता।
2: हाँ, याद आ गया। तलहा भाई हैं, कि उनसे भी आपकी आवाज बहुत मिलती है। आप नोटिस करिएगा कभी अगर उनकी कॉल आए।
0: वही तलहा भाई है जो हमारे तलहा भाई
2: है? नहीं, वो भी हमारे कॉलर ही है। तो कैसे हैं जैसा, कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
1: अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बढ़िया गुजरा, सो के गुजरा, अच्छा गुजरा।
2: चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खैर करे।
0: लकी गुजरा फिर तो।
2: क्या कहते हैं आज के मौजू के हवाले से?
1: हाँ, वो सोशल मीडिया का कुछ चल रहा है ना भाई?
0: सोशल मीडिया की दोस्ती कोई ऐसा है जिसको, मतलब या दोस्त की जो रिक्वेस्ट आती है ना सोशल मीडिया पे, फ्रेंड रिक्वेस्ट, बिना जाने पहचाने लोगों को ऐड करते रहते हैं कि नंबर ऑफ फ्रेंड्स ज़्यादा दिखेंगे, या फिर आप जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते अनलेस कि आप उसको जानते हो ठीक से कि नहीं।
1: नहीं, अब तो कई साल हो गए, कई सालों से फेसबुक पे तो मैं किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रही नहीं हूँ।
0: अच्छा, क्यों, क्या वजह है?
1: क्योंकि अननोन लोग ज्यादा होते हैं ना, इस वजह से बिना वजह में जो है ना ज्यादा भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती।
0: ये अच्छा लगा मुझे सुन के, ज्यादा मुझे भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती। हाँ, शायद कहीं ना कहीं प्राइवेसी का भी मसला हो जाता है।
1: क्या है ना, जब से है ना मैंने ये चीज छोड़ दी, जब से मेरा रिश्ता लगा था ना तब से मैंने छोड़ दी, क्योंकि मैंने एक चीज सोची जब मेरा रिश्ता हुआ था ना, मैंने सोचा मैंने बाद में अगर मन का अभी मैं किसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा ना और कोई मुझे मैसेज से मैसेज करेगा या कोई बातचीत करेगा ना, कहीं फर्क नहीं था। पता चलेगा कि आईडी बताने के चक्कर में ना कि हाँ भाई रिक्वेस्ट भेजो, पता करो क्या हाल चाल है इनके, कहते हैं क्या बिहेवियर है।
0: समझदारी देखिए इनके, अपनी शादी बचाने के लिए कितना दूर जाके उन्होंने सोचा।
2: अच्छा सोचा।
0: और वैसे ये बात होती भी है, लोग फेसबुक पर ट्राई करके देखते हैं कि देखिए बंदा किस तरह के, इसका कैरेक्टर कैसा है, क्या है।
1: आपसे बात करना चाहती हूँ, ये वे कहाँ से आप, मैं जो है ना सीधे तरीके से बात नहीं करता था, बड़ी उल्टी सीधी बातें करके ना ब्लॉक कर देता था।
0: उल्टी सीधी बातें करके ब्लॉक करते थे।
2: और पता चला सही जगह से मैसेज आ रहे थे तो उल्टी सीधी बातें, अब जाके जो है जैसे भाई से सीधे सीधे हिसाब लिया जा रहा है उन चीजों का। ऐसे
1: नहीं नहीं भाई, एक चीज है, नहीं जब शादी हो गई ना, शादी के बाद में रात खुला कि वो मैं ना अपनी फ्रेंडों से, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट
2: ली। हाँ वही वही वही है मेरा कहने का मकसद, वही है वही मैं कह रहा हूँ। तो वो तो चलिए अच्छा हुआ,
0: इनका जो शक था ना वो तो सच ही साबित हुआ भाई, आपने काफी समझदारी से काम लिया
2: बचते हुए। नहीं बच गए एक्चुअली,
0: बाल
2: काम समझदारी से ले लिया, बात अलग ये है कि हकीकत क्या थी वो किसको पता, समझ रहे?
1: नहीं पता था भाई, मैंने फिर भी अपने मन का हाँ एक चीज है, अपनी सेफ्टी की एक बाउंड्री रख लो फिर भी।
2: चलिए साहब बहुत बढ़िया,
0: सही, बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छी एडवाइस भी आपने हम सबको दी।
2: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जैस भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: फेसबुक पर तो कोई भी रिक्वेस्ट आती है मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता।
2: ओके देन, चलिए तो हम नहीं भेजेंगे भाई, एहतियात करेंगे। आपने 3-4 बार
1: कह दिया, हमने आपको अरे फॉलो कर रखा है इंस्टाग्राम पे, देख लेना।
2: अरे मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया जैस भाई, इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात और बात होती है। थैंक यू। तो भाई से भाई जैस भाई हमारे साथ कुछ मैसेजेस, एक मैसेज एक कॉल कर ले, कॉल है क्या? हाँ है। ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सरवर और नाजिया?
0: वालेकुम अस्सलाम,
2: रामीन,
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों खैरियत से हैं। और एक
2: आप कैसी हैं, कैसे हैं, ये मैं डीपी पे नहीं समझ पाया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है, और कौन है हमारे साथ?
3: नवीर आसिफ बात कर रहा हूँ सर, बिलोंग टू पाकिस्तान इस्लामाबाद एंड नाउ इन दोहा।
2: नवीद आसिफ भाई, हाँ
3: एग्जैक्टली,
2: तो पहली बार बात हो रही है आपसे हम लोगों की।
3: सर आप बिलीव करें, मैं पाकिस्तान में भी रेडियो सुनता था तो वहाँ मेरी कॉल कनेक्ट नहीं होती थी, पिछली दफा भी मैंने कनेक्ट की वीकेंड से पहले तो आपसे बात नहीं हो पाई। आज देखें खुशकिस्मती, पहली दफा कतर में।
2: अरे अहलन व सहलन, मतलब आप पाकिस्तान में हम लोगों को सुनते थे FM 107 को? है
3: एग्जैक्टली सर।
2: वाह,
3: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता था, और बट यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि आपसे बात भी हो गई। और फेसबुक पे मैं सर्च कर रहा था, मैं चाहता था कि मैं फेसेस भी देखूं

0: सुनने के लिए मिल जाते हैं। और बाकी जैसे नाजिया ने बताया कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, एक्स पे, टिकटॉक पे, हर जगह हम हाजिर खिदमत है आपके लिए।
1: हैंडल हमारा इसी नाम से, हम भी पर्सनली भी हम दोनों हाजिर हैं, तो वहाँ भी आप हमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
2: मैं तो लास्ट मंथ मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे लिया है, तो डेफिनेटली मैं आप सबको ट्रीट दे दूंगा।
0: अरे मिल गया लाइसेंस, मिल गया,
1: खुश, देखिए आपकी खुशी।
0: अरे मबरूक, पार्टी, बधाइयां, मिठाइयां, क्या बात है भाई।
1: सर मैंने आपको सिर्फ सिर्फ बधाइयां ही तक रखा है, मिठाइयों से दूर।
0: नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात थोड़ी है। तो आसिफ भाई क्या कहते हैं, नवेद भाई कहूँ या आसिफ भाई कहूँ? नवेद भाई कहूँ, है नवेद नाम है ना?
2: फादर का नाम था।
0: हाँ, ओके। तो नवेद भाई क्या कहते हैं सोशल मीडिया के हवाले से,
1: दोस्ती भी
0: आपको इतना कुछ हमने बताया अभी, अब आगे दोस्त बनाएंगे आप? नहीं बनाएंगे हम जैसों को,
1: आपको तो
2: नहीं। सर मैं अपने कॉलेज लाइफ से ही, जब मैं पाकिस्तान में रहता था, तो मैं स्ट्रेंजर जो पीपल से, मैं उनको कनेक्ट नहीं करता था। इवन अभी भी 1000 प्लस रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है
0: यार हमारी तरफ भेज दी।
2: आई विल नेवर प्रेफर टू एनीवन के आप किसी भी फेक अकाउंट्स होते हैं सर, उसमें फायदा नहीं है। मेरी सजेशन
1: सही काम
0: है, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है भाई, और जो जो अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ो अमान में रखे, खैर के साथ रखे, मगर आप जब देखेंगे कि वो 70,000 और 50,000 व्यूज और सारी चीजें, कमेंट नीचे एक भी नहीं होता या लाइक 2-4-5 ही होते हैं, तो ये एक स्कैम भी है आजकल चल रहा है, ये एक तरीके से रैकेट है, कमाई है। तो ख्याल भी रखें, और जो भी दोस्त बनाए अच्छे और पक्के बनाए, सरवर मिर्ज़ा में से एक है, कितने दिन हो गए कतर में?
2: सर मुझे कल 5 सितंबर को 1 साल मुकम्मल हुआ है।
0: अच्छा, ओके ओके, मगर आज पहली बार बात हो रही है, आप पहली बार कॉल किया आपने?
2: जी सर मैंने पहले से अलमीरा में क्यूसी की जॉब कर रहा था, मेरे पास लाइसेंस आया, तो जैसे ही मेरे पास लाइसेंस आया तो मैंने रेडियो कनेक्ट किया।
0: चलिए साहब, अब ये रिश्ता कायम रहना चाहिए इंशाल्लाह,
2: हमेशा हमेशा इंशाल्लाह। मैं जरूर आपसे इन टच रहूंगा, और मैं इंशाल्लाह आपका वेब पेज भी विजिट करता हूँ। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: सेम हियर, सेम हियर, नवेद भाई
1: आपसे बात करके, और आगे भी जुड़िएगा हमारे साथ,
0: अल्लाह ताला खुश रखे। थैंक यू, थैंक यू सो मच,
1: जरूर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, मैंने दो बार मैंने सोचा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसे टर्न डाउन करूं
0: यार, मैं हुई ऐसा यार, मुश्किल है आपके लिए काम करना। हाँ,
1: फिर मैं तीसरी बार कर दिया।
0: अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम
0: व रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: ओ भाई, अस्सलाम वालेकुम।
1: अरे क्या मसला, आगे बढ़ते क्यों नहीं सलाम?
0: अच्छा, क्या जवाब, जवाब दे, आवाज आ रही है आपको? मेरे हेडफोन में नहीं आई यार। ओ आई एम वेरी सॉरी, कौन है हमारे साथ? चांद से उतर रहा हूँ, सीढ़ी नहीं है, देखिए ख्याली पुलाव, देखिए कैसे कैसे क्या उतरे चांद से और फैल गए नीचे आते ही। दोपहर में आए
1: रोशनी की तरह,
0: क्या हो गया?
1: आवाज कुछ आ रही है?
0: अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। इतनी प्यारी आवाज आएगी नहीं तो कहाँ जाएगी। कैसे हैं नूर भाई, खैरियत से हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह, आदाब।
0: यार ये नूर भाई या नसीम भाई है? आपने गलत बताया मुझे, लग रहा
1: है ना आप इतनी बहस
0: नहीं, मतलब नूर तो इनका तखल्लुस लग रहा है मुझे, क्योंकि शायरी करते हैं। वैसे मैं कुछ नहीं
1: बोलूंगा,
0: नसीम भाई ही निकले आखिर। चलिए साहब, तो क्या कहते हैं नसीम भाई, सोशल मीडिया के हवाले से दोस्त वगैरह बनाते हैं, धोखे मिले हैं आपको?
3: पहले मैं एक बात बता दूं।
1: बताइए,
3: आपका आपकी इजाजत हो तो।
0: हाँ हाँ बिल्कुल बताइए।
3: इरशाद है?
0: हाँ हाँ, वक्त खत्म हो जाएगा, इरशाद नहीं आ पाएंगे इतनी देर में, जल्दी बता दीजिए। रात मेरी तस्वीर बना बैठा सरवर मिर्ज़ा की,
3: आपको तेरी तस्वीर बना बैठा, इतनी अच्छी लगी कि सीने से लगा बैठा।
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय, वाह।
3: सोचा कि कहीं नजर न लग जाए मेरे यार को, इसलिए अपने आंसुओं से मिटा बैठा।
0: आये हाय हाय हाय,
1: सोचा कह रहे इसीलिए मैंने हाथों से चला बैठा।
0: है, है, है। मैं लगा कि कहते मैं उस पेपर को खा बैठा कि नजर ना लग जाएगा। वाह वाह वाह वाह भाई, क्या शायरी सुनाई है। तो अब क्या कहते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, 2:15 हो चुके हैं।

0: वक्त ज्यादा मांग चलाई
1: है, वक्त ज्यादा नहीं मिला,
0: लेके आइए
2: वक्त ज्यादा लेके आइए, सर मिर्जा कान में दबा डाल के आइए,
1: वक्त ज्यादा लेके आइए। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ तो क्या कहते हैं सोशल मीडिया के हवाले से बताइए नसीम भाई। नहीं हूँ एक्टिव ही नहीं हूँ। वाह यार ये तो, ये बहुत अच्छी है, तो जोर से कहिए चीख चीख के, आज आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो, काफी चीजों से आप परेशानियों से दूर हैं।
0: फेसबुक पे आईडी है।
1: अच्छा
0: कभी
1: कभी खोल लिया खोल लिया। चलिए यार ये तो
2: चलिए अच्छी, आप अपनी रियल वर्ल्ड में हैं, एक अच्छी और सच्ची दुनिया में हैं जो आपने अपने लिए क्रिएट किया, फेक दुनिया से दूर है, ये तो बहुत ही अच्छा लगा।
1: बहुत ही अच्छी बात है वाकई।
2: आज के टाइम में शायद बहुत कम लोग होंगे, हम गिनती कर लेंगे अपने हाथ पे कि 1 2 3 उनमें आपका नाम है कि चलिए आप हैं ऐसे शख्स।
1: है क्या हो गया सरवर मिर्जा के लिए,
2: निकल लिए सरवर मिर्जा निकल लें।
1: हाँ वाकई ये तो निकल लिए।
2: अच्छा
1: पता नहीं क्या बेचारे कुछ कहना चाह रहे थे, क्या बात है। चलिए तो कुछ मैसेजेस यहाँ पर 2:16 हो चुके हैं और अल्ताफ नहीं, कौन है हमारे साथ, अल्ताफ क्यों दिखा मुझे लिखा हुआ, भाई चांद पर बैठ जाओ, नीचे मत उतरना, नीचे बहुत गर्मी है कहते हैं यार बस भाई, इनसे कह रहे होंगे मेरे ख्याल में नसीम भाई से। मुमताज अहमद साहब हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई, नाजिम मैम कैसे हैं आप दोनों, गुड इवनिंग मुमताज अहमद, इवनिंग कर दी उन्होंने, वो चांद की बातें बहुत ज्यादा चल रही थी ना, नसीम भाई ने कह के शाम करा दी। चलिए साहब तो अभी के लिए एक छोटा सा गाना भी हो जाए लगे हाथों, आय हाय
2: अरे वही गाना है,
1: ये वही है जो आपको देख के निकल जाता है सबका, आय हाय
2: मेरा ओफो।
1: करण औजला एंड नेहा कक्कड़ एक दूसरे का साथ निभाते हुए चलिए।

0: पंजाबी गाने तो यार अपने आप में, और जब सिंगर भी पंजाबी हो, क्या कहती है नादिया?
1: बिल्कुल
0: एक नंबर।
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर।

0: Desi.
1: गाइस वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर सर्वर और नासिया. हम दोनों आपके साथ हैं और हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पे जुड़ गए हैं. चलिए इनसे बात कर लेते हैं. हेलो हेलो, क्या चक्कर, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है, इनकी नहीं आ रही, मुझे
2: ड्रॉप हो रही है कॉल आज, पता नहीं क्या बात है,
1: कॉल ड्रॉप हो रही है. अभी तक तो सारी कॉल सही चल रही
2: है. हाँ, मतलब ये दो हुई है, नसीम भाई की हुई, इनकी हुई, अब ये दोबारा आ रही है, फिर देखते हैं.
1: देखते हैं. हेलो. अरे थोड़ी देर.
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
2: अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
1: अरे रहमतुल्लाहि व बरकातहू. फाइनली कौन है हमारे साथ?
3: किसी ने,
1: अरे अरे जमाल जी हैं.
3: किसी ने कहा था कि तुझे देखे हुए एक जमाना गुजरा, तस्वीर बना लूं तो तुझे खत लिखूं.
2: आए है, है, है, है, खत लिखा क्यों नहीं, अभी तक पहुंचा ही नहीं. जमाल भाई कहाँ है
3: ये
2: खत, कहाँ है?
3: देखिए आप हमसे पूछ रहे हैं कहाँ है, नापैद तो आप हो जाते हैं.
2: नहीं, खत कहाँ है?
1: नापैद बड़ा अच्छा लगा मुझे, नापैद तो आप हो जाते
3: हैं. क्या कहते हैं,
2: नापैद हो जाते.
3: तमाम सितारों के बीच में ऐसे गर्दिश होती है आपकी कि अगर आदमी एकदम मुकम्मल बीनाई को बरुए कार लाकर देखना चाहे भी नजर नहीं आते.
2: इंक बहुत गाड़ी हो गई, थोड़ी सी हल्की करी, ये बॉल पेन से लिखी है, बॉल पेन से. जवाल भाई बॉल पेन
1: इनके ऊपर से निकल गया सब कुछ.
2: खैरियत से हैं, कैसे हैं, ठीक हैं, ये नॉर्मल वाली लैंग्वेज में बताइए. हाँ ठीक हूँ मैं सर्वर, ऐसे बोलिए.
3: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर्वर भाई.
2: अब आए जमाल भाई, हाँ बहुत दिनों बाद बात हो रही है यार आपसे वाकई, और आपकी खूबसूरत बोली और इजहार बयां सुनने के लिए गालिब तो तरसी तरसे निकल ली है. अब मेरा भी नंबर था, अच्छा हुआ आपने मुझसे बात कर ली.
1: स्टूडियो से कब निकलेंगे?
2: हाँ नहीं, अच्छा
3: हुआ. देखिए उर्दू के क्लास से मुझे बाहर करके और खुद जो है ना लुगत इस्तेमाल कर रहा
2: है. अरे ये तो मोहब्बत है भाई, ये तो मजाक कर रहा था बड़े भाई से अपने, तो उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे.
1: छोटे भाई
2: नहीं नहीं ना ये बता पाएंगे ना मैं कौन बड़ा है इस वक्त, ये तो मसला दूसरा हो जाएगा. तो जवान भाई क्या कहते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, कुछ दोस्त वगैरह हैं और क्या कुछ कभी कुछ धोखे वगैरह मिले?
1: ऐसी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आती है आप ले लेते एक्सेप्ट करके.
3: सोशल मीडिया जो नहीं है,
1: हाँ
3: वही तो बात है कि सोशल मीडिया मुझे लगता है कि मुकम्मल धोखा ही है. तो अगर उसमें ये सवाल किया जाए कि आपने किसी से धोखा खाया,
2: मैं यही कहा, मैंने यही कहा धोखा खाया तो खाया है ऐसा लग रहा है, खाए हुए.
1: सरवर मिर्जा तो खाना हर जगह लाते हैं, आप यहाँ पे भी खाने के पीछे.
2: धोखे की बात, धोखा
3: वो सुनिए क्या कहते हैं अपने बड़े भाई. मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि अगर आप कभी किसी को देखे हैं कि वो रिंदों के साथ में मैखाने के सामने से राह वाले रास्ते से गुजर रहा हो,
2: अरेस्ट हो जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो.
3: लोग ये कहते हैं कि ये भी मैकशों की टोली में है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
2: क्या बात है भाई, क्या बात है जवाहर साहब, क्या बात है.
3: सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाला और धोखा न खाए,
2: हाँ,
3: आपको क्या लगता है?
2: नहीं नहीं बिल्कुल भाई, सुबह दोपहर शाम खा रहे हैं, मैं तो सिर्फ धोखा ही खा रहा हूँ.
1: इनका पेट, अच्छा आपका पेट नहीं भर जाता है?
2: नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो
1: बिरयानी गुंजाइश रह जाती है
2: सबकी के भाई, चलिए कहीं ना कहीं धोखा तो खा ही ले.
1: लेकिन ऐसा नहीं है जमाल जी, हम लोग भी यूज करते हैं सोशल मीडिया. मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कहना चाहिए, नहीं तो फौरन ही सरवर मिर्जा अगले पल धोखा देंगे कुछ ना कुछ बड़ा. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, अगर आप थोड़ा सा केयरफुली और कॉन्शियसली अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप, जरूरी नहीं कि आपको धोखा मिले ही मिले, हो सकता है मिले, चांसेस है,
2: मुझे
1: जरूरी नहीं है हमेशा कि आपको मिले ही मिले.
2: थोड़ा सा धोखा ले लीना.
3: आप डाल लीजिए बिरयानी में धोखा. मैं भी नहीं खाया हूँ मैम, सच में देखा जाए तो धोखा मैंने भी नहीं खाया.
1: हाँ.
3: लेकिन एक बात है कि हाँ. मैंने आपको पहले भी बताया है कि अरबी का एक मकूला है, अल हुक्म अक्सरुल कुल. अब आप धोखा कैसे खाएंगे ये बताइए. आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे हुए 4 साल का अरसा गुजर गया.
2: क्या शेर सुनाया भाई, वाह वाह वाह, क्या मिसरा है भाई, दोबारा मुकर्रर इरशाद 4 साल, क्या शायरी हो रही है भाई, वाह वाह वाह,
1: ये तो बहुत ही अच्छा. बोला 4 साल हो गए.
2: आप धोखा खाएंगे कैसे? आप प्लेट पे ही नहीं आने दे रही धोखे को. पहले प्लेट पे आएगा, पकेगा पहले, अरे फिर प्लेट पे आएगा, फिर खाया जाएगा.
1: नहीं पता क्या हुआ जमाल जी, मैं अब एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती, एक्सीड कर गई हूँ मैक्सिमम.
2: एक्सीड तो आप कर चुकी हैं पहले ही, अल्लाह ताला
1: अब फुल है मेरा जो है वो माशाल्लाह. अब मैं एक आध लोगों

0: सोचू डिलीट करूं तो कुछ नया ऐड करूं, यही हो सकता है।
1: यहाँ पे भी
0: सरवर मिर्ज़ा को छाटूं,
1: पहले से समझ गया मैंने, छाटने में टाइम लगेगा सरवर मिर्ज़ा को, एक दिन में नहीं निकल पाएगा। चलिए भाई जमाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और बड़ी अच्छी बातें आपकी,
0: लेकिन
1: थोड़ा पहले तशरीफ लाइए।
0: मुझे उम्मीद है कि आपसे मुझे कभी धोखा नहीं मिलेगा।
1: वाह वाह जमाल भाई, सुनिए
0: मैं सबसे पहली फुर्सत में आपको अभी ढूंढ के जो है आपकी
1: हंसी आ गई चेहरे पे, यही चाहिए थी, यही चाहिए थी। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: जी जी जी जी सरवर भाई, नहीं देरी ना, ख्वाहिश मेरी भी थी, और जब मैंने सुना आवाज आपकी तो मैंने कहा नहीं यार मैं खाना खा रहा हूँ, पता है आपको मेरा एक हाथ है ना।
1: अरे यार मोहब्बत है आपकी, ये निवाला बस मेरे ही मुंह में जा रहा है, आप ये समझ लिए अगला जो आप खाने वाले हैं।
0: हजम करें
2: तो ये उनसीयत बरकरार रखिएगा, यही मतलब।
1: जरूर जरूर आप तशरीफ लाते रहिए और हम कनेक्ट होते रहेंगे, बड़ी मोहब्बत, वक्त की कमी तंगी है, इंशाल्लाह ताला फिर बात होती है। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू
1: पहुंचा। मैं भी थोड़ी गाड़ी उर्दू करता हुआ जाऊंगा, जमाल भाई से बात हो गई है, यहाँ पर कुछ आखिरी मैसेजेस वो शामिल कर लेते हैं नादिया, और उसके बाद इजाजत। तौफीक भाई कहते हैं जमाल भाई का नंबर प्लीज भेज दो, याद ही नहीं रहा कॉल आई थी, अगर वो सुन रहे मैसेज भेज देंगे तो हम फॉरवर्ड कर देंगे,
0: अगर आप हमें इजाजत देंगे तो फिर हम।
1: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कैप्टन साहब कहते हैं, ये कौन आ गए यहाँ पे, कप्तान के एम खान, ओए होए होए क्या बात है यार, हीरो आदमी चॉकलेट के नीचे खड़े हुए हैं। ओके बढ़ते हैं आगे, यूसुफ भाई कुछ टाइप कर रहे हैं, कह रहे हैं खाने की बात कहीं से आ ही जाती है, या अल्लाह नादिया जी मेरे जॉज दर्द कर रहे हैं, हंसते हंसते यूसुफ भाई कहते हैं क्या करें अब, ये मसला ही ऐसा है नादिया का, क्या ही कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं,
0: ये कर सकते हैं कि आपको एक जगह भेज सकते हैं।
1: कौन सी,
0: दरवाजा खोलिए
1: मैं, अच्छा तारीख की बात की, सुनिए आप जहाँ भेजना चाह रही हूँ मेरे घर के बराबर में ही है,
0: वही बिल्कुल।
1: फिलहाल आज के लिए आपसे इजाजत लेते हैं,
0: अब समझ में आ रहा है कि आपका दिमागी तवाज़ुन क्यों बिगड़ा है, आना जाना जो है आपका।
1: हाँ, वो तो लोग पता पूछ के ही आते हैं कब है वो, किधर है, किस तरफ, इस तरफ। चलिए साहब एंजॉय कीजिए ट्रैक,
0: बस जाते जाते हम दोनों आपसे यही कहना चाहेंगे कि दोस्ती जरूर कीजिए, सोशल मीडिया पे भी कीजिए, जो कि आपके पुराने जो दोस्त हैं वो आपसे कनेक्ट होते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ये एक मौका है कि आप कनेक्ट हो, लेकिन सतर्क रखें,
1: बिल्कुल
0: थोड़े से कॉन्शियस रहे और समझदार,
1: सावधान रहिए और सतर्क रहिए और सुनते और देखते रहिए FM 107
0: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स हाइलाइट्स और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक गरीब किसान के बेटे की जो 23 मार्च 1935 को पाकिस्तान के चकवाल डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। शदीद गुर्बत और मुश्किल हालात के बावजूद ये लड़का आगे जाकर एशिया का सबसे तेज तरीन स्प्रिंटर बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल खालिक की, एक ऐसे एथलीट की जिन्होंने अपनी मेहनत, रफ्तार और अजम के जरिए तारीख में अपना नाम लिखवाया और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन कामयाबियां हासिल की। अब्दुल खालिक का सफर ट्रैक से नहीं बल्कि कबड्डी के मैदान से शुरू हुआ। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक बेजोड़ खिलाड़ी होने की वजह से उनकी गैर मामूली सलाहियत, ब्रिगेडियर रोदम जो पाकिस्तान आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सरबराह थे उनके सामने आई। उन्होंने फौरन अब्दुल खालिक को आर्मी बॉयज कंपनी में शामिल कर लिया, जहां उनकी फितरत में मौजूद रफ्तार को प्रॉपर ट्रेनिंग और डिसिप्लिन के जरिए और निखारा गया। और फिर आता है 1954 का एशियन गेम्स। यहां अब्दुल खालिक ने दुनिया को हैरान कर दिया। सिर्फ 10.6 सेकंड्स में 100 मीटर रेस पूरी करते हुए उन्होंने फाइनल में नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड कायम किया। इससे पहले 10.8 सेकंड्स का रिकॉर्ड इंडिया के लेवी पिंटो के नाम था, जो उन्होंने 1951 एशियन गेम्स में बनाया था। अब्दुल खालिक के इस शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें पाकिस्तान का स्प्रिंटिंग हीरो बना दिया और साथ ही साथ उनकी रफ्तार से मुतासिर होकर भारत के साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें ये एक यादगार टाइटल दिया, एशिया का परिंदा। और वाकई अब्दुल खालिक ट्रैक पर किसी परिंदे की तरह उड़ते नजर आते थे। 1954 के एशियन गेम्स में अब्दुल खालिक ने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता, जबकि 4x100 मीटर रिले में सिल्वर मेडल हासिल किया। लेकिन उनकी कामयाबी का सफर यहीं नहीं रुका। 1958 के एशियन गेम्स में अब्दुल खालिक ने अपना 100 मीटर टाइटल डिफेंड किया और दोबारा गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने 200 मीटर रेस में सिल्वर और रिले में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ने एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन में दूसरी पोजिशन जबकि ओवरऑल मेडल रैंकिंग में 6th पोजिशन हासिल की। अब दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेज उनका इंतजार कर रहा था, या ओलंपिक गेम्स। 1956 के मेलबोर्न ओलंपिक्स में अब्दुल खालिक ने 100 मीटर और 200 मीटर रेसेस में हिस्सा लिया और दोनों इवेंट्स में सेमीफाइनल्स तक पहुंचे। 200 मीटर सेमीफाइनल में उन्होंने 21.1 सेकंड्स का वक्त रिकॉर्ड किया और दुनिया के टॉप एथलीट्स में अपनी जगह बनाई। मगर दोस्तों हर चैंपियन के सफर में मुश्किल वक्त भी आता है। 1960 के रोम ओलंपिक्स में अब्दुल खालिक अपनी पिछली कामयाबियों को दोबारा दोहरा ना सके और अगले राउंड्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन रोम की नाकामी ने अब्दुल खालिक के जज्बे को खत्म नहीं किया। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वो अपना तजुर्बा पाकिस्तान के नए एथलीट्स तक पहुंचाएंगे। 1965 से 1978 तक अब्दुल खालिक ने आर्मी, पंजाब और नेशनल लेवल पर एथलीट्स को ट्रेनिंग दी और नए स्प्रिंटर्स को सामने लाने में अहम किरदार अदा किया। यानी वो सिर्फ खुद नहीं दौड़े, उन्होंने दूसरों को दौड़ना भी सिखाया। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। अब्दुल खालिक का नाम पाकिस्तान की एथलेटिक्स हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। 10 मार्च 1988 को अब्दुल खालिक रावलपिंडी में वफात पा गए, मगर उनकी कहानी आज भी जिंदा है। हर वो नौजवान जो अपने ख्वाब को हासिल करने के लिए मेहनत करता है, हर वो एथलीट जो फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है, वो अब्दुल खालिक की कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीख सकता है। एक गरीब किसान का बेटा जो पाकिस्तान का चैंपियन बना, एक एथलीट जिन्होंने एशिया को अपनी रफ्तार से हैरान कर दिया और एक लेजेंड जिनका नाम पाकिस्तान की एथलेटिक्स हिस्ट्री में हमेशा जिंदा रहेगा, अब्दुल खालिक, पाकिस्तान के फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया।
उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स हाईलाइट सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए लेजेंड, एक नए चैंपियन और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। भाई साहब, अपडेट में आपको चीजें मिलती रहेंगी और धड़ाधड़ हम आपको बताते रहेंगे। कभी कभार एआई के बारे में बात करेंगे, तो कभी हम एप्स के बारे में, तो कभी हम गैजेट के बारे में, और खबरें तो इसमें रहेंगी रहेंगी। तो आज जो है मैं आपको बहुत ही मजेदार वेबसाइट बताने वाला हूँ। कुछ एआई के भरोसे चलती हैं और कुछ जेन्युइनली बहुत कमाल की वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले मैं एक एआई, इट्स नॉट एन एआई टूल बेसिकली, मगर ये ऐसा सर्च इंजन है जो आपके काम आएगा। रेडी? ओके, तो इसका नाम है playphrase.me, playphrase.me, playphrase.me. मैं सही बोला ना? हाँ, playphrase.me। तो ये जो वेबसाइट है, इस पे जब आप जाएंगे तो आपको सामने बहुत बड़ा एक सेक्शन नजर आएगा, उसमें वीडियोस फोटोज रन हो रहे होंगे और उसके नीचे लिखा आ रहा होगा टाइप। अब क्या होता है, कई मरतबा आप ये ढूंढ रहे होते हैं अपने वीडियो के लिए या अपने कंटेंट के लिए या जनरली कि किसी ने कोई डायलॉग बोला था। मान लीजिए मुझे ढूंढना है एक डायलॉग जहां पे हीरो ने बोला ये सब क्या चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये सब क्या चल रहा है, आपने उसके नीचे लिखा और फिर ये वेबसाइट जहां जहां वो बोला गया होगा फ्रेज, वो सेंटेंस आपको लाके दे देगा। जैसे कई मरतबा होता है ना कि व्हाट इज दिस, तो अगर आपने व्हाट इज दिस लिख दिया तो जहां जहां मूवीज में, सीरीज में व्हाट इज दिस बोला गया होगा, वो सब का सब आपके सामने लाके दे देगा। इट इज सच अ यूनिक थिंग टू डू। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो काम आसान कर देगा जहां पे लोग मीम्स ढूंढ रहे होते हैं। समझ में नहीं आता यार कौन सा मीम था, यू जस्ट नो द वर्ड्स प्रोबेबली, या फिर हाफ एजर्ड वर्ड पता होते हैं लेकिन पूरा मीम नहीं पता होता। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जो आपकी कॉन्टेंट के लिए प्लग इन के तौर पर काम कर सकती है, playphrase.me। ओके, आगे बढ़े जी। चलो जी, अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जो वेबसाइट है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नाम है इसका, बताता हूं फिर भी, sketch.metademolab.com। आई नो कंफ्यूजन है ना, स्केच टाइप करना है पहले, तो sketch sketch.meta उसके बाद demolab.com, metademolab.com, ठीक है, sketch.metademolab.com। ये जब आप टाइप करेंगे इसके बाद एक वेबसाइट खुलेगी। अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए आप ड्राइंग बनाते हैं, आप अच्छी बनाते हैं, बुरी बनाते हैं, मेरी जैसी बनाते हैं, पहाड़ चढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस ड्राइंग को जब इसमें अपलोड करेंगे उसके बाद ये आपको पॉइंट्स देगा, उन पॉइंट्स को जरा आप ठीक ठीक करेंगे, अपनी जगह पे लगा देंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारा एनिमेशन मिलेगा। उनमें से कोई भी एनिमेशन आप अपनी ड्राइंग को दे सकते हैं जो आपने अपने हाथों से बनाई। बस ड्राइंग बनाई, उसका फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए, फिर देखिए क्या होगा। इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, इससे आप पूरे दिन खेल सकते हैं भाई। बोर्डम मिटाने की सबसे बढ़िया तरीका है, और स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, आपको कोई दोस्त है जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, या आपकी ड्राइंग लिटरली मेरी तरह है, तो भी आप एनिमेशन कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली ऑन द लिस्ट। इसका नाम है sketch.metademolab.com। ओके, तो ये दो वेबसाइट्स आज मैंने बताई आपको, आपके बड़ी काम आ सकती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूज दिस वीक। अब देखिए भाई, सब अपनी अपनी चिप्स निकाल रहे हैं, कोई कह रहा है ये वाली चिप हम लेके आए, कोई कह रहा है वो वाली चिप लेके आए। इस बीच जो है एनवीडिया भी अपग्रेड कर रहा है अपने सिस्टम्स को। सो गेम्स कॉम 2026 जब हुआ इवेंट, तो एनवीडिया ने अनाउंस किया DLSS 4.5 रे रिकंस्ट्रक्शन और RTX मेगा ज्योमेट्री। ये बेसिकली ग्राफिक्स को बढ़ाने की उनकी कोशिश है और रे ट्रेसिंग को बढ़ाने की। इट विल कॉस्ट अ बॉम्ब, तो देखते क्या होगा। फॉर नाउ ये थी अपडेट, मैं दोहा वाला कबीर, अगले अपडेट में मिलता हूं। स्टे ट्यून्ड एंड दिल से देसी। टेक अपडेट, टेक अपडेट।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट।
3: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस। वेल दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, ये फ्रॉड बहुत आम है लेकिन इतने नए तरीके से होता है ये फ्रॉड, या कहें इतने आम तरीके से भी ये फ्रॉड होता है कि अक्सर 95% लोग इन फ्रॉड्स में फंस जाते हैं क्योंकि वो बैकग्राउंड वेरीफाई नहीं करते हैं। और कई बार आपके बैकग्राउंड ना वेरीफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ हो ही गया हो, आपके साथ स्कैम भी हो गया हो, लेकिन चांसेस आर हाई कि ये आपके साथ फ्रॉड ही हुआ है और ये है चैरिटी स्कैम। देखिए आम तौर पे जो रोजमर्रा के कामों में लगे रहते हैं, जो ईमानदारी की कमाई करते हैं, वो चाहते हैं कि जब भी मैं चैरिटी करूं तो एक ऐसे शख्स के पास वो पैसे जाएं, वो एक ऐसे चैरिटी करने वाले लोगों के पास जाए जो असल में लोगों के फायदे के लिए, जो असल में लोगों का फायदा करें। वेल, आज हम जिस चैरिटी स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं ये बड़ा आम है, लेकिन फंसना भी इसमें बहुत आसान होता है क्योंकि हम अपने दिल से चैरिटी कर देते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते, और सही मायनों में ये बड़ा गलत है। कई बार हम जिनको चैरिटी करते हैं वो असल में आपके 100 रुपए दिए हुए चैरिटी में उसके सिर्फ 20 या 30

0: रुपए इस्तेमाल करते हैं और 70 रुपए उन चैरिटी वालों के जेब में जाते हैं क्योंकि आप सही से वेरीफाई नहीं करते। वैसे अगर देखा जाए, अगर आपने किसी शख्स को 100 रुपए दिए हैं, चैरिटी वालों को 100 रुपए दिए हैं, उन्होंने अगर 30 भी इस्तेमाल किए हैं तो वो 30 एक्चुअली में स्कैम नहीं है, वो किसी की मदद तो कर रहे हैं लेकिन ये उनका तरीका होता है काम करने का। लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर्स हैं, चैरिटी स्कैम करने वाले हैं, जो 100 के 100 रुपए वो जब्त कर लेते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं और गायब हो जाते हैं। ये एक बेहद शर्मनाक धोखा है जहां स्कैमर्स लोगों की मासूमियत, उनकी दान करने की आदत और मदद करने की जो आदत है उनका गलत फायदा उठाते हैं। ये स्कैम्स आम तौर पर किसी बड़ी मुसीबत के समय, जैसे अर्थक्वेक में या फ्लड में या हाई प्रोफाइल कोई परेशानी किसी को हुई हो, किसी कंट्री में तूफान आए हो, तो वहाँ उसके बाद अचानक जो बाढ़ आती है या परेशानी पैदा होती है, वहाँ ये स्कैमर्स अलर्ट हो जाते हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए उसके तरीकों और इसके सॉल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ये फ्रॉड कैसे होता है? स्कैमर्स जानते हैं कि लोग मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनका दिल बड़ा साफ है, इसलिए वो लोगों को इमोशनल करके अपना शिकार बनाते हैं। सबसे पहले फेक डोनेशन की वेबसाइट। ये लोग नकली डोनेशन वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस बनाते हैं। इन वेबसाइट के नाम और डिजाइन बिल्कुल मशहूर और असली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस से मिलती जुलती रखी जाती है ताकि किसी को शक ना हो। प्रेशर किया जाता है वाया फोन कॉल्स। फ्रॉडस्टर्स आपको फोन कॉल करके अचानक दुख भरी कहानियां सुनाते हैं और आप पर तुरंत पैसे डोनेट करने का दबाव या प्रेशर भी डालते हैं कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आज फला बच्चे बगैर खाए सो जाएंगे, उनका घर टूट जाएगा, उनका ऐसा हो जाएगा, ये सारी चीजें। उसके अलावा जब वो पेमेंट लेते हैं तो वो अनट्रेसेबल होता है, अनट्रेसेबल मेथड के जरिए पेमेंट लेते हैं। स्कैमर्स आपसे कैश, गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टो करेंसी के रूप में डोनेशन मांगते हैं। इसका कारण, इसकी वजह है कि इन पेमेंट मेथड को एक बार भेजने के बाद ट्रेस करना या वापस पाना एक तरह से नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इसके सॉल्यूशन भी हैं। कैसे बचा जाए इन तरीकों के स्कैम से? हमेशा ऑफिशियल टूल यूज करें, वेरीफाई करें हमेशा देने से पहले, किसी भी अनजान लिंक या ऐड पर क्लिक करके डोनेशन ना करें। अपने पैसे दान करने से पहले, देने से पहले चैरिटी नेविगेटर, गाइड स्टार या गिव वेल जैसे ऑफिशियल और ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर जाकर चेक करें कि वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रियल में रजिस्टर्ड है या नहीं। कई बार उस फ्लड वाली जगह की वीडियोस बहुत ज्यादा आ रही होती सोशल मीडिया से, वहां से वो वीडियो उठाते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं और फिर एक वेबसाइट के जरिए प्रमोट कर दिया जाता है, स्पॉन्सर कर दिया जाता है उस वीडियो को और कहा जाता है कि आप प्लीज डोनेट करें ताकि इन बेचारों की मदद हो सके। और यहीं पर होता है आपके साथ स्कैम। वाया पे वाया सिक्योर मेथड। हमेशा सिक्योर मेथड से पे करें। रियल और लीगल चैरिटीज हमेशा क्रेडिट कार्ड या सिक्योर चेक पेमेंट लेती हैं। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर अगर फ्रॉड हो भी जाए तो आप अपने बैंक में डिस्प्यूट क्लेम कर सकते हैं। हाई प्रेशर के टैक्टिक्स को अवॉइड करें। डायरेक्ट डोनेशन बेस्ट है। किसी थर्ड पार्टी कॉलर या सोशल मीडिया मैसेज के बहकावे में आने के बजाय हमेशा उन मशहूर और बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे रेड क्रेसेंट है, यूनिसेफ है, उन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद ब्राउजर में टाइप करके ओपन करें और डायरेक्ट वहां से दान करें, वहां से पेमेंट करें, वहां से चैरिटी करें। इस तरह के जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि ये फ्रॉड अवेयरनेस एपिसोड जानकारी से भरा रहा होगा और आप नए जमाने के नए फ्रॉड से बचने के लिए तैयार होंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी आपसे कल इसी शो में जिसका नाम होगा फ्रॉड अवेयरनेस। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107।
2: दिल से देसी।
3: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। आज हम बात करेंगे अर्निंग ग्लोबली एंड स्पेंडिंग लोकली। कितना इंटरेस्टिंग साउंड करता है ना। देखिए, आज के मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में एक नया लाइफस्टाइल बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहा है जिसे हम और आप अडॉप्ट भी कर रहे हैं। इस लाइफस्टाइल को कहते हैं डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल उस लाइफ

ऑफिस या सिटी तक महदूद भी नहीं रहता। वो दुनिया के किसी भी मुल्क से अपना काम कंटिन्यू कर सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को अक्सर अर्निंग ग्लोबली स्पेंडिंग लोकली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फिर कंपनी से इनकम अर्न करते हैं, लेकिन अपने डेली एक्सपेंसेस उस जगह के मुताबिक करते हैं जहां आप रह रहे होते हैं। डिजिटल नोमैड बनने का सबसे बड़ा फायदा फ्रीडम है। पिछली जनरेशंस को ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से काफी जॉब्स ऑनलाइन हो चुकी हैं। फ्रीलांस राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजिटल मार्केटर्स, ऑनलाइन टीचर्स और कंटेंट क्रिएटर्स दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा यूरोप या अमेरिका की कंपनी के लिए काम कर रहा हो और किसी कॉम्पिटिटिव अफोर्डेबल कंपनी में रह रहा हो, तो उसकी सेविंग पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़ सकती है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई फ्रीलांसर एक इंटरनेशनल क्लाइंट से $3,000 पर मंथ कमाता है और उसे ऐसी सिटी में रहने का मौका मिलता है जहां लिविंग कॉस्ट रिलेटिवली कम है, तो उसके पास ज्यादा पैसा सेव करना और इन्वेस्ट करने का चांस बढ़ता है। और शायद इसी वजह से बहुत से डिजिटल नोमैड्स ऐसे मुल्क को पिक करते हैं जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो और इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी हो। लेकिन ये लाइफस्टाइल सुनने में जितना अट्रैक्टिव है, उतना ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी रिक्वायर्ड करता है। सबसे पहला चैलेंज जो इसका है वो है इरेगुलर इनकम। ट्रेडिशनल जॉब्स में तो हमारी आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है, लेकिन फ्रीलांसिंग या फिर रिमोट प्रोजेक्ट्स में इनकम हर मंथ डिफरेंट हो सकती है। कभी कम कमाया तो कभी ज्यादा कमाया, और शायद कभी कुछ भी नहीं। इसलिए ये लाइफस्टाइल जो है वो बजटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल हमें और आपको सिखाता है। देखिए, बजटिंग का मतलब है हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को प्लान करें। स्मार्ट डिजिटल नोमैड्स हर मंथ अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस, जैसे रेंट है, आपका फूड है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है, इंटरनेट है, इन सब के लिए बजट एलोकेट करता है। जो पैसे बच जाए उसका कुछ हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना। इससे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाता है। देखिए, इमरजेंसी फंडिंग भी डिजिटल नोमैड फाइनेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि रिमोट वर्कर्स के पास हमेशा जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। इसलिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कम अज कम 3 से 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस सेव करके रखे जाए। बस आपसे यही आखिर में जाते जाते कहूंगी कि डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल ट्रैवलिंग का नाम नहीं है। असल सक्सेस स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है। अगर कोई पर्सन ग्लोबली इनकम अर्न करे, लोकल लेवल पर वाइजली स्पेंड करे, रेगुलर सेविंग्स करे, इमरजेंसी फंड मेंटेन करे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत करीब होता है। लिहाजा डिजिटल नोमैड फाइनेंस का जो बेसिक रूल है वो ये है कि अर्न स्मार्ट, स्पेंड वाइजली, सेव कॉन्स्टेंटली एंड इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। जो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ रिमोट लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लेते हैं, वो सिर्फ दुनिया एक्सप्लोर नहीं करते बल्कि अपनी वेल्थ भी स्टेटली बिल्ड करते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए एक नई टर्म आपने सीखी ली और किस तरह से उसको समझा है और कितना अप्लाई करने वाले हैं आप, ये मुझे बताइएगा जरूर 666-22-107 पर। फिलहाल आपसे इजाजत लूंगी, कल होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, देखते हो सुनते रहिए FM 107।

सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया थमने ना पाया दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूफ प्लेटफॉर्म पर

या फिर किसी भी कंट्री की बात करें, हमारे कतर की कुछ जगहों की बात करें, एक छोटे बुटीक ओनर के बारे में अगर हम सोचें तो पहले उन्हें इन्वेंट्री, कस्टमर ईमेल्स और शिपिंग के लिए 4-5 लोग चाहिए होते थे, और आज उनका AI एजेंट खुद ईमेल्स का जवाब देता है, वेबसाइट्स पर नए डिजाइन अपलोड करता है और सप्लायर से मोल भाव या यूं कहें नेगोशिएशंस भी कर लेता है। सो नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि अमिता, क्या ये मेरी नौकरी तो नहीं खा जाएगा या मेरी नौकरी तो नहीं ले लेगा? हाँ, वेल, ये सवाल हर घर में पूछा जा सकता है। इसका एक्सपर्ट जवाब ये है कि AI इंसानों को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि टास्क्स को रिप्लेस कर रहा है। AI के दो बड़े फायदे हैं जो स्पेशली 2026 में हम देख रहे हैं, दैट इज स्पीड, रफ्तार। पहले एक मार्केटिंग रिपोर्ट या डेटा क्रंचिंग में 3 दिन लगते थे और आज 3 सेकंड्स में काम हो जाता है। पर्सनलाइजेशन, पुराने सॉफ्टवेयर्स 1 size fits all होते थे, मगर आज का AI आपके स्टाइल, आपकी आवाज और आपके बिजनेस गोल्स को पहचानता है। अब काम करने का तरीका बदल चुका है, आप अब वर्कर नहीं है, आप एक कंडक्टर बन चुके हैं। सोचिए एक म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा के बारे में, AI वो सारे साज, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहा है, लेकिन धुन, ट्यून क्या होगी, कब रुकना है और कब तेज होना है, ये फैसला सिर्फ आपका है। आपकी वैल्यू अब इसमें है कि आप कितने बेहतरीन इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है कि नहीं। अब आगे बात आती है द ट्रस्ट क्राइसिस की, यानी डीप फेक्स एंड सिक्योरिटी की। तो जनाब, जहां रोशनी होती है ना, वहां साया, यूं कहे शैडो भी होता है। सो AI की इस ताकत का एक दूसरा रुख भी है जिसे हम द ट्रस्ट क्राइसिस कहते हैं। 2026 में हम पहुंच गए हैं परफेक्ट पैरिटी के दौर में। इसका सीधा मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन हो गई है कि एक AI जनरेटेड वीडियो और एक असली वीडियो में फर्क करना बड़ा मुश्किल हो गया है, या यूं कहे इट्स टोटली इम्पॉसिबल। ये डीप फेक एरा है। आजकल ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं जो बड़े बड़े टेक सेवी लोगों को भी हैरान कर देते हैं। सोचिए एक माँ को कॉल आता है, फोन पर उनके बेटे की आवाज है, बिल्कुल वही टोन, वही बोलने का तरीका। वो कहता है, मॉम मैं थोड़ी मुश्किल में हूँ, इमरजेंसी है, जल्दी से इस लिंक पर ना कुछ पैसे ट्रांसफर कर दो। अब बेचारी माँ क्या सोचती है कि अरे बेटे को जरूरत है कि नहीं, और शक भी नहीं करती, और उसकी आवाज बिल्कुल सेम है तो वो समझ जाती है कि मेरा बेटा ही है, मगर वो उनका बेटा नहीं होता, एक वॉइस क्लोन होता है। अब इस धुरंधर टेक की दुनिया में हम खुद को और अपने घर वालों को कैसे महफूज रखें, चलिए कुछ एक्सपर्ट सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले द सेफ वर्ड स्ट्रेटजी, ये सबसे पुराना और सबसे कारगर नुस्खा है। यूं कहे तो अपने परिवार के साथ एक सीक्रेट सेफ वर्ड रखिए, जैसे ब्लू बिरयानी या डेजर्ट फॉक्स। अगर कभी भी कोई अजीब कॉल आए, चाहे आवाज कितनी भी असली क्यों ना हो, उनसे वो सीक्रेट वर्ड पूछिए। अगर वो नहीं बता पाए तो समझ लीजिए वो AI है। सेकेंड स्टेप इज डिजिटल वाटर मार्किंग। वेल, अरब वर्ल्ड में UAE और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट्स ने कुछ बहुत सख्त कानून बनाए हैं। अब हर AI कंपनी के लिए लाजमी है, मैंडेटरी है कि वो हर AI वीडियो या फोटो में एक डिजिटल सिग्नेचर छुपाएं। यस, सो हमेशा वेरीफाई करें कि कंटेंट AI सर्टिफाइड है या नहीं। उसके बाद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इज इन पर्सन वेरिफिकेशन। बिजनेस की दुनिया में हम वापस ओल्ड स्कूल जा रहे हैं। यस, बड़े डील्स या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के लिए अब ईमेल या वीडियो कॉल काफी नहीं है। लोग अब फेस टू फेस मिलना पसंद कर रहे हैं या फिर फिजिकल हार्डवेयर कीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हैक नहीं की जा सकती। बल जनाब, टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी होशियारी दिखानी है। जैसे 2000s में हमने सीखा था कि किसी अनजान ईमेल लिंक पर क्लिक नहीं करना है, वैसे ही 2026 में हमें सीखना है कि हर वीडियो और हर वॉइस पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करना है। टेक का लिहाज या यूं कहे टेक की रिस्पेक्ट करिए, लेकिन कंट्रोल अपने हाथ में रखिए, क्योंकि आखिर में मशीन के पास डेटा हो सकता है पर इंसान के पास इंट्यूशंस, विजडम होती है। पर दुनिया भर में AI को लेकर क्या चल रहा है, कभी सोचा है इस बारे में? जरा सोचिए, क्या हर कंट्री में AI एक ही तरह से काम करता है? बिल्कुल नहीं। आज हम दुनिया के एक डिजिटल टूर करेंगे और देखेंगे कि कैसे अलग अलग मुल्क में, अलग अलग कंट्रीज में इस टेक्नोलॉजी

जी को अपनी जरूरत के हिसाब से मोल्ड किया जा रहा है. सबसे पहले अगर हम अरबिक वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, यूं कहें तो एक रेवोल्यूशन चल रहा है जिसे हम कहते हैं द ग्रेट अरबिक मॉडल रेस. यस, आपको याद होगा कि 2023 में हम सब चैट जीपीटी की तारीफ करते थकते नहीं थे कि वाह भाई क्या कमाल की चीज है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो अमेरिकन था. उसका जो मिजाज था, पर्सनैलिटी थी, वो अमेरिकन अंदाज की थी, लेकिन जब हमने उससे अरबिक में बात करना शुरू की तो वो थोड़ा सा रोबोटिक लगने लगा. लेकिन आज सितंबर 2026 में तस्वीर बदल चुकी है. सो मिडल ईस्ट ने सोवरेन एआई यानी एक ऐसा एआई बना लिया है जिससे हर चीज इजी हो गई है. हमारा अपना मॉडल जायस जो अबू धाबी के TII और G42 ने बनाया है, अब अपने नए अवतार में है. यस, ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हमारी तहजीब कल्चर का हिस्सा बन चुका है. जरा सोचिए, पहले एआई सिर्फ किताबी या यूं कहे अरबिक समझता था, बुकिश अरबिक समझता था, लेकिन आज का जायस 20 से ज्यादा अलग अलग डायलेक्ट समझता है, वो भी 99% एक्यूरेसी के साथ. फिर चाहे आप रियाद की कोई पोएट्री सुन रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं, या फिर आप मोरक्को की गलियों में कैजुअल बातें कर रहे हैं, या यूं कहते हैं ना कि वहां के स्लैंग्स को यूज कर रहे हैं, या फिर आप हमारे कतर में हैं, एआई अब हर लहजे को पहचान रहा है. इसका मतलब ये है कि मिडल ईस्ट में चाहे वो एक छोटा सा बिजनेसमैन हो या फिर कोई फार्मर हो, वो अपनी मदर टंग में एआई से अपनी डिफिकल्टीज के बारे में बात कर सकता है. दैट्स रियली अमेजिंग, है कि नहीं? वेल, हमने एआई को सिर्फ अकल नहीं दी, लेकिन उसे हमारी जुबान भी दी है ताकि वो हमारी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. अब बात करते हैं जापान की. यस, तो यहाँ पर एआई एज अ कंपेनियन यूज किया जा रहा है. तो जापान की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ की एक प्रॉब्लम हमेशा देखने को मिलती है कि वहाँ बुजुर्गों की ना तादाद बहुत ज्यादा है और उनकी देखभाल करने वालों की बहुत कमी है. यस, सो 2026 में जापान ने दुनिया का पहला एआई इंटीग्रेटेड एल्डरली केयर सिस्टम लॉन्च किया है. लेकिन ये सिर्फ रोबोट्स नहीं है जो घर साफ करते हैं, इनकी फितरत बिल्कुल अलग है. ये रोबोट्स कंपेनियन यानी साथी की तरह आपके साथ रहते हैं, आपका काम करते हैं. इनमें लगा एआई इंसानी आवाज के टोन को डिटेक्ट करता है. अगर किसी बुजुर्ग की आवाज में थोड़ी सी भी उदासी है, तबीयत में नरमी है और वो ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, तो एआई तुरंत समझ जाता है. ये उनसे बातें करता है, उन्हें पुरानी यादें याद दिलाता है और उनका अकेलापन दूर करता है. जापान ने हमें सिखाया है कि एआई सिर्फ लॉजिक के लिए नहीं, इमोशंस और हमदर्दी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है. वहाँ एआई मशीन नहीं, परिवार का एक हिस्सा बनते जा रहा है. इसके बाद बात करें अगर हम यूरोप की, सो द रेफरीज ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड. हाँ जनाब, ये भी एक बड़ी कमाल की चीज है जो हमने फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पर सुनी थी, है कि नहीं? अब रुख करते हैं हम सीधा यूरोप की तरफ. और अगर हम यूएस और मिडल ईस्ट के खिलाड़ी है, प्लेयर्स है जो एआई बना रहे हैं, तो यूरोप के इस खेल के रेफरी हम ही है. वेल, 2026 में यूरोप का एआई एक्ट पूरी तरह से लागू हो चुका है. यूरोप का मानना है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो इंसानी ह्यूमन राइट से ऊपर नहीं हो सकती. वहाँ के हॉस्पिटल्स और कोर्ट्स में अगर एआई कोई फैसला लेता है तो उसे ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है, यानी डॉक्टर या जज हो या फिर कोई भी हो, एआई ने वो फैसला क्यों लिया उसे बताना पड़ता है. वहाँ ब्लैक बॉक्स एआई नहीं चलता. यूरोप हमें ये याद दिलाता है कि भाई प्रोग्रेस जरूरी है, लेकिन असूलों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ. वेल, एआई अराउंड द वर्ल्ड में मैं ये कहना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बने या कितनी भी बढ़े, उसका मकसद इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाना ही होना चाहिए, है कि नहीं? आपको क्या लगता है इस बारे में? तो जरूर हमसे शेयर करें 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ. Well, now it's time for tool of the week. और वो tool of the week क्या है, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं. वेल, अब पुराने चैटबॉट्स को हमें भूलना होगा, क्योंकि 2026 में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम काम भी चाहते हैं. और आज का टूल है मल्टीऑन. ये एक वेब एजेंट है. चैट जीपीटी एक बॉक्स के अंदर रहता है, लेकिन मल्टीऑन के पास एक डिजिटल पासपोर्ट है. वो खुद वेबसाइट्स पर जाता है, लॉग इन करता है और बटन्स क्लिक करता है. मान लीजिए कि आप किसी ब्यूटीफुल जगह में जाना चाहते हैं, वीकेंड बिताना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग टैब्स खोलने की

0: जरूरत नहीं है बस मल्टी ऑन से कहिए कि मेरे लिए एक लग्जरी टेंट बुक करो मेरे होटल पॉइंट्स यूज करो और कंफर्मेशन मेरे घर वालों को या फिर मेरे हस्बैंड को या मेरी वाइफ को भेज दो आप स्क्रीन पर देखेंगे कि कर्सर खुद ब खुद घूम रहा है और वो कैसे बुकिंग खत्म कर रहा है वेल इसे कहते हैं लेजी टैक और मुझे ये एक्चुअली बहुत पसंद है वेल मल्टी ऑन अगर आप यूज करेंगे तो आपको कुछ चीजों का ख्याल रखने की बहुत जरूरत है एंड दैट इज कि मल्टी ऑन जैसे एजेंट्स को अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये तीन चीजों का बना हुआ फॉर्मूला याद रखें एक्शन प्लस कंस्ट्रेंट्स प्लस कंफर्मेशन ठीक है कैसे चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल के जरिए सो एक्शन क्या होगा कि मेरे लिए सो एंड सो जगह की सबसे सस्ती फ्लाइट बुक करो कंस्ट्रेंट्स क्या होंगे कि फ्लाइट शाम 6 बजे के बाद की होनी चाहिए सिर्फ सो एंड सो एयरलाइंस ही बुक करना कंफर्मेशन में क्या होगा कि फाइनल पेमेंट स्क्रीन पर रुक जाना और मेरे फिंगरप्रिंट का इंतजार करना एक चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना होगा कि अगर आप AI एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं देन हमेशा कंट्रोल अपने हाथ में ही रखना होगा वेल इसी के साथ जनाब हमारा जो आज का AI अनलॉक्ड इसका पहला इस सीजन का पहला एपिसोड अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है वेल आज हमने देखा कि कैसे AI एजेंट हमारे रोजमर्रा के काम कर रहे हैं कैसे डीप फेक से हमें बचना है और क्यों आपका करियर बिल्कुल महफूज है अगर आप लीड करना सीख जाएं वेल याद रखिए टेक्नोलॉजी एक औजार है ठीक है लेकिन असली कारीगर या यूं कहे असली क्राफ्ट्समैन आप हैं फ्यूचर से हमें बिल्कुल नहीं डरना है बल्कि उसे बनाने में मदद करना है वेल अगले हफ्ते हम कुछ और भी नई चीजें आपके लिए लेकर आने वाले हैं AI अनलॉक्ड में हो सकता है कि हम ढूंढें सेकेंड अर्थ यस सो समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड रियली टेक सेवी तो क्या करना है कहीं नहीं जाना है बस बने रहना है हमारे साथ अगले हफ्ते आपकी मेरी मुलाकात फिर होगी AI अनलॉक्ड के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और अभी जुड़ जाना है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 107 के और आपकी अमिता भी आपको वहीं मिल जाएगी तो अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाजत स्टे ट्यून टू FM 107 दिल से देसी
1: RJA फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी

0: का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक चेक चेक चेक टाइम चेक इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं शाम के 4:01 यानी इट्स टाइम फॉर
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी
1: Yes, now welcome once again. भाई वीकेंड गया वीकडे आया और आपकी मेरी मुलाकात फिर से हो रही है नए हफ्ते की शुरुआत के साथ तो कैसे है जनाब क्या हाल चाल है कैसे गुजारा वीकेंड हाँ वेल जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन कर लिया है अभी भी आई कैन सी द मैसेजेस हमें सलाम दुआ के मैसेजेस आ रहे हैं सो अस्सलाम वालेकुम वेरी वेरी गुड इवनिंग मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता और आपके लिए लेकर आई हूँ द रिक्वेस्ट शो भाई देखो ऐसा शो आई शुड से दैट दिस इज योर पर्सनल प्लेलिस्ट का शो आपका पर्सनल म्यूजिकल शो है और आज हम क्या करने वाले आपके मूड को और ज़्यादा रिफ्रेश करने वाले देखो जब हफ्ता शुरू होता है आई नो बहुत सारे प्लानिंग्स होती हैं ऑफिसेस में तो वो कहते हैं ना कि ईमेल्स का ढेर हो जाता है मैसेजेस मीटिंग्स प्लानिंग उफ पूरा दिन हमारा काफ़ी प्रोडक्टिव और काफ़ी बिजी जाता है बट दिस इज़ द टाइम जब आप अपने लिए कुछ पल जी सकते हैं क्योंकि द रिक्वेस्ट शो इज़ ओनली एंड ओनली फॉर यू तो क्या करना होगा आज का हमारा थीम क्या है देखो आज का जो हमारी महफिल है ना उसका मौजू ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि आज हम संडे ब्लूज से लड़ेंगे हमारे मूड सॉन्ग्स सुनेंगे और ना कोई शोर होगा ना कोई वो कहते ना स्ट्रेस होगा बस ऐसे मज़ेदार म्यूजिकल गाने होंगे जिन्हें सुनकर हमें लगेगा कि बस दिस इज़ द सॉन्ग जो हमारे वो कहते हैं ना कि ऑफिस के टाइम को एकदम वेकेशन में बदल सकते हैं या हमारे स्ट्रेस टाइम को वेकेशन में बदल सकते हैं सो What are those songs जिन्हें सुनकर आपको एकदम से अच्छा लगता है एनर्जी बूस्ट होती है और आपको लगता है चाहे आप लाइफ में कितने भी बिजी हो कितना भी कुछ चल रहा हो लेकिन अगर इन्हें सुन लिया तो बस यू आर बैक तो वो गाने डेफिनेटली यू कैन रिक्वेस्ट आप रिक्वेस्ट करें 666-22-107 पर 666-22-107 पर अपने नाम के साथ और हमें बताएं कि इस वक्त कौन सा वो गाना है जो आपके मूड को और भी ज़्यादा तरोताज़ा कर देगा और अगर चाहें तो किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं अपनी वन लाइनिंग स्टोरी के साथ बताएं कि क्यों डेडिकेट करना चाहते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा जानकर है कि नहीं तो चलो अब टाइम बिल्कुल हम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ये एक घंटा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अभी सबसे पहला गाना जो मैं आपके नाम करने वाली हूँ वो है करण उजला की आवाज में ये गाना और बड़ा हाई एनर्जी सॉन्ग है भाई मतलब डांस बड़ा कमाल का होता है इसमें सो यस लेट्स एंजॉय स्टे ट्यून्ड

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। तो मुझे बताएं कि आप सब तैयार हैं अपनी प्लेलिस्ट को सुनने के लिए, मतलब कौन सा वो गाना है जो जहन में हर बार आ जाता है जब आपका मूड थोड़ा सा उदास होता है, या फिर आपको लगता है कि बाप रे आज बहुत काम है, किसी तरह मुझको अपने स्ट्रेस को भगाना है, एंड देन यू लिसन टू दिस सॉन्ग, कौन सा वो गाना है। सो 666-22-107 666-22-107 पर आप अपने नाम के साथ हमें मैसेज करें, ये बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सॉन्ग आपको क्यों पसंद है, क्या किसी अपने को डेडिकेट भी कर सकते हैं कि भाई मैं तो सुन रहा हूँ लेकिन आज मेरे साथ साथ ये भी सुनेंगे, और क्यों, ऑफ कोर्स यू कैन शेयर, क्योंकि ये आपका पर्सनल म्यूजिकल शो है। तो चलिए सबसे पहली रिक्वेस्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सो दिलबर अली की रिक्वेस्ट है, वो काफ़ी सूदिंग मूड में है और मेरे ख्याल से जब भी स्ट्रेस में होते हैं वो इस पर्टिकुलर सॉन्ग को सुनना चाहते हैं, एंड आई थिंक इसको सुनकर वाकई में अच्छा लगता है कि नहीं। तो राहत फतेह अली खां की आवाज़ एंड असीस कौर का ग्रेट कॉम्बिनेशन है, एंड अगेन इट्स अ रिक्रिएटेड सॉन्ग, तेरे बिन नहीं लगता, आह व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक, सिम्बा फिल्म का डेफिनेटली थोड़ी देर में आपकी राहों में आएगा। और उसके बाद कौन सा गाना है, सो आफ्ताब की रिक्वेस्ट है एंड दिस सॉन्ग ये डेडिकेट करना चाहते हैं अपनी बेगम को। सो वरुण जैन एंड शिल्पा राव की ग्रेट आवाज, मतलब ये कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत है, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है।
2: देख लो
1: यस, 3-2 फिल्म का ये गाना है जो कि पहली रिक्वेस्ट के बाद आएगा। तो सबसे पहले हम सुनने वाले हैं तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा। तो चले इंजॉय करें, थोड़े से स्मूथ वो कहते हैं ना फील में आते हैं, और अपनी रिक्वेस्ट आप मुझसे शेयर कर सकते हैं 666-22-107 पर। तो बने रहिए हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
1: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की.
2: Wellness is finding yourself, finding what brings you joy and what keeps you whole.
1: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा. हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दोस्तों, सुनना न भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से डीसी.
3: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है, कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी. इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर
4: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से
5: 7:15 बजे से
4: FM 107 पर दोहा वाले कबीर के साथ.
6: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
7: Yes, now, welcome, welcome, welcome. Assalamu alaikum. मरहबा मरहबा मरहबा. क्या बात है. मतलब हमारे लिसनर्स की जो प्लेलिस्ट आ रही है ना, मतलब जो रिक्वेस्ट आ रही है, सो लव इट. मतलब मुझे लग रहा है कि बस मैं कुछ कहूँ ना, बस आपके लिए गाने बजाते जाऊँ. वेल, द रिक्वेस्ट शो की खासियत यही है कि ये आपका अपना पर्सनल म्यूजिकल शो है. तो यहाँ क्या करना है, 666-22-107, 666-22-107 भाई ये नंबर है. इसके जरिए अपने पसंदीदा गाने सुनिए, चाहे आप खुद को डेडिकेट करें, किसी खास को डेडिकेट करें और उसके पीछे की कहानी भी हमसे शेयर कर सकते हैं, है कि नहीं. अभी जो अगली रिक्वेस्ट हम प्ले करेंगे, दैट इज सो ब्यूटिफुल. हमारे लिसनर है अमन का मैसेज आया है कि आई लव योर पॉजिटिव वाइब्स. मतलब इन्हें हमारा शो बहुत पसंद आ रहा है. अमन, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स. और कह रहे हैं कि अभी तक ये एक पर्टिकुलर गाना है, आप बजा दो ये गाना, मैं अपनी फियांसे के नाम करना चाहता हूँ. एंड लिटरली अमन, आई शुड से इस गाने को जब सुनते हैं ना, तो वही शादी ब्याह ससुराल वाली फीलिंग आ ही जाती है. यस, एंड द सॉन्ग इज पानी दी गर्ल. हाँ, बिल्कुल. पूरा गाना मैं कुछ ही देर में सुनाऊंगी, तो आप तब तक सेट हो जाओ और अपने रेडियो सेट्स का वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हैं. एंड यू कैन इन्जॉय टू योर फुल मूड, ठीक है. और अभी राहिल ने रिक्वेस्ट की है और कह रहे हैं कि मिता धुरंधर फिल्म का गाना सुना दो. मुझे लगता है राहिल, दिस इज वन सॉन्ग जिसे सुन करना हर एक संडे ब्लूज गायब हो जाते हैं. जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, अक्षय खन्ना की एंट्री सॉन्ग. हाँ भाई, बिल्कुल बाबा स्टाइल में. सो यस, ये गाना कुछ ही देर में आपकी राहों में आएगा. लेकिन सबसे पहले जिस गाने की बात हम कर रहे हैं, जो एक वो कहते हैं ना, मीठी मीठी सी फीलिंग देता है, दैट इज शादी वाली वाइब. यस, पानी दी गर्ल आपकी राहों में आ गया है. सो इंजॉय पूरे वॉल्यूम के साथ. और हाँ, 666-22-107 पर अपने डेडिकेशन भेज सकते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: हुसैन की फैन।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: Yes, my देसी audience, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप और मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी परमिता। और इस वक्त जनाब द रिक्वेस्ट शो पर आप अपने दिल की प्लेलिस्ट प्ले कर रहे हैं। हाँ, आई शुड से दैट, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि भाई संडे ब्लूज को भगाने वाले कौन से गाने जो आपके मूड को बिल्कुल सही कर दें। एंड आई फील इट कि अभी जिस तरह से आपके मैसेजेस आ रहे हैं हमें 666-22-107 पर, मुझे लगता है कि हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके संडे ब्लूज दूर करते हैं वो शख्स जो उनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। हाँ जी, एंड वो अहमियत रखते हैं उनके लाइफ पार्टनर्स। एंड आई कैन सी कि अभी हमें जो अगली दो रिक्वेस्ट भी आई हैं, वो रिक्वेस्ट आई हैं उन सॉन्ग डेडिकेशंस की जो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटर हाफ के नाम करना चाहते हैं। यस, वो उन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं। सो शमशाद आलम का हमें मैसेज आया है जो कि आशिकी 2 फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं और डेडिकेट करना चाहते हैं अपनी बेटर हाफ को। एंड आई शुड से शमशाद, इट्स अ ब्यूटिफुल चॉइस, क्योंकि अरिजीत सिंह के लिए ये गाना बहुत लकी था। हालांकि फिल्मी दुनिया में उन्होंने डेब्यू तो कर लिया था, बट इस गाने से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी।
3: नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: वाओ, बिल्कुल रिलैक्स होने वाले इस गाने को हम सुनेंगे बस कुछ ही देर में। और उसके बाद यहाँ पर हमें इमरान बानी का मैसेज है और कहते हैं कि अमिता देखो, मुझे कोई एक बहुत अच्छा सा गाना चाहिए राहत फतेह अली खां की आवाज़ में, एंड आई वॉन्ट टू डेडिकेट टू माई बेगम। सो इमरान साहब, राहत फतेह अली खान जब आप मुझ पर डाल देते हैं ना कि भाई मतलब आप चूज करें, बड़ी मुश्किल होती है। चलिए, मैंने ये गाना निकाला एंड आई होप यू गोना लव इट। एंड द सॉन्ग इज तुम जो आए, इसका रिप्राइज वर्जन है क्योंकि ओरिजिनली इसको राहत फतेह अली खान और तुलसी कुमार ने गाया है। तो ये गाना भी बस कुछ ही देर में आपकी राहों में आएगा, लेकिन अभी हर कोई आशिकी 2 का फैन होने वाला है because now Arijit Singh is here. So stay tuned to FM 107, Dil Se Desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107Qatar। दिल से देसी।
3: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
4: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर,
5: यू मैटर
4: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
5: दिल से देसी।
6: जेन जी, जेन एक्स, जेन अल्फा, मिलेनियल्स, ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल, आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
7: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक,
8: जनरेशन टॉक
7: विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM,
8: एट 3 PM
7: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
8: दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, only on FM 107, dil se desi।
9: Yes, and now welcome once again FM 107, sun rahe hain, main hu Amita aapke saath। और सच में द रिक्वेस्ट शो में जो गाने आप चुन रहे हैं, मुझे लग रहा है कि संडे ब्लूज तो आधे यूं ही गायब हो चुके होंगे, है कि नहीं? वेल, अगली जो रिक्वेस्ट है सलीम भाई की है और कह रहे हैं कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ का एक बेहतरीन सा गाना वो सुनना चाहते हैं। सलीम भाई, देखो अभी जो मेरे जहन में आ रहा है ना, दैट इज लता मंगेशकर एंड उदित नारायण की आवाज़ का ये ग्रेट कॉम्बिनेशन, एंड ये सुनने के बाद तो आई एम श्योर कि अभी शाम बन जानी है। इस गाने को हम कैसे मिस कर सकते हैं, मतलब 90s का वो गाना कि अगर ये बज जाए तो अपने आप, वो कहते हैं ना कि मोहब्बतों के पत्ते झड़ने लगते हैं, हालांकि ये मोहब्बतें फिल्म का गाना नहीं है, इट्स अ दिल तो पागल है टाइटल ट्रैक। सो डेफिनेटली ये गाना आप सुनेंगे और उसके बाद अगली जो रिक्वेस्ट आई है, जिसके बाद मैं प्ले करूँगी, मोहम्मद अशफाक की, एंड ये जीनियस फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं, एंड दैट इज़ तेरा फितूर, जिसे कंपोज किया हमारे हिमेश रेशमिया साहब ने। और अरिजीत सिंह की सोलफुल आवाज़, मतलब क्या कहना। इनफैक्ट ये गाना जो एक्टर है उत्कर्ष शर्मा, उनका डेब्यू रोमांटिक सॉन्ग था एंड ये फिल्म में भी उनका डेब्यू था, कमाल का गाना है। सो यस, ये गाना पूरा पूरा सुनेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आप कहीं ड्राइव करके जा रहे हैं, कहीं आराम से बैठे हैं और सोच रहे हैं कि मेरा वाला गाना रेडियो पे बज जाए जो मेरे मूड को एकदम रिफ़्रेश कर दे, तो अपना फ़ोन उठाइए और 666-22107, 666-22107 पर अपने नाम के साथ अपनी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाइए। कोई ऐसा गाना जो आप किसी खास को डेडिकेट करना चाहते हैं, विद एनी ऑफ योर स्टोरी डू शेयर। और अभी इंजॉय करें दिल तो पागल है, स्टे ट्यून टू FM 107, दिल से देसी। और हाँ, बने रहिए क्योंकि कुछ ही देर में क्विज टाइम भी आने वाला है।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप और हमारे द रिक्वेस्ट शो का बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है। पर ऐसा नहीं है, आखिरी पड़ाव है तो आप अपने दिल की बात नहीं कह सकते। डेफिनेटली जिस भी गाने पर आपका दिल आया हुआ है कि भाई इसे सुनकर हमारा मूड रिफ्रेश हो जाता है, उस गाने की आप रिक्वेस्ट यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट प्ले करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको प्ले करना है क्या क्विज टाइम, हमारा ये कॉन्टेस्ट
0: क्विज टाइम।
1: तो क्विज टाइम में क्या होगा, एक गाना मैं बीच से आपको सुनाने वाली हूँ, इसे सुनकर आपको गैस करना है कि ये गाना कौन सा है। ठीक है, तो आर यू रेडी? चलो फिर शुरू करते हैं, आओ जरा प्ले करें।

बताएं कौन सा गाना है ये, क्या ये गाना है मस्त मगन, या ये गाना है नजम नजम, या ये गाना है पश्मीना। देखो मैंने तीन ऑप्शन भी आपको दे दिए, अब आपको गैस करना है कि ये गाना कौन सा है। सो 666-22-107 666-22-107 पर ना आपको मैसेज करना है अपने नाम के साथ कि अमिता ये वाला गाना है, हमें लगता है यही गाना है, क्योंकि डेफिनेटली आपने अगर ऐसा कर दिया तो ये गाना आपके नाम हो जाएगा, जो कि मैं हमारे शो के आखिर में प्ले करूंगी, ठीक है। लेकिन अभी के लिए एक रिक्वेस्ट प्ले करना तो बनती है। इन जनाब ने हमें हर जगह मैसेज किए, कॉल किए और कहा कि ये गाना भाई प्लीज बजा दो। डेफिनेटली देखिए हमारा वैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना एफ एम 107 का, उसके जरिए भी आप कभी कभी हमसे बातें कर सकते हो, है कि नहीं। वैसे कभी कभी तो नहीं, मैं हर दिन कहती हूँ, लेकिन हाँ ये रिक्वेस्ट जो है ना हमारी रिक्वेस्ट ज़्यादातर 666-22-107 पर इस पे किया करो, और अगर कॉल करना है देन 443-443-77 पर कॉल करके भी बता सकते हो कि अमिता मेरा वाला गाना ये है। तो ये जो अगली रिक्वेस्ट है ये है जमील की, ये जवानी है दीवानी फिल्म से ये गाना, इट्स ट्रैवलिंग सॉन्ग आई शुड से, बड़ा कमाल का गाना है मोहित चौहान की आवाज में और आपको जरूर पसंद आएगा। सो एंजॉय, स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107, दिल से देसी।

0: सच में जब ये गाना सुनते हैं ना, और स्पेशली जब बच्चों का कोरस आता है, सो सो लव इट. सो दिस वॉज मोहित चौहान आपके लिए. FM 107 सुन रहे हैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है.
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ, only on FM 107. Dil se desi.
0: So yes, my desi audience, welcome once again. तो जनाब द रिक्वेस्ट शो सुन रहे हैं आप, और यहाँ क्विज टाइम पर मैंने आपसे एक सवाल पूछा, एक गाना बीच से प्ले किया और कहा कि गाना पहचानो, कम ऑन गाइस.

Yes, और मैंने कहा कि ये गाना पहचानो कौन सा गाना हो सकता है, ये नज्म नज्म है, पश्मीना है या मस्त मगन है, तो हमारे लिसनर्स ने सही चुना एंड द सॉन्ग इज मस्त मगन. जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां हमारे उन सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने सही गैस किया. आइए जरा देखें कि जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिए हैं उनके नाम क्या है. तो ये जनाब है मोहम्मद अशफाक, इन्होंने सही जवाब दिया है. फलक ने हमें सही जवाब दिया है. कैसर ने हमें सही जवाब दिया है. जीशान ने हमें सही जवाब दिया है. और हमारे रेगुलर लिसनर मोहम्मद यूसुफ खान ने भी सही जवाब दिया है. तो जनाब ये जो पर्टिकुलर गाना है मस्त मगन फ्रॉम द मूवी टू स्टेट्स, ये गाना अब आपकी राहों में आ रहा है एंड इट्स डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ आपको. ठीक है, तो एंजॉय कीजिएगा. और अभी आपकी एफ और अमिता को दीजिए इजाजत क्योंकि वक्त है मेरे जाने का और कल आपका पर्सनल म्यूजिकल शो लेकर फिर शाम 4 बजे मैं हाजिर हो जाऊंगी. तो तब तक के लिए अपनी जो रिक्वेस्ट है वो अपने दिमाग में रखिएगा और कल की थीम क्या होगी तो कल पता चलेगी. मीनवाइल आप हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है FM 107 के वहां पर जुड़ सकते हैं और सोशल मीडिया पे अपनी आरजी अमिता को भी ढूंढ सकते हैं. और अभी जाते जाते कहना तो बनता है हम हराई प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते. स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर।

الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس

0: भाई, अगर आप भी एक यंग क्रिएटर हैं, डिजाइनर हैं, स्टूडेंट हैं या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, तो भाई आज का एपिसोड आपके लिए ये बता दूं। अच्छा, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमें फीडबैक भी दे सकते हैं चाहे तो। करना ये है आपने कि हमें मैसेज करना है 666-222-107 पर, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अगर चाहें तो वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है @FM107। कतर, आपका AI के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, डू टेल अस।
1: Absolutely. और जब आप हमें ये बताएंगे तो हम आपकी बातों को, आपके फीडबैक को कंसिडर करेंगे, और आगे जब हम आपके लिए नए एपिसोड्स बनाएंगे तो उसमें काफी हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा। सो हमारे जो व्हाट्सएप नंबर 666-222-107, द लाइंस आर ओपन, बेशक आप हमें मैसेज करें। और सफा, मुझे बताओ कि जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो लोगों के दिल में सबसे पहला डर यही आता है कि क्या मशीन ह्यूमन ब्रेन की यूनिकनेस को छीन सकती है।
0: ये सोच मेरे दिमाग में दिन रात घूमती है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ भी आप बैठोगे ना, ये टॉपिक शुरू हो जाता है।
1: राइट।
0: देखिए, जब हम स्कूल में होते थे ना, हमें ये सिखाया जाता था कि कंप्यूटर्स लॉजिकल होते हैं और ह्यूमंस क्रिएटिव होते हैं। लेकिन अब ये बाउंड्री थोड़ी सी ब्लर होती जा रही है। देखो, मॉडर्न अगर हम बात करें ना, तो मॉडर्न जनरेटिव मॉडल्स टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस को प्रोसेस करके ऐसे विजुअल्स कंपोजिशंस क्रिएट करते हैं जो इंसान ने पहले कभी देखे ही नहीं होते, या इतने रियलिस्टिक लगते हैं भाई।
1: ये बात सही कह रही हो, लेकिन इसमें एक फंडामेंटल डिस्टिंक्शन है जो हमें समझाना पड़ेगा सफा सबको, कि मशीन डेटा के पैटर्न्स को ना एनालाइज करती है, जबकि इंसान लाइफ एक्सपीरियंस से इंस्पिरेशन लेता है कि नहीं। एक आर्टिस्ट जब पेंटिंग बनाता है तो उसके पीछे उसकी खुशी, उसका गम, उसका नॉस्टैल्जिया, उसके सारे इमोशंस और उसकी कल्चरल बैकग्राउंड होती है। लेकिन AI के पास एल्गोरिदम्स तो है बट इमोशनल हिस्ट्री नहीं है।
0: अरे भाई, बात बिल्कुल सही की है अमिता, आई अग्री विद यू। AI पैटर्न्स और स्टैटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को मैथमेटिकल मैट्रिक्स पर कन्वर्ट करती है। इसका मतलब सिंपली ये है कि AI क्रिएटिव आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन क्या वो उस आउटपुट का मीनिंग भी समझती है? पता है इसका आंसर क्या है? नो, मीनिंग इंसान खुद क्रिएट करता है भाई।
1: राइट। और इसी मीनिंग मेकिंग प्रोसेस को ना आज हम हमारे शो नेक्स्ट जेन में इस ब्रांड न्यू एपिसोड में अनपैक करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, और हम देखेंगे कि ये जो जेनरेटिव टूल्स होते हैं ये कैसे काम करते हैं, क्रिएटिव स्टार्टअप्स कैसे बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर की मेजर लिमिटेशंस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी यंग जनरेशन को कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर मार्केट में रिप्लेस ना हो सके बल्कि लीड करे।
0: तो भाई साथियों, कहीं मत जाइएगा, मेहरबानी करके हमारे साथ जुड़े रहें। आपकी चाय का कप जरा संभाल के रखिए, चाय शाय पीते रहें, गाड़ी में ड्राइव भी एंजॉय करें अपनी, और हमारे साथ इस जर्नी पर चलें, इस जर्नी को एंजॉय करें।
1: और अब वक्त है हमारे ब्रांड न्यू सेगमेंट का, जो कि सबसे पहला सेगमेंट है हमारे शो का, एंड दैट्स व्हाट्स ट्रेंडिंग। सो व्हाट्स ट्रेंडिंग में समझते हैं कि AI क्रिएटिव प्रोसेस को फंडामेंटल लेवल पर कैसे ऑल्टर कर रही है, ट्रेडिशनल वर्सेस AI ड्रिवन वर्कफ्लो का डिफरेंस क्या है।
0: अच्छा अमिता, पता है आपको, ट्रेडिशनल वर्कफ्लो में ना एग्जीक्यूशन का वेट बहुत हैवी होता था।
1: हाँ।
0: अब इसको ऐसे समझ लेते हैं कि सपोज करते हैं कि भाई एक पेंटर का मूड हो विजुअल सेटअप ड्रॉ करने का, ठीक है, ट्रेडिशनली उसके पास कैनवस होगा, ऑयल्स होंगे, ब्रशेस होंगे, और मल्टीपल मिक्सिंग पैलेट्स होते होंगे ना उसके पास।
1: जी।
0: अच्छा, उसे मैनुअल स्केच बनाना पड़ता था पहले जमाने में। लाइट एंड शेडो का फिजिकल अंडरस्टैंडिंग भी उसको जरूरी थी, कैनवस प्रेप भी होना जरूरी था,
1: राइट,
0: और स्ट्रोक बाय स्ट्रोक इमेज बिल्ड करनी होती थी। मतलब बहुत हैवी काम है भाई ये, हमें सुनने में इतना, मुझे बोलने में इतना मसला हो रहा है, तो ये होगा। इट वाज अ टाइम इंटेंसिव फिजिकल एंड टेक्निकल एग्जीक्यूशन प्रोसेस।
1: एग्जैक्टली, और विजुअल डिजाइन में भी ना यही होता था। एक ग्राफिक डिजाइनर को एडोबी जो फोटोशॉप है या इलस्ट्रेटर पर घंटों बैठ कर ना पेन टूल से क्लिपिंग पार्ट्स बनाने पड़ते थे, लेयर्स मैनेज करनी पड़ती थी, और लाइटिंग मैनुअल एडजस्ट करनी होती थी। प्रोसेस स्लो था और हाई लेवल टेक्निकल मास्टरी डिमांड करता था।
0: अच्छा, और जेनरेटिव AI में ना प्राइमरी इंटरेक्शन टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू ऑडियो या टेक्स्ट टू वीडियो फॉर्मेट में शिफ्ट हो चुका है। भाई, यूजर अपने मेंटल कॉन्सेप्ट को डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स या प्रॉम्प्ट्स में एक्सटर्नलाइज करते हैं, और मशीन लेटेंट स्पेस में से फीचर्स सिंथेसाइज करके मल्टीपल विजुअल ऑप्शंस जनरेट करती है।
1: यानी अब प्राइमरी क्रिएटिव स्किल ये बन

0: रही है कि आप अपने ख्याल को शब्दों में कितने एक्यूरेटली, विविडली और ब्यूटिफुली फ्रेम कर सकते हैं. सो प्रॉम्प्टिंग बिकम्स अ मिरर ऑफ योर वोकैबुलरी, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है एंड डिजाइन लिटरेसी है.
1: एग्जैक्टली. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाइप करें कि क्या टाइप कर सकते हैं, हाँ, सस्टेनेबल फ्यूचरिस्टिक सिटी सेट इन दोहा कतर, ठीक है,
0: राइट.
1: और उसके साथ आप कुछ ये भी ऐड कर दें कि गोल्डन आर, डस्क लाइटिंग, सोलर पावर, ट्रेडिशनल विंड टावर आर्किटेक्चर, और ये भी ऐड कर दें कि अल्ट्रा डिटेल सिनेमैटिक स्टाइल, तो पता है क्या होगा? AI आपको मल्टीपल स्ट्रक्चरल जो है ना वो डायरेक्शंस सेकंड्स में शो कर देगी. कुछ कभी कभी होता है कि तो थोड़ा 30 सेकंड 20 सेकंड लगता है और आपको एक विजुअल शो कर दिया जाता है. प्राइमरी चैलेंज पहले ये था कि मैं जो इमेजिन कर रहा हूँ उसे फिजिकली ड्रॉ कैसे करूँ. अब क्वेश्चन ये शिफ्ट हो गया है कि भाई मैं जो विजुअल कॉन्सेप्ट चाहता हूँ उसे AI मॉडल को एक्यूरेटली इंस्ट्रक्शन कैसे दूं.
0: यस. सो सफा, ये जो लॉन्ग टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिख देने से ऑटोमेटिकली मास्टरपीस बन जाता है, ये जो थॉट है ना, ये एब्सोल्युटली गलत है. सो ये एक बहुत कहते हैं ना बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम बहुत लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट करेंगे सो हमें वही चीज मिलेगी जो हम चाहते हैं. देखो, क्रिएटिव AI आउटपुट एक सिंगल क्लिक मैजिक बटन बिल्कुल नहीं है. ये एक डायनेमिक कॉन्वर्सेशन की तरह होता है जिसमें कुछ पॉइंटर्स हैं जिसका आपको ख्याल रखना है, जैसे कि इनिशियल हाई लेवल प्रॉम्प्ट क्या होता है, रॉ आउटपुट एनालिसिस क्या होता है, क्रिटिकल जजमेंट एंड रिविजन, स्टाइल एडजस्टमेंट, फ्रेमिंग एंड लाइटिंग ट्वीक, इटरेटिव रिफाइनमेंट एंड जो फाइनल पॉलिश होता है, इन सब पॉइंटर्स का हमें ख्याल रखने की बहुत जरूरत है.
1: बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कहा अमिता. ये प्रोसेस एक क्रिएटिव डायलॉग है. आप AI को कहते हैं, कमांड देते हैं, ये डिजाइन अच्छा है लेकिन बैकग्राउंड को सिंपल करो, कलर्स को वार्म करो, फ्रंट कैरेक्टर के फेस एक्सप्रेशन सटल बनाओ. AI आपके इंस्ट्रक्शंस पर न्यू इटरेशन देती है और आप फाइनल सिलेक्शन खुद करते हैं, आपकी चॉइस होती है.
0: Yes, और यहाँ ह्यूमन क्रिएटर का ना प्राइमरी रोल सिलेक्शन और डायरेक्शन का बन जाता है, ठीक है. सो इमेजिन करें कि AI ने आपको 20 डिफरेंट इमेजेस जनरेट करके दे दी. 19 इमेजेस शायद एवरेज हो, लेकिन इमेज नंबर जो 7 है उसका जो मेन कॉम्पोजिशन है वो माइंड ब्लोइंग है. तो वो आई यानी कि वो आंखें, वो एस्थेटिक टेस्ट और वो आर्टिस्टिक जजमेंट, ये नंबर 7 वाला कॉम्पोजिशन वर्क जो हम सब सोच रहे हैं कि करेगा, ये वर्क करेगा, ये सिर्फ इंसान के पास है ये डिसीजन लेना.
1: अच्छा भाई, और ये शिफ्ट बिल्कुल मैच करता है, मैं मानती हूँ, उस हिस्टोरिक फेज से जब फोटोग्राफी इन्वेंट हुई थी. अच्छा देखिए, यूनेस्को ने ना अपने AI और कल्चर गाइडलाइंस में हाईलाइट किया है कि 19th सेंचुरी में जब कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ था ना, तो ट्रेडिशनल पोर्ट्रेट पेंटर्स ने शोर मचा दिया था. पता है क्यों? उनका ये कहना था कि भाई अब आर्टिस्ट की क्या ही जरूरत रह गई जब एक मेटल बॉक्स से बटन दबाकर पिक्चर बन जाती है तो.
0: Yes, लेकिन क्या फाइन आर्ट मर गया इस सवाल के बाद? मुझे नहीं लगता. एब्सोल्युटली नॉट. कैमरा ने पेंटर्स को रियलिटी कैप्चर करने के जो कहते ना लेबरस वर्क था, रिपीटेटिव टास्क था, उससे फ्री कर दिया. रिजल्ट क्या निकला? जो बड़े बड़े आर्टिस्ट रहे हैं जैसे कि पिकासो है और मोनेट है, उन्होंने रियलिज्म से हटकर इम्प्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जैसे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स स्टार्ट कर दिए. कैमरा डिस्ट्रॉयड रियलिज्म एज अ रिक्वायरमेंट, बट जो उसने एक्सपैंड किया वो था आर्टिस्टिक फ्रीडम इनफिनिटली.
1: अच्छा, AI भी ना एग्जैक्ट वही चेंज लेकर आ रहा है. फ्यूचर का आर्टिस्ट सिर्फ टेक्निकल ड्राफ्ट पर्सन नहीं है, वो एक क्रिएटिव डायरेक्टर, कॉन्सेप्ट आर्किटेक्ट, विजुअल स्टोरी टेलर या आर्ट क्यूरेटर होगा. देखो भाई, म्यूजिक में भी यही हो रहा है. म्यूजिशियंस बेसिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन जनरेट से इनिशियली स्ट्रक्चर आइडिया टेस्ट कर सकते हैं, पर साउंड में सोल और इमोशन इंजेक्ट करना ह्यूमन कंपोजर का ही काम होता है.
0: यस, सो एग्जैक्टली सफा. सो म्यूजिक इंडस्ट्री पर तो इसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी फील कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं. सो टुडे यंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट इन कतर जिनके पास एक्सपेंसिव प्रोडक्शन स्टूडियोज या ऑर्केस्ट्रा टीम्स नहीं है, कैन यूज AI म्यूजिकल टूल्स टू प्रोटोटाइप बैकिंग ट्रैक्स, एक्सपेरिमेंट विद टेम्पो चेंजेस एंड टेस्ट करें डिफरेंट बेस लाइन्स बिफोर एंटरिंग एक फिजिकल रिकॉर्डिंग बूथ.
1: अरे भाई अमिता, दिस इज सो ट्रू. लेकिन भाई यहाँ ना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना जरूरी है यहाँ पर. देखो AI generated technical perfection और meaningful art में जमीन आसमान का फर्क होता है.
0: Right.
1: एक visual image technically flawless हो सकती है, मैं मानती हूँ कि मतलब आप कह लें कि lighting perfect है, resolution 8K है, geometry symmetrical है, लेकिन अगर उसके पीछे कोई human intention, cultural backstory या raw emotion ही नहीं होगा, तो बताओ मुझे कि audience उससे कैसे connect कर सकती है भाई?
0: पता है missing factor क्या है AI work में? पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस. बिल्कुल सही कह रहे हो. सो AI किसी रेन स्टॉर्म के बाद मिट्टी की खुशबू की मेमोरी से स्कोर राइट नहीं करता. AI सुख वाकिफ की पुरानी गलियों में से गुजरते वो जो बच्चों के छोटे छोटे मोमेंट्स थे, चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया जिसे हम कहते हैं, वो महसूस नहीं कर पाता, उसे फील ही नहीं कर सकता.
1: सही.
0: AI हार्ट ब्रेक का दर्द भी, जो हम कहते हैं ना सीने में दर्द हो रहा है, दैट ऑल्सो इट कैन नॉट डू इट. बट AI न्यूमेरिकल जो कोरिलेशन है और स्टेटिस्टिकल पैटर्न्स हैं उसे प्रोसेस करता है. ह्यूमन आर्ट इज रूटेड इन कॉन्शियसनेस, मोर्टैलिटी एंड लिव्ड रियलिटी.
1: अच्छा, दैट्स प्रोफाउंडली डीप पॉइंट. बहुत डीप चली गई यहाँ. देखो भाई, ह्यूमन आर्ट हमारी वीकनेसेस, हमारी वल्नरेबिलिटी और लिव्ड ट्रूथ से पैदा होता है.
0: राइट.
1: मशीन नंबर्स की मल्टीपल डायमेंशनल स्पेस में कैलकुलेशंस रन कर सकती है, कर रही होती है वो.
0: राइट.
1: और इसी के साथ जुड़ता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि WIPO. अब भाई इनका लैंडमार्क कंसर्न पता है क्या है? आईपी राइट्स, कॉपीराइट्स एंड ओरिजिनलिटी.
0: ओहो, कॉपीराइट इशू, इसको कैसे भूल सकते हैं. इस पर तो पूरे ग्लोब में ना न जाने कितनी बातें चल रही हैं, कितने केसेस हुए हैं, लीगल बैटल्स चल रही हैं. वेल, जनरेटिव AI मॉडल्स बिलियंस एंड यू नो बिलियंस ऑफ कॉपीराइटेड इमेजेस, बुक्स, होम आर्टिकल्स और म्यूजिक ट्रैक्स को ना स्क्रेप करते हैं, स्क्रेप कर करके वो ट्रेन हुए हैं. तो यंग क्रिएटर्स को पूछना होगा कि क्या ट्रेनिंग डेटा सेट एथिकल था, ओरिजिनल आर्टिस्ट को परमिशन, एट्रिब्यूशन या रॉयल्टी कॉम्पेंसेशन मिली, और AI जनरेटेड पीस पर कमर्शियल कॉपीराइट किसका बनता है.
1: अच्छा, ग्लोबल कॉपीराइट्स ऑफिसेस इंक्लूड्स द कौन से आप कह लें कि US कॉपीराइट ऑफिस एंड EU रेगुलेटरी बॉडीज क्लियरली कह रहे होते हैं ये कि भाई प्योरली AI जनरेटेड टेक्स्ट, विजुअल्स और ऑडियोज पर स्टैंडर्ड कॉपीराइट प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं हो सकती जब तक उसमें सब्सटेंशियल ह्यूमन क्रिएटिव इंटरवेंशन और ओरिजिनल एडिटोरियल कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशनल लेवल पर ना देखी जा सके. तो
0: हमारे यूथ के लिए इसका प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है? वो ये है कि शॉर्ट लेसन, टेक्नोलॉजी को एफिशिएंसी के लिए यूज करें, पर अपने वो कहते हैं ना ओरिजिनल थिंकिंग, पर्सनल स्टाइल और एडिटोरियल प्रूफ को प्रिजर्व रखें. मिसलीडिंग कंटेंट और जीरो एट्रिब्यूशन वर्कफ्लोस जो लॉन्ग रन में आपका मार्केट ट्रस्ट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसका ख्याल रखें.
1: अच्छा, और कतर के क्रिएटिव सीन में ना जहाँ कल्चरल हेरिटेज और मॉडर्न इनोवेशन का मैशअप हो रहा है, यंग क्रिएटर्स के पास जो है ना एक अमेजिंग एडवांटेज है. मैं मानती हूँ कि ये एक एडवांटेज ही है.
0: राइट.
1: उन्हें चाहिए कि वो AI को रीजनल स्टोरीज, आप कह लें कि लोकल फोकलोर और फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चरल विजन को प्रोटोटाइप करने के लिए यूज करें. अच्छी चीज है भाई ये, ना कि माइंडलेस कॉपी पेस्टिंग के लिए. क्रिएटिव होना भाई, वो AI है. बी क्रिएटिव.
0: या बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि जब हम कंटेंट ओवरफ्लो की बात करते हैं ना, तो एक रिस्क नॉइज हाइपर सैचुरेशन का भी है. मतलब जब हर बंदा एक मिनट में 100 pages, इमेजिन 100 pages जनरेट कर सकता है, तो विजुअल कंटेंट की सप्लाई लिमिटलेस हो जाएगी. और इकोनॉमीज का बेसिक रूल है कि जब सप्लाई लिमिटलेस हो जाए तो वैल्यू ड्रॉप होने लगती है. सो वैल्यू फिर किस चीज की बढ़ेगी? मीनिंग, ओरिजिनलिटी एंड ऑथेंटिसिटी.
1: स्पॉट ऑन अमिता, स्पॉट ऑन. देखो भाई, क्वांटिटी इंक्रीज होने से क्वालिटी ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ जाती.
0: राइट.
1: नॉइज के समंदर में ऑडियंस उसे ही याद रखेगी जिसने उसके दिल को छुआ. ओ बाबू,
0: क्या बात है.
1: उन्हें सोचने पर मजबूर करें और उन्हें जेन्युइनली इंस्पायर करें ना. तो भाई, आपको याद दिलाते चलें कि आप सुन रहे हैं FM 107 कतर पर. शो का नाम है नेक्स्ट जेन. हम हैं आपके साथ, यानी कि सफा और अमिता. और भाई, इस एपिसोड में हम उन तमाम लिसनर्स को वेलकम कर रहे हैं और उन्हें चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ ज्वाइन करें जो कि AI में इंटरेस्टेड हैं.
0: एब्सोल्युटली, और हमारी बातें आगे भी कंटिन्यू रहने वाली हैं, पर मैं आपसे कहूंगी कि हमारा जो नंबर है 666-22-107, 666-22-107, इस पर अपने नाम के साथ आप अपने एक्सपीरियंसेस भी हमसे शेयर कर सकते हैं.

0: सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि हाउ यू आर यूजिंग AI या AI की कौन सी चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, ताकि हमें भी आपके फीडबैक्स मिले और हम अपने भी शो को आपके हिसाब से और बेहतर कर पाए. तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी.
1: वक्त रुका नहीं है, वो तो नए रास्ते बना रहा है. क्या आप तैयार हैं उस कल के लिए जो आज शुरू हो चुका है? पेश करते हैं नेक्स्ट जेन आरजे सफा और आरजे अमिता के साथ एक ऐसा सफर जो है आपकी क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का नया ब्लूप्रिंट. सिंपल स्टाइल, बिग इंपैक्ट, पर्सनल ग्रोथ हो या टेक रेवोल्यूशन, अपने आइडियाज को दीजिए एक नई पहचान. बनिए कल का चेहरा आज ही.
0: So welcome once again, FM 107 सुन रहे हैं आप. हमारे शो का नाम है नेक्स्ट जेन. मैं हूँ अमिता आपके साथ और हमारी सफा, हम दोनों आपके लिए ये स्पेशल शो लेकर आए हैं. और अभी तक हमने इतनी मजे की बातें की AI से रिलेटेड, अब टाइम है कि हम थोड़ी सी स्टार्टअप स्टोरीज की बात करें. तो सफा, अब हम AI को सिर्फ ट्रेडिशनल स्टूडियो आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि मॉडर्न एंटरप्रेन्योर, एजेंसी ओनर और यूथ बिजनेस सेटअप्स के एंगल से देखेंगे.
2: चलो भाई, ये तो अच्छी बात हो गई. देखो, अगर कतर में कोई यंग बंदा जो है वो ब्रांडिंग एजेंसी, वीडियो प्रोडक्शन हाउस, डिजिटल कंटेंट बुटीक या मार्केटिंग स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो भाई देखो, AI उनके लिए एक मैसिव गेम चेंजर बन सकता है. समझने की कोशिश करो. लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है.
0: मैं सफा लिटरली चाहूंगी कि आप सबको बताओ कि ये मिथ कौन सा है.
2: देखो, ये मिथ ये है कि AI स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स का अपना प्रोप्राइटरी न्यूरल नेटवर्क कोड क्रिएट करना पड़ेगा, या आपको सिलिकॉन वैली की तरह बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वेंचर कैपिटल फंडिंग चाहिए. देखो भाई, रियल एंटरप्रेन्योरियल इनोवेशन लाइज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग एग्जिस्टिंग AI टूल्स इफेक्टिवली.
0: ब्रिलियंट पॉइंट है सबा, कि कंसीडर अ स्मॉल डिजाइन एजेंसी जो कि हमारे दोहा में काम कर रही है विद लोकल SMEs और स्टार्टअप्स. सो ट्रेडिशनल ब्रांडिंग प्रोसेस में क्लाइंट के साथ डिस्कवरी सेशंस, इनिशियल विजुअल मूड बोर्डिंग, कलर थियोरी टेस्टिंग और मल्टीपल कंसेप्चुअल ड्राफ्ट बनाने में इजिली 2 to 3 weeks निकल जाते थे.
2: एंड विद AI जनरेटेड क्रिएटिव वर्कफ्लोस, इनिशियल कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइपिंग एंड स्पार्शियल एक्सप्लोरेशन हैपनिंग इन 48 hours, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्लाइंट को फाइनल रॉ प्रोडक्ट AI का डंप कर दिया जाता है. इसका मतलब ये है कि रैपिड एक्सप्लोरेशन फेज फास्ट हो गया है, अलाउइंग द टीम टू स्पेंड 80% ऑफ देयर एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन एनर्जी रिफाइनिंग क्लाइंट कोर वैल्यूज, ना नैरेटिव डेप्थ, लोकल कल्चरल न्यूएंसेस एंड ब्रांड स्ट्रेटजीज.
0: यानी स्पीड इज एन ऑपरेशनल बेनिफिट, बट प्रोडक्टिविटी डज नॉट इक्वल वैल्यू. बताएं जरा, यानी कि स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स के डेटा के मुताबिक जेनरेटिव AI जो है वो अडॉप्शन ने क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में इटरेशन स्पीड 40-60% एक्सिलरेट की है. लेकिन अल्टीमेट मार्केट सक्सेस जो है ना, वो क्लाइंट सेटिस्फैक्शन प्योरली ह्यूमन क्वालिटी कंट्रोल और क्लाइंट रिलेशनशिप पर डिपेंड करती है.
2: तो भाई मतलब ये कि सपोज एक यंग एंटरप्रेन्योर AI इमेज टूल यूज करके दिन में कह लें तकरीबन 500 जेनेरिक विजुअल एड्स बना लेता है, ठीक है. लेकिन अगर वो एड्स कतर की लोकल मार्केट साइकोलॉजी, कतरी डिजाइन सेंसिबिलिटीज या क्लाइंट के बिजनेस कन्वर्जन गोल्स को हिट नहीं करती, तो भाई उन 500 इमेजेस की मार्केट वैल्यू बिल्कुल जीरो है. समझने की कोशिश करें, मास ऑटोमेशन क्रिएट्स चीप नॉइस, हाई ग्रेड क्रिएशन क्रिएट्स रियल एंटरप्राइज वैल्यू.
0: तो एक यंग क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर को मार्केट में एंटर होते वक्त कौन से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने चाहिए सफा?
2: भाई सीधी सी बात है, उन्हें 4 कोर एंटरप्रेन्योर फिल्टर से गुजरना होगा. पहली चीज तो ये, मेरा टारगेट क्लाइंट किस स्पेसिफिक ऑप्शनल फ्रिक्शन या एस्थेटिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, पहली चीज तो ये हो गई. दूसरी चीज ये कि क्या मेरा प्रपोज्ड सॉल्यूशन एक जेनरिक फ्री AI टूल से कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन 2 to 3 minutes में खुद बना सकता है कि नहीं. अगर आंसर इज यस, तो आपका बिजनेस मॉडल वीक है. तीसरी चीज ये कि भाई मेरा ह्यूमन लेयर जो है, जैसे कि आप कह लें कि लोकलाइज स्टोरी टेलिंग, कल्चरल टेस्ट, डोमेन एक्सपर्टीज या स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, क्या है, आपने ये सॉर्ट आउट करना है. यूनिक नॉन लीनर कनेक्शंस बनाना, मशीन

0: एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट को कंबाइन करती है, ह्यूमन क्रिएटिव लीप्स अनरिलेटेड फील्ड्स को मर्ज करके आइकॉनिक कॉन्सेप्ट्स पैदा होते हैं. ठीक है, देखो भाई, रिकॉग्निशन, सटल इमोशंस, कलर हार्मोनीज और नैरेटिव वेट. देखो, क्वालिटी का बेंचमार्क सेट करना आपका काम है ना. और फिर आगे बढ़े तो भाई, स्टोरी टेलिंग एंड एम्पैथी के बारे में बात करें तो ह्यूमन हार्ट और साइकोलॉजी को समझना.
1: जी,
0: व्हाई शुड एन ऑडियंस केयर अबाउट अ फिल्म, अ प्रोडक्ट और अ कॉज? देखो, एम्पैथी मशीन कोड नहीं कर सकती, वो आपने क्रिएट करनी है. आगे बढ़े तो प्रॉम्प्ट आर्किटेक्चरल एंड स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन. अब इसमें आपने आइडियाज, विजन्स और लॉजिकल स्ट्रक्चर्स को ह्यूमन टीम और एआई इंजन दोनों के सामने क्रिस्टल क्लियर आर्टिकुलेट करना है.
1: राइट.
0: लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेडिकल एडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूस अनलर्निंग. देखो, बात समझने की ये है कि अ मेंटल माइंडसेट वेयर यू अर्न अटैच्ड टू वन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टूल बट आर ईगर टू लर्न न्यू प्लेटफॉर्म्स एवरी ईयर.
1: राइट राइट, दैट्स वेरी ट्रू. एंड की शिफ्ट लाइन ये है, मतलब अक्सर लोग पूछते हैं सफा की शिफ्ट लाइन क्या है. सो मैं इस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वर्जन का नाम मास्टर हूँ, ये अक्सर लोग कहते हैं. कहने के बजाय स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि मैं किसी भी नए डिजिटल टूल को 48 आवर्स में मास्टर करके कॉम्प्लेक्स ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ. सो फोकस शिफ्ट फ्रॉम टूल डिपेंडेंसी टू प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी.
0: हाँ भाई, और स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन सिस्टम में AI का यूज कैसे होना चाहिए, इस पर भी पेरेंट और स्टूडेंट अवेयरनेस जरूरी होती है.
1: राइट.
0: देखो, यूज AI एज अ थॉटफुल पार्टनर ना, नॉट एज अ एकेडमिक क्रच.
1: या, वेरी ट्रू. वैसे मैं चाहूंगी सफा कि इफ यू कैन एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल चीज है.
0: अच्छा भाई, अगर एक स्टूडेंट हिस्ट्री या लेक्चर प्रोजेक्ट के लिए AI को कहता है कि हम कह देते हैं ना कि भाई राइट अ होल 1000 word ऐसे ऑन कतर मैरीटाइम स्टोरी, और उसे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके हम सबमिट कर देते हैं.
1: राइट.
0: मैं बता रही हूँ, स्टूडेंट ने ऐसे टूल यूज किए हैं. स्टूडेंट्स ने अपनी ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस को शट डाउन कर दिया भाई. उन्होंने क्रिटिकल राइटिंग, रिसर्च और सिंथेसिस की स्किल्स को खो दिया.
1: उफ, लेकिन स्मार्ट अप्रोच क्या है? स्टूडेंट ऐसे ना खुद आउटलाइन करें, फिर AI से कहे कि देखो, मैंने कतरी पर्ल डाइविंग एरा पर ये नैरेटिव ड्राफ्ट किया है. एक्ट एज अ क्रिटिकल हिस्ट्री प्रोफेसर. मेरे आर्ग्यूमेंट्स में लॉजिकल गैप्स पॉइंट आउट करो, सोर्सेज वेरीफाई करने में हेल्प करो और ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव्स सजेस्ट करो.
0: And this is how you're using AI as an elite 24/7 personal tutor. देखो, आपकी critical thinking sharpen हो रही है, research depth double हो रही है,
1: right.
0: और ऐसे completely आपका original intellectual output के साथ ही रहता है. That is how next generation students should actually study. उसे as a tool लेना, अपने brain को shut down करने वाला मामला ना करें.
1: And on this note, मैं कहूंगी कि to all our young listeners across Qatar, चाहे आप क्लासरूम में बैठे हो, चाहे आप डिजिटल स्टूडियो में काम कर रहे हो, या आप ख्वाब देख रहे हो एक नए स्टार्टअप को शुरू करने की, देखो, टेक्नोलॉजी से डरना या उससे भागना बंद करो. मास्टर दीज टूल्स, आप अपना जो ह्यूमन मेटा स्किल्स है उसका कोर बनाओ. ठीक है, एम्ब्रेस योर लोकल कल्चर और अपनी पर्सनल स्टोरी, और दुनिया को अपना यूनिक विजन दिखाओ.
0: तो भाई, इसी के साथ का हमारा टाइम जो है आज के एपिसोड का अमिता खत्म होता है.
1: राइट.
0: हम कहना चाहेंगे ह्यूज थैंक्स टू ऑल आवर वंडरफुल लिसनर्स जिन्होंने हमें टेक्स्ट भी किया 666-22-107 पर. आप हमें अगर चाहें तो अभी भी मैसेज कर सकते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं कि आपको ये एपिसोड कितना कनेक्टिंग लगा. आपका सपोर्ट ही हमारे नेक्स्ट जेन की जान है साथियों.
1: एब्सोल्युटली. तो हमारे सारे लिसनर्स, अब अगले एपिसोड में हमसे फिर मुलाकात करें. आपकी आरजे सफा और आरजे अमिता को दीजिए इजाजत.
0: टिल नेक्स्ट टाइम, कीप इनोवेटिंग, कीप क्रिएटिंग, स्टे एथिकल एंड कीप ड्रीमिंग बिग. ओके, भागना नहीं है, कीप ड्रीमिंग बिग एंड यूज AI एज अ टूल.
1: एब्सोल्युटली. और अभी बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी.
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
4: आप सुन रहे हैं FM 107,
5: FM 107
6: दिल से देसी.

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूव प्लेटफॉर्म पर.
1: FM 107 टाइम चेक.
2: अरे मियां टाइम चेक कर लो. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. 6:02 हो गया तो फज्जू भाई.
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
2: हाँ भाई क्या हाल चाल है, किधर है बाबा? बढ़िया रहा नहीं वीकेंड क्या? आजकल तो हवा भी चल रही है बाबा, शकल अपनी बाहर दिखा सकते हैं. एक जमाना था भाई कि जैसे ही आप इस हल्की भी चलती हुई हवा में या गर्मी में आप अपनी शक्ल बाहर निकाल लें तो चमड़ी जो है जलने लग जाती थी. घर वाले पूछते थे, अरे बेटा मेरा काला क्यों हो रहा है? उनको कौन बताए, अरे काले इसलिए हो रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है. अब घर वाले तो हमें जानते इसीलिए वो गा भी देते थे कि अरे काला है तो क्या हुआ, मेरा लड़का दिलवाला है. लेकिन अब क्या बताए, काले भी है दिलवाले भी है लेकिन कोई मिल नहीं रहा है इस दिल को समझने वाला. घर वालों के अलावा कोई मानता ही नहीं है कि हम दिलवाले भी हैं. ये सब बातें अपनी जगह. इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. यार संडे का दिन है, मतलब बाकी देखो क्या अलग ही दुनिया है कि आज के दिन सब छुट्टी मना रहे हैं संडे के दिन, लेकिन ऐसा गल्फ कंट्री में कोई छुट्टी नहीं. फ्राइडे सैटरडे होती है ना यहाँ पर. तो हमारे क्या होता है कि लोग इंजॉय कर रहे होते हैं और हमारे जितने भी दोस्त हैं वो इंडिया में पड़े हुए हैं, अपने अपने मुल्क में पड़े, वहाँ पर संडे को होती छुट्टी, वो अपना यार सब डाल रहे होते हैं. मुझे फ्राइडे सैटरडे मज़ा आता है, उनको संडे और सैटरडे मज़ा आता है. तो जब हमारा ख़त्म हो रहा होता है उनका शुरू हो रहा होता है इन्जॉयमेंट का दिन, तो मेरे को बड़ा खलता है जब उनकी रील्स देखता हूँ, उनकी स्टोरीज देखता हूँ, तो दिल में थोड़ी थोड़ी कोफ्त सी होती है ना, जलन सी होती है कि अरे यार ये मज़ा आ रहा है. ये वही वाली बात है कि यार हमारा रसगुल्ला तो प्लेट से ख़त्म हो गया है लेकिन दूसरे का रसगुल्ला देखने के बाद थोड़ी सी जलन तो होती है. भले मैंने 3 खाया हो उसने 1 भी खाया है लेकिन बचा हुआ है ना बाबा, तो जलन हो रही है थोड़ी थोड़ी. ये तो फील है. तो वहाँ पर लोग अभी संडे एंजॉय कर रहे हैं और अपन यहाँ पर काम पे आए हैं. बट काम पे आए ले तो क्या हुआ, मजे तो करेंगे. अनप्लग्ड इवनिंग ये शो जहां पर अनप्लग्ड गाने प्ले किए जाएंगे और सबसे पहला गाना आएगा दर्शन रावल की आवाज़ में. लेकिन इस बीच एक सवाल भी होगा और सवाल आज का क्या हो, सवाल से पहले थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं और ये गाना दर्शन रावल की आवाज़ में आ रहा सबसे पहले और उसके बाद हम फिर सवाल पर बढ़ेंगे. या सवाल कर लिया जाए, ऐसे सवाल तो कर ले, मोबाइल किधर है? हाँ ना, हमारी जान हमारा मोबाइल किधर है, वो तो दिख जाए यहीं पर तो धाया रवि, कभी दिख जाता कभी गायब हो जाता. जरा ये सुनो, अपना मोबाइल अपन ढूंढ के आते हैं.
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
2: मिल गया मोबाइल यही था. चार्जिंग ले रहा था, नया है फिर भी कोई मसला नहीं, लेकिन 39 पे इसकी जान जो है बची हुई. तो दोस्तों इस्तकबाल आप सभी का FM 107 पे एक बार फिर से, क्योंकि अगर हो सकता है आप अभी आए हो, यू नेवर नो. यूसुफ भाई का मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी संडे इवनिंग, कैसा रहा आपका वीकेंड? वीकेंड एकदम जोरदार, घर पे पड़े हो एकदम लाश बन के. इससे बढ़कर क्या चाहिए. एक मर्द जैसे ही 30 पार करता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक मर्द जैसे ही 30 पार करता है उसको लगता है कि बस अब घर में हमें लाश बन के पड़े रहना है. तो मजा आता है भाई, 30 के बाद लाश बन के पड़े रहो. नहीं, 4 लोग नहीं चाहिए हमें जिंदगी में. अगल बगल कोई पड़ा रहे बात ना करे मुझसे बस. कैसी जिंदगी है ये. 6:05 और बाकी लोगों का मैसेज देख लेते हैं. घर में लाश बनके पड़े. हाँ भाई मैं तो यही, घर लाश बनके अपन पड़े रहते हैं. फिर उसके बाद एक और मैसेज है, सलाम का, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा भाई क्या नाम है आपका? आशिक. ओह, नाम में ही मोहब्बत प्यार झलक रहा होता है, बहुत ही उम्दा. फिर उसके बाद एक और ये मैसेज है, सलाम का, वालेकुम अस्सलाम, मेरा भाई कैसे हैं? नाम क्या है? शेख अरफान अल कासमी. फिर उसके बाद एक बच्चा चॉकलेट मांगने आया है. ऐसा होता ना जैसे चॉकलेट मांगने तरह मुंडी घुमा दो उसकी, चलो बेटा अपने घर चलो चलो चलो. सो पढ़ाई कितने नंबर आए थे तुम्हारे एग्जाम में, हैं? हाई स्कूल पास करा नहीं करा तुमने? हैं 33% एकदम आखिर में, छी छी छी छी छी छी छी चॉकलेट चाहिए इनको है। ओके अस्सलाम वालेकुम फजल भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। 30 के बाद सुकून शांति चाहिए बस और कुछ नहीं। सुकून तो मिल जाएगा, शांति पता नहीं कहाँ गया मैं। जैस खान साहब ये बात भी बिल्कुल सच्ची है कि पता नहीं क्यों ये जो शांति है और सुकून दोनों नहीं मिल रहे। 30 के बाद जितना ज्यादा आप चाहत रखते हैं उतना ये दूर भाग रहे होते हैं, अल्लाह जाने। फिर उसके बाद शेख इरफान कासमी कहते हैं बस ऐसी बातें ना करो फलाना, अच्छा ये लफ्ज जो लिखा मैं पढ़ नहीं सकता, फलाना सूंघ के चला जाएगा। बस शेख भाई चॉकलेट में उनको चॉकलेट, अच्छा वो उसी कलर की होती भी है जिस जिस लफ्ज का आपने इस्तेमाल किया है जो मैं यहां नहीं बोल पा रहा हूं, चॉकलेट उसी कलर की होती है जो ये सूंघ के चला जाता है। बस हम इतनी दूर की बात नहीं कर रहे, 6:07 हमारे स्टूडियो वीडियो में जरा सवाल पे आ जाते हैं। सवाल आज का बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये सवाल मैं इसलिए क्योंकि हमारी जिंदगी में भी ऐसे कई

लोग हैं, समझ नहीं आता है कि इनको ज्ञान दें या पैसा दें, इनको अपनी जिंदगी से दूर कैसे करें, ज्ञान दे के या पैसा दे के। तो मैंने सोचा ये सवाल जरा कर ही लिया जाए, और हमारे जो एक्सपीरियंस वाले भाई लोग बाहर बैठे ले हैं वो तुम्हारे भाई को बताएंगे। तो आज का सवाल मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे आते हैं बन के जिनको बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार। उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चल नहीं रहा, वो अपना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब वो आते हैं तो या तो वो पैसा मांग रहे होते हैं या फिर वो एडवाइस मांग रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है लोगों की मदद किस तरह करना चाहिए आज के दौर में, है ना? एक तो ज़माना था लोग जो है पैसे से भी कर दे रहे हैं, एडवाइस से भी कर दे रहे हैं, दोनों से कर दे रहे हैं। लेकिन अगर किसी एक चीज़ से किसी की मदद करना हो, किसी की ज़िंदगी बर्बाद चल रही हो, है ना, किसी की लाइफ में सही में झंझट चल रहे हो, किसी के बिजनेस में लॉस हो रहा हो, किसी की बीवी में झगड़े हो रहे हो, माँ बाप के साथ झगड़े हो रहे किसी के, तो आपको क्या लगना चाहिए, क्या लगता है कि किसी की हेल्प करने के लिए पैसे दे के उनको रफा दफा करो या फिर उनको एडवाइस दो, क्योंकि ये दोनों मांग रहे होते हैं, असल और सही तरीका क्या है ना, कि ज्ञान ले लो भाई और यहां से निकलो। क्योंकि मैंने आजकल एक चेंज किया है अपने ऊपर, और वो ये चेंज है कि ज्ञान तो मैं भर के दूंगा, पैसे के लिए एक मुंह भी मत खोलना भाई, ठीक है। मैं आजकल इसी दौर में आ गया हूं कि मैं एक रुपया नहीं दूंगा, इतना चपत लगा है मुझे भाई कि मैं अब एडवाइस दे सकता हूं, पैसा नहीं। बाकी अब आपके पाले पे है ये सवाल, नंबर है 666-22107, 666-22107, सिंपल सा सवाल आपको बताना है कि कोई अगर आपसे मदद मांगने आए तो पैसे देंगे या सलाह, कि सलाह भाई सलाह लो और निकलो। बाकी 666-22107 मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये मैसेज है, सलाम वालेकुम अस्सलाम, नाम नहीं लिखा है, अच्छा हाँ लिखा है, राजाउल नाम लिखा हुआ है। आज मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा शाहिद भाई आज गुस्सा से खाना नहीं खाया, उसको बोलो खाना खा लो। अरे भाई वो कौन सा मेरे सगे संबंधी फुप्पी लगे हुए हैं कि मैं जो कहूँगा वो मान जाएगा और खाना खा लेगा यार। और ये तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है जेल में दो लोग बंद हैं, एक का मूड खराब हो गया है और वो मुझसे कह रहे हैं कि जेलर साहब देखो खाना नहीं खा रहा है, इसको क्यों खाना खा ले। अरे कौन सा मैं जेलर लगा हूँ, खाना खा लेगा भाई। लेकिन फिर भी राजाउल का जो भी दोस्त है, शाहिद भाई खाना खा लो, क्यों नहीं खा रहे हो भाई। लेकिन ये बड़ी अजीब बात है यार, मेरे कहने से खाना खा लेगा, और खाना खा ले तो ज़्यादा डर है मुझे। एहतराम भाई ने मेरा सोशल मीडिया छान के मेरे को मेरी तस्वीर भेज दी है, अभी अभी अपलोड करी थी मैंने, मैं यहीं पर बैठे बैठे अपलोड किया मैंने। कुछ काम नहीं था करने को, तो फिर मैं आया, मैंने फोटो ही अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे। फिर ख्वाजा साहब का मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, 30 के बाद मर्द जवान होता है, बुढ़ा नहीं है। आपने मेरे बाल नहीं देखे हैं, हालांकि अभी देखेंगे तो जवान ही कहेंगे, एक महीने बाद आओ। फिर आप कहेंगे अरे भाई भजीर इतने सफेद, मैं कहूँगा हाँ यार वो धूप में क्रिकेट खेल खेल के हो गया है। बाकी 30 के बाद असल में जिंदगी ढलने ही लगती है भाई। देखो दो वजह होती है, या तो सही में इंसान जवानी की तरफ बढ़ता है या बुढ़ापे की तरफ। जवानी में तब जब अच्छा पार्टनर मिल जाए, बुढ़ापे की तरफ तब जब अच्छा पार्टनर मिल जाए। फिर इंसान क्या नहीं अरे यार अच्छा पार्टनर मिल गया, अब तो घर ही में रहना है, कोई काम नहीं करना है। बाकी ख्वाजा साहब मैं आप पर भी बिल्कुल पैसे लगा, तो सही कह रहे हो आप। फिर पैसा दो आसिफ कहते हैं कि ज्ञान नहीं पैसा, ज्ञान नहीं चाहिए पैसा चाहिए। बस यही वजह है कि फिर आप जैसे लोग अकेले रह जाते हैं, पता है तन्हा, क्योंकि आप इतना पैसा मांग लेते हैं, आपको लोग ना फिर ऐसे अलग अलग कहानियां बता, अरे अम्मी की तबीयत खराब है भाई उसमें पैसे लग गए, फिर आपको कोई बताएगा अरे नहीं वो फलाने सामान आ गए, अरे घर में राशन के लिए यार सामान नहीं है, इस बार बीवी पैसे लेके चली गई, अरे अभी फ्लाइट की टिकट करानी, इस तरह के बहाने आपको लोग बताते हैं, क्योंकि आप हर बात पे ज्ञान नहीं लेते, पैसा ही ले लेते हैं। यही तो सच्चाई है दोस्त। फिर उसके बाद एडवाइस और पैसा दोनों देना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं तो भाई एडवाइस देता हूँ,

0: पूरा यू टर्न लेता हूं, यू टर्न ले, तेज भाग भाग भाग और तेज भाग भाग भाग पैसे मांग के तो देखो बहुत तेज भागता हूं मैं। शेख इरफान कहते हैं भाई हम जिस कबीले से बिलोंग करते हैं वहां जुम्मा के दिन सोते नहीं 30 के बाद। अच्छा कबीला अभी भी चलता है 30 के बाद सोते नहीं, ये कौन सी बात हुई भाई। अगला आदमी निंदासा है और 30 के बाद तो और मेरी बॉडी पता इतनी लथार्जिक हो गई है मैं सिर्फ दो ही वक्त पे उठता हूं, एक सुबह मतलब जब जान लेती मेरे को असल में, और दूसरा क्रिकेट के वक्त, बाकी तो मैं लाश बन के पड़ा रहता हूं। मुझसे कोई कह दे उठकर काम करो मुझे मौत आ जाती है, मैं अपने बीवी को वो काम दे देता हूँ। कोई मुझसे कहता है पानी है क्या फजील, अब मैं ए, सुनो पानी ले आओ मांग रहे हैं। मैं काम डाइवर्ट करने में भरोसा रखने लग गया हूं। लेकिन 30 के बाद किसी को नींद नहीं आ रही, मुझे तो नींद ही आ रही 30 के बाद भाई, पता नहीं यार ये क्या हो गया है। फिर बिनीश बिनीश का मैसेज है सलाम वालेकुम बिनीश आशिया, ओके मैं तो रोगन जोश खिलवा दूं मगर मेरे हस्बैंड बिजनेस आइडिया रखने वाले हैं क्या, ताकि वो दोबारा ना आए। ये वाली लाइन मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं तो रोगन जोश खिलवा दूं अगर कोई पैसा या एडवाइस के लिए आए, ये लाइन तो समझ में आ गई, मगर मेरे हस्बैंड बिजनेस आइडिया ताकि वो दोबारा ना आए। इस वाले पे थोड़ा आपको एलैबोरेट करना पड़ेगा। देखिए बाकी यूसुफ भाई का एक लंबा मैसेज है, फजील जो शख्स हेल्प मांग रहा है किस सिचुएशन में मांग रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस मैं हेल्प करूंगा। मैं तो भाई किसी भी हाल में नहीं हेल्प करने वाला, मैंने हर सिचुएशन में हेल्प कर ली। एक मेरा दोस्त उसने कहा था भाई मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, उसने दुनिया भर के कागज भेजे और कहा कि वो हॉस्पिटल में, मैंने कहा भाई जज्बाती फजील, तब मैं 30 का होने वाला था। तो मैंने क्या किया कि हेल्प कर दी, पैसे दे दिए। अब उसके बाद मैं भी जब हॉस्पिटल में था तो भाई ने पैसे नहीं दिए, मैंने कहा अरे ये क्या। तो मैंने वही है कि भाई अब मेरे पास होंगे भी तो मैं अपने लिए खर्च करूंगा, मैं एडवाइस ले लो भाई, है ना, कि वो फलाना एप्लीकेशन है या फलाना वेबसाइट है उस पे जाके पैसे मांगो, 20-25 लोग जो आपको नहीं जानते होंगे वो पैसे दे देंगे, आपका काम पूरा हो जाएगा। कभी कभार तो लाख लाख दो दो और एक एक मिलियन तक पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। फलाना वेबसाइट पे जाओ वहां पर अपने ये कागज डालो, मेरे पास कागज मत डालो भाई, मैं नहीं दे पाऊंगा। खैर मैं तो यही एडवाइस दे देता हूँ, मैं यही वाला। बाकी कहते हैं यानी कोई ऐसा रीज़न, आगे लिखा है ऐसा रीज़न जिसमें सिर्फ फिनेंशियल हेल्प हो सकती है वहाँ तो श्योर फिनेंशियल हेल्प करना भी चाहिए, अदर देन दिस गुड एडवाइस भी दे सकते हैं। मैं तो यही गुड एडवाइस देता हूँ कि भाई मेरे पास नहीं लेकिन मेरा एक दोस्त है, है ना, वो बिनीश का हस्बैंड है, उसके पास बहुत पैसे हैं, बिजनेस आइडिया है उसका। तो उससे जाकर ले लो भाई। मैं इधर डाइवर्ट कर देता हूँ ना, डाइवर्ट करने में मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गया हूँ। या आगे भी लिखा है इन्होंने यूसुफ भाई ने, या फिर दोनों भी हो सकते हैं, फिनेंशियल हेल्प करते हुए गुड एडवाइस भी अच्छा होगा लेने वाले के लिए। बहुत ही उम्दा, कोड़ा मार दो भाई। आसिफ भाई कोड़े वाला अभी आया नहीं, आज थोड़ा लेट हो गया, मुझे लगा ट्रैफिक में फंसा है। आसिफ भाई आप मेरे को एड्रेस दो अपना, मैं कोड़े वाले को वहीं भेज दूंगा, फिर उसके बाद देख लेंगे भाई। यू टर्न पे तो आपको पकड़ लेंगे, नहीं भाई यू टर्न पे मैं पीठ दिखाता हूँ और फिर मैं वहां से भी डाइवर्ट करना जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, 1000 रियाल मांगता है। हैं आप मुझसे मांग रहे हैं, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं लेकिन मैं पीठ दिखा रहा हूं आपको। मेरे से पैसा मांग लिया, अच्छा खासा मूड था मेरा,
1: तोबा तोबा तोबा थारा मूड खराब कर दिया,
0: अच्छा खासा मूड था, मुझसे कोई पैसा मांग ले मुझे एकदम मूड,
1: तोबा तोबा थारा मूड खराब कर दिया,
0: मेरे से बात नहीं करना तुम, ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, रुको तुम ब्लॉक करता हूँ मैं, मोहम्मद इनका नाम, इनको ब्लॉक करो भाई, इनका आना नहीं चाहिए मैसेज। अब बिनीश ने लिखा मेरे हस्बैंड दूसरों को इतना बिजनेस आइडिया देते हैं, दूसरा वाला सोचता यार पैसे तो ज्ञान नहीं। अच्छा बिनीश का कहना है कि उनके हस्बैंड के पास बहुत ज्यादा बिजनेस आइडिया है और दूसरा ये सोचता है कि पैसे दो ज्ञान नहीं, बिजनेस आइडिया नहीं चाहिए। हाँ ये वाली बात तो बिल्कुल सही है, तो रोगन जोश ही खिला दिया करो तुम। ओके आगे भाई कंट्रोल करो और जब पैसा है तो तब काम करो, मेरा तो ये मानना है। उस्मान कहते हैं भाई कंट्रोल करो और जब पैसा है आए तो तब काम करो, क्या कंट्रोल करो क्या काम करो अभी स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा है, इसमें डिटेलिंग बहुत कम है, जब डिटेलिंग आ जाएगी ये क्या कहना चाह रहे हैं उस्मान साहब मैं बता दूंगा। लेकिन ठीक है उस्मान भाई, आपका दर्द जो है वो हम समझते हैं, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा डिटेल में लिखेंगे तो मेरे लिए जो है आसान हो जाएगा।

फिलहाल 6:18 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, अगर आपके पास कोई शख्स आए किसी मदद के लिए तो आप किस तरह से मदद करना चाहेंगे? एडवाइस देके या फिर पैसा देके? मैं तो पीठ दिखा देता हूँ, बाकी आप अपनी मर्जी से बता सकते हैं। नंबर है 666-22107। बाकी लोगों के मैसेज कुछ देर में, फिलहाल अभी दर्शन रावल को बुलाते हैं। दर्शन बाबू इधर, इधर। फिलहाल फजगील के साथ हैं आप, 6:18 स्टूडियो की घड़ी में, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Consistency is the key. ये तो सुना ही होगा आपने. और इसी consistency के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और energy को sustain करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो क्यों समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया. So sustain the future. हर Friday दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे-छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और sustainable मुस्तकबिल के. Only on FM 107. Dil Se Desi.
3: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं है, ये अलग अलग ख्याल आदतें. इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा.
4: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक. जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM. Only on FM 107, they'll say this.

0: गाने में अगर आवाज अच्छी हो तो प्रेज करना चाहिए सिंगर को। दीपशिखा की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक आपने सुना FM 107 पे।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: दिल से देसी। और ये गाना सुनने के बाद कई लोगों को याद भी आ गई, और ये कौन है जिन्होंने कहा कि याद आ गई है? है तो एक दो और लोग, लेकिन अरबाज खान ने कहा है कि सॉन्ग सुन के किसी की याद दिला दी और फिर दिल जो है वो टूटा हुआ है। ये भी मेरी गलती है क्या? मेरी गलती, ये भी मेरी गलती है नहीं। 6:29 हमारे स्टूडियो की वीडियो में, और जब खूबसूरत सा गाना अगर आप ऐसा सुनते हैं जिसमें लव्स भी ऐसे होते हैं जिसमें सच में आपको कुछ याद आ जाता है या याद दिला दिया जाता है लफ्जों से, तो गाना वैसे भी बड़े दिल के करीब आ जाता है। फिलहाल ये शो अनप्लग्ड इवनिंग इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का FM 107 पे। और फिलहाल बाकी लोगों के मैसेज की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं, और उम्मीद है कि अरबाज भाई आपकी ये याद जो है वो खूबसूरत ही याद होगी। भाई लास्ट 3 सॉन्ग शानदार थे, प्लीज़ क्या सेंड करें? टोटल सेंड करें, टाइटल TAITAL। भाई अब दुनिया बताए इसका मतलब क्या है, टाइटल सेंड करे। अच्छा, अरे मेरा भाई यार, मेरी ही अंग्रेजी खराब, मेरे को समझ लेना चाहिए एक्चुअली, पता है अब तक तो समझ ही लेना चाहिए कि यार क्या क्या गलती हो रही है। उस गलती को अपने हिसाब से मुझे AI बन जाना चाहिए, ऑटोमेटिक मेरे को ना जो लोगों ने गलत मैसेज किए हैं उसमें समझ जाना चाहिए कि ये टाइटल लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं टाइटल आपको बता देता हूँ। ये जो दीपशिखा रैना का था, ये गाना है खैरियत। सबसे पहला गाना दर्शन रावल का था अनप्लग्ड, माहिया जिन्ना सोना, और राज बर्मन का था मन भरया। ये सारे गाने बड़े ही ऑथेंटिक, बहुत प्यारे गाने रहे हैं। बस ये अनप्लग्ड हैं इस वजह से थोड़े से अलग सुनाई देते हैं और आपके दिल पे असर कर जाते हैं। बाकी सवाल पर आते हैं, और ये मैसेज है किस भाई का, मतलब कोशिश करें कि किसी से रिक्वेस्ट ना करें और अच्छे टाइम का वेट करें, दिस इज़ माय एडवाइस। अच्छा, ओके, उस्मान भाई का ये कहना है, कोशिश करें कि रिक्वेस्ट ना करें पैसे की, बस अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। क्या बात है, ये एडवाइस भी दे दी इन्होंने। फिर वही वाला सवाल भी आ गया कि आप ज्ञान देंगे या पैसा, तो भाई ने तो ज्ञान ही चुना, उस्मान साहब ने नहीं। बाकी जस खान साहब कहते हैं उस्मान भाई से पूछ लो खाली बैठ कर क्या। इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा मैं, काहे के लिए ये सब बातें करती हो भाई। रासिफ भाई का मैसेज है, भाई जब मांगता है तब के करता है, भाई वभी जब मांगता है, भाई भाई जब मांगता है तब क्या करता। मैं तो, मेरा अगर भाई भी मुझसे पैसा मांगे तो मैं मुकर जाऊं भाई, सिंपल सा है, पैसे कमाओ सिंपल। हाँ और क्या, मैं क्यों दूं, मेरा पैसा है, मुझे पता है मुझे वापस नहीं मिलेगा, मैं ऐसे ही में इतनी उधारी पे हूं, मैं एक दिन जब निकल जाऊंगा ना इस जिंदगी से, इस दुनिया से, तो लोग सिर्फ यही कहेंगे बड़ा अच्छा आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था। कम से कम 8-10 लोग तो कहेंगे, और वो 8-10 लोग वही होंगे जिन्होंने उधारी ली है उससे। आप जब किसी मैयत में जाते हैं ना, होता नहीं मैयत में ऐसा 20-25 घर होते हैं, फैमिली होती है, जो कहता है अरे बड़ा अच्छा था, पता है एक जमाना था और उसने ऐसा कर दिया, आपकी तारीफें होती है भाई दबा दबा के, और आप बड़े शौक में होते हैं, मतलब जो लेटा हुआ है वो नहीं, जो सुन रहा है वो बड़ा शौक में होता है कि यार ये आदमी इस भयंकर लड़ाई में पूरे 2-4 साल से ऐसी भयंकर लड़ाई थी कि जो तारीफ कर रहा है

0: वो इससे इसके हाल और खबर लेने नहीं आते थे। इसके बारे में जो लेटा हुआ इसके बारे में किसी ने पूछा नहीं। अब ये 20-25 फैमिली कहां से आ गई जो सिर्फ तारीफें करे चले जा रही है, और वो तारीफ सिर्फ इसलिए करते थे कि वो लेटा हुआ आदमी जो है ना उसने उधारी चुकाई थी, उधारी दी थी, और लड़ाई भी इसीलिए हुई थी क्योंकि वो उधारी चुका नहीं पा रहे थे। बस यही है, मेरा भी यही है। मुझे 20-25 फैमिली बहुत कह रहे बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत मदद करता था, पता है जब भी इसके सामने कोई हाथ फैलाता था, हाथ नहीं फैलाना देता तो भैया हमेशा खड़ा रहता था, इसका हमेशा हाथ यूं रहा है, देने वाला हाथ रहा है भैया, बड़ा अच्छा था फजील। हाँ हाँ, कतर में रहता था, मैं कभी कभी कॉल नहीं कर पाता था, ये खुद कॉल करता था। अब ये नहीं बताएंगे कि मैं पैसे मांगने के लिए कॉल करता था भैया दिल का बड़ा अच्छा था, हम कॉल नहीं कर पाते थे, ये खुद कॉल करता था, हमारे घर भी कई बार आया। अब ये नहीं बताएंगे कि पैसा मांगने गया था मैं अब बीच में अपना भी चेप देंगे, हाँ जिस दिन आया था वो फलाना 3 साल पहले आया था तब हमने बकरे का गोश्त बनाया था, हाँ बकरे बहुत अच्छा लगता उसको बकरे का गोश्त। अब क्या बताएं कि असली बकरा तो भजीली बंदा था फिलहाल बाकी लोगों के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं ये मैसेज है शाहिद साहब का, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम, और कहते हैं भाई एडवाइस और पैसे में हमेशा एडवाइस को चुनो, क्योंकि एक बार पैसा देने के बाद वो आपको फिर एडवाइस के लिए चुनते हैं। ओ भाई साहब, अरे भैया शाहिद साहब क्या एक्सपीरियंस है, वाह एक्सपीरियंस बोलता है, ये तो बहुत ही गहरी बात कह दी आपने कि एक बार आपने पैसे उधारी दे दिए तो फिर तो भूल जाइए आप कि आप कौन है। फिर एक और ये है मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, एडवाइस ही दूंगा मैं तो। अच्छा ठीक है, नाम क्या है यार, नाम तो लिख दिया करो अपना। अब देखो DSR है, DSR से मैं क्या समझूं, ये भाई बताएंगे DSR, बीच में L लगा होता है मैं समझ जाता है इनके कैमरे की दुकान है बाकी एक और ये मैसेज है सलाम का, वालेकुम अस्सलाम, मैंने जिंदगी भर एडवाइस ही दी है। क्यों, मैं पहले ही समझ गया था, अच्छा मैं दुनिया को पहले समझ गया था इसलिए मैंने हमेशा एडवाइस ही दी है, क्या बात है। ये कौन लोग हैं यार जो जिंदगी को बहुत पहले समझ, कौन है ये लोग,
1: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये,
0: कहां से आते हैं ये, सही में ये दुनिया को समझ जाते। मैं तो ऐसे किसी शख्स से अभी तक नहीं मिला जिसने उधारी ना बांटी हो और उसको वापिस भी मिल गया हो, वापिस तो किसी को नहीं मिला खैर अभी तक, लेकिन क्या बात है यार ऐसे लोग मुझे ढूंढने। मेरा एक जिंदगी में यही है सपना कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए। फिर शेख साहब ने लिखा है भाई स्पेलिंग मिस्टेक, अरे नहीं कोई मसला नहीं है भाई यार चल। फिलहाल बाकी लोगों का मैसेज कुछ देर में, अब आ गया है वक्त खत लिखने का, तो डियर फजील या डियर करके आप जो है खत लिख सकते हैं, और खत लिखने के लिए पूरा सेटअप क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले ये सुन लो।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107,
5: FM 107
4: दिल से देसी।
0: बाकी देखो आपको सारी डिटेल, अगर आपका ऑफिस है ना, कोई प्रोडक्ट है आपका, अगर ऐलान करवाना चाहते हो भैया हमारे पास बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है FM 107 का उर्दू रेडियो स्टेशन, कहाँ जाएगा, कांटेक्ट करो, कांटेक्ट नंबर लेना है तो urdu radio.qa पे आ जाओ, सारा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। हल्के हाथ से प्रमोशन देख रहे हो। फिलहाल 6:36 और अब खत लिखने का वक्त है, और ये खत उसके नाम जिसकी या जिसने आपकी मदद की, जिसने आपको यह एडवाइस दी, बहुत ही कोई नेक एडवाइस दी हो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अच्छी तब्दीली आई हो, जिसने आपको पैसे दिए हो, जिस पैसे का इस्तेमाल करके आपने अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाई हैं, एक ख़त आज उनके नाम, डियर XYZ कुछ भी लिख सकते हैं आप, और ये लिखने के बाद आप अपने लफ्ज़ में बयां करें एक अच्छी बात, आज एक अच्छी बात पर, वो वाली बात नहीं कि डियर फलाना लाना थे, नहीं ये कोई नहीं करेगा मैं बता रहा हूँ, लेकिन डियर XYZ जिसने आपकी मदद करी है, चाहे वो पैसे से हो चाहे वो एडवाइस से हो, एक खत उनके नाम

जो होना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर है 666-22107 666-22107। मुझे पता है एक दो लाइनर तो आप मार ही दोगे, लेकिन फिर भी मैंने तो आपसे इल्तजा कर ही ली है। अभी अरिजीत सिंह अकाशा की आवाज में दिल ना जाने, ये गाना आप सुने FM 107 पे फजील के साथ है, दिल से।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: के की आवाज में मेरे बिना ये गाना FM 107 पे, गाने का नाम मेरे बिना अनप्लग्ड, ये वर्जन के क्या खूबसूरत ट्रैक गाया आपने यार। फिलहाल 6:45 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और वक्त आ गया है कि आपके प्यारे खत पढ़े जाएं।
1: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील,
2: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: मैंने कहा था ना, लोग मानते नहीं है भाई, लोग अपनी वाली तो कर ही लेते हैं। कितनी प्यार मोहब्बत से मैंने कहा था कि अपने दिल की बात लिखिएगा, तो पहले दिल की बात ही पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उलझुल जो हरकतें हैं लोगों की खत को लेकर वो हम उस पर भी पढ़ेंगे। एक्साइटेड भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है। अच्छा, कई बार होता है ना कि आपको आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपका मन करने लगता पूरी स्टोरी सुने। तो ये खत से हुआ ये है, जब से मैंने खत मंगवाना शुरू करा है कि ये इन बातों से हुआ ये कि असल में आपका दिल करने लगता है कि पीछे की स्टोरी बताओ मेरे को, अब मेरे पास बहुत टाइम है। लेकिन मसला ये है कि ये शो जो है एक घंटे का अनप्लग्ड इवनिंग। साजिद भाई लिखते हैं, डियर ब्रदर्स, यानी कि भाई भाई लोग हैं इनके, अब वो कौन है कौन नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सगे भाई हैं। डियर ब्रदर्स, तुम्हारे साथ की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। तुमने मेरे परेशानियों में पैसे और सलाह यानी कि एडवाइस दोनों से सही वक्त पे सही मदद की, जिससे आज मैं एक बेहतर ज़िंदगी जी पा रहा हूँ और दे पा रहा हूँ। अल्लाह आपको आपको दोनों को खुश रखे। कितनी प्यारी बात है भाई, है ना। तो दो भाई हैं, इससे पता चल गया टोटल तीन भाई हैं। अब लेकिन मेरे को पूरी स्टोरी जाननी है कि सही वक्त पे सही सलाह के साथ मदद की और अब बेहतर ज़िंदगी जी पा रहे हैं, तो यानी कि दो भाइयों ने क्या ऐसा किया, क्योंकि ये कहानियां बहुत कम देखने को मिलती कि भाइयों ने मदद करी हो। आपस में तो यही देख रहे हैं कि दो भाई आपस में उलझे ही हुए हैं भाई, झगड़ा ही कर रहे हैं, मैं तो यही देख रहा हूँ। फिर एक जमाल है, उनने कहीं और की बात कहीं और लिख दी, लेकिन ठीक है, लोगों का खत है भाई, अब लोगों के दिल से हम थोड़ी छेड़छाड़ कर सकते हैं। उनने लिखा है, डियर रिसीवर्स, कोई होंगे पाने वाले, डियर रिसीवर्स एक एडवाइस देता हूँ, उधारी वापस दे वरना मेरे हाथों अनहोनी हो जाएगी। मैं तो तैयार बैठा हूँ कि भाई, मैं वो होता है ना कि जो आइसक्रीम लेकर बैठा हुआ है, पॉपकॉर्न लेकर बैठा हुआ है, कि कुछ कहीं पर तो झगड़ा अगड़ा हो, तब मैं चिल्लाऊं कस के,
3: अभी मजा आएगा ना भिड़ो,
0: कहीं झगड़ा वगड़ा हो तो हो, तब तो मजा आए भाई साहब। मैं पॉपकॉर्न लेके हमेशा तैयार बैठा रहता हूँ। तो ये जमाल भाई का मैसेज है, और कहीं पर भी होता है अगर जमाल भाई आपके हाथ हो अनहोनी, मेरे को बताना, मैं पहले पहुंचूंगा, ठीक है। फिर राशिद साहब ने लिखा है, डियर आबिद, ये भी स्टोरी जानना है मुझे, बहुत छोटी बात लिखी, इनने थैंक यू बोल दिया, मेरे फ्लाइट के दिन 15,000 रुपये बचाए थे तुमने, थैंक यू मेरी जान। अरे कैसे, क्या कुछ तो इन्फॉर्मेशन डालो इस पे, मेरे दिल में से कुलबुलाहट हो रही, मैं वो आंटी बन गया हूँ भाई मोहल्ले की जिसको सब जानना है, तो मेरे अंदर एक अलग सी कुलबुलाहट है, मेरे को जानना है कि उस दिन क्या हुआ था, कि फ्लाइट थी इनकी राशिद भाई की और इनके दोस्त ने इनके 15,000 रुपये बचा लिए, कैसे क्या हुआ था उस दिन, क्या शाम का क्या वक्त था, वो क्या टाइमिंग थी, मैं गलत आदमी बन रहा हूँ धीरे धीरे भाई। फिर मोहसिन भाई ने लिखा है, डियर दोस्त, समोसा ना खिलाया करो, मेरे मुंह पे पैसा फेंक के मार दिया करो। ये कैसी एडवाइस दे रहे हो यार अपने दोस्त को मोहसिन साहब, ये कैसे कैसे लोग हैं यार, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, कहाँ से आते,
4: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं,
0: मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ठीक है अब आ गए हैं तो हम इनको बर्दाश्त ही करेंगे। बाकी भाई काकी को ले आओ, अरे हम तो काकी को ले आए, लेकिन क्या करें, बवाला हो जाएगा, काकी को तो हम लाने को तैयार हैं, लेकिन आप काकी को झेलने के लिए तैयार हैं, सवाल तो ये है, बाकी क्या कर सकते हैं। फिलहाल हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:49 और इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाज़त, और आपके खत बड़े ही खतरनाक और डेंजरस थे, लेकिन उम्मीद है कि ये खत धीरे धीरे मोहब्बत वाले बनेंगे, मोहब्बत वाला मंगवाता हूँ, मोहब्बत वाला दे दिया करो। बाकी अस्सलाम वालेकुम फजील भाई, क्या हाल है आपके, मैं बहुत अच्छा हूँ यार, जुल्फ़िकार साहब बहरीन वाले, ओहो बहुत दूर से मैसेज कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप थोड़ा लेट ज़रूर हो गए, लेकिन इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल शाम को 6:00, और अभी कुछ ही देर में आपको कतर की जो न्यूज़ है वो सुनने को मिलेगी। बाकी परेश बाहुजा की आवाज़ में एक खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, और फिर उसके बाद जो गाना है वो है मीत ब्रोज और आयुष्मान खुराना का एक मुलाकात, अनप्लग्ड वर्जन। सुनेंगे तो मजा जरूर आएगा। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: एक खास शो जहां बात होगी खातीन की सेहत, अवेयरनेस और कंप्लीट वेलबींग की.
1: वेलनेस इज फाइंडिंग योरसेल्फ, फाइंडिंग व्हाट ब्रिंग्स यू जॉय एंड व्हाट कीप्स यू होल.
0: एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही नहीं देगा बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट भी करेगा. हर एपिसोड में हमारे साथ होंगे डॉक्टर्स, डिस्कस करेंगे उन टॉपिक्स को जो आपकी जिंदगी को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो दोस्तों, सुनना ना भूले शो वेमेन वेलनेस हर मंडे शाम 5 बजे से आरजे नासिया के साथ, ओनली ऑन एफएम 107 दिल से डीसी.
2: आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है, वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं, तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं. हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम, पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए. ओनली ऑन FM 107.

0: कर रखा है। काबिज फौज ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मार कर शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। सामाइन रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हमारे साथी असीला भंडार और मुझे मोहम्मद नफीस को अगली मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।
1: हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107।
2: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
3: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
4: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पर पेश करते हैं प्रोग्राम महफिल शायरी। तरतीब पेशकश आरजे महविश खान, आरजे सीम और दोहा वाला कबीर।
5: सन 1857, लाल किले से आखिरी मुगल बादशाह को रंगून भेजा जा चुका है। चांदनी चौक की गलियां, जिनमें कभी इत्र और मलमल की महक हुआ करती थी, अब उनकी जगह राख ने ले ली है। मल्ली मारान के कोने में एक टूटी हवेली है। दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं, आंगन में कोई चिराग नहीं, बस एक बूढ़ा शायर है जो अपनी बैठक में अकेला बैठा है। उसके सामने एक कागज है, एक कलम, और वो एक खत लिखता है अपने दोस्त को। वो लिखता है, मेरे यार तुम पूछते हो दिल्ली कैसी है। दिल्ली अब दिल्ली नहीं रही, ये कोई और शहर है जिसे मैं पहचानता नहीं। मिर्जा असदुल्ला बेग खान, गालिब। पिछले 3 महीनों से घर के बाहर कदम नहीं रखा, इसीलिए क्योंकि ये वो दिल्ली नहीं जिसे गालिब पहचानते थे। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती, चलिए वक्त में आपको पीछे ले चलते हैं।
6: 27 दिसंबर 1797, आगरा। एक छोटा बच्चा शेर कहना सीख रहा था, उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था। माँ ने कैसे भी परवरिश की और वो जब 13 साल का हुआ तो उसकी शादी दिल्ली के एक रईस खानदान में करा दी गई। वो दिल्ली जो मुगलों की शान से रोशन थी, जहां हर शाम महफिलें जमती थीं, जहां उर्दू और फारसी के उस्ताद बैठते थे, जहां शायरी सिर्फ शौक नहीं जिंदगी का हिस्सा थी। नौजवान गालिब जब इस दिल्ली की गलियों में घूमते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे वो अपने घर आ गए हों। यहाँ की हर दीवार में कहानियां थी, हर कूचे में शायरी थी और हर महफिल में मुकाबला। 30 साल तक मिर्जा गालिब ने दिल्ली की रूह को जिया। सुबह दरवाजे पर दोस्तों की आमद, दोपहर को शतरंज की बाजी, शाम को मुशायरे और रात रात कलम के साथ, कभी खत तो कभी कोई शेर जो बस यूं ही दिल में आ जाए।
7: लेकिन इन सब के पीछे एक गहरा दर्द था। 5 बच्चे हुए और 5ों का इंतकाल हो गया, कोई पैदा होते ही तो कोई चलना सीखते सीखते। आरिफ उनका आखिरी बेटा जब दुनिया से रुखसत हुआ तो गालिब टूट गए। महीनों सिवाय कलम के किसी से बात नहीं की।
6: हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले।
7: फिर एक दिन आया जब दिल्ली की हवा में घुटन होने लगी, तो गालिब ने फैसला किया कि चलो बनारस चलते हैं। 55 साल की उम्र, कमजोर जिस्म लेकिन दिल में एक कशिश। फिर आया वो साथ।

0: साल 1857, मई की गर्म दोपहर, अंग्रेज सिपाही आ पहुंचे दिल्ली के दरवाजों पर। बहादुर शाह जफर अब हिंदुस्तान के बादशाह बना दिए गए थे। गालिब ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। महीनों तक दिल्ली जलती रही। गालिब के दो भतीजे अब नहीं रहे। दोस्त या तो अंग्रेजों की गोलियों के शिकार हुए या भाग गए। दिल ही तो है ना संग व खिश्त, दर्द से भराए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। अब गालिब के पास बस एक ही साथी था, उनका कलम। वो खत लिखते थे सैकड़ों खत उन दोस्तों को जो बच गए थे उन शहरों में जो अभी भी सांस ले रहे थे। भाई नवाब, वो लिखते हैं, कल बल्ली मारान से निकला वो मिठाई की दुकान याद है ना, जहां हम जलेबी खाते थे, वहां अब एक अंग्रेज की कोठी बन रही है। मेरे दोस्त, दूसरे खत में, तुम पूछते हो मैं क्यों नहीं लिखता, अब क्या लिखूं, जिस जुबान को मैं जानता था उसे सुनने वाले ही नहीं रहे।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अदान का वक्त हो गया है। अल्लाह

0: मुश्किल कर दिया आपने, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे भी कुछ याद आ रहा है, तो शुरू करते हैं। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता।
1: क्या बात।
0: तो जो मामला पहुंचा है वो महविश की तरफ है और ये होता
1: होता आ, तो आ से है। आ को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आ को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक का।
2: बहुत खूब बहुत खूब,
0: क्या बात है। तो अभी जो है सीम की बारी है, और क्या है आखिरी
1: का,
2: थोड़ा सोच लेती हूँ का से। कुछ तो मजबूरी हालात ने कर दिया मजबूर, कुछ तो मजबूरी हालात ने कर दिया मजबूर, कुछ तेरे चाहने वालों ने समझ रखा है गुरूर।
0: ये आपने जो फंसा दिया है आखिर में, चलिए कहाँ पहुँचा है मामला,
2: राह पर। तो आप राह से कोई शेर सुनाइए।
0: हाँ तो फिर राह से शुरू करते हैं।
1: इरशाद।
0: रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए।
1: क्या बात है।
0: तो ये जो मामला पहुंचा है ये पे पहुंचा है,
1: ये पे, ये एक दफा फिर। तो ये से एक बहुत ही मशहूर शेर है, मेरा ख्याल है हमने सबने ही तकरीबन कहीं ना कहीं अपनी गुफ्तगू में इसका इस्तेमाल किया है। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता।
2: बहुत
0: क्या बात है।
2: तो मुझे किस वर्ड से शुरू करना?
1: आ से।
2: आ से। आ थोड़ा सा टफ है मेरे लिए इस बार। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया है।
1: क्या बात है, खूब समझाया।
0: ये टफ बोल के जो है बोल जाती है।
1: हाँ।
0: समझाया है।
2: ये से बोलना है क्योंकि है जो है वो ये पे खत्म हो रहा है।
0: चलिए फिर आपको कुछ ऐसा सुना देते हैं इस पे जो बहुत खास है और आपको सुन के मजा भी आएगा, आप सोचेंगे इसको दोबारा सुनना है मुझे।
1: तो
0: ऐसा कुछ पढ़ देते
1: हैं।
0: याद उसकी बहुत खूबसूरत है, याद उसकी बहुत खूबसूरत है, वरना हम कहाँ इतने मजबूर होते।
1: ओए होए हो,
0: समझ रहे हैं आप गहराई।
1: सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। तो अब कहाँ से मेरा क्या है?
0: होते
1: होते। ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ओए होए,
0: इसी शेर का इंतजार कर रहा था मैं, पर आपके हिस्से में आया है। आप ये लीजिए, आपकी बारी है सीम।
2: तो मुझे हे से बोलना है।
1: जी बिल्कुल, हे से।
2: ठीक है। हाल उसका तेरे चेहरे पे लिखा लगता है, हाल उसका तेरे चेहरे पे लिखा लगता है, वो चुपचाप खड़ा है तेरा क्या लगता है।
1: ओए होए होए,
0: बहुत
1: क्या बात है, क्या लगता है,
0: बहुत लोग रिलेट कर जाएंगे लोग।
2: तो अब आखिरी शेर कबीर की जुबानी, कबीर इरशाद फरमाइए।
0: क्लाइमेक्स मेरे हिस्से में भी आता है। चलिए तो एंड करना, तो कुछ बहुत ही खतरनाक एंड करना पड़ेगा, इससे लोगों को मजा भी आया और ये आई थी।
1: तो आज मिर्जा गालिब के नाम ये शाम थी, तो कुछ यादगार होना चाहिए।
0: बिल्कुल बेशक। है इख्तियार में तेरे तो मौजजा कर दे, है इख्तियार में तेरे तो मौजजा कर दे, वो शख्स मेरा नहीं है उसे मेरा कर दे। मतलब क्या था, इससे बढ़िया वो क्या,
1: जबरदस्त। मतलब ये तो एक दुआ भी हो गई, काश भी हो गया, दिल से निकल रहा था काफी।
2: कितनों ने रिलेट कर लिया होगा।
0: बहुत बहुत।
2: तो जिसने भी रिलेट किया है वो मैसेजेस जरूर भेजिएगा।
1: और मैसेजेस भेजने के लिए हमारा नंबर 666-22-107 है। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमें ये बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, अगला कौन सा शायर सुनना चाहते हैं, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सुनते रहिए FM 107 कतर, दिल से देसी।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

to a segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया. आज हम बात करेंगे अर्निंग ग्लोबली एंड स्पेंडिंग लोकली. कितना इंटरेस्टिंग साउंड करता है ना. देखिए आज के मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में एक नया लाइफस्टाइल बड़ी तेजी से पॉपुलर हो रहा है जिसे हम और आप अडॉप्ट भी कर रहे हैं. इस लाइफस्टाइल को कहते हैं डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल. ये लाइफस्टाइल उस लाइफस्टाइल की तरह है जो इंटरनेट की मदद से रिमोटली काम करता है और किसी एक ऑफिस या सिटी तक महदूद भी नहीं रहता. वो दुनिया के किसी भी मुल्क से अपना काम कंटिन्यू कर सकता है. इसी कॉन्सेप्ट को अक्सर अर्निंग ग्लोबली स्पेंडिंग लोकली के नाम से जाना जाता है. दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स या फिर कंपनी से इनकम अर्न करते हैं लेकिन अपने डेली एक्सपेंसेस उस जगह के मुताबिक करते हैं जहां आप रह रहे होते हैं. डिजिटल नोमैड बनने का सबसे बड़ा फायदा फ्रीडम है. पिछली जनरेशंस को ऑफिस जाना पड़ता था लेकिन आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से काफी जॉब्स ऑनलाइन हो चुकी हैं. फ्रीलांस राइटर्स ग्राफिक डिजाइनर्स सॉफ्टवेयर डेवलपर्स डिजिटल मार्केटर्स ऑनलाइन टीचर्स और कंटेंट क्रिएटर्स दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा यूरोप या अमेरिका की कंपनी के लिए काम कर रहा हो और किसी कॉम्पिटिटिव अफोर्डेबल कंपनी में रह रहा हो तो उसकी सेविंग पोटेंशियल काफी ज्यादा बढ़ सकती है. मिसाल के तौर पे अगर कोई फ्रीलांसर एक इंटरनेशनल क्लाइंट से $3,000 पर मंथ कमाता है और उसे ऐसी सिटी में रहने का मौका मिलता है जहां लिविंग कॉस्ट रिलेटिवली कम है तो उसके पास ज्यादा पैसा सेव करना और इन्वेस्ट करने का चांस बढ़ता है. और शायद इसी वजह से बहुत से डिजिटल नोमैड्स ऐसे मुल्क को पिक करते हैं जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो और इंटरनेट फैसिलिटीज अच्छी हो. लेकिन ये लाइफस्टाइल सुनने में जितना अट्रैक्टिव है उतना ही फाइनेंशियल प्लानिंग भी रिक्वायर्ड करता है. सबसे पहला चैलेंज जो इसका है वो है इरेगुलर इनकम. ट्रेडिशनल जॉब्स में तो हमारी आपकी सैलरी फिक्स्ड होती है लेकिन फ्रीलांसिंग या फिर रिमोट प्रोजेक्ट्स में इनकम हर मंथ डिफरेंट हो सकती है. कभी कम कमाया तो कभी ज्यादा कमाया और शायद कभी कुछ भी नहीं. इसलिए ये लाइफस्टाइल जो है वो बजटिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल हमें और आपको सिखाता है. देखिए बजटिंग का मतलब है हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को प्लान करें. स्मार्ट डिजिटल नोमैड्स हर मंथ अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस जैसे रेंट है आपका फूड है ट्रांसपोर्ट है इंश्योरेंस है इंटरनेट है इन सब के लिए बजट एलोकेट करता है. जो पैसे बच जाए उसका कुछ हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखना. इससे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाता है. देखिए इमरजेंसी फंडिंग भी डिजिटल नोमैड फाइनेंसेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्योंकि रिमोट वर्कर्स के पास हमेशा जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. इसलिए एक्सपर्ट्स रेकमेंड करते हैं कम अज कम 3 to 6 months के एक्सपेंसेस सेव करके रखे जाए. बस आपसे यही आखिर में जाते जाते कहूंगी कि डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल ट्रैवलिंग का नाम नहीं है. असल सक्सेस स्मार्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर डिपेंड करती है. अगर कोई पर्सन ग्लोबली इनकम अर्न करे लोकल लेवल पर वाइजली स्पेंड करे रेगुलर सेविंग्स करे इमरजेंसी फंड मेंटेन करे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करे तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बहुत करीब होता है. लिहाजा डिजिटल नोमैड फाइनेंस का जो बेसिक रूल है वो ये है कि अर्न स्मार्ट स्पेंड वाइजली सेव कॉन्स्टेंटली एंड इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर. जो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ रिमोट लाइफस्टाइल को बैलेंस कर लेते हैं वो सिर्फ दुनिया एक्सप्लोर नहीं करते बल्कि अपनी वेल्थ भी स्टेडली बिल्ड करते हैं. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही. मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए. एक नई टर्म आपने सीखी ली और किस तरह से उसको समझा है और कितना अप्लाई करने वाले हैं आप ये मुझे बताइएगा जरूर 666-22-107 पर. फिलहाल आपसे इजाजत लूंगी कल होगी मुलाकात. अपना ख्याल रखिए देखते हो सुनते रहिए FM 107.

107 presents Tech Update. Tech Update. Assalamualaikum, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। भाई साहब, अपडेट में आपको चीजें मिलती रहेंगी और धड़ाधड़ हम आपको बताते रहेंगे। कभी कभार AI के बारे में बात करेंगे, तो कभी हम एप्स के बारे में, तो कभी हम गैजेट के बारे में, और खबरें तो इसमें रहेंगी रहेंगी। तो आज जो है मैं आपको बहुत ही मजेदार वेबसाइट बताने वाला हूँ। कुछ AI के भरोसे चलती हैं और कुछ जेन्युइनली बहुत कमाल की वेबसाइट्स हैं। सबसे पहले मैं एक AI, इट्स नॉट एन AI टूल बेसिकली, मगर ये ऐसा सर्च इंजन है जो आपके काम आएगा। रेडी? ओके, तो इसका नाम है playphrase.me, playphrase.me, playphrase.me. मैं सही बोला ना? हाँ, playphrase.me। तो ये जो वेबसाइट है, इस पे जब आप जाएंगे तो आपको सामने बहुत बड़ा एक सेक्शन नजर आएगा, उसमें वीडियोस फोटोज रन हो रहे होंगे और उसके नीचे लिखा रहा होगा टाइप। अब क्या होता है, कई मरतबा आप ये ढूंढ रहे होते हैं अपने वीडियो के लिए या अपने कंटेंट के लिए या जनरली कि किसी ने कोई डायलॉग बोला था। मान लीजिए मुझे ढूंढना है एक डायलॉग जहां पे हीरो ने बोला ये सब क्या चल रहा है, फॉर एग्जांपल बोलो, फॉर एग्जांपल ये सब क्या चल रहा है, आपने उसके नीचे लिखा और फिर ये वेबसाइट जहां जहां वो बोला गया होगा फ्रेज, वो सेंटेंस आपको लाके दे देगा। जैसे कई मरतबा होता है ना कि व्हाट इज दिस, तो अगर आपने व्हाट इज दिस लिख दिया तो जहां जहां मूवीज में सीरीज में व्हाट इज दिस बोला गया होगा वो सब का सब आपके सामने लाके दे देगा। इट इज सच अ यूनिक थिंग टू डू। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो काम आसान कर देगा जहां पे लोग मीम्स ढूंढ रहे होते हैं। समझ में नहीं आता यार कौन सा मीम था, यू जस्ट नो द वर्ड्स प्रोबेबली, या फिर हाफ एजर्ड वर्ड पता होते हैं लेकिन पूरा मीम नहीं पता होता। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जो आपकी कॉन्टेंट के लिए प्लग इन के तौर पर काम कर सकती है, playphrase.me। ओके, आगे बढ़े जी, चलो जी अगली वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली जो वेबसाइट है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नाम है इसका, बताता हूं फिर भी, sketch.metademolab.com। आई नो कंफ्यूजन है ना, स्केच टाइप करना है पहले, तो SKETCH sketch.meta, उसके बाद demolab.com, metademolab.com, ठीक है, sketch.metademolab.com। ये जब आप टाइप करेंगे इसके बाद एक वेबसाइट खुलेगी। अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए आप ड्राइंग ड्राइंग बनाते हैं, आप अच्छी बनाते हैं बुरी बनाते हैं, मेरी जैसी बनाते हैं, पहाड़ चढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस ड्राइंग को जब इसमें अपलोड करेंगे उसके बाद ये आपको पॉइंट्स देगा, उन पॉइंट्स को जरा आप ठीक ठीक करेंगे, अपनी जगह पे लगा देंगे, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बहुत सारा एनिमेशन मिलेगा। उनमें से कोई भी एनिमेशन आप अपनी ड्राइंग को दे सकते हैं जो आपने अपने हाथों से बनाई। बस ड्राइंग बनाई, उसका फोटो खींचिए और अपलोड कर दीजिए, फिर देखिए क्या होगा। इतनी इंटरेस्टिंग चीज है ना, इससे आप पूरे दिन खेल सकते हैं भाई। बोर्डम मिटाने की सबसे बढ़िया तरीका है, और स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, आपको कोई दोस्त है जो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, या आपकी ड्राइंग लिटरली मेरी तरह है, तो भी आप एनिमेशन कर सकते हैं, दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो ट्राई करके देखिएगा, डेफिनेटली ऑन द लिस्ट। इसका नाम है sketch.metademolab.com। ओके, तो ये दो वेबसाइट्स आज मैंने बताई आपको, आपके बड़ी काम आ सकती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूज दिस वीक। अब देखिए भाई, सब अपने अपनी चिप्स निकाल रहे हैं, कोई कह रहा है ये वाली चिप हम लेके आए, कोई कह रहा है वो वाली चिप लेके आए। इस बीच जो है एनवीडिया भी अपग्रेड कर रहा है अपने सिस्टम्स को। सो गेम्स कॉम 2026 जब हुआ इवेंट, तो एनवीडिया ने अनाउंस किया DLSS 4.5 रे रिकंस्ट्रक्शन और RTX मेगा ज्योमेट्री। ये बेसिकली ग्राफिक्स को बढ़ाने की उनकी कोशिश है और रे ट्रेसिंग को बढ़ाने की। इट विल कॉस्ट अ बॉम्ब, तो देखते क्या होगा। फॉर नाउ ये थी अपडेट, मैं दोहा वाला कबीर, अगले अपडेट में मिलता हूं। स्टे ट्यून्ड एंड दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। कभी कभी इंसान नेकी के जज्बे में ये समझ बैठता है कि जितना ज्यादा उतना बेहतर। ज्यादा इबादत, ज्यादा मशक्कत, ज्यादा जागना, ज्यादा रोजे और फिर शायद दुनिया की जायज जरूरतों से भी किनारा कशी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर ज्यादती नेकी है? क्या अपने जिस्म को मुसलसल थका देना तकवा है? क्या खानदान और इज़दवाजी जिंदगी से किनारा कश हो जाना अल्लाह से ज्यादा करीब कर देता है? और क्या इबादत का बेहतरीन रास्ता वो है जो हम अपने लिए खुद तय करें, या वो जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले? आज की रूह परवर सुन्नत हमें उसी सवाल का एक निहायत वाज़ेह जवाब देती है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तन्हाई के मामूल के बारे में पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का मामूल सुनकर उनमें से किसी ने कहा कि मैं औरतों से शादी नहीं करूँगा, किसी ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊँगा और किसी ने कहा मैं बिस्तर पर नहीं सोऊँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब यह बात पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हम्द सना के बाद फरमाया, कुछ लोगों को क्या हो गया है कि उन्होंने इस तरह की बातें की हैं? मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, कभी रोज़ा रखता हूँ और कभी नहीं रखता, और मैं औरतों से शादी भी करता हूँ, जिसने मेरी सुन्नत से गुरेज किया उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। जिस हदीस का पस मंज़र ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा आपकी बीवियों के घरों में आए, उनका मकसद ये जानना था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर किस तरह इबादत करते हैं। जब उनको आपकी इबादत के बारे में बताया गया तो गोया उन्होंने उसे कम समझा और कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम कहाँ और हम कहाँ? आपके तो अगले और पिछले तमाम गुनाह बख्श दिए गए हैं, उसके बरखिलाफ जिसे मालूम न हो कि उसे बख्शा जाएगा या नहीं, उसे ज्यादा से ज्यादा इबादत की जरूरत है ताकि बख्शिश का सामान हो जाए। उसके बाद उनमें से किसी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, किसी ने कहा मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, जबकि किसी ने कहा मैं बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। उसकी इत्तला जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो आपने नाराजगी जाहिर की, लोगों से खिताब किया, अल्लाह की हम्द सना की और फरमाया, कुछ लोगों को क्या हो गया है कि इस और इस तरह की बातें कर रहे हैं? अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की खशियत से सबसे ज्यादा मुत्तसिफ और उसका सबसे ज्यादा तकवा रखने वाला इंसान।

0: scam alert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और ये शो है फ्रॉड अवेयरनेस. वेल दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, ये फ्रॉड बहुत आम है, लेकिन इतने नए तरीके से होता है ये फ्रॉड, या कहें इतने आम तरीके से भी ये फ्रॉड होता है कि अक्सर 95% लोग इन फ्रॉड्स में फंस जाते हैं, क्योंकि वो बैकग्राउंड वेरीफाई नहीं करते. और कई बार आपके बैकग्राउंड ना वेरीफाई करने का मतलब ये नहीं कि आपके साथ कुछ हो ही गया हो, आपके साथ स्कैम भी हो गया हो, लेकिन चांसेस आर हाई कि ये आपके साथ फ्रॉड ही हुआ है, और ये है चैरिटी स्कैम. देखिए, आम तौर पे जो रोजमर्रा के कामों में लगे रहते हैं, जो ईमानदारी की कमाई करते हैं, वो चाहते हैं कि जब भी मैं चैरिटी करूं तो एक ऐसे शख्स के पास वो पैसे जाएं, वो एक ऐसे चैरिटी करने वाले लोगों के पास जाए जो असल में लोगों के फायदे के लिए, जो असल में लोगों का फायदा करें. वेल, आज हम जिस चैरिटी स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, ये बड़ा आम है, लेकिन फंसना भी इसमें बहुत आसान होता है, क्योंकि हम अपने दिल से चैरिटी कर देते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते. और सही मायनों में ये बड़ा गलत है. कई बार हम जिनको चैरिटी करते हैं, वो असल में आपके 100 रुपए दिए हुए चैरिटी में उसके सिर्फ 20 या 30 रुपए इस्तेमाल करते हैं, और 70 रुपए उन चैरिटी वालों के जेब में जाते हैं, क्योंकि आप सही से वेरीफाई नहीं करते. वैसे अगर देखा जाए, अगर आपने किसी शख्स को 100 रुपए दिए हैं, चैरिटी वालों को 100 रुपए दिए हैं, उन्होंने 30 भी इस्तेमाल किए हैं, तो वो 30 एक्चुअली में स्कैम नहीं है, वो किसी की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन ये उनका तरीका होता है काम करने का. लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर्स हैं, चैरिटी स्कैम करने वाले हैं, जो 100 के 100 रुपए वो जब्त कर लेते हैं, वो अपने पास रख लेते हैं और गायब हो जाते हैं. ये एक बेहद शर्मनाक धोखा है, जहां स्कैमर्स लोगों की मासूमियत, उनकी दान करने की आदत और मदद करने की जो आदत है, उनका गलत फायदा उठाते हैं. ये स्कैम्स आम तौर पर किसी बड़ी मुसीबत के समय, जैसे अर्थक्वेक में या फ्लड में या हाई प्रोफाइल कोई परेशानी किसी को हुई हो, किसी कंट्री में तूफान आए हों, तो वहाँ उसके बाद अचानक जो बाढ़ आती है या परेशानी पैदा होती है, वहाँ ये स्कैमर्स अलर्ट हो जाते हैं. इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए उसके तरीकों और इसके सॉल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है. ये फ्रॉड कैसे होता है? स्कैमर्स जानते हैं कि लोग मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना चाहते हैं, उनका दिल बड़ा साफ है, इसलिए वो लोगों को इमोशनल करके अपना शिकार बनाते हैं. सबसे पहले फेक डोनेशन की वेबसाइट. ये लोग नकली डोनेशन वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस बनाते हैं. इन वेबसाइट के नाम और डिजाइन बिल्कुल मशहूर और असली चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से मिलती जुलती रखी जाती है, ताकि किसी को शक न हो. प्रेशर किया जाता है वाया फोन कॉल्स. फ्रॉडस्टर्स आपको फोन कॉल करके अचानक दुख भरी कहानियां सुनाते हैं, और आप पर तुरंत पैसे डोनेट करने का दबाव या प्रेशर भी डालते हैं कि अगर आपने पेमेंट नहीं की तो आज फला बच्चे बगैर खाए सो जाएंगे, उनका घर टूट जाएगा, उनका ऐसा हो जाएगा, ये सारी चीजें. उसके अलावा जब वो पेमेंट लेते हैं तो वो अनट्रेसेबल होता है, अनट्रेसेबल मेथड के जरिए पेमेंट लेते हैं. स्कैमर्स आपसे कैश, गिफ्ट कार्ड या क्रिप्टो करेंसी के रूप में डोनेशन मांगते हैं. इसका कारण, इसकी वजह है कि इन पेमेंट मेथड को एक बार भेजने के बाद ट्रेस करना या वापस पाना एक तरह से नामुमकिन हो जाता है. लेकिन इसके सॉल्यूशन भी हैं. कैसे बचा जाए इन तरीकों के स्कैम से? हमेशा ऑफिशियल टूल यूज करें, वेरीफाई करें हमेशा देने से पहले. किसी भी अनजान लिंक या एड पर क्लिक करके डोनेशन ना करें. अपने पैसे दान करने से पहले, देने से पहले, चैरिटी नेविगेटर, गाइड स्टार या गिव वेल जैसे ऑफिशियल और ट्रस्टेड वेबसाइट्स पर जाकर चेक करें कि वो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रियल में रजिस्टर्ड है या नहीं. कई बार उस फ्लड वाली जगह की वीडियोस बहुत ज्यादा आ रही होती सोशल मीडिया से, वहां से वो वीडियो उठाते हैं, कुछ वीडियो बनाते हैं, और फिर एक वेबसाइट के जरिए प्रमोट कर दिया जाता है, स्पॉन्सर कर दिया जाता है उस वीडियो को, और कहा जाता है कि आप प्लीज डोनेट करें ताकि इन बेचारों की मदद हो सके. और यहीं पर होता है आपके साथ स्कैम. वाया पे वाया सिक्योर मेथड. हमेशा सिक्योर मेथड से पे करें. रियल और लीगल चैरिटीज हमेशा क्रेडिट कार्ड या सिक्योर चेक पेमेंट लेती हैं. क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर अगर फ्रॉड हो भी जाए तो आप अपने बैंक में डिस्प्यूट क्लेम कर सकते हैं. हाई प्रेशर के टैक्टिक्स को अवॉइड करें. डायरेक्ट डोनेशन बेस्ट है. किसी थर्ड पार्टी कॉलर या सोशल मीडिया मैसेज के बहकावे में आने के बजाय हमेशा उन मशहूर और बड़े प्लेटफॉर्म्स जैसे रेड क्रेसेंट है, यूनिसेफ है, उन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद ब्राउजर में टाइप करके ओपन करें और डायरेक्ट वहां से दान करें, वहां से पेमेंट करें, वहां से चैरिटी करें। इस तरह के जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि ये फ्रॉड अवेयरनेस एपिसोड जानकारी से भरा रहा होगा और आप नए जमाने के नए फ्रॉड से बचने के लिए तैयार होंगे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी आपसे कल इसी शो में जिसका नाम होगा फ्रॉड अवेयरनेस। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरज़ू महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतर में खानदान की अहमियत के बारे में आज हम जानेंगे इस एपिसोड में। कतरी सकाफत में खानदान को बहुत इज्जत और अहमियत हासिल है। खानदान सिर्फ खून के रिश्तों का नाम नहीं, बल्कि मोहब्बत, जिम्मेदारी, भरोसे और एक दूसरे का ख्याल रखने का खूबसूरत निजाम है। कतर के अफराद एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं और मुश्किल वक्त में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। कतर में बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि वो अपने वालदैन, बुजुर्गों और खानदान के तमाम अफराद का एहतराम करें। सलाम करना, अच्छे लहजे में बात करना, मदद करना और तवज्जो से सुनना घर की तरबियत का अहम हिस्सा होता है। यही छोटी छोटी आदतें बच्चों की शख्सियत को मजबूत बनाती हैं। वालदैन का मकाम खानदानी जिंदगी में बहुत बुलंद समझा जाता है। उनका ख्याल रखना, उनकी जरूरियात को समझना और उनके साथ मोहब्बत का इजहार करना अच्छे रवैये की निशानी है। बच्चों के लिए वालदैन सिर्फ परवरिश करने वाले नहीं होते, बल्कि उनकी रहनुमाई और अहमियत का जरिया भी होते हैं। खानदान में बुजुर्गों का किरदार भी बहुत दिलचस्प होता है। वो अपने तजुर्बे, यादें और कहानियाँ नई नस्लों तक पहुँचाते हैं। जब बच्चे अपने दादा, दादी या नाना नानी के साथ वक्त गुजारते हैं तो उन्हें घर की पुरानी बातों, रिवायतों और कतरी जिंदगी की मुख्तलिफ पहलुओं को समझने का मौका मिलता है। जब अफराद एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो पूरा खानदान ज्यादा मजबूत और पुरसकून महसूस करता है। बच्चों और बुजुर्गों के दरमियान रिश्ता इस निजाम का एक प्यारा पहलू है। बच्चे जहाँ अपनी शरारतों और खुशियों से घर में रौनक लाते हैं, वहीं बुजुर्ग अपने तजुर्बे और दुआओं से घर को मजबूती देते हैं। दोनों नस्लें एक दूसरे से सीखती हैं। बच्चों को जदीद चीजों का इल्म होता है और बुजुर्ग उन्हें रिवायत, सब्र और सलीके का दर्स देते हैं। आज के जदीद कतर में परवरिश और खानदानी जिंदगी के अंदाज में तब्दीली आ रही है। तालीम, काम और टेक्नोलॉजी ने जिंदगी को आसान बनाया है, फिर भी मोहब्बत, एहतराम और अपनायत जैसे उसूल आज भी उतने ही कीमती हैं। जदीद जिंदगी के साथ अगर खानदान के लिए वक्त भी रखा जाए तो पुरानी और नई रिवायत में खूबसूरत तवाज़ुन पैदा हो सकता है। खानदान में हर फर्द का अपना किरदार होता है। कुछ लोग रोजमर्रा के इंतजामात संभालते हैं, कुछ बुजुर्गों के साथ रहते हैं और कुछ नई नस्ल की तालीम और रहनुमाई पर तवज्जो देते हैं। जब हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों को समझकर काम करता है तो घर का माहौल ज्यादा खुशगवार होता है। खानदान की मजबूती के लिए गुफ्तगू भी जरूरी होती है। अपनी बात नरमी से कहना, दूसरों के ख्यालात सुनना और छोटी बातों को मोहब्बत से हल करना रिश्तों को मजबूत बनाता है। हर घर में मुख्तलिफ मिजाज के लोग होते हैं, लेकिन एक दूसरे का एहतराम मोहब्बत को कायम रखता है। खानदान से वाबस्ता रिवायत और यादें किसी कीमती वर्षे से कम नहीं होते। घर के मशहूर पकवान, बचपन की कहानियाँ, किसी बुजुर्ग की नसीहत या किसी खास तकरीब का अंदाज, ये सब मिलके खानदानी पहचान बनाते हैं। इन यादों को बच्चों के साथ शेयर करना वर्षे को जिंदा रखने का तरीका है। कतर की सकाफत हमें सिखाती है कि खानदान एक अमानत है। इस अमानत की हिफाजत मोहब्बत, सब्र और जिम्मेदारी के जरिए की जा सकती है। अपने घर वालों के लिए चंद लम्हे निकालना, उनकी बात सुनना और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझना बहुत कीमती अमल है। आज का कल्चर मोमेंट इसी पैगाम के साथ मुकम्मल होता है कि मजबूत खानदान मजबूत माशरे की बुनियाद है। मोहब्बत, अदब और एक दूसरे का ख्याल रखने से घर सिर्फ एक जगह नहीं रहता, बल्कि सुकून, भरोसे और अपनायत का मरकज बन जाता है।

लिसनर्स, आज के कल्चर मोमेंट को यही मुकम्मल करते हैं। याद रखिए, सकाफत सिर्फ गुजरे हुए वक्त का नाम नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा है। मैं हूँ आपकी आरजे महाविश। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखिए और कतर की खूबसूरत सकाफत को हमेशा इज्जत और मोहब्बत के साथ याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।

मलाला को ये बात मंजूर नहीं हुई, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स ने भी उसे सपोर्ट किया। अब आगे बढ़े तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जब इतना कुछ हो रहा है, लड़कियों की पढ़ाई पर रोक लग रही है, तो ये 10 साल की बच्ची जो कि अब 11 साल की थी, उसने इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ खड़े होने का निश्चय किया। अब ये डिसीजन जब मलाला ने लिया तब क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं कुछ ही देर में। पर अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं ना जाएं, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।

वेलकम वंस अगेन. बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर. और हम बात कर रहे हैं स्टोरीज अनटोल्ड में आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि नन्ही सी उम्र में ही ये डिसाइड कर चुकी थी कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए लड़कियां पीछे नहीं रहेंगी, हमेशा आगे बढ़ेंगी, हर फील्ड में आगे बढ़ेंगी. और उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने आप को एजुकेट कर सकें, एजुकेशन के हक में रह सकें, वो ये हक उन्हें दिलाना चाहती थी. सो मलाला यूसुफजई की अगर हम बात करें तो मैंने बताया आपको कि किस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों ने स्वॉट वैली पर कब्जा कर लिया. और जब ये स्थिति हुई तो डेफिनेटली सारी लड़कियों का पढ़ना लिखना बंद हो गया. मलाला को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी. और फिर आगे चलते चलते उन्होंने गुल मकाई के नाम से एक पेन नेम ये लिया और इस नाम से ब्लॉगिंग शुरू कर दी. और ब्लॉगिंग की उस टाइम के बड़े ही फेमस मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर पूरी दुनिया उसकी बात सुन सकती थी. आई एम अफ्रेड, ऐसा कहकर उन्होंने अपनी पूरी ब्लॉगिंग में स्टोरी लिखी जो कि उस टाइम स्वॉट वैली में हो रही थी. इस पूरे ब्लॉग में मलाला ने लिखा कि उन्हें इस तरह के ख्वाब आते हैं, इस तरह के नाइटमेयर्स आते हैं जहाँ पर उसका पूरा घर उड़ा दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है और वो और उसकी फैमिली को फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने घर से निकल जाए. और कहीं भी वो जाए उसे सुकून नहीं मिल रहा है. वो बहुत परेशान है क्योंकि वो अपना स्कूल नहीं अटेंड कर पा रही है. वो बहुत परेशान है कि जो बेसिक नीड्स हैं लड़कियों की वो भी उसे हासिल नहीं कर पा रही है. अब ये जो पर्टिकुलर ब्लॉग था धीरे धीरे धीरे दुनिया भर में पढ़ा जाने लगा. ऐसे में मलाला यहाँ नहीं रुकी. गुल मकई के नाम से तो उन्होंने अपनी ब्लॉगिंग शुरू कर ही दी थी और साथ ही साथ अपने फादर के साथ मिलकर लड़कियों के एजुकेशन के लिए उन्होंने कैंपेन शुरू कर दिए थे सारी पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए. अब 2011 में यूसुफजई का नाम नॉमिनेट हुआ इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली उसे ये इनाम नहीं मिल पाया. लेकिन उसी साल पाकिस्तान नेशनल यूथ पीस प्राइज ये अवार्ड मलाला यूसुफजई को मिला. और फिर ये नाम यानी कि मलाला यूसुफजई हर एक घर का नाम बन गई, हर एक घर की बेटी बन गई कि हर कोई, हर एक फैमिली लड़कियों की एजुकेशन के बारे में सोचने लग गया और सोचने लग गया कि ये जो हक है उनका, उनको मिलना ही चाहिए. और ऐसे में मलाला अब असामाजिक तत्वों के टारगेट पर आ गई. 2012 अक्टूबर 9 ये वो तारीख है जिस तारीख को कोई नहीं भूल पाता दुनिया भर में, क्योंकि ये तारीख ने कुछ ऐसा बदला कि पाकिस्तान में हर एक लड़की के लिए पढ़ाई वो हक कोई उनसे छीन नहीं सका. आइए बताती हूँ. सो 15 साल की मलाला यूसुफजई अपने स्कूल से अपनी स्कूल बस में रिटर्न हो रही थी, अपने घर की तरफ जा रही थी. और तभी ये असामाजिक तत्व जिनको पता चल चुका था कि ये जो पेन नेम है गुल मकई, ये लड़की कौन है, उन्होंने इसकी बस रुकवा कर इसकी बस में चढ़कर इसे गोली मार दी. लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ होता है. अगर उसकी ब्लेसिंग किसी के साथ है तो चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी किसी का भी बाल भी बांका नहीं कर सकता. और ऐसे ही मलाला यूसुफजई के साथ हुआ कि जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ तुरंत पाकिस्तानी मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया. उसके बाद सीधा उन्हें इंटेंसिव केयर इंग्लैंड में ले जाया गया. वहाँ पर मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा उनको दिया गया. 10 दिन तक उनका ट्रीटमेंट चला. और यूसुफजई की जब आँख खुली तब उसे पता चला कि उसे मेजर ब्रेन डैमेज हुआ जिसकी वजह से उसका लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ा पैरालाइज्ड हो गया. अब ऐसे में मलाला यूसुफजई तब भी हार मानने को तैयार नहीं थी. कुछ भी हुआ हो लेकिन उसका इरादा पक्का और नेक था कि लड़कियों को उनका हक, उनकी पढ़ाई पर किसी का रोक नहीं होना चाहिए. रिपीटेटिव सर्जरीज हुई, रिहैबिलिटेशन हुआ. उसके बाद कई महीनों के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद मलाला यूसुफजई अपनी फैमिली से आराम से मिल सकी और फिर उन्होंने इंग्लैंड में ही रहना डिसाइड किया. वेल, मलाला यूसुफजई क्योंकि थोड़ी सी मेडिकली चैलेंज्ड हो गई थी तो तुरंत स्कूल तो नहीं अटेंड कर पा रही थी, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब तक वो स्कूल नहीं पहुँच पाती इसका मतलब ये नहीं कि जो लड़कियाँ स्कूल जा ही नहीं सकती उनके लिए वो फाइट नहीं करेगी. पर उसने हर उस लड़की के लिए फाइट किया जिसे स्कूल जाने का मौका नहीं मिल रहा था. जब मलाला 16 साल 16 ईयर्स की हुई तब उन्हें यूनाइटेड नेशन

0: यहाँ हर आंख अजय राठौर के लिए नम है और इन सब में एक आक्रोश दिखाई पड़ रहा है।
1: मैं नहीं हटूंगी, ये अजय के लिए है।
2: आप चलिए आंटी, यहाँ गड़बड़ हो सकती है।
1: सुनिए,

0: मलाला यूसुफजई के बारे में। तो अब तक हमने जाना कि कैसे मलाला की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया जहां पर उन्होंने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ हो जाए लड़कियों के हक के लिए वो जरूर लड़ेंगी, और ये सिलसिला चलते चला गया। वैसे अब वो पाकिस्तान से इंग्लैंड पहुंच चुकी थी। सो इन 2014 यूसुफजई और उनके फादर ने मिलकर डिसाइड किया कि वो एक मलाला फंड एस्टैब्लिश करेंगे जो कि सपोर्ट करेगा, एडवोकेट करेगा विमेन और गर्ल्स के लिए, उनके हक के लिए लड़ाई करेगा और कोशिश करेगा कि जो भी लड़की आउट ऑफ स्कूल है उन्हें वो स्कूल भेज सके।
1: I have promised myself that I will fight for the rights of children because I cannot forget the days when every morning I would see poor girls going to other people's houses and suffer from child labor. And I considered it my duty to fight for their rights. I wanted to see them in school uniforms, holding books and pens in their hands. I wanted to see their future bright. If you don't educate children, it means it becomes a generation lost. So if you want to protect the next generation, you have to think about their education.
0: और इसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत मलाला ने सीरियन रेफ्यूजी से मुलाकात की, उन लड़कियों से केन्या में भी मुलाकात की, फिर नाइजीरिया भी गई और वहां जाकर लड़कियों को, औरतों को उन्होंने मोटिवेट किया जहां पर भी कुछ असामाजिक तत्व थे जो कि लड़कियों को उठवा लेते थे अगर वो स्कूल जाना चाह रही थी। मतलब ये डिसीजन था कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देना है, बढ़ने नहीं देना है। वैसे उनकी ये फाइट सिर्फ पाकिस्तान से शुरू नहीं हुई, पूरी दुनिया भर में जिस जिस देश में जब भी कोई समस्या उभर कर आई जहां पर लड़कियों को पढ़ाई के लिए रोका जा रहा है वहां पर मलाला फंड हमेशा आगे बढ़कर उनकी मदद करते रहा। और इसी इनक्रेडिबल वर्क के लिए मलाला को दिसंबर 2014 में नोबेल पीस प्राइज से अवार्ड किया गया, और ये उस टाइम सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी, यानी कि एट द एज ऑफ 17 ये सबसे पहली, सबसे यंगेस्ट पर्सन बनी जिन्हें नोबेल लॉरेट मिला। सो यस, ये हर किसी के लिए गर्व की बात है कि एक लड़की जिसने 10 साल की उम्र से लड़कियों के हक के लिए लड़ना शुरू किया, आज 17 साल की उम्र में आते आते उसे दुनिया भर में लोगों ने पसंद किया, उसकी बात को सुनी और नोबेल पीस प्राइज की वो हकदार बनी।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टुडे इज द डे ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी। आई एम हम्बल्ड दैट द नोबेल कमेटी हैज सेलेक्टेड मी फॉर दिस प्रेशियस अवार्ड। आई एम प्राउड, वेल इन फैक्ट आई एम वेरी प्राउड टू बी द फर्स्ट पश्तून, द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव दिस अवार्ड।
0: अच्छा, मजे की बात तो ये है कि कई बार लोग जब इस तरह के अवार्ड मिल जाते हैं तो फिर उन्हें लगता है कि आगे काम शायद अब नहीं करना है या काम सारा हो चुका है, लेकिन मलाला ने लड़कियों के लिए काम करना, उनके हक को दिलाना नहीं छोड़ा। मलाला फंड आज भी एडवोकेट करता है क्वालिटी एजुकेशन के लिए दुनिया भर की लड़कियों के लिए, और अलग अलग तरह के फंडिंग एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स भी इंटरनेशनली चलाता है। और अब अगर हम बात करें मलाला की, तो उसने फिलोसफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स इनमें पढ़ाई करी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में और ग्रेजुएट हुई 2020 में। वैसे लॉकडाउन तब तक आ चुका था, लेकिन कुछ भी कहे, इनकी ये जो पहल थी अपने आप से और लड़कियों के लिए फाइट करने के लिए कि चाहे कुछ हो जाए हक मिलना चाहिए, उनका हक कोई ना छीन पाए, वो चलते चला गया और अभी भी चल रहा है। क्योंकि मलाला फंड और हमारी मलाला यूसुफजई का कहना है कि आज भी 130 मिलियन से भी ज्यादा लड़कियां ऐसी हैं जो कि स्कूल नहीं जा पा रही हैं। तो ये लड़ाई अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, थोड़ा और फाइट करना बाकी है और एजुकेशन और इक्वालिटी अभी लड़कियों को दिलाना बाकी है।
1: I am those 66 million girls who are deprived of education. I'm not a lone voice. I am many, and our voices are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book, and one pen, they can change the world.
0: तो ये थी मलाला यूसुफजई की इनक्रेडिबल स्टोरी, जो कि आज मैंने स्टोरीज अनटोल्ड पर आपसे शेयर की, एंड आई एम श्योर कि आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप भी अपने फीडबैक्स, आप भी अपने सजेशंस, आप भी अपने व्यूज हमसे जरूर शेयर करें 666-22107 पर, 666-22107

या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 107 पर आप जुड़ सकते हैं और अपनी आरजे अमिता को भी वहीं ढूंढ सकते हैं। आपके मैसेजेस का मुझे इंतजार रहेगा। और अभी मुझे दीजिए इजाजत, आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में। तो सुनते रहिए स्टोरीज अनटोल्ड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।

दोस्तों, टनल से गुजरने के दौरान महफूज ड्राइविंग के लिए जरूरी है कि ट्रैफिक कानून की सख्ती से पाबंदी की जाए। अंदर दाखिल होने से पहले चाहे दिन का वक्त ही क्यों ना हो, अपनी हेडलाइट्स जरूर ऑन करें और तमाम ट्रैफिक साइंस पर खास तवज्जो दें। एंट्रेंस के करीब पहुंचते ही अपनी रफ्तार कम करें और मुकर्ररा हद की पाबंदी करें। सुरंग या टनल्स के अंदर अपनी लेन में रहें, राइट साइड पर ओवरटेक करने से गुरेज करें और अपने से आगे चलने वाली गाड़ी से हमेशा मुनासिब फासला बरकरार रखें। वजारत दाखिला का कहना है कि टनल्स या सुरंगों के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी न सिर्फ आपकी बल्कि सड़क पर मौजूद हर शख्स की हिफाजत को यकीनी बनाती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Maximum music, maximum fun
3: on FM 107. Dil se desi.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामने कलाम प्रोग्राम तहफीमुल कुरान में आप सबका खैर मकदम है। चंद दिनों पहले हमने मवेशियों की कुर्बानी की है। ईद अज़हा की कुर्बानी के हवाले से अगर सबसे अहम बात तकवा है, जैसा कि आयत करीमा में आया है लयना लहूमा वला दिमा वला की तकवा मिनकुम, तो ज़िंदगी के दूसरे मामलात में भी उसी तकवा और परहेजगारी की ज़रूरत है। हकीकत तो यह है कि ज़िंदगी के तमाम उमूर ऐसे ही मरबूत हैं जैसा कि जिस्म के तमाम अज़ा आपस में मजबूत और मरबूत हैं, और ये सब एक ही रिश्ते तकवा से मरबूत है। इसी तरह अल्लाह का अता करदा निज़ाम वहदत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हर शोबे हयात में सिर्फ खालिक व मालिक का खौफ पेश नज़र रहता है और उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इनमें से किसी एक जुज़ू को तर्क कर देना और दूसरे जुज़ू पर अमल करना किताब इलाही के एक हिस्सा पर ईमान और दूसरे हिस्से के इनकार के मुतरादिफ है। वलियाज़ु बिल्लाह। बातिल तरीकों से दूसरों का माल हजम करने की कई सूरतें हैं, मसलन चोरी, खयानत, दगाबाजी, डाका, सूद और तमाम नाजायज किस्म की तिजारतें और सौदेबाजियां हैं। आज की आयत में बिलखसूस उस नाजायज तरीके का जिक्र है जिसकी आम सूरत तो रिश्वत है कि रिश्वत देकर मुकदमा अपने हक में करा ले और इस तरह दूसरे का माल हजम कर जाए। और दूसरी है कि मसलन तुम्हें मालूम है कि फलां जायदाद या फलां चीज़ जैद की है, लेकिन उसकी मिल्कियत का कोई सबूत उसके पास मौजूद नहीं है, और तुम मुकदमे की सूरत में इधर उधर करके जैद से वो चीज़ तुम हथिया सकते हो और इस तरह अदालत के ज़रिए तुम उस चीज़ के मालिक बन सकते हो। ये भी दूसरे का माल हजम करना कहलाता है जो कि हराम है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक इंसान ही हूँ, तुम मेरे पास झगड़े लेकर आते हो सकता है कि तुम में से एक दूसरे की नस्बत अपनी दलील अच्छी तरह पेश करता हो और मैं जो कुछ सुनूँ उसी के मुताबिक फैसला कर दूँ, और अगर मैं किसी

0: दुनिया के घरों में हो और आफ्ताब आसमानों से हमारे पास ही उतर आए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम्हारा क्या गुमान है जिसने खुद कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया हो, यानी उसकी जजा और इनाम का कौन अंदाजा लगा सकता है। प्रोग्राम तफहीम कुरान के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर शकीब अहमद और मुझे तलहा शफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: समझते हैं कि इम्तिहान सिर्फ मुश्किल का नाम है या मुश्किलों का नाम है। मसलन बीमारी आ गई, पैसा कम हो गया, नौकरी चली गई वगैरह वगैरह। हम कहते हैं कि इम्तिहान आ गया है और अब इससे कैसे निपटें। लेकिन कभी कभी सेहत भी इम्तिहान होती है, अच्छी सैलरी भी इम्तिहान होती है, यहाँ तक कि बिजनेस की तरक्की भी इम्तिहान होती है और घर में आने वाली फरावानी भी इम्तिहान होती है। सवाल ये है कि अल्लाह सुभान व तआला ने जो दिया तो हमने उसके साथ क्या किया।
1: जी सर, और ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया है और इसी को समझने के लिए हम अस्हाबुल जन्नत का ये वाकया बड़ी तफसील से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। किस्से की बाज़ तफसीलात कुरान में इजमाल के साथ बयान हुई हैं, जबकि मुफस्सिरीन ने कदीम रिवायात की रोशनी में इसका पस मंज़र भी नकल किया है। बाज़ रिवायात में कहा गया है कि ये बाग यमन के इलाके में सनआ के करीब वाक़ था, जबकि कुछ दूसरी रिवायात में मुख्तलिफ मकामात का जिक्र मिलता है। असल कुरानी सबक मकाम के तायुन पर मौकूफ़ नहीं और इसी वजह से इसको मुजमल रखा गया। असल तवज्जो उन लोगों के रवैये और उसके अंजाम पर है। रिवायात के मुताबिक वहाँ एक नेक शख्स रहता था, उसके पास एक नहायत जरखेज और वसी बाग था। बाग में मुख्तलिफ किस्म के दरख्त, फल और फसलें पैदा होती थी। लेकिन उस शख्स की अजमत उसका सिर्फ ये नहीं कि उसका एक बड़ा बाग था, बल्कि उसकी असल खूबी तो ये थी कि उसका दिल भी बड़ा था। जब फसल तैयार होती तो वो सारी पैदावार अपनी तिजोरी में बंद नहीं कर लेता था, एक हिस्सा अपनी और अपने घर वालों की जरूरियात के लिए रखता, एक हिस्सा दोबारा जमीन में लगाने और आइंदा फसल की तैयारी के लिए रखता और एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए निकाल देता। तो वो अपने माल में एक बहुत ही मुनसिफाना तकसीम करता था। उसके निगाह में खेत सिर्फ इनकम सोर्स नहीं था बल्कि अमानत भी था।
0: और तला ये बात आज के दौर में बहुत सीधी तरह हमारी जिंदगी से जुड़ती है। हम अपनी मंथली इनकम देखें, सैलरी आते ही सबसे पहले बिल्स, शॉपिंग, सेविंग्स, एंटरटेनमेंट वगैरह वगैरह सब याद आ जाता है। लेकिन कभी हम ये भी सोचते हैं कि किसी ज़रूरतमंद का हिस्सा कहाँ है। हर मदद ज़कात के हुक्म तक महदूद नहीं होती। किसी का इलाज, किसी के बच्चे की फीस, किसी घर का राशन, किसी कर्जदार की मदद, ये सब हमारे माल को सिर्फ कम नहीं करते बल्कि उसमें इंसानियत और बरकत का मानी पैदा करते हैं।
1: बिल्कुल सर, और जिस मुल्क में हम यहाँ रह रहे हैं, चाहे एज ए मुकीम हों या फिर एज ए रिहाइश, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि मुनसिफाना तकसीम है और हर कोई जो यहाँ रहता है उसको एक सुकून के साथ यहाँ जी रहा होता है, चाहे वो माली तो मादी तौर पर हो या यानी आप एज ए रिहाइशी यहाँ अमन अमान की बात कर लें। तो यहाँ इस वाक़े में रिवायात में आता है इस वाक़े से मुतालिक कि अल्लाह ताला ने इस शख्स के बाग में खैर और बरकत बढ़ा दी, क्योंकि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के बारे में कुरान का उसूल ये है कि बंदा जो कुछ खैर में खर्च करता है अल्लाह उसका बदल अता फरमाता है। और यहाँ से दास्तान का रुख बदलता है। उस शख्स के बेटे थे, रिवायात में उनकी तादाद 5 बयान हुई है। बाप का मामूल वो बचपन से देखते आए थे, फसल काटना, अपनी ज़रूरत रखना और गरीबों को भी हिस्सा देना। मगर हर बेटे ने अपने बाप के अमल को एक ही नज़र से नहीं देखा। उनमें से अक्सर को बाप की सखावत पसंद नहीं थी। उनके जहन में शायद ये सवाल था, ये हमारा माल है फिर दूसरे क्यों लें, ये हमारी मेहनत की पैदावार है फिर गरीबों का इसमें क्या हक। लेकिन इनमें एक शख्स ऐसा था, कुरान उसे बाद में औसतून कहता है, यानी उनमें निस्बतन ज्यादा मुतवाजन, ज्यादा समझदार और बेहतर सोच रखने वाला शख्स, जो अपने बाप के तरीके को दुरुस्त समझता था। उसकी सोच ये थी कि हम खुद भी खाएं, अल्लाह की नेमत से फायदा भी उठाएं, लेकिन साथ साथ अल्लाह का शुक्र इस तरह भी अदा करें कि उसके मखलूक को महरूम न करें।
0: भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक ही घर, एक ही बाप और एक ही तरह की तरबियत, लेकिन सोच सबकी अलग अलग।
1: बिल्कुल,
0: इसका मतलब ये है कि अच्छी तरबियत बहुत जरूरी है, लेकिन आखिर में हर शख्स को अपना फैसला खुद करना होता है। बाप नेक हो तो बेटा ऑटोमेटिकली ही नेक नहीं बन जाता, हमें अपने अंदर भी वो वैल्यूज दोबारा पैदा करनी पड़ती हैं। और खास तौर पर जब हमें विरासत में प्रॉपर्टी या फैमिली बिजनेस वगैरह मिलता है तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे बाप ने कितना छोड़ा, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि मेरे बाप ने किस उसूल पर जिंदगी गुजारी।
1: वाकई को आगे बढ़ाते हैं

0: दिन बाप का इंतकाल हो गया। वो बाग जिसे एक नेक शख्स ने बरसों संभाला था उसके बेटों के हाथ आ गया। दरख्त वही थे, जमीन वही थी, पानी वही था, फसल भी वही थी, लेकिन मालिकों के दिल बदल चुके थे। और यही नुक्ता गौर तलब है कि कभी नेमत वही रहती है मगर उसके इस्तेमाल का अखलाक बदल जाता है। उस साल बाग में गैर मामूली पैदावार हुई, फसल बहुत उम्दा थी, दरख्त फलों से लदे हुए थे। रिवायत के मुताबिक उस इलाके के बेहतरीन बागात में उसका शुमार होने लगा। बेटे इकट्ठे हुए, लेकिन बजाय इसके कि कहें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिद के बाद भी अल्लाह ने यह नेमत बाकी रखी और उनकी नेकी की रिवायत को जारी रखें, उन्होंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ गुफ्तगू शुरू कर दी। बाज़ बयानात के मुताबिक उन्होंने अपने वालिद के तर्ज़ अमल ही को नादानी समझना शुरू कर दिया। उनका कहना था हमारे वालिद ज़रूरत से ज़्यादा माल गरीबों को दे दिया करते थे, ये दौलत हमारी है, ये पैदावार हमारी है, फिर हम उसे दूसरों में क्यों तकसीम करें। एक ने बात कही, दूसरे ने तायीद की, तीसरे ने हिमायत की, फिर अक्सरियत उसी फैसले पर जमा हो गई।
1: और ये जगह बहुत डेंजरस होती है जब गलत बात को एक आदमी नहीं पूरा ग्रुप सपोर्ट करने लगे। भाई कभी ऑफिस में होता है, कभी बिजनेस पार्टनरशिप में ऐसा होता है, कभी फैमिली डिसीजंस में। हर आदमी अंदर से जानता होता है कि शायद ये ठीक नहीं है, लेकिन जब चार लोग हाँ कर देते हैं तो पांचवा भी कह देता है कि ठीक है, जो सब कर रहे हैं वही कर लेते हैं। मगर पुरानी कहानी हमें ये सिखाती है कि मेजॉरिटी हमेशा मोरालिटी का स्केल नहीं होती।
0: और यही बात हमें देखने को मिलती है जो औसतुहुम के हवाले से जो ताबीर आती है कुरान में, कि वो समझदार भाई सामने आता है, उसने अपने भाइयों से इख्तलाफ किया, उसने कहा कि तुम गलत कर रहे हो, हमारा बाप नादान नहीं था, वो जानता था कि अल्लाह की नेमत का शुक्र कैसे अदा किया जाता है, वो गरीबों और मोहताजों को देता था और उसी में हमारे बाग की बरकत थी। उसने अपने भाइयों को अल्लाह की याद दिलाया। कुरान आगे उसे शख्स का कौल नकल करता है, अलम अकुल लकुम लौला तुसब्बिहून, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम अल्लाह की पाकी क्यों बयान नहीं करते, उसे याद क्यों नहीं करते। यानी मसला सिर्फ ये नहीं था कि तुमने चंद गरीबों को कुछ फल नहीं दिए, असल बीमारी दिल में थी और वो क्या, अल्लाह को भुला देना। जब इंसान नेमत को देखता रहे और मुनीम को भूल जाए तो फिर उसे अपनी दौलत में किसी और का हक नजर नहीं आता।
1: और हम अपनी जिंदगी में भी ये चेक कर सकते हैं जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, खास तौर पर पैसों का, कि क्या हम सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं या अल्लाह सुभान व तआला की रजा भी। कभी कभी एक डील टेक्निकली फायदेमंद होती है लेकिन उसमें किसी कमजोर का हक दब रहा होता है। कभी हम घर का बजट बना रहे होते हैं और किसी जरूरतमंद रिश्तेदार को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। कभी बिजनेस में हम एम्प्लॉय की जरूरत देखते हुए भी कहते हैं मेरा क्या लेना देना। यहीं पर अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मेरा माल मेरी आंखें खोल रहा है या बंद कर रहा है।
0: अब वाकई में जहां हमें नजर आता है कि भाइयों ने इस उसकी नसीहत को कबूल नहीं किया, रिवायत में उनके दरमियान सख्त इख्तलाफ का जिक्र आता है। वो नेक भाई अक्सरियत के सामने कमजोर पड़ गया, उसने नसीहत की, समझाया, अल्लाह का खौफ दिलाया, गरीबों और मस्किनों के हकूक की तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन बाकी भाई अपने फैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। बिलाखिर उन्होंने एक मनसूबा बनाया और कुरान उसी लम्हे को बड़ी कुव्वत के साथ बयान करता है, इज़ अक़समु लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन, यानी जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह होते ही बाग की फसल जरूर काट लेंगे। उनका मंसूबा यह था कि फजर के बाद बहुत सवेरे उस वक्त बाग की तरफ निकले जब गरीब और मोहताज लोग अभी वहां ना पहुंचे हों, जल्दी जल्दी पूरी फसल काट ली जाए, फिर पैदावार उठाकर बेच दी जाए और किसी फकीर को कुछ न मिले। देखिए कभी इंसान नेकी के लिए मंसूबा बनाता है और कभी इंसान किसी को महरूम करने के लिए भी बाकायदा प्लानिंग करता है। तो वो रात को यानी सिर्फ सोए नहीं थे, वो एक मंसूबे पर मुतमईन होकर सोए थे। कुरान साथ ही फरमाता है वला यस्तस्नून, उसकी तफसीर में अहले इल्म ने मुख्तलिफ पहलू बयान किए। एक मारूफ तशरीह ये है कि उन्होंने अपने मंसूबे को अल्लाह की मशीयत के साथ वाबस्ता करते हुए इंशाल्लाह भी ना कहा, और बाद मुफस्सिरीन ने उसे इस मानने से भी जोड़ा है कि उन्होंने किसी मिस्कीन के लिए कोई हिस्सा मुस्तस्ना रखने का इरादा नहीं किया था। दोनों सूरतों में एक ही ज़हनियत सामने आती है कि हमने फैसला कर लिया है, फसल हमारी है, मंसूबा हमारा है और अब कोई उसे बदल नहीं सकता। लेकिन इंसान मंसूबा तो बनाता है और कायनात का फैसला उसके मंसूबे से बड़ा होता है।

0: होना और रीचियस होना एक ही बात नहीं होती।
1: बिल्कुल सर भाई, अगर हम वाकई की तरफ देखें तो ये सब भाई रात को अपने मंसूबे पर बड़े मुतमईन होकर खुश थे, सोए थे। उन्हें यकीन था कि सुबह आएगी, हम बाग पहुंचेंगे, सारी पैदावार हमारे कब्जे में होगी, गरीबों को खबर भी नहीं होगी। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि सुबह आने से पहले फैसला आ चुका है। अल्लाह फरमाता है, फताफ अलैहा ताइफुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून। जब वो सो रहे थे तो तुम्हारे रब की तरफ से गर्दिश करने वाली आफत उस बाग पर आ गई। वो अपने घरों में थे, बाग से दूर, अपने मंसूबों में मुतमईन, आने वाले मुनाफा के तसव्वुर में खुश। लेकिन रात की खामोशी में बाग का नक्शा बदल गया। कुरान फिर कहता है, फअसबहत कसरीम, और सुबह होते होते वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई, उजड़ी हुई सियाह पड़ी जमीन। वो फल जिन्हें उन्होंने गरीबों से बचाना चाहा था, खुद उनके हाथ भी ना आए।
0: और यहाँ कहानी सीधा हमें हमारे दिल को हिट करती है। कभी हम समझते हैं कि घर में दूसरे का हिस्सा रोक लूंगा तो मेरे पास ज्यादा बच जाएगा, लेकिन बरकत सिर्फ कैलकुलेटर से नहीं होती भाई। कभी पैसा होता है मगर सुकून चला जाता है, कभी बिजनेस होता है मगर ट्रस्ट चला जाता है, कभी प्रॉपर्टी होती है मगर फैमिली टूट जाती है, कभी इनकम बढ़ती है मगर खर्च उससे ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास कितना है, सवाल ये भी है कि जो मेरे पास है उसमें अल्लाह सुभान व तआला ने बरकत रखी है या नहीं। और शायद इस कहानी का पहला प्रैक्टिकल लेसन यही है कि नेमत को अपनी मिल्कियत समझकर मत जियो, उसे अल्लाह सुभान व तआला की अमानत समझकर जियो।
2: आप सुन रहे हैं कससुल कुरान
3: आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ, सिर्फ एफएम 107 पर।
1: जी सामने कराम, फजर हुई, सुबह का वक्त आया, एक भाई ने दूसरे को जगाया। कुरान कहता है, फतना दौ मुस्बहीन, वो सुबह सवेरे एक दूसरे को पुकारने लगे। फिर उन्होंने कहा, अनगदु अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन, अगर फसल काटनी है तो सुबह सवेरे अपने खेत की तरफ निकलो। तो लफ्ज उगदु में सुबह के इब्तदाई वक्त की तरफ इशारा है, यानी जल्दी निकलो, देर ना होने पाए। वजह क्या थी? वो जानते थे कि हर साल गरीब और मिस्कीन भी फसल के मौके पर वहां आते हैं, क्योंकि उनके वालिद ने उन्हें उस खैर का आदि बनाया था। अब बेटों का मकसद था उनसे पहले पहुंच जाओ, फसल काट लो, सारा माल उठा लो और किसी को खबर ना होने दो। उन्होंने फसल काटने के आलात तैयार किए, टोकरियां ली, औजार उठाए और खुशी खुशी निकल पड़े।
0: यहाँ एक और प्रैक्टिकल पॉइंट है तला भाई। कभी हम किसी गलत काम को करते हुए भी एक्साइटेड होते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत स्मार्ट प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन हर सक्सेसफुल प्लान मोरली सक्सेसफुल नहीं होता। अगर मेरी प्लानिंग से किसी कमजोर का हक मर रहा हो या मारा जा रहा हो तो मेरे प्लान का एफिशिएंट होना कोई कामयाबी नहीं है। बिजनेस में हो, फैमिली इनहेरिटेंस में हो, ऑफिस पॉलिटिक्स में हो, हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि प्लान काम करेगा या नहीं, ये भी देखना है कि प्लान ठीक है या नहीं।
1: सर भाई, ये वाकई में यहाँ एक बड़ा दर्दनाक तजाद है। अब देखिए, एक तरफ बाप जो नेक इंसान था, उसी बाग से खुद भी खाना खाता था, बच्चों को भी खिलाता था और गुरबा और मसाकीन का हक भी निकालता था। यानी एक ही घर में एक नस्ल ने माल को बरकत समझा और दूसरी ने उसे सिर्फ मिल्कियत समझ लिया। बाज़ औक़ात जिंदा दिल इंसान से भी ऐसे वारिस पैदा हो सकते हैं जिनके दिल अखलाक के एतबार से मुर्दा हों। एक साले बाप की नेकी औलाद को रास्ता दिखा सकती है, मगर चलना फिर भी औलाद को खुद पड़ता है।
0: और इसीलिए पेरेंट्स के लिए भी एक रिमाइंडर है, सिर्फ प्रॉपर्टी छोड़कर मत जाइए, वैल्यूज भी उनके साथ छोड़िए। और बच्चों के लिए, अगर आपको वालिदैन से माल मिला है तो सिर्फ उनके बैंक बैलेंस इनहेरिट मत कीजिए, उनका अच्छा करेक्टर भी इनहेरिट कीजिए। वरना हो सकता है कि जनरेशन ने बरकत बनाई हो और अगली जनरेशन सिर्फ एसेट बेचकर खत्म कर दे।
1: फिर कुरान उनके चलने का अंदाज भी बयान करता है, यानी जब वो बाग की तरफ जा रहे थे, فَانْتَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ, وہ چل پڑے اور آپس میں دبی دبی آواز میں باتیں کر رہے تھے, یعنی کوئی سن نہ لے, غریبوں کو خبر نہ ہو جائے۔ راستے میں وہ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے, اور وہ سرگوشی کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے, اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسكين, آج تمہارے پاس باغ میں کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ ہاں جی, خیال رکھنا۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آج ہم کم دیں گے, बात

0: क्वेस्ट शो सिर्फ आपके लिए संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 बजे से ओनली ऑन एफएम 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
3: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
1: फुटबॉल का असली रंग, असली जज्बा और असली धमाका लेकर आ रहा है मोहम्मद अमीन. It's a goal show. जहां हर मैच की हर किक होगी लाइव, हर गोल बनेगा एक सेलिब्रेशन.
2: हाइलाइट्स, कमेंट्री और स्पोर्टी वाइब्स का फुल पैकेज. अगर फुटबॉल है आपका पैशन तो ये शो है आपका अल्टीमेट मजा. डोंट मिस इट. इट्स अ गोल शो विद मोहम्मद अमीन एवरी संडे एंड थर्सडे एट 1 PM लाइव ऑन FM 107. दिल से देसी.
3: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं.
4: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना.
3: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना.
5: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर्स. सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 RJ Nazia और RJ Sarwar Mirza के साथ only on FM 107 दिल से देसी.
6: नया जमाना और अनप्लग गाने, दिल खोल के होंगी आपके खत की बातें. छोटी सी कहानी हो या तरक्की के किस्से, ये शो फजील के साथ आपके हिस्से.
7: सुनिए अनप्लग इवनिंग विद आरजे फजील संडे टू थर्सडे 6 PM to 7 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.

0: FM 107 से आप पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم